जब मन में सुकून, विश्वास और अच्छे विचार बस जाते हैं तो जिंदगी की हर चुनौती छोटी लगने लगती है। बाहरी हालात जैसे भी क्यों न हो, असली ताकत हमारे मन के भीतर ही होती है।

और गीतों भरे सफर पर चलते चलते हम और आप भोर सुहानी के अंजाम पर पहुंच ही चुके हैं। तो भाई चलते चलते आपको एक बहुत ही खूबसूरत से गीत के साथ छोड़े जा रहे हैं और इस गीत के साथ ही आप सुरभि को दीजिए इजाजत। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। हमारी आपकी मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तो सुनिए ये गीत और इसी के साथ सुरभि को दीजिए इजाजत।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 29वीं तिथि, तदनुसार 19 जून 2026 सुबह के 5:53 और 32 सेकंड हुए हैं। हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

चलिए अब जान लेते हैं कार्यक्रम विवरण। अब से कुछ ही देर बाद यानी 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। 6:05 पर अंग्रेजी समाचार प्रसारित किए जाएंगे। 6:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम अर्पण। सात का समय है आज सवेरे कार्यक्रम का। 8:45 पर आप म्यूजिकल दिल्ली कार्यक्रम सुन सकते हैं।

10:30 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम दिल का मेल बॉक्स, 11:25 पर तस्वीर कार्यक्रम में केरल के थिरकड्डी की तस्वीर आप सुन सकते हैं। 12:10 का समय है एक कदम बुजुर्गों की ओर।

समय है कार्यक्रम मन भावन का। 5:10 के समय पर आप सुन पाएंगे पानी पर लिखी कहानी जिंदगी अभी बाकी है। छह बजकर 10 मिनट पर सुनेंगे सदाबहार गीत। 6:30 का समय है मार्केट मंत्रा का। आठ बजकर 10 मिनट पर मधुरिमा सुन पाएंगे और 8:45 का वक्त है समाचार संध्या का। 10:30 पर हर श्रृंगार।

1:10 पर एक कलाकार कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुन पाएंगे राजेंद्र कृष्ण साहब के बारे में। आज के कलाकार हैं राजेंद्र कृष्ण। 3:10 का

ये आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल है। कुछ ही देर में 6 बजने वाले हैं और समाचारों का वक्त है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विश्व के लिए एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर देश एक विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला और एक स्थिर साझेदार चाहता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वे समावेशी होगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक विकास तभी टिकाऊ होगा जब वे साझा किया जाएगा और प्रौद्योगिकी से मानवता को तभी सच्चा लाभ मिलेगा जब उस पर भरोसा किया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि जब उनकी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए तब वे फ्रांस पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
1: 12 साल के इस कालखंड में भारत का जीडीपी दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन।

0: प्रदेशः सर्वबृहत् लाभार्थी राज्यत्वेन उदितः। यस्य कृते अष्टनवत्युत्तरद्विशताधिक अष्टचत्वारिंशत्सहस्र मेट्रिक टन मितं मुद्गम सप्तनवत्युत्तरशताधिक सप्तनवतिसहस्र मेट्रिक टन मितं माश अथ च अष्टादशोत्तरसप्तशताधिकैकचत्वारिंशत्सहस्र मेट्रिक टन मितं कलायक्रयणस्य अनुमतिः दत्ता। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयस्य सचिवः संतोष कुमार सारंगी न्यगादीत् यत् दृढ़ नीतिगत संरचनया अभिनव सर्वकारीय प्रयासैः भारतम् अद्य जगति नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रे प्रमुख देशत्वेन समुदेति। नवदिल्ल्याम् आयोजिते हरित एवं सतत विकास सन्धिः इत्याख्ये दशमे संवाद सत्रे नवीकरणीय ऊर्जा ऊर्जा सुरक्षा इति विषये भाषमाणः श्री सारंगी गत दशके भारतस्य अभूतपूर्व प्रगतेः उल्लेखं कृतवान्। तेन प्रतिपादितं यत् एषः विकासः मुख्यतया नवीकरणीय क्रयण अनिवार्यता प्रतिस्पर्धात्मक निविदा दिशानिर्देशाः सहैव स्वचालित मार्गेण 100% वैदेशिक प्रत्यक्ष निवेशं करोति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विश्व के लिए एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वे समावेशी होगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक विकास तभी टिकाऊ होगा जब वो साझा किया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि जब उनकी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए तब वे फ्रांस पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
2: 12 साल के इस कालखंड में भारत का GDP दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
1: प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। प्रधानमंत्री मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देशभर में 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के कार्यक्रम में भाग लेंगी। इसके बाद वे ओडिशा के रायरंगपुर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज से 3 दिन के दौरे पर लद्दाख जा रहे हैं। वे लेह में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। श्री राधाकृष्णन की लद्दाख की ये पहली यात्रा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली NEET UG पुनर्परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। अदालत ने पूछा कि परीक्षार्थियों द्वारा प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल की आशंका के चलते करीब 15 करोड़ यूजर्स के अधिकारियों को कैसे सीमित किया जा सकता है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है

युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत अमरीकी नौसेना ने ईरान के बंदरगाहों पर दर्जन से अधिक जहाजों को आवागमन की अनुमति दे दी है और वहां से नाकेबंदी हटा ली है। श्री वेंस ने कहा है कि अब होर्मुज जलडमरू मध्य से तेल की अधिक आवाजाही हो रही है। उधर ईरान के सरकारी मीडिया ने भी कहा कि ईरान के दक्षिणी बंदरगाहों पर जहाजों का आवागमन सामान्य हो गया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइली सेना दक्षिणी लेबनान में बनी रहेगी। अमेरिका ईरान समझौते पर हस्ताक्षर के बाद ये उनकी पहली टिप्पणी थी। श्री नेतन्याहू ने कहा कि दक्षिणी लेबनान में सुरक्षा क्षेत्र बनाए रखना इसराइल की सुरक्षा के लिए जरूरी है। भारत ने कल न्यूजीलैंड में FIH महिला नेशंस कप में पूल ए के मैच में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। फीफा विश्व कप में कल रात ग्रुप ए के मैच में चेकिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला 1-1 से गोल से ड्रॉ रहा। इस परिणाम से दोनों ही टीमों की नॉकआउट दौर में पहुंचने की उम्मीद बनी हुई है। इससे पहले कल ग्रुप ए में मैक्सिको सिटी में खेले गए मुकाबले में कोलंबिया ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Prime Minister Shivraj Singh Chauhan has approved large-scale procurement of pulses and oilseeds at the minimum support price for four states. The ministry said that the procurement will be undertaken under the price support scheme in Tamil Nadu, Gujarat, Uttar Pradesh and Haryana. Uttar Pradesh has emerged as the biggest beneficiary under the approvals for the summer 2026 season. India strongly rejected Pakistan's allegations and references to Jammu and Kashmir made by Pakistan and the Organization of Islamic Cooperation, OIC, at the United Nations, asserting that Jammu and Kashmir was, is and will always remain an integral and inalienable part of India. Dominant India outclassed defending champions Hong Kong China 3-1 to storm into the final of the World Team Snooker Championship at Guangdong, China yesterday. In the title clash tomorrow, India will take on the winners of the other semi-final between host China A and Korea. And in hockey, India defeated Uruguay 3-2 to register their third consecutive win and finish on top of Pool A in the FIH Women's Nations Cup in New Zealand yesterday. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियन 268.8 मीटर और FM 103.5 MHz पर यह आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज है। सुबह के 7:10 हुए हैं। समाप्त करें मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन सर्विस के तहत प्रोग्राम पयामे सुबह। प्रोग्राम से पहले ये वक्फा।
2: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर हर गली हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तेहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
3: अरे यार तू कहाँ ले आया मुझे?
4: अम्मा तेरी भाभी ने घर का सामान मंगाया है, नहीं ले गया तो शामत है। सुना यहाँ ऑफर्स भी है।
3: ओह,
4: सॉस एक में एक फ्री, कुकिंग ऑयल 40% ऑफ, 5 किलो आटा 70 रुपए।
3: भाई ऑफर तो ठीक है, लेकिन क्वालिटी और लेवल का क्या?
4: अम्मा लेवल लेवल छोड़, ऑफर्स देख।
3: ओए ऑफर किंग, ऑफर के चक्कर में अपनी आंखें मत ऑफ कर। क्वालिटी परखने के लिए लेबल पे गौर कर। किसी भी खाद्य उत्पाद की प्रामाणिकता की पहचान उसका लेबल है। खरीदने से पहले लेबल की जांच अवश्य करें।
5: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन J&K।
6: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
7: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
9: सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में 2026-27 के लिए पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज और प्रोग्रामों में दाखिले के लिए दरख्वास्तें जमा कराने की तारीख में तौसी की गई है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्रामों के लिए फॉर्म जमा कराने की आखिरी तारीख 23 जून 2026 मुकर्रर की गई है। मजीद तफसीलात www.cukashmir.ac.in से हासिल करें। वाज़ह रहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तमाम दाखिले सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट 2026 की बुनियाद पर ही दिए जाएंगे।

0: मैं तस्लीमा अख्तर आपके साथ इस नशरियात में रहूंगी सुबह के इस लाइव प्रोग्राम में पयाम सुबह में, और उम्मीद करूंगी कि आज की ये सुबह भी बहुत अच्छी गुजरे और बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारे बीच हों। आज का दिन बहुत ही ख़ास है, जैसा कि रूफ ने पहले ही कहा, जुमे का दिन है। जुमे का दिन जो है अपने अंदर एक ख़ास रूहानी कैफियत और नूर और सुकून समाये हुए है। जुमे के दिन हफ्ते का सबसे अफजल और बाबरकत वाला दिन है, बाबरकत दिन है, बरकत वाला दिन है, और ये वो वक्त है जब कायनात पर रब करीम की खसूसी रहमतों और मगफरत के दरवाजे कुशादा कर दिए जाते हैं। रूफ यही दिन है जो इंसान को दुनियावी बागदौड़ से निकाल कर सुकून कल्ब की तरफ लाता है।
1: बिल्कुल,
0: नमाज जुमा के लिए मसाजिद का रुख करना, इज्तिमाई दुआ और खुतबे का सुनना दर हकीकत मोमिन की रूह को ताज़ा और पाकिज़ा करने का अमल है।
1: बिल्कुल,
0: और अगर हम आज के दिन का दूसरा पहलू देखें, ये दिन इस हैसियत से भी खास है क्योंकि आज हम जिस महीने के साए में सांस ले रहे हैं वो हमें सिर्फ वक्त के गुजरने का एहसास नहीं दिलाता।

0: और कुर्बानी की एक ऐसी दास्तान है जिसे वक्त कभी फरामोश नहीं कर सकता।
1: बिल्कुल तस्लिमा, मुहर्रम का पैगाम महज एक रवायत नहीं बल्कि जिंदगी गुजारने का एक सलीका है। ये वो महीना है जो हमें सिखाता है कि जब दुनिया मसलतों की चादर ओढ़ लें तब भी उसूलों पर कायम रहना ही इंसानियत का असल इम्तिहान है।
0: बिल्कुल,
1: आज हमारे शो का महवर जो है भी यही है कि कैसे हम हक और सच्चाई को अपनी जिंदगी का ओढ़ना बिछूना बनाएं।
0: जी हाँ, और आज हम बात करेंगे रूफ, मुझे लगता है जब्त नफ्स पर, यानी गुस्सा पी जाने के उस हुनर पर जो एक इंसान को हजूम से अलग करके साहिब किरदार भी बनाता। और साइंस से नुक्ते नज़र से देखे तो यह हमारे आसाब के लिए एक नेमत है और इखलाकी तौर पर एक बहुत बड़ी ताकत भी है रूफ।
1: बिल्कुल तस्लिमा, आज के शो में हम तारीख के इन रोशन और तारीख पहलुओं पर भी बात करेंगे जो हमें बताते हैं कि वक्त हमेशा बदलता है मगर किरदार हमेशा जिंदा रहते हैं। आज के सफर में हमारे साथ रहिएगा क्योंकि आज के गुफ्तगू जमीर को झंझोटने और एक नई सोच हासिल करने के लिए काफी होगी।
0: तो चलिए अपने आप को बदलने का सफर आगाज करते हैं आज अभी और यहीं से। प्रोग्राम की शुरुआत में सुनिए ये खूबसूरत कलाम।

0: आकाशवाणी श्रीनगर के प्राइमरी स्टेशन की आवाज 98.8 MHz और FM 103.5 MHz प्रोग्राम समाप्त कर रहे हैं आप प्याम में सब लाइव मॉर्निंग शो। आज के लाइव मॉर्निंग शो में आपके साथ आपके जो मेजबानी के पर आज हम अंजाम दे रहे हैं, मैं हूँ आपकी होस्ट तस्लीमा और मेरे साथ है मेरे को होस्ट
1: रूफ अली।
0: रूफ, बात कर रहे हैं हम एक ऐसे इंसानी जज्बे की जो फित्री है मगर वारिया लट छू सो इंसानस नुकसानातन अंदर तरावा वारिया लट नहीं कि बल्कि अगर वाना
1: अक्सर
0: अक्सर हार्विज तो क्या इंसान से निखरतरी उस ये जज्बा छू उस ये मतलब ये गुस्सा जो है उसे शरारत छू ये छू ने इंसान को इतने तरीके फायदे दिमा। अगर गुस्से की बात करें ये एक ऐसा आतिशफिशा है जो पहले खुद अपने मालिक को मतलब गुस्सा करने वाले को जलाता है और फिर अपने इर्द गिर्द के माहौल को राख कर देता है। ये इंसानी फितरत का एक हिस्सा तो जरूर है रूफ, मगर इसकी शिद्दत और बेकाबू कैफियत इंसान की पहचान और उसके किरदार को मसक कर सकती है।
1: बिल्कुल सही फरमाया आपने तस्लिमा। गुस्सा एक इस वक्त जन्म लेता है, अक्सर जन्म लेता है जब हालात हमारे ख्वाहिश के मुताबिक नहीं होते। ये हमारी अना ईगो का एक रद्द अमल है जो हमें ये बावर कराती है कि हमसे ज्यादती हुई है, लेकिन गौर करें तो मालूम होता है कि गुस्सा हमें एक ऐसी कैद में डाल देता है जहां हम

0: अपने जज्बात के गुलाम बन जाते हैं। इस कैद में अकल के दरवाजे बंद हो जाते हैं और इंसान वो कुछ कर बैठता है जिसका पछतावा इसे बरसों तक रहता है।
1: रूफ, अगर हम यूजुअली यहाँ पे बात करें ना, तो असफन होने के शरारत कैसे इंसान अचानक बेवजह कौन चीज इस पर, ये जो अना की बात की ना आपने, अना ये ईगो चुन सा इंसान आतेल ठेस लगान जो इंसान छुन सो बर्दाश्त हकान कर कहीं, तो सो बर्दाश्त नेबर ये ईगो हद खुद ज्यादा चु आसान बर्दाश्त नेबर चु गसान इस कैसे का अछन सब्र तम साथ काम हेवा कहीं असली चु सान सब्र यूजन सान पेशेंस छन वो खो जाती है उस टाइम, हम पेशेंस से काम नहीं ले पाते हैं। और कई बार लोग क्या करते हैं ना, गुस्से को अपनी ताकत समझने की गलती करते हैं कि शायद जिस ताकतवर अगर इस गुस्से से काम लेंगे या बढ़ हट कहाँ से बनो या शरारत सा कहाँ से बनो एमिस पर पे सोन आख इम्पैक्ट ही ना है कि और जवाब देते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ी गलती करते हैं। हम में से जितने भी लोग ऐसा समझते हैं कि ये गुस्सा एक ताकत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे करने से लगता है कि जोर से बोलना, चीखना या तेज में आना सामने वाले पर धाक बिठाने का नाम है, मगर हकीकत इसके बरक्स है। अगर हम देखें रूफ, असल ताकत गुस्सा करने में नहीं बल्कि उस गुस्से पर काबू पाने में है। एक पुरसुकून इंसान जो है ना, वो तूफानी बदतमीजी के सामने भी अपनी जुबान और एहसाब पर इख्तियार रख पाता है, रखता है। वो दरअसल उस इंसान से कहीं ज्यादा ताकतवर है जो मामूली सी बात पर अपना आपा खो देता है। और ये जो गुस्सा है ना, ये इंसान को छोटा बना देता है। अगर जब्त से काम ले इंसान, तो आप देखेंगे कई बार जब हम इस जब्त से काम लेते हैं, इंसान के अंदर एक सुकून महसूस होता है और एक अलग वकार अता करता है इंसान को। ये
0: बिल्कुल तस्लिमा ऐसा कोई इतनी नहीं है जिस ये शरारत का सुन चु रिश्तन ते खराब करान।
1: बिल्कुल
0: है ना, गुस्सा जो है ये तालुकात का सबसे बड़ा कातिल है। तो इम साथ इस शरारत करान या शरारत ऐसा खसान चु पाते इम अल्फाज नीरान चु तिम चा आसान तीरिक पेट, तो ये यम द्राय जबान यम चुन वापस आकर इस पर नित के ही।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और आपका पल भर का जो गुस्सा है बरसों की मोहब्बत और भरोसे को एक लम्हे में खत्म कर सकता है। जो जख्म जिस्म पर लगते हैं वो वक्त के साथ भर जाते हैं, लेकिन जब जख्म गुस्से में जबान से दूसरों के दिल पर लगाए जाते हैं, इनके निशान अक्सर पूरी जिंदगी बाकी रहते हैं।
1: ये निशान क्या है रोजान? दरअसल पथ कुन तलसफ सो ये कि साथ कर हूं बैकग्राउंड पूर पा वुचित या तथ पे गौर कर फौरी रद अमल कत गई या कह गो सान तवक़ात खिलाफ यो एक्सपेक्टेशन तमें नबर गसान तम सान पैनिक या अस लगान ईगोस पर ठेस और उस टाइम हम फौरन रद्द अमल देते हैं। और फौरन जो रद्द अमल हमारा होता है ना, वो अक्सर गुस्सा ही होता है। फौरन रद्द अमल तथ रद्द अमल मन रोजान ये इख्तियार जबान पे कि कमन अल्फाजन इंतखा कमिस सखातब तो अस क्या वोन नो ये करो इस कंसिडर के सामने वाले ने आपके साथ जो बिहेवियर किया वो गलत था, आपको चोट पहुंची, लेकिन उसने जो चोट पहुंचानी थी वो पहुंचा दी, पर जरूरी नहीं है उसके बदले आप भी चोट पहुंचाए और आप भी अपने मयार से नीचे उतर कर वो सब करें जो फिर बाद में बदला नहीं जा सकता। तो वनो वजह कत कि ये इंसान सिंद कलम ना सो पज पे कमान मज तीर ना मज न जबान मज नमुत कह द्रामुत कह अल्फाज तो कमान मज द्रामुत तीर वापस फेरान के, इसलिए गए सोच समझ के पे अल्फाजन इंतखाब कर तो बेम सा शरारत खस तम सा फौरी रद अमल दिन कहीं सो सारे खुद बोड़ बार इलाज अमे शरारत।
0: बिल्कुल। तो बोलो बोझो ब्या नात्या कलाम।

0: चीज है एंड वक्त पर धोखा देती है। और आज जब मैं स्टूडियो में आई तो मैंने देखा कि हमारी जो सारी मशीन है बहुत रूठी पड़ी है, कुछ नाराजगियां हैं। वेल, ऐसा कभी कभी होता है, बट हम उम्मीद करेंगे कि जो आप तक नगमा पहुंचा आपको पसंद आया होगा। और रूफ, कभी कभी हम कह भी देते हैं कि हम ये अपने सामीन को सुनवाने वाले हैं, पर पछुन वक्त पर सुचालान की ही। आई होप कि जो हमारे सामीन है, हमारे दोस्त है, लिसनर्स है, वो सब इन सब चीज़ों को समझते हैं। खैर, आगे नातिया कलाम सुनवाने की भी कोशिश करेंगे। आज हमारे पास काफ़ी मशीनें जो है, जैसा कि हम पहले बोल रहे हैं, नाराज सी चल रही हैं, इनको मनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अपनी जो बात है, हम बात कर रहे थे रूफ एक फितरी इंसानी जज्बे की, जो एकदम से हम किसी बात पे रद्द अमल देते हैं, जिसे हम गुस्सा कह सकते हैं। ये गुस्सा एक आतश्विशां की तरह है, ये एक फितरी इंसानी जज्बा है, लेकिन जब ये बेकाबू हो जाए तो ये ना सिर्फ हमारे समाजी ताल्लुकात को मुतासर करता है, बल्कि जिस्मानी और जहनी सेहत के लिए भी एक जहर की हैसियत रखता है। रूफ, साइंस की नज़र में गुस्से के कुछ नुकसान हैं।
1: जी बिल्कुल,
0: अगर बात करें इससे गुस्से के जो साइंसी नुकसान हैं, दिल पर भी बुरे असरात पड़ते हैं।
1: जी बिल्कुल, और ये जो है कार्डियोवैस्कुलर डैमेज हो जाता है। इसे साइंसी तहकीक के मुताबिक शदीद गुस्से की हालत में इंसानी जिस्म में एड्रेनलिन और कोर्टिसोल जैसे हार्मोन्स का सैलाब आ जाता है। इससे दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है और ब्लड प्रेशर खतरात हद तक जो है वो बढ़ जाता है। बार बार का शदीद गुस्सा दिल की आर्टरीज को नुकसान पहुँचाता है और दिल के दौरे जो हैं, हार्ट अटैक के खतरे को कई गुना जो है बढ़ा देता है।
0: और ये जो कोर्टिसोल लेवल है ना, ये जब हाई हो जाता है, ये हमारे गुस्से से ही हो जाता है। पचना इसमें क्या छू डिप्रेशन, क्या छू टेंशन। एंड ये कोर्टिसोल लेवल माहरीन के एज पर, और जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, माहरीन हैं, वो ये कह दें कि ये गसन इंसान सिंध जहनस में ज़्यादा हाई गसन के हैं,
1: इसके लेवल नहीं बढ़नी चाहिए।
0: बिल्कुल, अगर हम इम्यून सिस्टम की बात करें तो तवील अरसे तक गुस्से में रहने से जिस्म का जो मुदाफ़ती निज़ाम है, इम्यून सिस्टम हमारा है, वो भी कमज़ोर पड़ जाता है। और कोर्टिसोल हार्मोन का मुसलसल इखराज जिस्म में सोजिश यानी इन्फ्लेमेशन पैदा करता है, जिससे इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ने की सलाहियत कम हो जाती है और इंसान जल्दी बीमार पड़ने लगता है। और दिमाग की कारकर्दगी का जो और जो फैसले साजी है, रूफ हम बात कर रहे थे कि
1: उसे दिमाग के इस हिस्से को जो है ना, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को वक्ती तौर पर वो मखलूज कर देता है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को, और जो मंतकी सोच और फैसला साजी का जिम्मेदार है, मतलब जिससे हम एक्चुअली जो है फैसला लेते हैं। इसलिए गुस्से में कहे गए जो फैसले हैं अक्सर तबक्कुन होते हैं। साइंसी तौर पर गुस्सा इंसान के कोते फहम को ख़त्म करके इससे जबलियत यानी इंस्टिंक्ट की सतह जो है पर ले जाता है, जहां वो सही और गलत का फर्क करना भूल जाता है।
0: देखा, जब हम गुस्से में आ जाते हैं तो सही और गलत का फर्क क्यों हम भूल जाते हैं। ये साइंसी बैकग्राउंड है। साइंसी तौर पर गुस्सा इंसानी फहम को ही ख़त्म करता है। अब चुना इस्लाम समझते वानना आम कि अगर शरारत खसे तम साद गसे छप करें तम साद गसने फोरी रद अमल दून की हिन। ठीक है, जे 12 मिनट का ये दौरानिया होता है। अगर आप 12 मिनट अपने आप को कंट्रोल कर पाए ना रूफ, तो आप यकीन जानिए गुस्से की लेवल एकदम, ये हार्मोनल फ्लक्चुएशन भी हो जाता है जब गुस्से में आते हैं।
1: तो अक्सर हम ये बात सुनते हैं कि जब कोई बंदा गुस्सा करता है तो 10 और 20 सेकंड उसके बाद वो
0: काउंटिंग करो अंदर से, आपको गुस्सा है,
1: मैंने गलत किया,
0: एक ट्रिक है,
1: गुस्से में बोला।
0: आपको पता है रूफ, मैं क्या ट्रिक करती हूँ, क्योंकि मुझे गुस्सा बहुत ज्यादा आता था, मैं अपने सामीन के साथ ये शेयर करना चाहूंगी। लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आया कि ये गुस्सा मेरा जो है ना, ये औरों पर भी भारी पड़ रहा और मुझे मेरी सेहत पर भी भारी पड़ रहा। तो फिर क्या है ना, मेरी माम ने मुझे सिखाया कि जब कंट्रोल ना हो गुस्सा तो काउंटिंग किया करो, और वो भी उल्टी गिनती गिना करो, 12 to 0 तक, लाइक 12, 11, 10, 9, 8। तो ऐसा करने से ये जो आपका गुस्से का जो लेवल है ना, वो कंट्रोल में आ जाता है। तो आप सोच सकते हैं ये कि मिशु शरारत मुझे मिसनाफरस जवाब दूं, मगर 12 सेकंड के बाद।
1: और ये जो गुस्सा पी जाना, ये कोई जज्बाती कमजोरी नहीं है, बल्कि जिस्मानी बचाव की एक हिकमत अमली है। जब हम गुस्सा पी जाते हैं या इसे काबू में लाते हैं, तो हम दरअसल अपने जिस्म को उन नुकसानात से बचाते हैं जो कि हार्मोन्स जो है ना, उनके जो लेवल है वो बढ़ जाती है, उनको हम उसे फिर

0: कंट्रोल कर पाते हैं।
1: लेकिन आप इस गुस्से को पॉजिटिव वे में भी निकाल सकते हैं, और इस बुरे तरीके से जैसे हम गुस्से में जब आते हैं तो कोई लेवल ही नहीं रहता, उस लेवल को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को बोलिए कि मुझे इसको जवाब देना है लेकिन मैं पहले सोचता हूँ। जो जवाब आपके पास हो उस पर भी आप फिर से सोचने की कोशिश करें, और फिर दूसरी बार तीसरी बार भी सोचने की कोशिश करें, और फिर बोलें कि अपने साथ मैच्योर में जवाब दूँ मगर मैं नहीं कैच दूँ, थोड़ी देर बाद दूंगा। और इस तरह से आप अपने आप को कंट्रोल करेंगे और अपना जो पोजीशन है वो चेंज करेंगे। अगर आप बैठे हैं उठ जाइए, अगर आप उठे हैं तो चहलकदमी कर लीजिए, अगर आप इस जगह है तो इस जगह को फौरी तौर छोड़ दीजिए।
0: और एक तरीका है कि हम स्वामी इनको बता दें कि जब गुस्सा आए तो अपने आप को किसी दूसरे काम में मशगूल कर लें।
1: नहीं कर पाता है रूप, मैं बताती हूँ जब गुस्सा आता है तो लेकिन कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हम असफल मखलूकात हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। नफ्सियाती असरात जो है ना, मेंटल फटीग के बारे में अगर हम साइंसी बैकग्राउंड देखें तो गुस्सा दिमागी तवानाई को तेजी से ख़त्म करता है। जो लोग ज़्यादा गुस्सा करते हैं वो अक्सर ज़हनी थकावट, इज़्तिराब यानी एंग्जाइटी और बेख्वाबी, इंसोमनिया का शिकार होते हैं। गुस्सा इंसान के एसाबी निज़ाम को मुसलसल हाई अलर्ट पर रखता है, जिससे ज़हनी सुकून एकदम से ख़त्म हो जाता है। और साइंसी नुक्ते नज़र से गुस्सा पी जाना कोई जज्बाती कमज़ोरी नहीं जैसा कि रूफ ने कहा, बल्कि जिस्मानी बचाव की एक हिकमत अमली है। तो गुस्सा पीना सीखे। गुस्सा पीने से सबसे पहले आप अपने आप पर बहुत बड़ी मेहरबानी करते हैं, अपने जिस्म को तवाना रख सकते हैं, अपने दिमाग को डैमेज होने से बचा सकते हैं। एंड साइड बाय साइड जो आपके प्रेशियस रिलेशनशिप्स है, कीमती खजाना आपके पास, आपके रिश्ते हैं, किसी से भी गलती हो सकती है, लेकिन अगर आप ये फौरी रद्दअमल ना दें तो उनको भी बचाया जा सकता है। इस तरह से जिंदगी खुश और खुशहाल बन सकती है।
0: जी बिल्कुल।

0: 7 बजे से 5 बजे मिनट से डेढ़ बजे कोशन खबरें हम बुलेटिन।
1: सिद्धार्थ कभी कभी ऐसा लगता है कि
2: और कोलकाता में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होने की संभावना है। अधिकतम तापमान
3: 7 बजे 5 मिनट सपद खबरन हुन बुलेटिन है चुस्ब तजम्मुल अहमद गोड़ अख नजर खास खास खबरन हजन सुर्खियन पेट वजीर अजम नरेंद्र मोदी वोनम ज टेक्नोलॉजी सी तरक्की हज वत तेली हमवार सपदान ये अम सारे रसई मेले फ्रांस कन बड़न कारोबार लीडरन मीटिंग दौरान वजीर अजम नरेंद्र मोदी तिमन भारत में सरमाकारी हज दावत दिशा तलीम हंद मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान हेच रात अकिस बहरी पाई मीटिंग दौरान नीट अंडर ग्रेजुएट इम्तहान बाप कर आमचन तैयारियन साम तो ईरानिक सदर मसूद पोजश्कियान ईरान तो अमरीका दरमियान दस्खत कर आमुत मुफाहमत नाम अख तारीखी दस्तावेज करार दुत खबर तफसील सान वजीर अजम नरेंद्र मोदी कोर पेरिस मज विवाटेक जतवु समिटस खिताब करान भारत इख्तरात तो टेक्नोलॉजी हिंद अक आलमी मरकजी रंग पेश तमो वोन ज टेक्नोलॉजी सिर्फ तथि सूरत मज तरक्की हज वत हमवार सपदान ये अम सारे रसई मेले नरेंद्र मोदी वोन ज भारत चु यथ पे जोर दिवान ज रखन अंदाजी हिंदिस दौर मज ग टेक्नोलॉजी कुन तट सारे तम वात तमो कोर आलमी इख्तराकार बांध बांध तम कर भारत सलित मिल नरेंद्र मोदी वोन ज पतम अकिस दहल मे भारत अंदर तेज रफ्तार तेज रफ्तारी सान तरक्की सपजम तो यह सिर्फ तो सिर्फ टेक्नोलॉजी सुमकिन सपदमुत वजीर अजमन कर फ्रांस कन सरकर कारोबार लीडरन मीटिंग युत दोशवन मुल्कन दरमियान इकतसदी तो तकनीकी अथवास मजीद मजबूत सपद तमो वोन जनकन दुनिया अंदर सपदन वाले डिजिटल लेन देन करीब नसफ हिस्सा यूपीआई सपदान तो वन यह सहूलत फ्रांस अंदर तस्तियाब वजीर अजमन कर अकिस अजीम शान सकाफती प्रोग्राम बंजूर मोदी मज शिरकत यमु सज पेरिस मौजूद भारतीय बरदरी कर्मुत तो तमो कर अत मौक पे अत रोजान भारतीय बरदरी तिताब
4: आज दुनिया अनसर्टेनिटी और डिसरप्शन के दौर से गुजर रही है। ऐसे समय में भारत और फ्रांस की साझेदारी विश्वास स्थिरता और सहयोग का एक मजबूत स्तंभ बन रहा है। इस वर्ष हमने भारत और फ्रांस के संबंधों को स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया था। नीस में मेरे मित्र प्रेसिडेंट मैक्रों और मैंने हमारे संबंधों को फोर्स फॉर ग्लोबल गुड बनाने पर चर्चा की। डिफेंस से लेकर स्पेस और न्यूक्लियर तक, एआई और क्रिटिकल मिनरल से लेकर हाई स्पीड रेलवे तक, हर क्षेत्र में हम मिलकर आगे बढ़ेंगे।
3: तलीम हंद मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान कर रात अकि बहली पाई मीटिंग सदारत यह दौरान तमो आथवार दो हेन नीट अंडर ग्रेजुएट दाखिल इम्तहान के सिलसिलस मज तैयारियन साम हिच तमो कोर मुतलिक हाकिमन बान बान ज इम्तहान शोचर कायम थानस मज गच कह तर्गी थान तमो दि तल्लुकदार हदायत जम थगरानी कायम तो बनविन यह कथ यकीनी जोबार हेन इन वाले इम्तहान बापत इन तमाम इंतजाम गोड अनवारे मुकम्मल कर धर्मेंद्र प्रधान वोन ज वजारस तरफ नामजद फर्द सपदन तमाम रियासतन अंदर तैनात युत तम इम्तहान मुतलिक सरगर्मियन अंदर तालमेल कायम थावन तो करन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए किस डायरेक्टर जनरल सिंध सदारत अंदर कायम मरकजी कमान सेंटरस ते रिपोर्ट मीटिंग दौरान आव तमाम रियासतन तो मरकजी इंतजाम वाले इलाकन तन जम बनविन यह कथ यकीनी उम्मीदवार तमाम जरूरी सहूलत दस्तियाब थावन इमन अंदर इम्तहान में शामिल सपदन बापत मुनासिब इंतजाम बेई चनाब शामिल आसि युत तम प्रेथ किस्म के दबाव निश पाक माहौल मज इम्तहान दिथ हेकन अथ दौरान एन टी एन अकिस

0: ग्रामस मज वमेदवारन वोनमुत तिमरोजन पुर सकून तो थवन पन्न तैयारी पेट भरोस एजेंसी वोनमुत वमेदवारो कर वहर वरियस मेहनत लिहाजा पजि तिमन मुनासिब आराम तो इम्तहान अंदर जबर कारकर्दगी पेट तवज्जो दिन एन टी एन चिस महफूज मुनसिफान तो शफाफ माहौल मज इम्तहान मुनद करन यकीन दहानी करम। जम्मू कश्मीर वजीर आला उमर अब्दुल्लाहन तुल रात गांधरबल जिले के नन्नर इलाक में ज़िरात महकम की तरफ मुनद कर आमतिस लेवेंडर फेस्टिवल्स दस अत मौकस पर ऐसे ज़िरात वजीर जावेद अहमद डार तो बाकी के बहलिपाई अफसर मौजूद खयाल बावत करान वन वजीर आला जी सरकार चे कोमलन तमाम तर सहूलत आयतन थावन किस वादस पर कायम।
1: हमारी कोशिश रही है कि हम अपने किसानों को सिखाएं कि आप यहाँ कौन सी नई चीज लगा सकते हो जिससे आपकी कमाई जो है कम होने के बजाय हम बढ़ा सकते हैं और जिसमें ना पानी ज्यादा डालना हो ना दवाइयों का ज्यादा इस्तेमाल करना हो और उसमें अगर आप देखें तो मुख्तलिफ चीजों पर जिन्हें हमने कोशिश की उनमें सबसे आगे अगर आप देखें तो लैवेंडर आता है। इस दुनिया के कुछ मुल्कों ने इसी एक पौधे पे पूरे इलाके जो है उनका माली मुस्तकबिल जो है वो बदल दिया है।
0: ये मैं खबर चूतुई आकाशवाणी पर बोजान अकलियती अमूरन हंद मरकजी वजीर किरण रिजिजुन कर नई दिल्ली में हज जतवुह बापत अकिस जायज मीटिंग हज सदारत पत वो नाम नगारन सत कान तम यूज हज उस भारत की तारीख सारे खुद कामयाब हज वजीरन वो वरी जतवु के हज बापत सऊदी अरब च हज तो उमरा च वजारत भारत जवार्ड अता करम तमो वो सरकार कर वरी जतवु के हज बापत जल्दी नए हज पॉलिसी ऐलान दौरान जम्मू कश्मीर पठन हज बैतुल्ला बापत गसन वल सारी हज सब सलामती सान वापस वतमित हज कमेटी हंद एग्जेक्टिव अफसर डॉक्टर शुजात अहमद कुरैशियन वोन सानिस नुमाइंदस जे हज जतवु बापत यी अनकरीबी नोटिफिकेशन जारी करने तमो वोन तम आजम हकन अमे बापत दरख्वास्त दित युहुंद पासपोर्ट कम से कम 31 दसंबर जतवुस तम वैलिड आसे। ईरानिक सदर मसूद पुजश्कियानन चु ईरान तो अमरीकास दरमियान तय सपदोमुत मफाहमत नाम अख तारीखी दस्तावेज बे मजबूत ईरान दस अख पैगाम करार दुतमुत सोशल मीडिया पे जारी अकिस पैगामस मो तमो वोनमुत अमुन हेके सिर्फ पानवन एहतराम दस हासिल सपदित मसूद पुजश्कियानन दुत पन्नस वकार आजादी तो इलाकई सलमियत किस तहफुज सान आलमी अमनस नस्बत ईरान किस अजमस तो फ्यूर जी सत इजलास के अक पास फ्रांस के सदर इमेनुअल मैखान सकिस इशाइस दौरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंपन अत महदस पे दस्खत करम दस्तावेज पे दस्खत कर ब्रो सदर ट्रंपन वोनमुत समझौत सपदन उस आसान दस्खत कर आमुत महद आव पत ईरान सोजन यम पत सदर पुजश्कियानन अत पे दस्खत कर फ्रांसिक सदरन कर ये वनान अमि महदिक तारीफ जे अम सपद पोशवन अमन कायम कर आबनाए हुरमुज यल थावन बापत वात हमवार इजाजत हन ब्रो बूजू खास खास खबर बेक फिरे वजीर अजम नरेंद्र मोदियन वोनमुत टेक्नोलॉजी से तरक्की हज वत तेली हमवार सपदान यल अताम सारे रसई मेले फ्रांस कन बड़न कारोबार लीडरन मीटिंग दौरान छे वजीर अजम नरेंद्र मोदियन तिमन भारत में सरमाकारी हज दावत दिसम तलीम हंद मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधानन हिस रात अकिस बहलिपाई मीटिंग दौरान नीट अंडर ग्रेजुएट इम्तहान बापत कर आमचन तैयारियन साम तो ईरानिक सदर मसूद पुजश्कियानन ईरान तो अमरीकस दरमियान दस्खत कर आमुत मुफाहमत नाम अख तारीखी दस्तावेज करार दुत अत वोत खबरन हंद बुलेटिन अंद कशन खबरन हंद ब्या बुलेटिन सपद आकाशवाणी श्रीनगर पे 9 बजे तो वहन मिनटन पे नशर अस दीव इजाजत खुदा हाफिज़।

मीटिंग में 208.8 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज है। सुबह के 7:55 हुए हैं। एक नजर अब के बाद हमारे यहां से नष्ट होने वाले प्रोग्रामों पर।

रात 9:30 पर सेहत से मुतलिक फोन इन प्रोग्राम पेश होगा। हेलो रेडियो क्लिनिक। प्रोग्राम के मेहमान डॉक्टर हैं कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर शबनम बशीर। मौजू कैंसर निश बचाव तो इलाज। प्रोग्राम के मेज़बान हैं मुजफ्फर मखदूमी।

सुबह 8:45 पर सुपानसर्ड प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट होगा हम सफर। प्रोग्राम का मौजू है यूस वैसी बनी तुम सुन खरिच कर नुक धैर। इस मौजू पर बात करेंगे प्रोग्राम के रूहे रवा उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना फयाज अहमद जरू साहब। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं सलीम एजाज कपड़ा।

पंजाबी प्रोग्राम सफर 4:30 पर ब्रॉडकास्ट होगा। गोजरी प्रोग्राम समाप्त करें 5:00। दैती भाई अपना प्रोग्राम सुनेंगे 6:05 पर। हालात तो वाकत की जानकारी आपको मिलती है प्रोग्राम शहरबीन के जरिए 7:00। प्रोग्राम वादी की आवाज का वक्त नशरिया है 8:00। समीन, यह है अब के बाद हमारे यहाँ से नशर होने वाले प्रोग्राम।

यह आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज है। मीडियम 268.8 मीटर यानी 1116 किलोहर्ट्ज़ और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। इसके अलावा आप हमें DTH और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एयर पर भी सुन रहे हैं। सुबह के

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
1: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
0: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष, बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आया खुशियों का पैगाम पीएम किसान,
4: पीएम किसान।
5: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
6: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। सरकार ने तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दालों और तिलहन की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। अमेरिका ने ईरान के साथ हुए समझौते के बाद ईरानी बंदरगाहों पर लगी नौसैनिक नाकाबंदी हटाई। और हॉकी में भारत ने FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे।
7: आज का भारत भविष्य का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। भारत एक साथ हर उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है जो आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा।
6: प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वो समावेशी होगा। श्री मोदी ने कहा कि जब उनकी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए तब वे फ्रांस पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
7: 12 साल के इस कालखंड में भारत का GDP 2 गुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या 2 गुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी 2 गुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क

0: चार गुना बड़ा हो गया है।
1: प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस यात्रा के समापन पर हिंदी में विशेष विदाई वीडियो संदेश रिकॉर्ड किया है।
2: प्रिय मित्र नरेंद्र, मुझे बहुत खुशी हुई आपका नीस एवियन पेरिस मैंने सातवें दौरे के लिए स्वागत करके फ्रांस और भारत की दोस्ती हमारा है।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से भारत को नवाचार, प्रौद्योगिकी और समावेशी विकास के क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा।
3: कल शाम पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत केवल भविष्य की तैयारी ही नहीं कर रहा, बल्कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और जनता की आकांक्षाओं के बल पर भविष्य को आकार भी दे रहा है। यात्रा के दौरान भारत और फ्रांस के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी और वैश्विक सुरक्षा के क्षेत्रों में सहयोग और मजबूत हुआ। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि इस यात्रा से भारत फ्रांस साझेदारी को अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई मजबूती मिली है। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देश भर में 15 लाख से रोजगार के अवसर सृजित होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश भर में 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। इस किस्त से 2,18,00,000 से अधिक महिला किसानों को लाभ मिलेगा। इस अवसर पर श्री मोदी पश्चिम बंगाल में कई महत्वपूर्ण कृषि पहल का भी शुभारंभ करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। उत्तर प्रदेश के लिए 48,298 मीट्रिक टन मूंग, 97,970 मीट्रिक टन उड़द और 41,718 मीट्रिक टन मूंगफली की खरीद को मंजूरी दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के कार्यक्रम में भाग लेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ओंकारेश्वर के बाद राष्ट्रपति उड़ीसा के रायरंगपुर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज रायरंगपुर में वो एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक स्वास्थ्य शिविर का दौरा करेंगी और एक बड़े इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जल पूर्ति प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगी। वो ब्रह्मा कुमारी के मातृशक्ति भवन, एक नए स्पेशल सर्किट हाउस रायरंगपुर पुरी जिले का भी उद्घाटन करेगी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मयूरभंज में राष्ट्रपति के साथ शामिल होंगे। दोनों नेता उड़ीसा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में रायरंगपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और विकास परियोजना को जनता को समर्पित करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए रायरंगपुर से मैं प्रकाश दास।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर एक विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम

0: उत्तर में बदलाव के लिए सरकार के महत्वपूर्ण कदमों के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
1: नए भारत में राष्ट्र निर्माण की बात हो और पूर्वोत्तर क्षेत्र को नजरअंदाज किया जाए, यह संभव नहीं है। एक समय था जब पूर्वोत्तर को हिंसा, नाकाबंदी और उपेक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस तस्वीर को बदल दिया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ने स्वयं 83 से अधिक बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है। इस दौरान दूर दराज और पहाड़ी इलाकों की देश के बाकी हिस्सों से कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिला है और स्थानीय लोगों के लिए आय के नए अवसर पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 47,270 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं और 46,290 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। पिछले 12 वर्षों में 8 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित किए गए हैं। वर्ष 2014 में पूर्वोत्तर राज्यों में 9 हवाई अड्डे थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 17 हो गई है। उड़ान योजना के तहत 90 हवाई मार्गों तथा 12 हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट को चालू किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4,170 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में रेलवे का 100% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। आजादी के बाद पहली बार वर्ष 2022 में मणिपुर तक पहली मालगाड़ी पहुंची। वर्ष 2023 में पहली मालगाड़ी मेघालय पहुंची और वर्ष 2025 में पहली ट्रेन मिजोरम पहुंची। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में ईटानगर के डेरा नानतुंग सरकारी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एम क्यू खान ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में हवाई संपर्क में काफी सुधार हुआ है।
2: 2014 के पहले एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, वो अभी एयर कनेक्टिविटी आ गई है और लोग 2.5 घंटे में ईटानगर से दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो होलंगी एयरपोर्ट से कलकत्ता जाइए, कलकत्ता से कहीं भी जा सकते हैं, दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट से।
1: वहीं पूर्वोत्तर के विकास को गति देने के लिए पीएम डिवाइन योजना के तहत कुल 6,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में गुवाहाटी के एक स्थानीय निवासी ने कहा कि क्षेत्र में सड़क और हवाई संपर्क पहले की तुलना में काफी बेहतर हुआ है।
3: मोदी गवर्नमेंट का ये 10 साल बहुत अच्छा से पार हुआ है और ये जो हम लोगों का आसाम का नया एयरपोर्ट बन गया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बन गया और सड़कों का भी हालत काफी सुधर गया है। अभी बहुत जल्द से जल्द हम लोग बहुत दूर तक जा सकते हैं और गांव का कनेक्टिविटी भी अच्छा हुआ है।
1: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर के 8 राज्य, जिन्हें अष्टलक्ष्मी भी कहा जाता है, विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों में जहाजों के आवागमन पर लगाई गई समुद्री नाकाबंदी हटा ली है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिकी केंद्रीय कमान ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश अनुसार ईरान के विरुद्ध चलाए जा रहे अमेरिकी नौसैनिक अभियान समाप्त कर दिए गए हैं। हालांकि नाकाबंदी हटाए जाने के बावजूद समझौते के अनुपालन की निगरानी के लिए अमेरिकी नौसैनिक आसपास तैनात रहेंगे। खेलों में भारत ने कल न्यूजीलैंड में FIH महिला नेशंस कप में पूल ए के मैच में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला कल चिली से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
4: धन्यवाद फरहत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेस्किन के समझौते पर हस्ताक्षर करने के साथ ही अमेरिका ईरान युद्ध के अंत होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका लिखता है, महंगाई पर लगेगी लगाम, बाजार से घर गृहस्थी तक राहत की उम्मीद। लोकसत्य के शब्द है, जंग खत्म, होर्मोज खुला, तत्काल कम नहीं होंगे पेट्रोल और डीजल की कीमतें, दैनिक जागरण की खबर है। वहीं नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर लगी अस्थाई रोक के खिलाफ दाखिल याचिका पर फैसला सुरक्षित रखने से जुड़ी खबर पर अमर उजाला ने केंद्र सरकार के शब्द प्रकाशित किए हैं। आतंकी गतिविधियों के लिए टेलीग्राम मुफ्त, सरकार ने प्रतिबंध को बताया उचित। हिंदुस्तान ने पर्दाफाश शीर्षक से बच्चों की तस्करी पर खबर प्रकाशित की है। बच्चों के सौदागर गिरफ्तार, नवजातों की खरीद फरोख्त करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह दबोचा। वहीं जनसत्ता ने अपने संपादकीय पन्ने पर हाल ही में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों से जुड़ा लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, बच्चों में कुपोषण का कुचक्र।
0: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। सरकार ने तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दालों और तिलहन की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। और हॉकी में भारत ने FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को हराकर सेमीफाइनल में

0: प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीटर 268.8 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज है। सुबह के 8:15 हुए हैं। आप समाप्त कर रहे हैं लाइव मॉर्निंग शो पैम सुब। मैं हूं आपका मेजबान रूफ अली और मेरे साथ
2: तस्लीमा अख्तर। प्रोग्राम में फिर से आपका खुश आमदीद आपके मेजबान के साथ। और मेज़बानों के साथ जुड़ने के बाद आपके मेज़बान यही कहते हैं कि जो आपने हमारे आज के तारीख के आज का दिन जो है तारीख के हवाले से आज के

0: शो पैम सुब, मैं हूँ आपका मेज़बान रूफ अली और मेरे साथ
1: तस्लीमा अख्तर। प्रोग्राम में फिर से आपका खुश आमदीद आपके मेज़बान के साथ। और मेज़बानों के साथ जुड़ने के बाद आपके मेज़बान यही कहते हैं कि जो आपने हमारे आज के तारीख के आज का दिन जो है तारीख के हवाले से आज के दिन को लेकर जो हमारे अवराक है हिस्ट्री के वो पलटते हैं, क्योंकि तारीख में हर दिन कुछ न कुछ ऐसा हुआ होता है जिसको याद रखने से हमें पता चल जाता है कि क्या हुआ है आज के दिन। और आज के दिन कुछ बड़ी बड़ी हस्तियों का जन्मदिन भी है, वफात का दिन भी है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें भी हुई हैं आज के दिन से। अभी अभी हम जब बात कर रहे थे तो यूमे चहलकदमी का दिन भी आज मनाया जा रहा है। और चहलकदमी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारी ज़िंदगी में अच्छा सुबह सुबह वॉकस गसन रूफ। और अगर इस पुछो पानी में सोसाइटी हूँ आक बेदार चुगम जहन के अपन हेल्थ खतर से कॉन्शियस वारे गमित। और ये जो चहलकदमी है या फिर जो मॉर्निंग वॉक है या इवनिंग वॉक है,
0: बिल्कुल
1: इससे भी हमारा स्ट्रेस लेवल जो है खत्म हो जाता
0: है, होता है बिल्कुल।
1: और हम खुश रहना शुरू हो जाता है। और दूसरा ये कि जो हमारा इंटरनल बॉडी में एक्सेस फैट होता है या फिर जो बॉडी को डिटॉक्स करने का जो एक तरीका है ये भी एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। या ऑक्सीजन लेवल, अगर हम सुबह चिनेरा वॉकस खतरे हम साथ ऑक्सीजन लेवल से प्योर एंड फ्रेश फॉर्म्स में ऐसे मेलान तो, और ये हमारे लंग्स को डिटॉक्स कर सकता है। इससे हमारा दिमाग भी अच्छा रहता है, हमारा मूड भी अच्छा रहता है, मूड स्विंग्स नहीं आते हैं। और सुबह सुबह चहलकदमी करना हमारे सेहत के लिए अच्छा है, घर के एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है। और ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा दिन भर का काम है जब हम उस काम पे जाते हैं तो अच्छे मूड के साथ जाते हैं, हमारा दिन अच्छा बन जाता है। तो चहलकदमी को अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा हम बना सकते हैं और बनाना चाहिए उन्हें।
0: बिल्कुल, और इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है हमारे दिमाग को भी होता है।
1: आज अगर पूछो आज से अगर ना त्रेश गिलास तरन स्कूटी की एक दवान तो स्कूटी पर गसान त्रेश गिलास अन्न खतर थे। और ये फैक्ट है अस आज वारिया मुजर गसान चोर कदम पाकन। लेकिन अगर आपको अभी लगता है ना कि आप नहीं चल सकते, दो कदम तीन कदम चार कदम चलने से भी आपको ऐसा लगता है कि कोफ्त आती है तो फिर आप चलना शुरू कर लीजिए, क्योंकि अभी तो आपको ऐसे लगता है कि आलस आ रहा है, बट ये आलस नहीं है, ये सेहत के लिए बहुत बड़ा नुकसान है जो हमें वार्निंग साइंस दे रहा है अर्ली स्टेप पे के आश्चुवासन के इस पाक होने की हिन। बेसिकली छुन ऐसी मूड आसन की बल्कि सर्न बॉडी ऐसे सिग्नल दिमाग वार्निंग्स दिमाग के बॉडी ख़राब हो रही है।
0: और जी बिल्कुल, और आज के जो ये जदीद और मशीनी ज़िंदगी जो है जहाँ इंसान के लिए बेशुमार आसानियाँ पैदा की हैं वहाँ इससे जिस्मानी मशक्क़त जो है और इसे भी इसने हमने ये छीन लिया है। यानी हम घंटों जो है हम कंप्यूटर पे बैठते हैं या अपने ऑफिस में बैठते हैं, गाड़ियों का जो है हम इस्तेमाल करते हैं, और इसे जो है सुस्त तर ज़िंदगी जो है हमारी जो है वो हमें तेज़ी से मुख्तलिफ बीमारियों की तरफ धकेल रहा है।
1: तभी सच बेसिकली सन हेल्थ ख़राब तो उनके ईतन बीमारन मज़ इन्वॉल्व। तो उन बीमारियों से छुटकारा पाने का एक ही वाहि तरीका है कि अपने जिस्म को वर्जिश में रखिए, तवाना तंदुरुस्त रखिए और काम करते रहिए। काम करने से कोई बीमार नहीं पड़ता बल्कि काम न करने से बीमारियाँ आ जाती है। इसे थोड़ी थोड़ी मेहनत आज से ही स्टार्ट करें और फिर से एक्टिव हो जाएं।
0: बिल्कुल, तो आइए एक मन का बात सुनते हैं।

0: आकाशवाणी से नगर के प्राइमरी स्टेशन की आवाज मीडियम वेव 268.8 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर हमारे साथ आप बने हुए हैं इस वक्त प्रोग्राम पयाम सुबह में लाइव मॉर्निंग शो में। मैं हूं आपकी होस्ट तस्लीमा और मेरे साथ है मेरे को होस्ट
1: रूफ अली।
0: रूफ, बात हो रही है तारीख के आईने में आज के दिन की अहमियत की।
1: बिल्कुल।
0: और आज के दिन ही अगर हम देखें, पहली खातून खलाबाज की जमीन पर वापसी हुई थी और 1963 में सोवियत यूनियन रूस के खलाबाज वैलेंटिना त्रेशकुवा, जो खला का सफ़र करने वाली दुनिया की पहली खातून थी, 19 जून 1963 में खला में 3 दिन गुजारने के बाद अपने खलाई जहाज वोस्टोक 6 के जरिए कामयाबी से ज़मीन पर वापस लौटें।
1: जी, अमेरिका की सेनेट ने नस्ली इम्तियाज के खात्मे के लिए तारीखी की मंजूरी यानी सिविल राइट्स एक्ट 1974 में दी, जिसने वहाँ सियाफाम और दीगर अकलियतों को बराबर के हकूक फराहम करने की जो है राह हमवार की।
0: जी, आज के दिन पैदा होने वाले मशहूर शख्सियात जो है, शख्स तब्लीज पास्कल जो है,
1: जी जी बिल्कुल,
0: 1623 यानी 1600
1: फ्रांस के मशहूर
0: तरीन रियाजीदान थे ये।
1: बिल्कुल,
0: आज ही के दिन ये पैदा हुए हैं। और माहिरे तबियात यानी फिजिस्ट और फलसफी, जिनके नाम पर प्रेशर का साइंस यूनिट पास्कल रखा गया, लोग्यारक 1903 में अमेरिका के लेजेंडरी बेसबॉल खिलाड़ी, जिन्हें इनकी मजबूती की वजह से द आयरन हॉर्स कहा जाता है, आंग सॉन सोची 1945 ईस्वी में इनकी जो पैदाइश हुई थी, और म्यांमार बर्मा की जमहूरियत पसंद रहनुमा और नोबल अमन इनाम याफ्ता खातून जो हैं ये, सलमान रश्दी 1947 ईस्वी में मुतनाज़ा बरतानवी अमरीकी नावल निगार जो है, इनका भी आज के दिन जन्म हुआ था।
1: जी बिल्कुल, आज के दिन मुकेश खन्ना आज ही के दिन 19 जून 1958 को पैदा हुए हैं। कि आपने देखा होगा कि इसके जो एक कैरेक्टर जो इसका था, शक्तिमान
0: जो बहुत ही फेमस था, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद था।
1: और जी जी बिल्कुल, तो आज ही के दिन ये जो है मुकेश खन्ना पैदा हुए हैं।
0: काजल अग्रवाल की सालगिरह भी आज ही मनाई जाती है, यानी 19 जून 1985 में इनका जो है जन्म हुआ है। और ये इंडियन सिनेमा की मशहूर अदाकारा है, जिनकी जो पैदाइश है आज के दिन हुई है। और इनका काफ़ी अच्छा खासा
1: जी, एक प्रोग्राम के हवाले से हम एक ऐलान करने जा रहे हैं। आज का जो स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है हम सफ़र 8:45 पे पेश होगा, तो आप बने रहिएगा हमारे साथ। फिलहाल आकाशवाणी दिल्ली से खबरें पेश होंगी।

0: आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत आलमी सतह पर गैर यकीनी और रुकावट की कैफियत के तनाजुर में दुनिया के लिए एक भरोसेमंद और मजबूत साझेदार के तौर पर उभर रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए मालियत की तरगीबात तकसीम करेंगे। सरकार ने तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए कम से कम इमदादी कीमत पर दालों और तिलहन की बड़े पैमाने पर सरकारी खरीद की मंजूरी दे दी है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में सिकल सेल के बैन अल-अक़वामी दिन के मौके पर एक प्रोग्राम में शिरकत करेंगी। अमेरिका ने ईरान के साथ समझौते के हिस्से के तौर पर ईरान की बंदरगाहों पर अमरीकी बहरिया की नाकाबंदी हटा ली है। और हॉकी में न्यूजीलैंड में जारी खवातीन के FIH नेशंस कप में भारत ने उरुग्वे को 2-3 से हराकर मुसलसल तीसरी कामयाबी हासिल की है और वो सेमीफाइनल में पहुंच गया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत दुनिया के लिए एक भरोसेमंद साझेदार के तौर पर उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय बिरादरी के लोगों से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि एक वक्त ऐसा भी था कि जब मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात की नोयत को सिर्फ तिजारत से ही परखा जाता था, लेकिन आज भरोसा भी उतना ही अहम बन गया है जितनी के तिजारत है।
1: हर देश रिलायबल सप्लाई चेन चाहता है, हर देश स्टेबल पार्टनरशिप चाहता है, हर देश ऐसे साथियों की तलाश में है जिन पर लंबे समय तक भरोसा किया जा सके। और ऐसे समय में भारत विश्व में एक ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में उभर रहा है।
0: जनाब मोदी ने यह भी कहा कि मुल्क मुख्तलिफ शोबों में सरमाया लगा रहा है जिससे आने वाली नस्लों के लिए तरक्की, इख्तिरा और मौकों को तकवीत मिलेगी। जनाब मोदी ने कहा कि उन्होंने फ्रांस के शहर एवियो में G7 की मीटिंग के दौरान एतमाद और भरोसे पर मबनी साझेदारी की अहमियत पर जोर दिया। वजीर आजम ने कहा कि G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस के लिए भारत का पैगाम बिल्कुल वाज़े था कि आलमी हुक्मरानी तभी मुअस्सर साबित हो सकती है जब ये सबकी शमूलियत वाली हो। जनाब मोदी ने यह भी कहा कि वो फ्रांस में एक ऐसे वक्त आए हैं जब उनकी सरकार ने 12 साल मुकम्मल कर लिए हैं और इन बरसों में मुख्तलिफ शोबों में भारत में बड़ी तब्दीलियां आई हैं।
1: 12 साल के इस कालखंड में भारत का GDP दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
0: इससे कबल फ्रांस में भारतीय बिरादरी ने बोनजोर मोदी या हेलो मोदी और भारत माता की जय के नारों के साथ वजीर आजम नरेंद्र मोदी का खैर मकदम किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी दो मुल्कों फ्रांस और स्लोवाकिया के अपने दौरे के तीसरे मरहले में पेरिस का कामयाब और मुफीद दौरा मुकम्मल करने के बाद नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि आने वाले वक्त में भारत फ्रांस दोस्ती और ज्यादा मजबूत होगी। इधर फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के फ्रांस के दौरे के इख्तिताम पर जनाब मोदी के लिए हिंदी जबान में एक खसूसी अलविदाई वीडियो पैगाम रिकॉर्ड कराया है।
2: प्रिय मित्र नरेंद्र, मुझे बहुत खुशी हुई आपका निस एवियन पेरिस मैं इसे साथ वे दौरे के लिए स्वागत करके फ्रांस और भारत की दोस्ती अमराए।
0: पेश है वजीर आजम के पेरिस के दौरे की खबरें देने वाले हमारे नामा निकार की एक रिपोर्ट।
3: पेरिस में नीस में भारत इनोवेट्स और वीवा टेक 2026 का जिक्र करते हुए वजीर आजम ने कहा कि दुनिया भारत की बढ़ती हुई इख्तराई कुव्वत का मुशाहिदा कर रही है। वीवा टेक सरबराह मीटिंग में जनाब मोदी ने आलमी इख्तराकारों पर जोर दिया कि वो भारत के साथ मिलकर सभी के फायदे के लिए काम करें। उन्होंने जोर देकर कहा कि टेक्नोलॉजी का फायदा सभी को मिलना चाहिए। इस दौरे में भारत और फ्रांस ने तिजारत, तकनीक और आलमी सिक्योरिटी के शोबे में इश्तराक को मुस्तहकम बनाने का इरादा किया। फ्रांस की सरकर्दा टेक कंपनियों ने भारत की तरक्की के सफर में एतमाद का इजहार किया और

0: और मैन्युफैक्चरिंग, मसनूई जहानत और ग्रीन बहरी बुनियादी ढांचे के शोबों में और ज्यादा शमूलियत के मनसूबों का ऐलान भी किया। पेरिस से महेश चोपड़े की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
1: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए मालियत की तरगीबात तकसीम करेंगे। इस तरगीबात से मुल्क में रोजगार के 15 लाख मौके पैदा करने में मदद मिली है। लेबर और रोजगार महकमे के वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत पिछले साल अगस्त से अब तक 63 लाख से ज्यादा मुलाजिमीन को बाजाब्ता अफरादी कुव्वत में शामिल किया गया है, जिनमें तकरीबन 30% खवातीन हैं। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
0: मस्कुर स्कीम कारकुनों और आजिलों की बाजाबता मईशत में शामिल होने के लिए हौसला अफजाई की खातिर तैयार की गई है। इसके तहत पहली बार के मुलाजमीन 15,000 रुपए तक की तरकीब हासिल करने के अहल होंगे। इस तरह उन्हें अफरादी कुव्वत में शामिल होने पर अहमियत की हामिल मदद मिलेगी, जबकि इजाफी रोजगार के मौके दस्तियाब कराने वाले आजिरों को हर इजाफी मुलाजिम रखने पर 3,000 रुपए माहाना तक की तरकीब मिल सकेगी। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पिछले साल 1 अगस्त को नाफिज हुई थी। इसका मकसद रोजगार के मौके पैदा करने को फरोग देना और मईशत के सभी शोबों में सोशल सिक्योरिटी दायरे को वसत देना है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग पर खास जोर दिया गया है। इसका मकसद 2 साल के अरसे में मुल्क में मुलाजिमत के 3.5 करोड़ से ज्यादा मौके दस्तियाब कराना है। दिल्ली से प्रिया मोंडल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान।
1: ज़राअत और किसानों की बहबूद के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने 4 रियासतों के लिए कम अज़ कम इमदादी कीमत पर दालों और तिलहन की बड़े पैमाने पर सरकारी खरीद की मंजूरी दे दी है। वजारत के मुताबिक तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में कीमतों की इमदादी स्कीम के तहत ये सरकारी खरीद की जाएगी। साल 2026 के मौसम गर्मा के सीजन के लिए मंजूरी के तहत उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा सरकारी खरीद होगी। वहां 48,298 मैट्रिक टन मूंग, 97,970 मैट्रिक टन उड़द और 41,718 मैट्रिक टन मूंगफली की सरकारी खरीद की मंजूरी दी गई है। गुजरात में इस मौसम गर्मा के सीजन के लिए 18,250 मैट्रिक टन मूंग की सरकारी खरीद की मंजूरी दी गई है। मंजूर शुदा सरकारी खरीद की कम अज कम इमदादी कीमत की मालियत 160 करोड़ रुपए से ज्यादा रहने का तखमीना लगाया गया है। वजीर मौसूफ ने रबी मार्केटिंग सीजन के तहत तमिलनाडु के लिए मूंग की सरकारी खरीद की हद 885 मैट्रिक टन से बढ़ाकर 990 मैट्रिक टन करने की मंजूरी भी दी है। इस तरह फसल की 105 मैट्रिक टन इजाफी सरकारी खरीद हो सकेगी। जनाब शिवराज सिंह चौहान ने हरियाणा के लिए मौसम गर्मा के सीजन के दौरान 2115 मैट्रिक टन मूंग की सरकारी खरीद की मंजूरी दी है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर में सिकल सेल के बैन अल-अक़वामी दिन के मौके पर एक प्रोग्राम में शिरकत करेंगी। मजकूरा दिन सिकल सेल की बीमारी SCD के बारे में आलमी सतह पर बेदारी बढ़ाने के मकसद से हर साल मनाया जाता है। इस दिन बीमार अफराद को लाहिक चैलेंजों को उजागर किया जाता है और बेहतर तहकीक, फंडिंग और मुसावियाना इलाज व मुआलजे की हिमायत की जाती है। मध्य प्रदेश के अपने दौरे के बाद सदर जमहूरिया अपनी आबाई रियासत ओडिशा के 2 रोजा दौरे के लिए आज दोपहर मयूरभंज जिला पहुंचेंगी। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: मयूरभंज जिले में अपने क्याम के दौरान सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू अवामी फलाह बहबूद, देही तरक्की और कबायली बिरादरियों को बाइख्तियार बनाने पर मरकूज प्रोग्रामों में शिरकत करेंगी। रायरंगपुर में सदर जमहूरिया एम्स भुवनेश्वर की जानिब से मुनाकिद एक हेल्थ कैंप पहुंचेंगी और देही इलाकों में पाइपलाइन के जरिए पानी की फराहमी से मुतालिक एक बड़े मरबूत प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगी। सदर जमहूरिया ब्रह्मा कुमारी के मातृशक्ति भवन, एक नए खसूसी सर्किट हाउस और नए तामीर शुदा रायरंगपुर पुलिस डिस्ट्रिक्ट का भी इफ्तिताह करेंगी। आकाशवाणी भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
1: नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन लद्दाख के लेह में आज से शुरू होने वाली योग के बैन अल-अक़वामी दिन की तकरीबात में शिरकत करने के लिए वहां के 3 रोजा दौरे पर रहेंगे। ये जनाब राधाकृष्णन का मरकज के जेर इंतजाम इलाके का पहला सरकारी दौरा होगा, जो इस महीने की 21 तारीख तक जारी रहेगा। भारत ने पिछले 12 साल में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की दूरंदेश क़यादत में

0: सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों की बुनियाद पर काबिले जिक्र तब्दीलियां की हैं। इस दौरान मोदी हुकूमत ने गरीबों, किसानों, ख्वातीन और नौजवानों की भलाई और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए बहुत से अहम इकदाम किए हैं। आज हम शिमाल मशरिक में बड़ी तब्दीली लाने से मुतालिक हुकूमत की जानिब से किए गए इकदाम का जायजा ले रहे हैं।
1: अगर मुल्क की तामीर और तरक्की की बात की जाए तो शुमाल मशरिक को नज़रअंदाज करना नए भारत में मुमकिन नहीं है। एक वक्त था जब इस खित्ते की पहचान सिर्फ तशद्दुद, नाकाबंदी और नज़रअंदाज होने तक महदूद थी, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने इसे बदला। गुज़श्ता 12 साल में वज़ीर-ए-आज़म ने 83 मरतबा से ज्यादा शुमाल मशरिक का दौरा किया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 47,270 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जा चुके हैं और 46,290 किलोमीटर से ज्यादा का रोड नेटवर्क तामीर किया जा चुका है। गुज़श्ता 12 साल में 8 नए हवाई अड्डे बिल्कुल नए सिरे से तामीर किए गए हैं। इससे पहले 2014 में इनकी तादाद 9 थी, जो अब बढ़कर 17 हो गई है। उड़ान स्कीम के तहत 90 रास्ते और 12 हवाई अड्डे फाल हो गए हैं। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए एटानगर के देरा नुतुंग गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर एमक्यू खान ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश में फिजाई कनेक्टिविटी बेहतर हुई है।
2: 2014 के पहले एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, वो अभी एयर कनेक्टिविटी आ गई है और लोग 3 घंटे में, 2.5 घंटे में ईटानगर से दिल्ली पहुंच रहे हैं। रोड कनेक्टिविटी जो थी वो अपर्याप्त थी या सिंगल लेन हुआ करती थी, अभी 4 लेनिंग हो गई है।
1: आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए गुवाहाटी के एक रिहायशी ने इस बात पर जोर दिया कि खित्ते में रोड और फिजाई कनेक्टिविटी बेहतर हुई है।
3: मोदी गवर्नमेंट का ये 10 साल बहुत अच्छा से पार हुआ है और काफी सड़कों का भी हालत काफी सुधर गया है। अभी बहुत जल्द से जल्द हम लोग बहुत दूर तक जा सकते हैं और गांव का कनेक्टिविटी भी अच्छा हुआ है, तो काफी हम लोग खुश है।
1: दिल्ली से आकाशवाणी न्यूज के लिए सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
0: अमरीका ने ईरान की बंदरगाहों और साहिली इलाकों में बहरी जहाजों की आमदोरफ्त पर अमरीकी बहरिया की नाकाबंदी हटा ली है। अमरीका की मरकजी कमान ने कहा है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिदायत पर सभी कार्रवाइयां रोक दी गई हैं। सोशल मीडिया की एक बयान में अमरीका की मरकजी कमान ने यह जानकारी दी है। हॉकी में न्यूजीलैंड में जारी खवातीन के FIH नेशंस कप में भारत ने उरुग्वे को 2-3 से हराकर लगातार 3री कामयाबी हासिल की है और वो सेमीफाइनल में पहुंच गया है। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं असदुल्ला।
1: शुक्रिया नितिका। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब और प्रताप समेत आज के सभी अखबारों ने अमरीका ईरान के दरमियान अमन माहदे पर दस्तखत किए जाने की खबर को सफ़े अव्वल पर शाये करते हुए लिखा है कि दोनों ममालिक के सुदूर ने 14 निकाती माहदे की तौसीक की, जिसमें आबनाए हुरमुज खोलने और पाबंदियों में नरमी किए जाने का फ्रेमवर्क शामिल है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पेरिस में वाइवाटिक 2026 से खिताब करते हुए कहा कि मसनूई ज़हानत AI की तरक्की में सबकी शमूलियत, तहफ़ुज़ और अवामी मफाद के बुनियादी उसूलों पर मबनी होनी चाहिए। इस खबर को अखबारात ने सफ़े अव्वल पर शाये किया है।
0: और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत आलमी सतह पर गैर यकीनी और रुकावट की कैफियत के तनाजुर में दुनिया के लिए एक भरोसेमंद और मजबूत साझेदार के तौर पर उभर रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2,400 करोड़ रुपए मालियत की तरकीबात तकसीम करेंगे। सरकार ने तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए कम से कम इमदादी कीमत पर दालों और तिलहन की बड़े पैमाने पर सरकारी खरीद की मंजूरी दे दी है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में सिकल सेल के बैन अल-अक़वामी दिन के मौके पर एक प्रोग्राम में शिरकत करेंगी। अमरीका ने ईरान के साथ समझौते के हिस्से के तौर पर ईरान की बंदरगाहों पर अमरीकी बहरिया की नाकाबंदी हटा ली है। और हॉकी में न्यूजीलैंड में जारी खवातीन के FIH नेशंस कप में भारत ने उरुग्वे को 2-3 से हरा कर लगातार 3री कामयाबी हासिल की है और वो सेमीफाइनल में पहुंच गया है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
4: यह आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज है। यह आकाशवाणी श्रीनगर 8:05 मिनट सपेद।

0: मीटिंग 268.8 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज है। सुबह के 9 बज रहे हैं। समाप्त करें मकामी रोजनामों से ली गई आज की सुर्खियां।
1: आज की सुर्खियां आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं होंडा, पियाजो, एक्साइड, इशर, निसान और

0: आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं आरिफ हुसैन। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पेरिस में विवा टेक 2026 समिट से खिताब करते हुए भारत को इख्तिराआत और टेक्नोलॉजी के एक आलमी मरकज के बतौर पेश किया है। अपनी तकरीर में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि टेक्नोलॉजी तक हर किसी की रसाई यकीनी बनाई जानी चाहिए। उन्होंने आलमी इख्तिराकारों को भारत के साथ बाहम मिलकर काम करने की सलाह दी।
1: साथियों, आज दुनिया अनसर्टेनिटी और डिसरप्शन के दौर से गुजर रही है। ऐसे समय में भारत और फ्रांस की साझेदारी विश्वास, स्थिरता और सहयोग का एक मजबूत स्तंभ बन रहा है।

0: इस वर्ष हमने भारत और फ्रांस के संबंधों को स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया था। नीस में मेरे मित्र प्रेसिडेंट मैक्रों और मैंने हमारे संबंधों को फोर्स फॉर ग्लोबल गुड बनाने पर चर्चा की। डिफेंस से लेकर स्पेस और न्यूक्लियर तक, एआई और क्रिटिकल मिनरल से लेकर हाई स्पीड रेलवे तक, हर क्षेत्र में हम मिलकर आगे बढ़ेंगे।
1: नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुज़श्ता एक दहाई में भारत के अंदर तरक्की की रफ्तार काफ़ी बढ़ गई है और ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बदौलत ही मुमकिन हुआ है। वज़ीर आज़म फ्रांस और स्लोवाकिया का अपना दौरा मुकम्मल करने के बाद नई दिल्ली के लिए वापस रवाना हुए हैं। इसी दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2,400 करोड़ रुपये के मुराआत मुतालिकीन में तकसीम करेंगे। सिक्किम के तहत मुराआत दिए जाने वाले इदारों में से 80% से ज़्यादा इदारे छोटे कारखाने हैं जिनमें 25 कामगारों से कम वर्कर काम करते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्री गुरु अर्जुन देव जी को उनके यौम शहादत पर खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि गुरु जी की अजीम कुर्बानी और अमन इख्वत और मुसावात के उनके पैगाम आलम इंसानियत की लंबी अरसे तक रहनुमाई करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि हमें गुरु जी की तालीमात पर अमल पैरा होने का अहद करना चाहिए। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि सरकार होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ज़रई सेक्टर में बुनियादी ढांचे की तनसीब के साथ साथ आला पैदावारी फसलों की कदर अफजाई के लिए सहूलियात बढ़ा रही है। नूनर गांदरबल में महकमे ज़राअत की तरफ से मुनाकिद करदा लेवेंडर फेस्टिवल का इफ्तिताह करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि लेवेंडर की काश्त जम्मू कश्मीर की तरक्की और खुशहाली की सिमत में एक नया बाब है।
2: हमारी कोशिश रही है कि हम अपने किसानों को सिखाएं कि आप यहाँ कौन सी नई चीज लगा सकते हो जिससे आपकी कमाई जो है कम होने के बजाय हम बढ़ा सकते हैं और जिसमें ना पानी ज्यादा डालना हो ना दवाइयों का ज्यादा इस्तेमाल करना हो और उसमें अगर आप देखें तो मुख्तलिफ चीजों पर जिनमें हमने कोशिश की उनमें सबसे आगे अगर आप देखें तो लैवेंडर आता है। इस दुनिया के कुछ मुल्कों ने इसी एक पौधे पे पूरे इलाके जो हैं उनका माली मुस्तकबिल जो है वो बदल दिया है।
1: वजीर आला ने जरी सेक्टर के कई तरक्याती प्रोजेक्टों का भी इफ्तिताह किया और चंद एक का संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर ज़राअत के वजीर जावेद अहमद डार, वजीर आला के मुशीर नासिर असलमानी और इंतजामिया के सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। जंगलात और माहौलियात के वजीर जावेद अहमद राना और ज़राअत के वजीर जावेद अहमद डार ने कहा है कि वादी के हर खिते खुसूसन दूर उफ्तादा इलाकों में किसानों के लिए आबपाशी की सहूलियत दस्तियाब कराना सरकार की तरजीहात में शामिल है। ज़िला गांदरबल में आबपाशी सहूलियत के मंजरनामे का जायजा लेते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत इस सिलसिले में आबपाशी के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। वज़रा ने कहा कि ज़रई पैदावार दीही मईशत में रीढ़ की हड्डी की अहमियत का हामिल है और किसानों के रोजगार को बरकरार रखने के लिए बरवक्त आबपाशी सहूलियात का होना लाजमी है। चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू ने टेक्नोलॉजी पर मबनी सर्कुलर मईशत के फ्रेमवर्क को बाअमल लाने की ज़रूरत उजागर की है जो माली एतबार से माहौलियाती और समाजी मुजमरात को मलहूज़ खातिर रखते हुए एक लंबे अरसे तक चलता रहे। उन्होंने कचरे को पैदावारी वसाइल में तब्दील करने और फिर रोजगार के वसाइल पैदा करने पर भी जोर दिया। मकाना तो शहरी तरक्की के महकमे की जानिब से तजवीज़ करदा सर्कुलर इकॉनमी फ्रेमवर्क का मकसद जम्मू कश्मीर के लिए तरक्की का एक ऐसा माहौलियात मुआफिक मॉडल तैयार करना है जिसमें वसाइल का मुअसर इस्तेमाल और कचरे का कम पैदावार हो। ये फ्रेमवर्क माहौलियात के तहफ्फुज़ से मुतालिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 2026 के जवाबित और अदालती अहकामात को जहन में रखते हुए तैयार किया गया है। मीटिंग में दीगर अफसरों के अलावा मकाना तो शहरी तरक्की की कमिश्नर सेक्रेटरी मनदीप कौर भी मौजूद थी। श्रीनगर में रात का कम से कम दर्जे हरारत 15.4 डिग्री जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्जे हरारत 25.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ। खुदा हाफिज़।

0: म्यूजियम 268.8 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज है। आप सुन रहे हैं मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन सर्विस के तहत प्रोग्राम पयामे सुबह। मैं हूं आपका मेजबान रूफ अली और मेरे साथ
1: तस्लीमा अख्तर। और आज का दिन बहुत ही मुबारक दिन है, जुमे का दिन है और मुहर्रमुल हराम का महीना है। इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से ये पहला साल है
0: जी, इस्लामी साल।

0: का नया जो महीना है माह
1: पहला
0: मुहर्रम,
1: महीना है और
0: बिल्कुल
1: नया साल जो है यहाँ से इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से नए साल का आगाज़ होता है। और ये जो महीना है ना, हमें बहुत बड़ा दर्स दे के जाता है, बहुत बड़ा दर्स है इस महीने में हमारे लिए। अगर हम देखें सब्र, इस्तकलाल और जो पेशेंस लेवल क्या होता है, और असल में सबक क्या होता है, मयार क्या होता है, हमारे मॉरल एजुकेशंस की बात हम करेंगे अगर, तो
0: बिल्कुल ये वो
1: इख़लाक की
0: महीना
1: तालीम
0: है
1: का
0: जी,
1: जो है वो भी मयार पता चलता है, सब्र का मयार पता चलता
0: बिल्कुल
1: है, और बहुत सारी चीज़ें समझाने के लिए ये महीना बहुत ही
0: अहम है,
1: अहम है।
0: बिल्कुल ये वो महीना है जो अपने दामन में नवासे रसूल सल्लल्लाहु
1: सल्लल्लाहु
0: अलैहि
1: अलैहि
0: वालैहि वसल्लम,
1: वसल्लम
0: हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इनके जानिसारों की वो अजीम कुर्बानी समेटे हुई है, जिसने रहती दुनिया तक हक और बातिल का फ़र्क वाजह कर दिया।
1: बिल्कुल रूफ, जब भी मुहर्रम का चांद नज़र आता है हमारा दिल करबला के उन पाकीज़ा किरदारों की याद से भर जाता है। लेकिन करबला सिर्फ रोने और गम मनाने का नाम नहीं है, ये ज़िंदगी गुजारने की एक मुकम्मल यूनिवर्सिटी है।
0: बिल्कुल करबला एक ऐसी दरसगाह है जहाँ हमें ज़िंदगी के हर रिश्ते का बेहतरीन रूप मिलता है। आज के शो में हम बात करेंगे कि बच्चों की तरबियत और वालदेन की जिम्मेदारी के हवाले से मार्का करबला हमें क्या सिखाता है, एक बाप, एक माँ और एक बच्चे का किरदार वहाँ किस तरह निखर कर सामने आया, आज हम इसी पर बात करेंगे।
1: जी रूफ, जब हम बच्चों की तरबियत की बात करते हैं तो सबसे पहले दरसगाह जो है, पहली दरसगाह माँ की गोद ही मानी
0: बिल्कुल
1: जाती है। और जदीद नफ्सिया जो मॉडर्न साइकोलॉजी है वो यही कहती है कि बच्चे की शख्सियत का 80% यानी 80% हिस्सा जो है इसके इब्तदाई सालों में माँ के रोबे और माहौल से बनता है। उसके जो रवैया है, उसका जो किरदार है, उसको देख देख कर इसका जो इब्तदाई सालों में इसकी शख्सियत का जो 80% हिस्सा है वो पाता है, अपनी तालीम वहीं से पाता है। और करबला की माँ ने इसकी ऐसी मिसाल कायम की है रूफ, जिसकी जो मिसाल है इंसानी तारीख में कहीं और नहीं मिलती।
0: जी हाँ बिल्कुल, खातुन करबला जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की
1: इस्लाम
0: ज़ौजे मोहतरमा जनाब रब्बाब अलैहा सलाम का किरदार हमें हमारे सामने है। ज़रा सोचिए, जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह ने अपने बेटों ओनो मोहम्मद अलैहिस्सलाम की ऐसी तरबियत की थी कि जब दीन पर वक्त आया और तो इन कमसिन बच्चों ने मैदानी जंग में वो शुजात दिखाई के बड़े बड़े सुरमा दंग रह गए।
1: अरूफ, सबसे बड़ी बात यह है कि इन माओं ने, इन अजीम माओं ने अपने बच्चों को सिर्फ बहादुरी नहीं सिखाई बल्कि उनके अंदर हक का साथ देने का शऊर पैदा किया। आज के दौर में माओं के लिए बहुत बड़ा दर्स है कि वो बच्चों को सिर्फ दुनियावी कामयाबी की दौड़ में ना दौड़ाएं बल्कि उनके अंदर इखलाकियात, सच्चाई और मजलूम का साथ देने का, हक का साथ देने का जो जज्बा है वो पैदा करें। और उनके अंदर जो हक को जब हम छपाते हैं किसी खौफ की वजह से, उस खौफ को दूर करने की जो
0: बिल्कुल
1: सलाहियत है उनमें निखार सके उस सलाहियत को।
0: बिल्कुल ठीक, अगर माँ खुद साबिर और बाकिरदार होगी तो इसके गोद से तरबियत पाने वाला बच्चा कभी माशरे के लिए नासूर नहीं बनेगा, बल्कि वह एक रोशन चिराग बनेगा।
1: अब बात करते हैं बाप के किरदार की, लेकिन यहाँ पर रुकते हैं थोड़ा
0: बिल्कुल
1: और एक नातिया कलाम अपने सामीन को सुनवाते हैं और हम भी सुनते हैं आपके साथ साथ।

0: आकाशवाणी श्रीनगर के प्राइमरी स्टेशन की आवाज़ मीडियम वेव 268.1 मीटर और FM 2 103.5 मेगाहर्ट्ज पर प्रोग्राम है लाइव मॉर्निंग शो पर आमिर सुबह और हमें आपके मेज़बान, मैं हूँ तस्लीमा अख्तर
1: और मैं रूफ अली।
0: रूफ, बात कर रहे थे हम बच्चों की तरबियत की, माँ की बात हुई।

0: या बाप की बात अगर करें, जो बाप का किरदार जो है बच्चे की ज़िंदगी में बहुत ही अहम है,
1: बिल्कुल
0: और ये जो बाप के किरदार की जो बात छिड़ी है, जो किसी भी ख़ानदान का सुतून होता है, आज की रिसर्च बताती है कि जिन बच्चों को बाप की तवज्जो और मोहब्बत मिलती है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है, इमोशनल स्टेबिलिटी जो है, बहुत ज़्यादा होती है। और करबला में मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने बतौर बाप एक लाजवाल मिसाल कायम की।
1: सुबहान अल्लाह तस्लिमा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का अपने बच्चों के साथ जो राबिता था वो शफ़क़त का राबिता था। ज़रा इस मंज़र को सोचिए जब इनके जवान बेटे हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम मैदानी जंग में जाने की इजाज़त मांगते हैं, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक शफ़क़त बाप की तरह इनकी पुश्त पनाही करते हैं, लेकिन हक़ की राह में रुकावट नहीं बनते।
0: बिल्कुल, इसी से हम लोगों तक जो मिसाल पहुंची, जो सबक पहुंचा, वो तभी पहुंचा जब उन्होंने वो अपना शफीक बाप होने के नाते भी उनके हक के राह में जब वो निकले तो उसकी रुकावट नहीं बने। इमोशनली हम जब अपने बच्चों को डील करते हैं तो वो उनको वीक बनाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो कम हो जाता है, और वो आगे जाकर फिर बुजदिल बन जाते हैं, और सच्चाई का साथ देने का, उसका सामना करने का शायद उनमें वो
1: हौसला नहीं होता है।
0: कैपेबिलिटी नहीं
1: बिल्कुल
0: मिलती है। और सिर्फ ये नहीं, आपने जो बात की, 6 माह के नन्हे अली असगर अलैहिस्सलाम का जो मंज़र है, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उन्हें अपने हाथों पर उठाकर मैदान में लाते हैं, जब वो तो वो दुनिया को दिखाते हैं कि जब खुदा की रज़ा का मामला हो तो कितना बड़ा सब्र कर सकता है इंसान, कितना बड़ा दिल हो सकता है इंसान का, और कितना बड़ा दिल करके उन्होंने किस सब्र की जो हम तक मिसाल पहुंचाई। बिल्कुल, हम उस चीज़ का एहतराम भी हमें करना चाहिए, और उससे हमें सीख भी लेनी चाहिए कि सब्र का जो मादा है वो हमें किस हद तक बढ़ना चाहिए।
1: जी बिल्कुल तस्लीमा, आज के दौर के जो वालदेन हैं इनके लिए इसमें ये सबक है कि वो अपने बच्चों के दोस्त बने, इन्हें वक्त दें, इनकी बात सुने। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों पर कभी ज़बरदस्ती नहीं की, बल्कि इन्हें मोहब्बत और एतमाद दिया, इसलिए बच्चों ने हर मोड़ पर अपने बाप के फैसले पर लब्बैक कहा।
0: तो वही छुना वना अगर ये मोल मोज बचस ब्रोह कहने आसे सो मिसाल बनित ये पर बच्चे सो वुछत पान हिच के मोल मोल मोज क्या चु करा तेमी चु पाने तरह फिक्र के जिंदगी हुन असल फलसफ क्या चु अवे किन छ वना कि पेरेंटिंग थ्रू गसे पनस बचस निश आक रोल मॉडल बनु ते क्या जे वन वन करने से दपने से चुन बच्चे जहीं तेहचान बच्चा वो सीखता है जो वो देखता है, जिस कंडीशन में, जिस रवैये में वो हमें एज अ पेरेंट पाता है, यकीन मानिए वो उसी का एक और हिस्सा, एक और रूप बन जाता है। जहाँ वालिदैन की जिम्मेदारी अहम है, वहाँ करबला हमें ये भी सिखाता है कि जब वालिदैन बेहतरीन तरबियत करते हैं तो बच्चों का किरदार कितना अजीम हो जाता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के 14 साल बेटे हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम की वो जुमला रहती दुनिया तक अमर हो गया, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि बेटा तुम्हारे नज़दीक मौत कैसी है, तो उन्होंने जवाब दिया, चचा जान, हक की राह में मौत मेरे लिए शहद से ज़्यादा मीठी है। ये होता है तरबियत का असर। इतनी कम उम्र में मौत का खौफ न होना और नज़रिए पर कायम रहना। और दूसरी तरफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की 4 साल बेटी जनाब सकीना सलाम अलैहा, इस मासूम बच्ची ने प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त किया, खेमों के जलने और असीर होने के मसाइब झेले, लेकिन कभी अपने बाबा की तरबियत पर आँच नहीं आने दी। उन्होंने हर मुश्किल में सब्र और शुक्र का दामन थामे रखा।
1: बिल्कुल तस्लिमा, आज हम जहाँ वालदेन की ज़िम्मेदारी अहम है, वहाँ करबला हमें यह भी सिखाता है कि जब वालदेन बेहतरीन तरबियत करते हैं तो बच्चों का किरदार कितना

0: नीट एग्जाम के बाद देखा, अब उसका वो रेशेड्यूल हो गया है। दो बच्चों का मैंने भी देखा है, मे भी ज्यादा हो सकता है ज्यादा, दो बच्चों ने खुदकुशी की। हालांकि उनमें से मैंने देखा है एक के मार्क्स काफी ठीक थे अभी जो रिसेंट नीट हुआ था। अब एक महीने के बाद फिर से ये एग्जाम आने वाला, इट मीन्स हमने कहीं ना कहीं गलती की है, अपने बच्चों में वो रेजिलियंस जो है वो हम डेवलप नहीं कर पाए हैं। वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज पेरेंट्स, मॉरलिटी के साथ, सोशलाइजेशन के साथ, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के साथ, या एज टीचर्स, या एज एज एज एन एजेंसी, इस इज वन ऑफ स्कूल सोशल एजेंसी, हमारा ये भी रोल बनता है, अच्छा रोल बनाए कि बच बनाओ इज रिजिलियंट, अच्छा थोड़ा बच्चों माइंडस मत रोज त्रो यूथे कुंजाइन ट्यूशन सेंटर्स त्रो स्कूल मत रो एमएस बना या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन मत रो एमएस बना, आपको डॉक्टर बनना है,
1: आपको इंजीनियर
0: बनना है, सवाल है मेरे रुतबे का सवाल है, मेरे रुतबे का सवाल है, अगर
1: और वो उसी इज्जत उतने के माँ बाप के स्टेटस को लेके कितना परेशान रहता है और हम उस चीज का अंदाजा भी नहीं लगा सकते, तो पकड़ कर पद बच
0: या तस्मीमा जी बोलना तो ये थी, या बचत था मेहनत है मास कोर में ये खर्च से पैर वन जन छे पान थाजन पोस्ट पे कह मगर अच्छे बचस पे वन दस हे मे कर मे वह लक्ष खर्च मे कर मे दह लक्ष खर्च मे कर मे पे पांच लक्ष खर्च इट मीन समझा ये पे जाए कि अस लोग बाग वो दी नई बाग वरी पत वरी पांच पांच लाख अच्छे ये सोचा पे जाए कि करो अम सज पर्सनलिटी डेवलप पता ये पोश फलान मुश्क फिर एज पेरेंट यह वा समाज चीज करो मे पे गुक वाक याद कर शेयर मोन फादर उस तमस आस पांच कोर अस पांच सिस्टर बेस है जो जमींदार फैमिली मज वमस यह सोरी हालात अत मात ग्रेजुएशन कर हालात तीत ज्याद गर ठीक फाइनेंशियल कंडीशन ठीक
1: कहें
0: कुन त सेकंड थर्ड बगैर गोत अम समीन अनाल कणित मे गो बी एडस एडमिशन बारामूला जेट कॉलेज मज यम गई तो यह मे बेक दान दोपन यह ने फीस ऐ भर फीस सारम मे दस फीस कद अनु मे कहीं ना हो जमीन जाए उस अरबी जमीन अच्छा मे अनाल कणित तो ने फिलहाल तो भर फीस मे दस क्या कन यह जमीन दोपन अद ये बनक ना ऐत खबर कूत जमीन नई टेंशन हालांकि अगर बहुत तुम वक्त वनमो यह जस टाइम टू थाउजेंड टू थाउजेंडस मे आम गामन मे जमीन कन बसा हमसाय दी मे यह मकल ये वो जमीन कन्नस ये अख दाग हू बसान अत फैमिली पे मगर तम सद विजन क्या उस कि तम नून सेकंड थॉट कि उसने पैसे रहा और तम आस न जहां तजहार पे जाए कर्म पत् लोगस बहुत मुलाजिम पुस तनखा जहाँ इजहार
1: यहाँ से आप शेयर करें अपना वो एक्सपीरियंस वो अपना कैसा तजुर्बा रहा या कैसी मतलब आपकी कैफियत रही अपने शफीक पाप जब आपका उनके साथ उनका आपके साथ ये रवैया रहा फिर आपका आगे बढ़ने का जो है वो सफर कैसा रहा
0: बिल्कुल बहुत
1: बिहेवियर से हाँ। आपको क्या फायदा हुआ जो हम शेयर करेंगे ताकि हम जो माँ बाप है वो ये समझ सके कि उनके बच्चों के साथ उन्हें कैसे पेश आना है।
0: बार बार नाकाम घसने पत गरीज मिसाल बार बार नाकाम घसने पत या कम मार्क्स आने बावजूद सोच हमेश खामोशी सान असल नसीहत सोबर सॉफ्ट आयस मे वन कहें रिजिक खुदायस तय तु रूज मेहनत करा सिंसियर रोज सोच हमेश दिन जोर मुस्तकिल मिजाज रूज सिंसियर रूज ऑनेस्ट रूज पे इन कथ जहन मा बोझ मा अम कुन जमीन दुम चीज मे यह करा मजूर अमस यह गुस एज एज चाइल्ड एज सन मे पे जहन बोझ मा ना यह दिन बहुत जाय ग
1: कहें
0: अम स मेहनत दिन बहुत जाय ग कह अगर अमस सो डांटे डपट कर डाउन ग्रेड कर डिसकरेज कर मेरी बुपक हम तेल ब्रोट
1: प्रोफेसर साहब आई थिंक यही होती है रिवर्स साइकोलॉजी यही होती है रिवर्स साइकोलॉजी कि उन्होंने आप पे जोर दबाव नहीं डाला आप पे एहसान नहीं जताया और आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है अनकॉन्शियस माइंड है वो बेदार हो गया वो सोचने पे मजबूर हो गया उस फादर को वॉच किया कि इसकी कितनी मेहनत है इसका कितना सेक्रीफाइस है और उसी ने आपको ये शऊर दिया आपको पुश किया कि आप उस चीज़ को पॉजिटिव वे में लेकर वापस आए निखर गए आप तो यही हमारे यहाँ से हम चाहते हैं कि हमारे जो माँ बाप हैं जो बच्चों की तरबियत करते हैं उनमें ये शऊर आ जाए ये शोर आना बहुत ज़रूरी है। एक बात आपने कही कि माँ की गोद पहली दर्ज़गाह होती है मगर

0: मॉरल एजुकेशन की बात कर रहे हैं अपने एक्सपर्ट अपने मेहमान मोहम्मद अमीन डार साहब के साथ, जो शोबे तालीम के साथ वाबस्ता हैं और उसके अलावा भी बहुत तजुर्बा है इनके पास. सर, ये जानना चाहेंगे मॉरल एजुकेशन के हवाले से कि जो हमारा स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैरिकुलम में ऐसी कौन सी चीज़ें डाल सकते हैं अपने, जिससे ये जो मॉरल एजुकेशन है वहाँ से बच्चों को एक अच्छे वे में मिल सकती है और बहुत लाइटर वे में मिल सकती है, ताकि हमारे बच्चे इसको कोई मतलब ना वो थ्रस्ट ना समझे कि एस्पेक्ट जो ज़बरदस्ती का चीज़ जीवन फोर्सेबली लादना.
1: जी मैम, अगर पुराने टाइम में हम देखेंगे मॉरल एजुकेशन में हमारे पास सिर्फ वो मॉरल स्टोरीज ही थी. अच्छा, सिर्फ मॉरल स्टोरीज यम जन सन सैंट्स या ग्रेट पर्सनलिटीज इमेंसली कंट्रीब्यूट कोरमुत सैंस निसाबस मज तिहुंद नाव तिहंज कंट्रीब्यूशन थावा माना यह मॉरल एजुकेशन या कुन हदस तक रिलीजियस एजुकेशन ते दिवान. मगर यूतान जन तालुक अजक टाइमुक मे बासान यह ज्यादा जरूरी कि करो कम पकनो तमे हिसाब यह मॉरल एजुकेशन जन अस हालात अजिक अत मे वनो बहुत इथ पा कि अस कंप्यूटर पर्नाउन. मगर अमु मतलब गो नो कंप्यूटर अत मे मॉरलटी कह मे बस कंप्यूटर मे मॉरलटी कंप्यूटर पर्नान मे मॉरलटी. मगर अगर अस यह तुन यह कंप्यूटर तथ पा अमुक करिकुलम पजे तथ पे थोन कि सपोज अस बचस हेचना कंप्यूटर लैब मज कूटर यम सी कंप्यूटर हेचना हेचना अम सा कि जुडिशियस यूज क्या सही यूज क्या मिस यूज क्या
0: मिस यूज क्या
1: ये अम स खुद मॉरल एजुकेशन. हाँ, अख चीज इम्पॉर्टेंट सान खुद जन मिस विकस कर पे निसाबस मे पे करिकुलम मे सो गो जन अस सूफी कल्चर ये ये पिरवर वनान अमुक पे कल किताबन मज थान मगर यह हदस तक मिस विकस ग बहु खुश ग कि कह टाइम वोत वो रिसेंट पास मज गो नई स्टार्ट कि कशुर लैंग्वेज पे आई मे नई जोर वो थोड़ा दिन तेज मे गि विकन बच तमें इवे चीर नोट हेत असर मज पग पढ़ बहुत गुजर वाले खुश ये बहुत बोजान पढ़ कशिर पे सुबह मे उस रात पे लक्ष बच्ची वन फिफ्थस सह आई मे कशुर नोट हेत मे तल स पर्च एम पोरी युद्ध मे पोर् मे कर्मस मे दस ऐसी पता अत मज कूत हे इंसान पुन करियर बन अगर बचस यह कशुर तक पढ़ मे दस ये जरूरी चुन सैंस पढ़ कह जरूरी.

0: मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे।
1: आज का भारत भविष्य का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। भारत एक साथ हर उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है जो आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वो समावेशी होगा। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देशभर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के कार्यक्रम को संबोधित किया। इसके बाद राष्ट्रपति आज से ओडिशा के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। वे रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिविर में भी शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से 3 दिन के दौरे पर लद्दाख जा रहे हैं। वे लेह में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। श्री राधाकृष्णन की लद्दाख की ये पहली यात्रा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव आज बिहार का दौरा कर रहे हैं। वे पटना में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया जाएंगे। श्री वैष्णव छपरा रेलवे स्टेशन में छपरा दिल्ली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। इस अवसर पर वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मऊ दिल्ली एक्सप्रेस, अधोरी घाट ओनरीहार की वाराणसी तक विस्तारित रेल सेवा का भी उद्घाटन करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर दालों और तिलहनों के बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में यह खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। मिजोरम में 8,75,000 मतदाताओं का 95% से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण पूरा कर लिया गया है। राज्य की संयुक्त मुख्य चुनाव अधिकारी एंथेल रोथांगपुई ने बताया कि राज्य में कल तक 8,35,000 से अधिक मतदाताओं के गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण हो चुका है। उन्होंने कहा कि राज्य के 11 जिलों में 100% डिजिटलीकरण हो गया है। इस बीच राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी के अनुरोध पर आयोग ने मिजोरम के लिए मसौदा मतदाता सूची के प्रकाशन की तिथि को पहले की 5 जुलाई से संशोधित करके 4 जुलाई कर दिया है। दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि भी 4 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। सरकार ने ऑनलाइन प्रसारित हो रहे एक फर्जी वीडियो का खंडन किया है, जिसमें केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को एक निवेश प्लेटफॉर्म का समर्थन करते हुए गलत तरीके से दिखाया गया है। वीडियो में दावा किया गया है कि 22,000 रुपए की एकमुश्त जमा राशि से प्रतिदिन 80,000 रुपए तक का रिटर्न मिल सकता है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि यह वीडियो फर्जी है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI द्वारा बनाया गया है। भारत का LNG टैंकर दिशा हॉर्मुज जल डमरू मध्य को पार करने के बाद आज सुबह गुजरात के दाहिज बंदरगाह पर पहुंच गया। ये कतर के रस लाफान टर्मिनल से 62,370 मीट्रिक टन द्रवीकृत प्राकृतिक गैस LNG लेकर आया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए सिंधु जल संधि को पुरानी और वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया है। भारत ने इस समझौते को मौजूदा हालात के विपरीत बताते हुए कहा कि जो देश आतंकवाद को प्रायोजित करता रहा है वो सद्भावना और मित्रता पर आधारित सहयोग की अपेक्षा नहीं कर सकता। आज राष्ट्रीय पठन दिवस है। ये दिन प्रतिवर्ष केरलम में पुस्तकालय आंदोलन के जनक पुथुवाइल नारायण पणिकर की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: کٔرِتھ أسۍ ٲسۍ لۄکٹہِ پٮ۪ٹھٕے بَچہٕ آنٛگنواری منٛز، وہاں اچھا رہے گا، وہاں وہ ہر کوئی چیٖز سیٖکھتا ہے بَچپَن سے ہی۔
1: بِلکُل، اگر اِنسانَس ضروٗرت تہِ آسہِ تَمہِ پَتَن آسہِ سِکیٖم تہٕ بیٚیہِ پَتہٕ اَمیُک فٲیدٕ تہِ میلہِ واریاہو رَنگو، کیازِ تُلہِ اِنسان فٲیدٕ؟ ہاں، پَتہٕ گوٚو یِم بِلکُل پَتہٕ گوٚو یِمن نہٕ پَتہ ٲس تِہنٛدی خٲطرٕ اوس یہِ پروگرام سَمٕنۍ بوٗزو تۄہہِ، اَسہِ چھُ وۄمید کہِ یِمن سِکیٖمن ہُنٛد تُلِو تُہۍ بھرپوٗر فٲیدٕ، یوٚدوے تُہنٛز زندگی تہٕ تُہنٛدٮ۪ن بَچن ہِنٛز زندگی تہٕ سَپدِ بہتر۔ زمیٖرا جی، یہِ سٲرٕے اِنفارمیشن دِنہٕ باپَتھ تۄہہِ دِل تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکرِیا۔ سَمٕنۍ أسۍ سَپُد سانہِ أزکہِ پروگرام۔
2: ماجہِ بیٚنہِ ٲس پَنُن مَن پَسنٛد پرٛوگرام بوزان بَزمی نِسما۔ أزیُک پرٛوگرام اوس تُہٕنٛدِس خدمتَس منٛز پیش کَران سایکا تبسُم، تہٕ پرٛوگرامٕچ أزِچ مہمان ٲس آنٛگَن واڑی ؤرکَر زمیٖرا اختر، پیشکَش سمیٖنا شاہ۔ سٲنِس دٔیمِس اعلانَس پرٛٲرِو یے آکاش وانی سری نگر ہے دِن کا ایک بجے چاہتا ہے، اب آکاش وانی دِلی سے ہِنٛدی اور انگریزی خبرُن کا بُلٹِن اب سے تھوڑی دیر کے بعد رِلے ہوگا۔
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। फ्रांस में कल रात भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे।
4: आज का भारत भविष्य का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। भारत एक साथ हर उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है जो आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा।
3: प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वो समावेशी होगा। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देशभर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में भाग लिया। राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कार्यक्रम स्थल पर राष्ट्रपति का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत राज्य सरकार की उपलब्धियों की सराहना की।
5: राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने जो बहुआयामी उपलब्धियां हासिल की है, इसके लिए मैं राज्य सरकार की सराहना करती हूँ। वर्ष 2023 में राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ करते समय जो अनेक बड़े लक्ष्य देश के सामने रखा गए थे, उनमें से स्क्रीनिंग का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा हो गया है। 9,000 शिशुओं से लेकर 40 वर्षों की आयु तक के 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य पूरा हो चुका है।
3: कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 के तहत स्थापित विशेष प्रदर्शनी का दौरा किया। अपने दौरे के अगले चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के रायरंगपुर जाएंगी, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी। तमिलनाडु विधानसभा ने कावेरी नदी पर कर्नाटक द्वारा प्रस्तावित मेकाडाटो परियोजना का विरोध करते हुए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव पेश करते हुए मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने सदन के सभी सदस्यों से इस प्रस्ताव का सर्वसम्मति से समर्थन करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेकाडाटो परियोजना मौजूदा कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन करती है और कावेरी जल पर तमिलनाडु के अधिकारों का हनन करेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने रविवार को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक नीट यूजी की पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक आधिकारिक व्हाट्सएप संचार चैनल शुरू किया है। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि सभी आधिकारिक व्हाट्सएप संदेश केवल उसके सत्यापित नंबर 9178279802877 के माध्यम से भेजे जाएंगे। एजेंसी ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि एनटीए से भेजे गए किसी भी संदेश पर भरोसा करने से पहले नीले सत्यापन चिन्ह और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नाम की जांच कर लें।

0: भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 62वें सत्र में जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की पहली सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और हमेशा रहेगा। उन्होंने पाकिस्तान पर घरेलू चुनौतियों और आतंकवाद को निरंतर समर्थन देने से ध्यान भटकाने के लिए दुष्प्रचार का आरोप लगाया। आज राष्ट्रीय पठन दिवस है। ये दिन प्रतिवर्ष केरलम में पुस्तकालय आंदोलन के जनक पुथुवाइल नारायण पणिकर की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वर्ष 2017 में प्रधानमंत्री मोदी ने कोच्चि यात्रा के दौरान राष्ट्रीय पठन दिवस और पठन माह से जुड़े कार्यक्रमों का शुभारंभ किया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi has said India is emerging as a trusted partner to the world. Addressing the Indian diaspora in Paris last night, Mr. Modi said there was a time when relations between countries were determined solely by trade, but today trust has become just as important alongside trade.
2: Har desh reliable supply chain chahta hai. Har desh stable partnership chahta hai. Har desh aise saathiyon ki talash mein hai jin par लंबे समय तक भरोसा किया जा सके, और ऐसे समय में भारत विश्व में एक ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में उभर रहा है।
1: President Draupadi Murmu has expressed confidence that India would eradicate sickle cell disease well before its national target year of 2047. She has called for concerted efforts to raise awareness about the genetic blood disorder, particularly among tribal communities. The President was addressing a state-level program at Omkareshwar in Madhya Pradesh on the occasion of World Sickle Cell Day today.
3: राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने जो बहुआयामी उपलब्धियां हासिल की है, इसके लिए मैं राज्य सरकार की सराहना करती हूँ। ये संतोष की बात है कि वर्ष 2023 में राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ करते समय जो अनेक बड़े लक्ष्य देश के सामने रखा गया थे, उनमें से स्क्रीनिंग का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा हो गया है। मुझे बताया गया है कि 9000 शिशुओं से लेकर 40 वर्षों की आयु तक के 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य पूरा हो चुका है। ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है।
1: During the program, President Murmu visited a special exhibition set up under the National Sickle Cell Anemia Elimination Mission 2047. In the next phase of her visit, the President will travel to Rairangpur in Odisha, where she is scheduled to inaugurate several development projects. Prime Minister Modi will disburse incentives worth 2,400 crore rupees under the Pradhan Mantri Vikasit Bharat Rozgar Yojana in New Delhi today. This incentive has supported the creation of 15 lakh employment opportunities across the country. India has accused Pakistan of using propaganda to divert attention from its domestic challenges and its continued support for terrorism. New Delhi has strongly rejected Pakistan's allegations on Jammu and Kashmir at the 62nd session of the United Nations Human Rights Council. Speaking at the session, First Secretary at India's permanent mission to the United Nations, Anupama Singh, asserted that Jammu and Kashmir was, is and will always remain an integral and inalienable part of India. India maintained that the only unresolved issue is Pakistan's illegal occupation of Indian territories and their eventual return. Highlighting the situation in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, India alleged that growing protests and unrest in the region reflect widespread dissatisfaction with continued repression and denial of basic rights.
4: This is the country where the sitting defense minister boasts of hosting, training and deploying terrorist state policy, and yet Pakistan calls itself a victim of terrorism. Indeed, a paradox which only Pakistan could sustain. It is a living example of a Frankenstein state which is shocked when its own monster bites back.
1: The Delhi High Court has upheld the centre's decision to temporarily restrict access to the Telegram messaging platform ahead of the NEET UG 2026 re-examination on the 21st of June, saying the move

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारे आपके सबके चहेते कार्यक्रम उमंग में। मैं हूँ विमलेश, नमस्कार।
3: अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है राधे नगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी ने। लिखते हैं,
2: अगर आप एक खुशहाल जीवन जीना चाहते हो तो अपने आप को अपने उद्देश्य से बांधो, ना कि लोगों से। हुनर होगा तो दुनिया खुद कदर करेगी। भीड़ में एड़ियां उठाने से किरदार ऊंचे नहीं हो जाते।
3: आपके सुंदर विचार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कारिया जी। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का। लिखा है, नमस्कार, ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत समयानुकूल विषय गर्मी के मौसम में अपनी देखभाल कैसे करें पर लगातार 3 दिनों तक जीवन उपयोगी मालूमात प्रदान की गई। 12 मई को भीषण गर्मी के मौसम में कैसे कपड़े पहनने चाहिए, 12 बजे से 4 बजे तक धूप में निकलने से बचना चाहिए और थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना आवश्यक है। आगे लिखते हैं,
2: 13 मई को गर्मी में हमारा खान पान कैसे होना चाहिए और 14 मई को लू लगने पर क्या प्राथमिक उपचार करने चाहिए, इस बात की जानकारी बहुत ही सरल और सहज ढंग से समझाई गई। हमने व्यक्तिगत रूप से इन बातों को अमल करना शुरू कर दिया है। उमंग की पूरी टीम को हम हार्दिक धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने हमें जागरूक कर दिया।
3: आगे आपने लिखा है, कारगिल के वीर योद्धाओं के अदम्य साहस की शौर्य गाथा को बयान करने वाले ऑपरेशन विजय पर 13 मई को विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई। इस प्रस्तुति के लिए उमंग की संपूर्ण टीम बधाई की पात्र है। धन्यवाद।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद उमंग टीम की ओर से इस विस्तृत विश्लेषण व प्रोत्साहन के लिए।
3: ग्राम राजापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से मानिक राम प्रजापति, श्रीमती सविता प्रजापति, घनश्याम राम, हरिशंकर, रत्नेश कुमार और प्रशांत प्रजापति।
2: ग्राम कालापारा से रामचंद्र गुप्ता, पांडे राम राजवाड़े लिखते हैं,
3: आज के जमाने में यदि हम सब मिलजुल कर रहें और भाईचारा बनाए रखें तो यही जिंदगी जीने का असली मजा है।
2: जी,
3: आपका कार्यक्रम हम हर रोज सुनते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है।
2: जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फाजिलका से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदन लाल वर्मा।
3: ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ढाकसे जी लिखते हैं, प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आगे लिखते हैं,
2: हमें आपका उमंग कार्यक्रम बेहद पसंद है। हमें दिनांक 21 मई 2026 दिन गुरुवार का उमंग कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। इस कार्यक्रम में कहानी पेड़ हमारे दोस्त बहुत ही प्रेरणादायक लगी। धन्यवाद।
3: स्वागत है आप सबका श्रोताओं एक बार फिर से ये भी जानिए श्रृंखला की अगली कड़ी में।
2: पिछले दिनों हमने चर्चा की लोकटक, मानसरोवर और चिल्का झीलों की, उनके बारे में जाना। तो अजीत जी, आज हम किस झील की चर्चा करने जा रहे हैं?
3: विमलेश जी, देखिए, यदि सारी झीलों की चर्चा हो जाए और कश्मीर की डल झील की चर्चा न हो तो चर्चा अधूरी सी लगेगी।
2: बिल्कुल।
3: तो आइए बढ़ाते हैं आज की चर्चा को। जी, तो आपको बता दें कि डल झील भारत की सबसे खूबसूरत झीलों में से एक है। ये श्रीनगर में स्थित है। आपको पता है, इसे कश्मीर का गहना या ज्वेल ऑफ

0: कश्मीर भी कहा जाता है। जहां तक इसके पानी की बात है, यहाँ पानी झेलम नदी और आसपास के पहाड़ी झरनों से आता है। तो श्रोताओं, अब बात करते हैं इसके नाम पर। नाम है डल झील। इसके बारे में मान्यता है कि डल शब्द कश्मीरी भाषा के दल शब्द से संभवतः आया है, जिसका अर्थ झील ही होता है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि प्राचीन काल में जल से भरे विस्तृत क्षेत्र को दल कहा जाता था। बाद में यही नाम इस झील के लिए भी प्रयुक्त होने लगा। श्रोताओं, डल का मतलब ही झील होता है, इसलिए कश्मीर में इसको सिर्फ डल कहते हैं, डल झील नहीं। ये झील दुनिया भर के पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। यहाँ के हाउस बोट बहुत ही लोकप्रिय हैं, जिन्हें शिकारा भी कहते हैं। शिकारा एक स्थानीय शब्द है जिसका अर्थ होता है नाव। शाम को धीरे धीरे जब सूरज ढलता है तो प्रकृति का नजारा देखने लायक होता है। शिकारों पर गीत, संगीत और चाय कहवे का मजा बेजोड़ है। शिकारे पर बजाए जाने वाले पारंपरिक मुख्य कश्मीरी वाद्य यंत्र हैं संतूर, रबाब, सारंगी, सहतार और साज ए कश्मीर। ये वाद्य यंत्र और पर्वतीय गायन शिकारे पर समा बांध देता है। श्रोताओं, एक और खास बात आपको बता दें कि डल झील में भी तैरते हुए छोटे छोटे बगीचे नुमा द्वीप हैं। इन्हें फ्लोटिंग गार्डन या स्थानीय भाषा में राद कहते हैं। ये ज्यादा भारी नहीं होते, इसलिए नावों द्वारा यहाँ से वहां ले जाए जा सकते हैं। डल झील में जो तैरते हुए बगीचे नुमा द्वीप हैं, वे मानव निर्मित हैं, जो झील की खरपतवार और मिट्टी से बनाए जाते हैं। इन नावों पर सब्जियां, फूल और खासकर कमल के फूल उगाए जाते हैं। एक बात और श्रोताओं, इस झील में फ्लोटिंग मार्केट यानी तैरते हुए बाजार भी हैं। यहाँ अभी भी कहीं कहीं वस्तु विनिमय प्रणाली देखने को मिलती है, यानी ये सब्जी लीजिए और बदले में वो सब्जी या फल दे दीजिए। श्रोताओं, ये जानना भी बड़ा मजेदार है कि आखिर ये झील बनी कैसे। तो इसका मुख्य कारण है हिमालयी भूगर्भीय परिवर्तन। बहुत पहले हिमालय क्षेत्र में धरती की परतों के उठाव और धंसाव की प्रक्रिया से वहां कहीं पर्वत बने तो कहीं गहरे गड्ढे, ग्लेशियरों की बर्फ पिघली और उनका पानी नदी के रूप में घाटों और गड्ढों में जमा हुआ। डल झील इसी का परिणाम है। श्रोताओं, डल झील का पानी मीठा है। यहाँ भी प्रवासी पक्षी बहुत बड़ी संख्या में आते हैं, लेकिन अब ये झील प्रदूषण और सिल्टेशन यानी मिट्टी भराव की समस्या से जूझ रही है। इसके समाधान के लिए कई कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। श्रोताओं, बात यहीं पर खत्म नहीं होती। झील के किनारे शानदार शालीमार और निषाद गार्डन्स की सुंदरता देखते ही बनती है। सचमुच डल झील न सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य से समृद्ध है, बल्कि ये झील कश्मीरी जीवन शैली, संस्कृति और पर्यटन का भी प्रतीक है।
1: तो श्रोताओं, ये थी आज की हमारी जानकारी सुंदर प्यारी डल झील के बारे में।
0: अब सुनिए आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से आज का प्रश्न है, डल का अर्थ कश्मीरी भाषा में क्या होता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: डल का अर्थ कश्मीरी भाषा में क्या होता है?
0: आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। और हाँ,
1: हमारे IVRS का नंबर भी नोट कर लीजिए 8800440559। आप हमें यानी CIT NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों और कार्यक्रमों की अद्यतन जानकारी मिलती रहेगी।
0: और अब सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है गुलिवर की विचित्र यात्राएं।
1: इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक जोनाथन स्विफ्ट द्वारा रचित कथा का रेडियो रूपांतरण किया गया है, जो रहस्यों और रोमांच से भरपूर है। स्विफ्ट द्वारा रचित कथा का रेडियो रूपांतरण जोनाथन स्विफ्ट द्वारा रचित कथा का रेडियो रूपांतरण किया गया है, जो रहस्यों और रोमांच से भरपूर है।
2: मैंने कई लंबी लंबी यात्राएं की। एक बार
1: इस कार्यक्रम में बिन्नी नाम की एक बच्ची के सपने और महत्वाकांक्षा के बारे में बताया गया है कि वो बड़ी होकर क्या करना चाहती है इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को प्रोत्साहित किया गया है कि वे भी अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करें।
2: तो श्रोता, अभी आप सुन रहे थे, बाद में पता चला कि ये लिलिपुट द्वीप है। आज का हमारा, जब मेरी नींद खुली तो मैंने अपने
1: आप को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: आश्चर्य में पड़ा सोच ही रहा था,
1: थोड़ा सा कंबल था,
2: कि कोई चीज
1: तो अब आज का उमंग कार्यक्रम
2: मेरे पैरों पर रेंगती रेंगती मेरी छाती पर
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम

0: प्रेरित किया गया है कि वे भी अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करें।
1: तो श्रोता अभी आप सुन रहे थे,
2: बाद में पता चला कि ये लिलिपुट द्वीप है।
1: आज का हमारा
2: जब मेरी नींद खुली
1: होता है तो अपने मित्र
2: तो मैंने अपने
0: आप को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: आश्चर्य में पड़ा सोच ही रहा था,
0: थोड़ा सा फंबल था
2: कि कोई चीज
0: तो अब आज का उमंग कार्यक्रम
2: मेरे पैरों पर रेंगती रेंगती मेरी छाती पर।
0: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: कुछ देर बाद उसी प्रकार के कई प्राणी मेरे शरीर पर चढ़ाए। मैं जोर से चिल्ला उठा, कौन हो तुम? मेरा चिल्लाना था कि वो लोग लुढ़कते पुढ़कते और चीखते चिल्लाते भागे। इसके बाद मैंने उठने का प्रयत्न किया तो कुछ धागे टूट गए। ये देख उन लोगों ने सुई जैसे पतले पतले तीरों की वर्षा शुरू कर दी। एक तीर मेरी बाईं आंख पर लगा। ये देख सिपाहियों ने 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर मुझे सौंप दिया। 5 को तो मैंने अपने कोट की जेब में रख लिया और 1 को उंगलियों में पकड़कर मुंह की ओर ले जाने लगा। वो मारे भय के बुरी तरह चीखने लगा। मैंने उन सबको जमीन पर छोड़ दिया। छुटकारा पाते ही वो गिरते पड़ते वहां से भागे। इस बात का और लोगों पर अच्छा असर पड़ा। बादशाह ने जब ये सुना तो उसने भी मेरी प्रशंसा की। राज दरबार के कुछ व्यक्ति मेरे भोजन पानी के खर्च को देखकर सोचने लगे कि इससे देश में अकाल पड़ जाएगा। वे विषैले तीरों से मेरी हत्या कर देना चाहते थे, परंतु सौभाग्य से बादशाह उनकी बातों में नहीं आया। उसने मेरे भोजन पानी का सारा उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया और 6 विद्वानों को मुझे उस देश की भाषा सिखाने के लिए नियुक्त कर दिया। कुछ दिनों में मैंने उन लोगों की भाषा सीख ली। मेरे स्वभाव और व्यवहार से वे लोग बहुत खुश थे। अब वे निडर होकर मेरे पास आते, कभी वे मेरे सिर पर उछलते कूदते और कभी नाचने लगते। बच्चे तो मेरे बालों में आंख मिचौनी खेलते। इस तरह मैं सबका खिलौना बना हुआ था। एक दिन मैंने बादशाह से अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना की। उसने मुझे इन शर्तों पर मुक्त करना स्वीकार किया कि मैं बादशाह की आज्ञा के बिना कहीं न जाऊं और किसी देश से युद्ध छिड़ जाने पर मैं लिलिपुट वासियों की सहायता करूं। कुछ दिन बाद मुझे ज्ञात हुआ कि पड़ोसी देश ब्लेफुस्कू के बादशाह ने एक शक्तिशाली जहाजी बेड़ा तैयार कर लिया है। वो लिलिपुट पर चढ़ाई करने का अवसर देख रहा है। शर्त के अनुसार मैंने उन लोगों की सहायता करने की एक योजना बनाई। कुछ रस्सियां और कांटे लेकर मैं ब्लेफुस्कू की खाड़ी की ओर चल दिया। ये खाड़ी मेरे लिए विशेष गहरी न थी, पर उन लोगों के लिए तो ये महासागर से कम न थी। मैंने खाड़ी में घुसकर वहां खड़े सब जहाजों को कांटों में फंसा लिया और उन्हें खींचता खींचता लिलिपुट की ओर चल दिया। ब्लेफुस्कू के सैनिक मेरे ऊपर तीर बरसाने लगे, पर चश्मे और चमड़े के कोट

के कारण उनके तीर मेरा कुछ भी ना बिगाड़ सके। ब्लेफुस्कू के जहाजों को खींचकर जब मैं लिलिपुट की खाड़ी में ले गया तो वहां के बादशाह और लोगों ने प्रसन्नता से उछल उछल कर मेरा स्वागत किया। बादशाह ने मुझे अपने देश की सबसे बड़ी उपाधि से सम्मानित किया। एक दिन मैं लिलिपुट खाड़ी के किनारे घूमता घूमता दूर जा निकला। वहां मुझे पानी में एक बड़ा तख्ता तैरता दिखाई दिया। ध्यान से देखने पर ज्ञात हुआ कि वो एक उल्टी हुई नाव थी। उसे देखकर मैं खुशी से नाच उठा। ये नाव नहीं, मेरी आशाओं का दीपक थी। कुछ दिन बाद मैंने बादशाह से अपने देश जाने की आज्ञा मांगी। उन्होंने मुझे बड़े प्रेम से विदा किया और बहुत सी भोजन सामग्री मेरी नाव पर लदवा दी। सौभाग्य से रास्ते में मुझे एक जहाज दिखाई दिया। नाविकों ने मुझे जहाज पर चढ़ा लिया। ये देख मेरी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा कि जहाज मेरे ही देश का था। लिलिपुट से लौटकर 2 महीने तक मैं घर पर ही रहा। उसके बाद मुझे फिर जहाज पर काम मिल गया। कुछ दिन बाद हमारा जहाज हिंदुस्तान के लिए रवाना हुआ। अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर चलते चलते हमारा जहाज तूफान में फंसकर रास्ता भूल गया। और भटकते भटकते एक टापू के पास पहुंचा। नाविक तो जहाज की देखभाल में लग गए और मैं अपने कुछ साथियों के साथ नाव लेकर पानी की तलाश में टापू की ओर चल दिया। मुझे पानी कहीं न मिला। पेड़ की ठंडी छाया देख मैं वहीं लेट गया। कुछ देर बाद जब मैं नाव की ओर लौटा तो क्या देखता हूं कि मेरे साथी नाव को तेजी से जहाज की ओर लिए जा रहे हैं। मैं उन्हें आवाज देने ही वाला था कि मेरी नजर एक विशालकाय आदमी पर पड़ी। आदमी क्या, वो तो पूरा राक्षस था। समुद्र का पानी उसके घुटनों तक ही आ रहा था। उसे देख अपनी जान बचाने के लिए मैं एक खेत में जा छिपा। कहने को तो ये जौ का खेत था, पर जौ के पौधे हमारे देश के पेड़ों से कम ऊंचे न थे। पेड़ तो पहाड़ की चोटी की समता करते थे। जौ के पौधों की आड़ में छिपे छिपे मैंने देखा कि कुछ आदमी उसी खेत की ओर आ रहे हैं। उन्होंने जौ काटने शुरू किए तो एक की नजर मुझ पर पड़ी। उसने खिलौने की तरह मुझे उठाकर हथेली पर रख लिया। मुझे लगा कि मैं एक ऊंचे पेड़ की टहनी पर चिड़िया की तरह बैठा हूं, पर क्या मैं चिड़िया की तरह आजाद था? उस लंबे चौड़े किसान ने मुझे उलट पलट कर देखना शुरू किया तो मैं डर के मारे चीखने लगा। ये देख उसने मुझे धीरे से जमीन पर रख दिया। मेरी जान में जान आई। मैंने चिल्ला चिल्ला कर उसे अपने बारे में बताना चाहा, पर वो समझे तब ना। उसने मुझे बड़ी सावधानी से उठाकर अपनी चौड़ी हथेली पर रख लिया।

और अपने घर ले आया। घर लाकर जैसे ही किसान ने अपनी पत्नी को दिखाने के लिए हथेली उसकी ओर बढ़ाई तो मुझे देखकर वो स्त्री इस तरह डर गई जैसे कोई सांप बिच्छू को देखकर डर जाए। ये देख किसान को बड़ा मजा आया और वो खिलखिलाकर हंस पड़ा। मुझे लगा कि आंधी चल रही है और बादल गरज रहे हैं। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर चारों ओर देखने लगा। वहां सभी प्राणी और सभी चीजें बड़े बड़े आकार की थीं। नांद जैसे प्याले, बड़े बड़े थालों जैसी रोटियां, शेर शेरनी जैसे कुत्ते बिल्लियां, छोटे से छोटा बच्चा भी मुझसे चौगुना लंबा चौड़ा। इन सब के बीच में मैं अपने आप को मक्खी मच्छर जैसा अनुभव कर रहा था। लिलिपुट के लोग मुझे देखकर जितना हैरान हुए होंगे उससे कहीं अधिक हैरानी मुझे इन लोगों को देखकर हुई। इन लोगों में रहते रहते मेरा भय मिट गया। इनका आकार ही डरावना था, वैसे आदमी भले थे। मैंने इस देश की भाषा भी सीख ली, इससे मुझे बहुत सुविधा हो गई। कभी कभी मैं मेज पर खड़े होकर किसान और उसके परिवार वालों को तरह तरह के खेल दिखाता। मेरा नाच और तलवार चलाना उन्हें बहुत पसंद आता। इससे उनका अच्छा खासा मनोरंजन हो जाता। ये देखकर किसान के मित्र ने उसे सलाह दी कि वो राजधानी में लगने वाले मेले में टिकट लगाकर लोगों को मेरा खेल दिखाए। अब किसान ने मुझे एक लकड़ी के डिब्बे में बंद किया और उसे हाथ में लटकाकर मेले में ले आया। राजधानी के लोग मेरा खेल देखने के लिए टूट पड़े। मेरे खेल से अधिक वे मुझे देखना चाहते थे। उनके लिए तो मैं जीता जागता खिलौना था। यहां मुझे दिन में 10-10 बार खेल दिखाने पड़ते थे। इस तरह काफी पैसा कमाने के बाद उस किसान ने 1000 सोने के सिक्कों के बदले मुझे उस देश की महारानी को बेच दिया। महारानी ने मेरे लिए एक पिंजरा बनवाया। पिंजरा क्या, ये तो एक कमरा था। खाना खाते समय महारानी पिंजरे को अपनी मेज पर रखकर मुझे भी खाना खिलाती। उसने मेरे लिए विशेष रूप से छोटे छोटे बर्तन भी तैयार करवाए। एक बार राजा और रानी अपने नौकर चाकरों के साथ अपने राज्य का दौरा करने निकले। उन्होंने मुझे भी साथ ले लिया। चलते चलते हम ऐसे नगर में पहुंचे जो समुद्र के समीप ही था। समुद्र को देखकर मुझे अपने देश की याद आ गई और मैं उदास हो गया।

ये देखकर नौकर पिंजरा उठाकर समुद्र के किनारे ले गया। पिंजरे को एक चट्टान पर रखकर वो समुद्र की रेत पर लेट गया। समुद्र की ओर ललचाई नजरों से देखते देखते पता नहीं मुझे कब नींद आ गई। खड़खड़ की आवाज

0: सुनकर जब मेरी आंख खुली तो भय और आश्चर्य से मेरा दिल धड़कने लगा। मेरा पिंजरा हवा में उड़ रहा था। मैं अभी सोच में पड़ा ही हुआ था कि अचानक पिंजरा इतनी तेजी से नीचे गिरा कि मेरी आंखें भय से बंद हो गईं। छपाक! पिंजरा एक बार तो पानी में काफी नीचे तक चला गया, पर फिर केवल थोड़ा सा ही डूबकर नाव की तरह तैरने लगा। खुला समुद्र, लहरों के थपेड़े, तीर की तरह चुभती हुई ठंडी हवा, खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं। मेरे दुर्भाग्य का कहां अंत होगा? इससे तो मैं महारानी की कैद में ही ठीक था, मैं सोचने लगा। मैंने अपने आप को भाग्य के सहारे छोड़ दिया। उस असहाय स्थिति में पड़े पड़े मुझे काफी देर हो गई थी कि मुझे लगा जैसे कोई पिंजरे को तेजी से एक ओर खींच रहा हो। पिंजरे की खिड़की से हाथ निकालकर मैं जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा। जब जवाब में मैंने अपने देश की भाषा सुनी तो मेरा रोम रोम खिल उठा।
1: और अब सुनते हैं आज का आखिरी कार्यक्रम, शीर्षक है बिन्नी का सपना।
2: इस कार्यक्रम में बिन्नी नाम की एक बच्ची के सपने और महत्वाकांक्षा के बारे में बताया गया है कि वो बड़ी होकर क्या करना चाहती है। इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को प्रोत्साहित किया गया है कि वे भी अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करें।
1: बिन्नी का सपना।
3: अरे तुम्हें क्या हुआ?
4: बिन्नी, मुझे बुखार हुआ है। मेरा तापमान 2 डिग्री से ज्यादा बढ़ गया है।
3: ओह, किसने की तुम्हारी ये हालत?
4: इन गैसों ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है।

तापमान हम बढ़ाते हैं, मौसम में गड़बड़ी फैलाते हैं, पर्वतों की बर्फ को पिघलाकर तटीय क्षेत्रों को डुबोते हैं।

0: नाम है हमारा CO2 और CH4, ग्रीन हाउस गैस हम कहलाते हैं।
1: SO2 है मेरा नाम, तेजाब की बारिश करना है मेरा काम, सांस लेना मुश्किल कर देता हूँ, जीवन में उलझन भर देता हूँ।
2: NO2 है मेरा नाम, सेहत बिगाड़ना मेरा काम, सर दर्द खांसी बढ़ाता हूँ, बहुत खतरनाक माना जाता हूँ।
0: CFC है मेरा नाम, ओजोन परत को हानि पहुंचाना मेरा काम, जिससे यूवी किरणें आ जाती हैं, त्वचा कैंसर

0: का खतरा बढ़ाती है।
1: तुम परेशान मत हो, मैं हूँ ना, मैं अभी इन्हें मजा चखाती हूँ।

0: ओह, ये सपना था। पर हमें सचमुच अपनी पृथ्वी को बचाना है।
1: तो श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बिन्नी का सपना। और अब इसी कार्यक्रम के साथ आज का हमारा उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: जी दोस्तों, आप समाप्त कर रहे थे स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम NCERT उमंग।
5: कास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच, आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
4: ये आकाशवाणी श्रीनगर है, मीडियम 268.8 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। ठीक 1:40 हुए हैं। आप सुनते हैं नाते कवाली, पेश कर रहे हैं हबीब पेंटर कवाल और साथी कलाम है हबीब पेंटर का।

जी सामीन, आप सुन रहे थे नातिया कवाली, पेश कर रहे थे हबीब इंटर कवाल और साथी कलाम था हबीब इंटर का। ये आकाशवाणी श्रीनगर है, मीडियम में 268.81 मीटर और FM 103.5 MHz पर। ठीक 1:50 हो रहे हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से उर्दू और अंग्रेजी खबरों का बुलेटिन अब से थोड़ी देर के बाद रिले होगा।

आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं असलम बेग। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने फ्रांस और स्लोवाकिया का अपना 5 रोजा तारीखी दौरा मुकम्मल कर लिया है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकास भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए मालियत की तरगीबात तकसीम करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत सिकल सेल की बीमारी को 2047 के मुकर्रा निशाने से पहले ही खत्म करने की राह पर है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दोबारा कराए जाने वाले नीट यूजी 2026 इम्तिहान से पहले टेलीग्राम पर मरकज की तरफ से लगाई गई आरजी बंदिश को बरकरार रखा है। भारत ने अक्वामे मुत्तहिदा की इंसानी हकूक काउंसिल में वादी सिंध माहदे को फरसूदा बताया है। उसने दहशतगर्दी को पनाह देने पर पाकिस्तान की मजम्मत भी की है और मेक्सिको जनूबी कोरिया को 1-0 से हराकर फीफा आलमी कप का 32वां राउंड क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने फ्रांस और स्लोवाकिया का अपना 5 रोजा दौरा मुकम्मल कर लिया है। फ्रांस के अपने दौरे में उन्होंने इवियो में G7 समिट में शिरकत की। उन्होंने G7 समिट से अलग अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और दीगर शख्सियतों से मुलाकात की। इससे पहले जनाब मोदी और फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रों ने फ्रांस के शहर नीस में भारत इनोवेट्स तकरीब का इफ्तिताह किया, जिसमें भारत, फ्रांस और दीगर मुल्कों के सरकर्दा स्टार्टअप्स, इख्तिराकार और असासाकार यकजा हुए। स्लोवाकिया के अपने दौरे में जनाब मोदी ने जमहूरिया स्लोवाकिया के सदर पीटर पेलेग्रिनी से ब्रतिस्लावा में सदारती महल में मुलाकात की। एक खसूसी तकरीब में स्लोवाकिया के सदर ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को अपने मुल्क के आला तरीन सरकारी एजाज से नवाजा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए मालियत की तरगीबात तकसीम करेंगे। इस तरगीब से मुल्क में रोजगार के 15 लाख मौके पैदा करने में मदद मिली है। मेहनत और रोजगार महकमे के वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत पिछले साल अगस्त से अब तक 63 लाख से ज्यादा मुलाजिमीन को बाजाब्ता अफरादी कुव्वत में शामिल किया गया है, जिनमें तकरीबन 30% खवातीन हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने इत्मीनान जाहिर किया है कि भारत से सिकल सेल की बीमारी 2047 के कौमी निशाने से पहले ही खत्म हो जाएगी। उन्होंने खून की इस जीनियाती बीमारी के बारे में खास तौर पर कबाइली बिरादरियों में बेदारी लाने की मरबूत कोशिशों के लिए कहा। सदर जमहूरिया आज सिकल सेल के बारे में बेदारी लाने के दिन के मौके पर मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर में एक रियासती सतह के प्रोग्राम से खिताब कर रही थी। इस मौके पर गवर्नर मंगूभाई पटेल और वजीर आला मोहन यादव भी मौजूद थे।

0: सदर जमहूरिया ने सभी रियासती सरकारों और अफसरान से अपील की कि वो इस बीमारी को मामूली न समझें, क्योंकि ये एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल हो जाती है। उन्होंने कहा कि इस बीमारी को मुकम्मल तौर पर खत्म करने की कोशिशें की जानी चाहिए, क्योंकि इसका इलाज मुमकिन है।
1: राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने जो बहुआयामी उपलब्धियां हासिल की है, इसके लिए मैं राज्य सरकार की सराहना करती हूँ। वर्ष 2023 में राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ करते समय जो अनेक बड़े लक्ष्य देश के सामने रखा गए थे, उनमें से स्क्रीनिंग का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा हो गया है। 9000 शिशुओं से लेकर 40 वर्षों की आयु तक के 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य पूरा हो चुका है।
0: सदर जमहूरिया ने रियासती सरकार की तारीफ की कि उसने सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने के कौमी मिशन के तहत कामयाबियां हासिल की। सदर मुर्मू ने प्रोग्राम के दौरान एक खसूसी नुमाइश भी देखी जो 2047 के इस मिशन के तहत कायम की गई है। नुमाइश में सिकल सेल की बीमारी की रोकथाम, तशखीस और इलाज से मुतालिक मुख्तलिफ इकदामात को नुमाया किया गया है। इस नुमाइश में कबाइली इलाकों में मोबाइल मेडिकल यूनिट्स के काम को भी उजागर किया गया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से ओडिशा के 2 रोजा सरकारी दौरे पर रहेंगी। वो मयूरभंज जिले में दांडी बोस एयर स्ट्रिप पहुंचेंगी और इस खित्ते में हिफ्जान सेहत, बुनियादी ढांचे और अवामी खिदमात को मुस्तहकम बनाने के मकसद से मुनाकिद किए जाने वाले कई प्रोग्रामों में शिरकत करेंगी। सदर जमहूरिया एम्स भुवनेश्वर के जेर एहतमाम एक बड़े तिब्बी कैंप का इफ्तिताह करेंगी और एम्स सैटेलाइट सेंटर को अवाम के नाम वक्फ करेंगी, जिससे इलाके में हिफ्जान सेहत से मुतालिक खसूसी खिदमात की तौसी होगी। सदर जमहूरिया देही इलाके में पाइप के जरिए पानी की सप्लाई का एक बड़ा मरबूत प्रोजेक्ट भी अवाम को वक्फ करेंगी, जिससे कुसुमी ब्लॉक के तहत कानकनी से मुतासर 113 गाँवों में पीने के पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जा सकेगा। सदर जमहूरिया हाथ बड़ला में ब्रह्म कुमारी के मातृशक्ति शक्ति भवन, एक खसूसी सर्किट हाउस और नए बनाए गए राय रंगपुर पुलिस डिस्ट्रिक्ट का इफ्तिताह भी करेंगी। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने आज कहा है कि वक्त आ गया है जब फौजदारी निजाम इंसाफ को मुल्क के हर शहरी के लिए आईन में दिए गए हकूक को हासिल करने का एक वसीला बनाया जाए। नई दिल्ली में 2026 की फिंगरप्रिंट से मुतालिक ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क का ये निज़ाम यकसर तब्दीली के अमल से गुजर रहा है और इसे मुनज्जम तौर पर ताज़ा तरीन शक्ल दी गई है ताकि ये मौजूदा दौर की ज़रूरतों को पूरा कर सके। उंगलियों की के निशानात की खुद ब खुद शनाख्त करने वाले इस कौमी निज़ाम नेफिस के बारे में जनाब शाह ने कहा कि इस तरह के बहुत से केसेस हैं जिनमें इस निज़ाम से इंतहाई पेचीदा केसेस को आसानी से समझने में बड़ी मदद मिली है। उन्होंने कहा कि नेफिस को फिलहाल इसकी गुंजाइश के महज 10% हिस्से को इस्तेमाल में लाया जा रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इसका इस्तेमाल महज मुजरिमों का पता लगाने से भी ज्यादा किया जाना चाहिए। वजीर दाखला ने जोर देकर कहा कि नेफिस की कामयाबी का इनसार उन आदाद और शुमार को इकट्ठा किए जाने पर है जो हर एक मौके वारदात से हासिल किए जाते हैं।
2: हमारा लक्ष्य बहुत स्पष्ट है, अपराधी कितना भी चतुर हो वह कानून और विज्ञान की संयुक्त शक्ति के सामने बचना नहीं चाहिए। वैज्ञानिक जांच, समयबद्ध अभियोजन और इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसका उपयोग कर हमने क्राइम कंट्रोल करना है। क्राइम करने से दंड मिलता है, ये भाव जब खड़ा होता है तो अपराध को रोकने के लिए बहुत बड़ी सफलता मिलती।
0: दिल्ली हाईकोर्ट ने नीट यूजी 2026 के 21 जून को कराए जाने वाले दोबारा इम्तिहान से पहले टेलीग्राम मैसेज प्लेटफॉर्म तक रसाई पर आर्जी तौर पर बंदिश लगाने के मरकज के फैसले को बरकरार रखा है। अदालत ने कहा है कि यह कदम नामुनासिब नहीं है और कानून के मुताबिक है। जस्टिस तेजस कारिया ने कहा कि हुकूमत ने इत्तलाती टेक्नोलॉजी कानून की दफा 69A पर अमल करते हुए ये कदम उठाया है और बंदिश के इस हुक्म की भरपूर वजूहात मौजूद हैं। टेलीग्राम ने इस हुक्म को चैलेंज किया था और तफरीक बरते जाने का इल्ज़ाम आयद किया था। उसने दलील दी थी कि उसने नीट से मुतालिक गैर कानूनी मफाद के सैकड़ों लिंक्स हटा दिए हैं और हुकाम के साथ तआवुन किया है। इम्तिहानात मुनक़िद कराने वाली कौमी एजेंसी NTA ने कौमी अहलियत व दाखिला अंडर ग्रेजुएट नीट UG के दोबारा इम्तिहान में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक सरकारी व्हाट्सएप चैनल शुरू किया है। ये इम्तिहान इतवार को होना है। भारत ने अक़्वाम-ए-मुत्तहिदा की इंसानी हकूक काउंसिल के 62वें इजलास में जम्मू कश्मीर के बारे में

जी दोस्तों, आप सुनते हैं नौशाद के संगीत में गीत, नूरजहां की आवाज़ में, फिल्म अनमोल गढ़ी से ये गीत।

जी दोस्तों, आए अब सुनते हैं आखिर में फिल्म अनपढ़ से गीत मदन मोहन के संगीत में, सुरों की देवी लता मंगेशकर की आवाज में।

0: जफा करे मैं वो
1: जी। दोस्तों आप समाप्त कर रहे थे चंद फिल्मी नगमे, दिन के 2:30 बज चुके हैं। हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। इच्छा आकाशवाणी श्रीनगर मीडियम वेव जहत 68.8 मीटर ते FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पेट सामीन वंश पे छकर तो रो फनकार गुलाम मोहिद्दीन शाह हम नवाई मनीष बुझ तो ये कलाई में निसार दिलदार।

जय हिंद फौज भाइयों। फौज भाइयों फिल्म संगीत का प्रोग्राम लेके मैं हूं आपके रेडियो सखी सोहे फातिमा आपकी खिदमत में हाजिर। प्रोग्राम का पहला नजराना आपके नजर फिल्म अपनापन से खूबसूरत गीत मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की खूबसूरत आवाजों में।

जी दोस्तों, आइए अब सुनते हैं साहिर के बोल खयाम के संगीत में चंबल की कसम फिल्म से ये गीत मोहम्मद रफ़ी लता मंगेशकर की खूबसूरत आवाज़ों में ये नगमा आपकी नज़र।

जी दोस्तों, मशीनें आखिर मशीनें होती है, कभी भी अपना साथ छोड़ सकती है, लेकिन आपका और हमारा साथ तो यूं ही बने रहे। आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन मीडियम 268.1 मीटर और FM 103.5 MHz पर। फिल्म संगीत का प्रोग्राम आप DTS सर्विस और अपने स्मार्ट मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। समझ कीजिए फिल्म दर्पण से ये गीत मोहम्मद रफी की सदाबहार आवाज में।

0: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
1: जी दोस्तों, वक्त के बाद आपका स्वागत करते हैं फिल्म संगीत के प्रोग्राम में। अगला नगमा हमने चुना है फिल्म हीरांजा से मोहम्मद रफी की सदाबहार आवाज में, कैफे आजमी के बोल मदन मोहन के संगीत में।

जी दोस्तों, समाप्त कीजिए फिल्म कभी कभी से ये टाइटल गीत मुकेश की दर्द भरी आवाज़ में, साहिर के बोल, खयाम का संगीत।

जी दोस्तों, प्रोग्राम का आखिरी नजराना आपके नज़र फिल्म कस्मे वादे से। ये टाइटल गीत किशोर दा और लता मंगेशकर के खूबसूरत आवाज़ों में।

ये आकाशवाणी श्रीनगर है, मीडियम 268.81 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। सफर के 3:50 हो रहे हैं। अब यहाँ से उर्दू खबरें नशर होंगी।

0: इससे रोजगार के वसाइल पैदा करने पर भी जोर दिया है। मकानात व शहरी तरक्की महकमे की जानिब से तजवीज करदा सर्कुलर इकोनॉमी फ्रेमवर्क का मकसद जम्मू कश्मीर के लिए तरक्की का एक ऐसा माहौलियात मुवाफिक मॉडल तैयार करना है जिसमें वसाइल का मुअस्सर इस्तेमाल और कचरे की कम पैदावार हो। सूबाई कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने जिला इंतजामिया श्रीनगर की जानिब से रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस श्रीनगर में कायम किए गए ई गवर्नेंस से मुतलिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी का इफ्तिताह किया। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि ये मरकजी इम्तियाज डिजिटल सहूलियात का एक जामिया वन स्टॉप सेंटर होगा जहां से शहरियों के लिए ट्रांसपोर्ट से जुड़ी खिदमात के अलावा मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों तक आसान और ऑनलाइन रसाई मुमकिन होगी। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में 21 जून को 12वें बैनुल अक्वामी योगा डे के सिलसिले में तमाम तैयारियां मुकम्मल की गई हैं और यूटी में इस दिन की सबसे बड़ी तकारीब SKICC श्रीनगर और गवर्नमेंट PG कॉलेज जम्मू में मुनक्किद हो रही हैं। डायरेक्टर आयुष जम्मू कश्मीर डॉक्टर अजय तिकू ने हमारे नुमाइंदे खुर्शीद पड़रू के साथ बात करते हुए कहा कि योगा दिन की बड़ी तकारीब के साथ साथ तमाम अजला में योगा से मुतलिक बेदारी प्रोग्रामों का इनेकाद भी किया जा रहा है।
1: 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। जितने भी डिस्ट्रिक्ट है हमारे 20 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर हम इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मना रहे हैं। मेन इवेंट्स यहाँ पर SKIC श्रीनगर में हो रहा है और दूसरा मेन इवेंट हम जम्मू PG कॉलेज गांधीनगर में करवा रहे हैं। मैं जम्मू कश्मीर के सब वासियों से उनसे मैं अपील करता हूँ कि इस योगा दिवस में वो बढ़ चढ़ कर योगदान दे। उसमें 21 तारीख को 5 और 6 बजे के बीच में जो जो भी हमने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर है या मेन इवेंट है वहाँ पर आए और योगा का लाभ उठाएं।
0: शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर की एक तालिबा को अमेरिका के वाइल्ड एनिमल इनिशिएटिव की जानिब से एक बड़ा माली ग्रांट हासिल हुआ है। यूनिवर्सिटी के शोबे फिशरीज में PhD स्कॉलर मिस बाह रहमान को 6,500 अमरीकी डॉलर का यह ग्रांट नायाब मछलियों पर तहकीक करने के लिए मिला है। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर नजीर अहमद गनाई ने इस सिलसिले में मिसबाह रहमान और उनकी प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर सैयद तालिया मुश्ताक को मुबारकबाद पेश की है। जम्मू कश्मीर को मुनशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए 100 दिनों पर मुश्तमिल नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत सरगर्मियां शद्दोमद से जारी हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का पैगाम।
2: ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस, सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। NDPS एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
0: इस बिदअत पर काबू पाने के लिए दरकार इकदामात और लोगों की जिम्मेदारियों के ताल्लुक से वादी की एक मुसन्निफ और माहिर तिब प्रोफेसर डॉक्टर सईद अमीन ताबिश ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर को बताया।
3: मनशियात का गलत इस्तेमाल मुआशरे के लिए संगीन खतरा है। ये न सिर्फ जिस्मानी व जहनी सेहत को तबाह करता है बल्कि खानदान और समाजी ढांचे को भी मुतासर करता है। नशा इंसान को बेराहरवी जराइम और गुर्बत की तरफ धकेल देता है। इसके नतीजे में नौजवान अपनी सलाहियतें खो बैठते हैं और मुआशरा तरक्की के बजाय जवाल का शिकार होता है। इस संगीन मसले से निमटने के लिए आगाही, तालीम और इज्तिमाई कोशिश नहायत ज़रूरी है। इस मसले पर काबू पाने के लिए अवामी आगही, तालीम, सख्त और बहाली मरकज का क़याम जरूरी है। वालिदैन, असातिज़ा और कम्युनिटी को मिलकर नौजवानों को महफूज मुस्तकबल देने की कोशिश करनी चाहिए।
0: आज सिकल सेल बीमारी से मुतलिक बेदारी पैदा करने का आलमी दिन है। इस सिलसिले में आज मुल्क भर में कई प्रोग्राम मुनक्कद किए गए। इस दिन की मुनासिबत से सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत 2047 से पहले सिकल सेल बीमारी का खात्मा यकीनी बनाएगा। मध्य प्रदेश के ओमकरेश्वर गाँव में वर्ल्ड सीकल सेल डे से मुतलिक एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने जोर दिया कि इस बीमारी से मुतलिक मुल्क भर में जानकारी आम की जानी चाहिए ताकि आम लोग खुसूसन कबायली तबकों से वाबस्ता अफराद इस मर्ज से बच सकें। दरियासना सेहत के मरकजी वजीर JP नड्डा ने भी आलमी सीकल सेल बीमारी से मुतलिक बेदारी पैदा करने के आलमी दिन पर सेहतमंद समाज तश्कील देने पर सरकार के अज़्म का इआदा किया है। उन्होंने जानकारी दी कि मुल्क भर में 7,19,00,000 अशखास की नेशनल सीकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन के तहत जांच की गई, जब جبکہ 2,46,000 افراد کو اس بیماری میں مبتلا پایا گیا۔ انہوں نے کہا

इस मिशन के तहत 4 करोड़ अफराद में सिकल सेल कार्ड्स भी तकसीम किए गए हैं। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन आज से लद्दाख के 3 रोजा दौरे पर रहेंगे, जहां वो योगा की बैन अलावामी तकरीबात में हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। खुदा हाफिज़।

0: ये आकाशवाणी श्रीनगर है, मीडिया भी 268.1 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। सफर के 4 बज चुके हैं। अपना श्रोता है आज का पहाड़ी प्रोग्राम। प्रोग्राम से पहले ये तिजारती वक्फा।
1: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच, आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।

0: आकाशवाणी केंद्र श्रीनगर थी आई दा पहाड़ी प्रोग्राम कैन कैमे तुसदा मेज़बान ख्वाजा परवेज़ प्यार खलूस और ताजीम नाल अस्सलाम वालेकुम अर्ज़ करदा ते प्रोग्राम बिच जी आया क्वाख्ता। उम्मीद है तुसी खैरियत नाल होसो ते प्रोग्राम दिलचस्पी नाल सुनदे होसो। सामीन, जुम्मे दा त्याड़ा मुसलमानां वास्ते हफ्ते दा बेहतरीन और मुकद्दस दिन है। इस दिन नमाज जुम्मा तो पहले वाज़ नसीहत कीती जुलदी है, जिसका मकसद मुसलमानां दी दीनी और इखलाकी इसलाह करनी होंदी है। किसी भी मुंतखब इस्लामी मौजू जिस तरह हकूकुल्ला, हकूकुल इबाद, तौबा या सीरतुन नबी दे मुतलक कुरान मजीद दियां आयतां और हदीसां पेश कीतियां जुलदियां हैं ते इन दी लोई बिच लोकां दी रहनुमाई और इसलाह कीती गेंदी है। इस वास्ते असां को चाहिए कि इन्हां अच्छियां नसीहतां उते अमल करके अपनी जिंदगी सुधारा। ते सामीन, प्रोग्राम को अगे वधांदे होयां आओ सुनदे हां असगर अली कुरैशी दी आवाज़ बिच ए नात शरीफ।
1: करम।

0: और सकाफती रुकावटां दी वजह नाल सारे केस रिपोर्ट नहीं हो सकते। इस दिन दे एजेंडे विच बच्चों को निशाना बनाने दे खिलाफ आवाज़ चेना, मुतासरीन को तिब्बी मदद फराम करना और उनकी बहाली को यकीनी बनाना शामिल है। सामीन, अमन इंतहाई अहम और बुनियादी चीज़ है जिस नाल माशरा कामयाबी और तरक्की दी राह उत्ते गामजन हो सकता है। इसी दी बदौलत इंसानी जिंदगी खुशहाल और पुरसकून बन सकती है। इस वास्ते अमन हर वेले बरकरार रखने की कोशिश करनी चाहिए। तसामीन, आओ प्रोग्राम दे आखर ते सैयद आरिफ हुसैन काजमी ते साथियों को सुनदे हां ए नूहा।
1: मैं

0: जी सामीन, नुखा पेश कर रहे से सैयद आरिफ हुसैन काजमी ते साथी।
1: यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है, आइए पहाड़ी में खबरें सुनते हैं।
2: सामिन 4:20 होए, ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। सैयद उमर मुख्तार को खबर सुनो। सब तो पहला खास खास खबर एक नज़र। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का पैरिस भारत

आप ही जानती है कि उते हर व्यक्ति नू किनी इज्जत बराबरी अते आजादी मिलती है। सत्य लिंग समानता का अर्थ ए नहीं कि औरतां ते मर्द हर पक्षों एक जेहो हन। इसका अर्थ है कि हर व्यक्ति नू चाहे वह लड़का होवे चाहे लड़की, औरत होवे चाहे मर्द, बराबर सत्कार, बराबर अधिकार, बराबर मौके अते बराबर सम्मान मिलना चाहिए। एक ऐसे समाज जिथे अधी आबादी नू पिछे रखा जाता है कदे भी अपनी पूरी समर्था तक नहीं पहुंच सकता। सदियों तक दुनिया के कई समाजों में औरतों को मर्दों के मुकाबले घट मौके दिए जाते हैं। उन्होंने सिक्ख्या तो वांझा रखा गया, फैसले लैण के अधिकारों तो दूर रखा गया, उन्होंने योग्यतावां नू अक्सर घट अंकया गया, कई थावां उत्ते उन्होंने भूमिका सिर्फ घर तक सीमित समझी जाती सी। पर समय के नाल समाजिक जागरूकता वधी, सिक्ख्या का प्रसार होया, महिलावां ने अपने अधिकारां लई संघर्ष किया, नतीजे वजो अज औरतां हर खेतर विच अपनी योग्यता साबित कर रही हैं। वह विज्ञानी हैं, डॉक्टर हैं, अध्यापक हैं, न्यायाधीश हैं, उद्योगपति हैं, खिडारी हैं अते सैनिक भी हैं, अते कई देशों विच वह उच्चे अहुदिआं ते भी काम कर रही हैं। यह बदलाव साबित करता है कि योग्यता का कोई लिंग नहीं होंदा। साथी जदों किसी समाज में लिंग असमानता होंदी है तो इसका नुकसान सिर्फ औरतों नूं नहीं सगो पूरे समाज नूं होंदा है। जदों एक लड़की नूं सिक्ख्या तो वांझा रखा जाता है सिर्फ एक व्यक्ति तो नहीं सगो एक पूरे परिवार अते आने वाली पीढ़ियों का नुकसान होंदा है। जदों औरतों नूं अपनी योग्यता अनुसार मौके नहीं मिलते तो समाज एक वड्डी प्रतिभा तो वांझा रह जाता है। जदों मर्दां अते औरतों विच भेदभाव किया जाता है तो समाज में असंतुलन पैदा होता है। इसलिए लिंग समानता सिर्फ एक समाजिक मुद्दा नहीं सगो विकास अते न्याय का मुद्दा है। सत्य सिक्ख्या वो ताकत है जो समाज नू बदल सकती है। जो हर बच्चे नू चाहे वह लड़का होवे या लड़की बराबर सिक्ख्या मिलती है तो अपने सुपने नू साकार करन दे योग बनता है। एक पढ़ी लिखी लड़की अपने परिवार नू मजबूत बनाती है, अपने बच्चों नू वधिया सिक्ख्या देती है, आर्थिक तौर पर खुद मुख्तियार बनती है, समाज में सकारात्मक बदलाव ले आती है। इसलिए सिक्ख्या नू लिख समानता की सब तो मजबूत नहीं मनिया जाता है। लिख समानता की शुरुआत समाज तो नहीं सगो घर तो होती है। जे घर विच ही लड़कियां ते लड़कियां नाल वखरा व्यवहार किया जाए तो बच्चों की सोच भी उस तरह बनती है। कई बार असी अनजाने विच ही लड़कियां ते लड़कियां लई वख-वख उम्मीदां बनाते हैं। लड़कियां नू वधेरे आजादी दिती जांदी है, लड़कियों उत्ते वधेरे पाबंदियां लगाईआं जांदियां हन। ऐसी सोच नू बदलण दी लोड़ है। बच्चे नू इह सिखाउणा चाहीदा है कि हर मनुख सत्कार दा हकदार है। लिंग समानता ते बजुर्गां दा सत्कार इह दोवें मुद्दे एक दूजे नाल जुड़े होए हन। जिस परिवार विच हर मैंबर दा सत्कार किया जांदा है उत्थे बजुर्गां अते औरतां दोवां नू इज्जत मिलती है। जिथे भेदभाव घट हुंदा है उत्थे प्यार अते आपसी समझ वध हुंदी है। इस तरह समानता अते सत्कार मिलके एक सेहतमंद परिवार अते समाज की रचना करते हैं। साथियों अज के नौजवान कल के नेता, अध्यापक, विज्ञानी अते नीति निर्धारक हैं। जे नौजवान समानता नू अपनी सोच का हिस्सा बना लैन तो आने वाला समाज होर वधेरे न्यायपूर्ण अते प्रगतिशील होगा। नौजवानों नू भेदभाव का विरोध करना चाहिए है, हर व्यक्ति का सत्कार करना चाहिए है, समान मौकों का समर्थन करना चाहिए है, अपने आले दुआले सकारात्मक बदलाव लियाने की कोशिश करनी चाहिए है। असल बदलाव कानूनों नाल नहीं सगो सोच नाल आउंदा है। कहते हैं कि किसी पंछी लिए एक पक्ष नाल उड़ना संभव नहीं, उसी तरह कोई भी समाज औरतों ते मर्दों दोवें दे सांझे योगदान तो बिना तरक्की नहीं कर सकता। जदों हर व्यक्ति नू अपनी समर्था अनुसार अगे वधण दा मौका मिलता है तो पूरा समाज नवित हुंदा है। समानता सिर्फ एक अधिकार नहीं सगो तरक्की दा राह भी है। कल्पना करो कि एक ऐसे संसार दी जिथे किसी बच्चे दे सुपने उसके लिंग के आधार से सीमित न किए जाण, जिथे हर लड़की अपने सुपने नू खुले आसमान विच उड़ा सके, जिथे हर लड़का संवेदनशीलता, सत्कार अते समानता दे मुल्लां नाल वड्डा होवे, जिथे लोकां दी पछाण उन्हां दे चरित्र अते योग्यता नाल होवे ना कि उन्हां दे लिंग नाल। ऐसा समाज ही असल अर्थां विच आधुनिक अते विकसित कहाउण दे योग होवेगा। लिंग समानता एक न्यायपूर्ण, खुशहाल अते प्रगतिशील समाज की नींह है। जदों हर व्यक्ति नू बराबर मौके, सत्कार अते अधिकार मिलते हैं तदों समाज अपनी पूरी समर्था तक पहुँच सकता है। सानू अपने घरां, स्कूलां अते समाज विच ऐसा माहौल बनाउणा चाहिए है
ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਨਤਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਰਹੇ।

0: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
1: यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है, मीटर में 268.8 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। समीना ये चंद उर्दू गजलें सुनते हैं। आगाज में सुनते हैं जगजीत सिंह की आवाज़ में खूबसूरत गजल।

0: has arrived already. Is in Vigyan Bhavan and is in a separate hall where he's having a talk, a discussion with the beneficiaries who are going to be benefited today from this this Yojana, that is the Vikshit Bharat Rozgar Yojana by the Prime Minister. And then after that he'll be coming over here in, say, in a short while he'll be entering the plenary hall wherein the program will begin. And to say, tell you something about the atmosphere over here, it's really brightly lit atmosphere, and a lot of flowers are there in front of the dais, and you're having yellow, white and pink roses, and of course they're flanked by yellow and pink lilies and the anthurium. So you can see that all the people, the beneficiaries, they're numbering about about 600 people who are all seated over here, and they'll be getting the appointment letter for the jobs. And it's going to be a wonderful atmosphere over here, and it'll be a lifetime experience for them because they're getting these letters from the hand of the Prime Minister.
1: बिल्कुल एंड्रयू, और आज भारत के माननीय प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे डिजिटली, रिमोट का बटन प्रेस करके, और सबके खातों में चली जाएगी. बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ना.
0: And we got appointment letters, Preeti, when we got a job. And now you see, everything is digital. So India's also gone ahead with the world because everything is digitized now. And today, in fact, around 15 lakh beneficiaries will be getting their job, their letters today, employment letters. And that is going to cost about 2,400 crores only for today. And then, of course, and the final aim, the final total, that is going to be about 3.5 plus crore jobs. And the total budget is for this is about 99,446 crores.
1: बिल्कुल. और मंच की बात करें तो मंच पर भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ होंगे श्रम एवं रोजगार तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, और साथ में होंगे श्रम एवं रोजगार तथा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे, और साथ उनको जो स्कॉट करके लाएंगे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव वंदना गुरनानी, और साथ में दो युवा लाभार्थी भी साथ में होंगे माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ जब वो मंच पर आएंगे.
0: या दिस टू बेनिफिशियरीज आर गोइंग टू ब्रिंग द प्राइम मिनिस्टर टू द डेस. व्हाट अ प्रिविलेज फॉर देम. आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस फॉर देम. एंड आई जस्ट वांट टू टेल यू द मोटो फॉर दिस इज रोजगार या कारोबार साथ है भारत सरकार. व्हाट अ एनकरेजमेंट टू द पीपल हु आर गोइंग टू स्टार्ट द बिजनेस. एंड देन द transformation journey is from auto settlement of advance claims up to rupees 5 lakhs. So people who have got debts and all, that will be waived off. Then centralized pension payment scheme, which is CPPS. And then digital life certificate through Umang app. And face authentication technology, FAT, through forgetting the number. And 99.68% of UANs have been generated, which is a universal account number.
1: आज के कार्यक्रम पर अगर एक नजर डालें तो फिलहाल युवा लाभार्थियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी की बातचीत हो रही है, और उसके बाद डायस पर आने के बाद हम ये जो विधिवत एक स्वागत होता है वो श्रम एवं रोजगार केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा किया जाएगा. तत्पश्चात एक लघु फिल्म प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर दिखाई जाएगी, और उसके बाद जो आज का बिल्कुल महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, रिमोट का बटन प्रेस करके राशि हस्तांतरित की जाएगी लाभार्थियों के खाते में. और हाँ बोलो. इस योजना के अगर प्रमुख आंकड़ों की बात करें, उस पर एक नजर डालें, तो योजना की शुरुआत 1 अगस्त 2025 से हुई, और अब तक देश भर में 15 लाख नए रोजगार अवसर सृजित हो चुके हैं, पहले ही हो चुके. और योजना का कुल बजट 99,446 करोड़ रुपए है, और आगामी दो वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों का लक्ष्य है. तो देखिए कितने लोगों को नौकरियां मिलेंगी, कितने युवा उससे लाभान्वित हो. और शुरुआत से अब तक का सफर देखें तो करीब 15 लाख रोजगार अवसरों का सृजन हुआ है, और योजना का मुख्य उद्देश्य है कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करना. और आज के विशेष दिन भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी योजना के लाभार्थियों को संबोधित भी करेंगे. ये एक एनकरेजमेंट होता है, और कुछ बेहतर करने की एक

0: जो ललक होती है वो
1: yeah, people will feel secure, okay, the government is there to help us out. So we should not feel that, okay, I'm not going to achieve anything. But let the, this our Prime Minister is given them an assurance that the government is there with you. That is what he says in this motto, no? रोजगार या कारोबार साथ है
0: भारत सरकार जी और चंद मुख्य बातों पर नजर डालें तो यहाँ जरूर बताना चाहेंगे भारत के माननीय प्रधानमंत्री आज विकसित भारत योजना के तहत लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे और पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपए तक का प्रोत्साहन मिलेगा और सतत रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए नियोक्ता प्रति अतिरिक्त कर्मचारी प्रतिमाह 3,000 रुपए तक के प्रोत्साहन के पात्र होंगे और इसके अलावा ये भी बताना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना सृजन रोजगार के औपचारिकरण और सामाजिक सुरक्षा कवरेज के विस्तार को सुगम बनाने के लिए बनाई गई है आसानी से सब पहुंच सके और इस प्रोत्साहन ने देश भर में लगभग 15 लाख लाभार्थियों को रोजगार सुलभ करवा दिया है जी
1: Yeah, and you know, this program operates under a dual incentive structure, split into two distinctive parts. The first part is support for the first-time employees, jinko pehli baar naukri mili
0: hai.
1: This component focuses directly on the young individuals entering the formal workforce for the first time. And the eligibility is new employees joining an EPFO, that is the Employees Provident Fund Organization, registered establishment, with a monthly gross salary of up to rupees 1 lakh. And the worker must not have any prior EPFO history before August 1st, 2025. So these are the conditions. And then the financial benefit is a direct incentive equivalent to 1 month of EPF wage, capped to a maximum of rupees 15,000. Right? And then the disbursement will be in two stages. That is through the direct benefit transfer, DBT, through the Aadhaar verification in two equal installments using Aadhaar verification. First installment after 6 months of continuous duty of 7,500 rupees. And the second one after another 6 months. So after the completion of 12 months, they'll be getting a total of 15,000 rupees. And the employer also, of course, he also gains something. Every time he brings in a new worker, he also gets a benefit of 3,000 rupees per worker that he brings in. So obviously, when these benefits are there, even the employers, they'll try to bring in as many people as possible, and even the so that more and more people get employment, and they also, the employer also earns, the employees also earn.
0: बिल्कुल सभी को फायदा है बिल्कुल फायदा है और आर्थिक विकास में विनिर्माण क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए इस क्षेत्र में नियोक्ताओं को 4 वर्ष तक प्रोत्साहन का लाभ मिलेगा और वहीं सभी क्षेत्रों के नियोक्ता 2 वर्षों तक इस योजना के तहत प्रोत्साहन प्राप्त कर सकते हैं और ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करेगी और देश की आर्थिक प्रगति को युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण औपचारिक रोजगार के अवसरों में बदलने में मदद भी करेगी और साथ ही साथ ये योजना श्रमिकों और नियोक्ताओं दोनों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है
1: See, and then one more thing. See, the Minister of Employment and Labour organizes and promotes Rozgar Melas, that is job fairs, which is being held today across India through the National Career Service portal, that is the National Career Service India, to bridge the gap between the job seekers and the employers. And the National Career Service, NCS, is the official platform where you can search for local job fairs. It is, you go to the portal and you'll get, and then register as a job seeker and connect with the employers. So if they find that you are reasonable, you are well qualified for their jobs, you'll be picked up.
0: और जैसे कि एंड्रयू ने जिक्र ही किया था आज का कैप्शन है रोजगार या कारोबार साथ है भारत सरकार प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना और कुछ एक पलों में लाभार्थियों के खातों में पैसा पहुंच जाएगा बिल्कुल डिजिटली पहुंच जाएगा कहते हैं ना कि अच्छा आएगा देखेंगे ऐसा कुछ नहीं है बस रिमोट का बटन प्रेस करेंगे और सभी के खातों में मैसेज आ जाता है मोबाइल पर कि हाँ आपके पास पहुंच गए हैं तो ये बहुत भावुक क्षण भी होते हैं नहीं
1: That's true.
0: आपको टच भी करते

0: जा जाता है मोबाइल पर कि हाँ आपके पास पहुंच गए हैं, तो ये बहुत भावुक क्षण भी होते हैं, नहीं? आपको टच भी करते हैं दिल में कहीं, और प्लेटफॉर्म तो मिलता ही है कुछ करने का, कुछ बेहतर करने का. इसके अलावा नारी शक्ति पर भी थोड़ी सी बात करना चाहूंगी. 4 श्रम संहिताएं लागू, महिला कर्मचारियों के लिए लाभ, नारी शक्ति, समान कार्य के लिए समान वेतन, सहमति के साथ नाइट शिफ्ट में कार्य की अनुमति, वर्क फ्रॉम होम का प्रावधान, और भूमिगत खनन एवं भारी मशीनरी सहित सभी प्रकार के कार्यों में रोजगार की अनुमति. विकसित भारत का संकल्प साकार हो रहा है, ऐसा कह सकते हैं ना?
1: That's true. And that's what we say, you know, dreams are being fulfilled under the prime ministership of Mr. Narendra Modi. And in fact, this applicable period for this one, the one which is taking place right now, is from the 1st of August 2025, it started last year, till the 31st of July 2027. So this is for a period of 2 years. But in manufacturing sectors, the heavy industries, where it is, means it is extendable up to a period of 4 years. Its benefits are applicable up to a period of 4 years.
0: 4 साल.
1: Yeah. And then we have this growing with India's workforce, the EPFO, that is the Employers Provident Fund Organization, which is a strength of 7.99 crore members. And then 84 lakh pensioners who are being benefited by this EPFO.
0: बहुत ही ध्यान से मैं देख पा रही हूँ कि विज्ञान भवन में सभी युवा और अतिथिगण जितने भी हैं अपना स्थान ग्रहण करके और बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, और मंच बहुत खूबसूरत फूलों से सुसज्जित है, बहुत खूबसूरत लग रहा है, रंग बिरंगे पुष्प खुशबू भी बिखेर रहे हैं, और साथ में इस खुशबू के साथ एक अलग सी हवा है ये.
1: बिल्कुल, to the plenary hall, because very soon I'm sure the Prime Minister will be coming in, walking in with the other dignitaries, and he'll take his seat over here on the dais.
0: और आकाशवाणी के माध्यम से आंखों देखा हाल आप तक पहुंच रहा है. और इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा और बताना चाहूं तो ये जरूर कहना चाहूंगी कि ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि भारत की आर्थिक प्रगति के लाभ उसके युवाओं के लिए गुणवत्ता रोजगार के अवसरों में परिवर्तित हो.
1: यस, एंड आवर प्राइम मिनिस्टर हैज ऑलवेज पुट लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन द यूथ, यू नो, द यूथ ऑफ दिस कंट्री, बिकॉज दे आर द फ्यूचर पिलर्स, दे आर द वंस हु आर गोइंग टू होल्ड दिस नेशन. सो ही इज पुटिंग लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन देम, एंड ही सीज दैट ऑल आर एम्प्लॉयड, ऑल गेट एम्प्लॉयमेंट, नन ऑफ देम आर लेफ्ट विदाउट अ जॉब, बिकॉज यू नो हाउ मच फ्रस्ट्रेशन इट लीड्स टू व्हेन अ पर्सन डजंट हैव अ जॉब. सो दैट्स व्हाई द प्राइम मिनिस्टर इज वर्किंग ऑन दिस एंड इज ब्रिंगिंग आउट दीज स्कीम्स. एंड देन I think the Prime Minister is about to arrive in the plenary hall. People are anxiously waiting. Silence is being maintained. And the announcement is going on that, well, the Prime Minister is about to arrive. He's on his way. And I want to tell you one more thing. ESIC's growing network of protection and care. This is Social Security for All, which is 3.24 crore plus insured persons enrolled, 14.91 crore plus beneficiaries, which is covering 728 districts. So this is social security for all.
0: और अभी सभी जुड़े भी हुए हैं, लाइव जुड़े हुए हैं सभी यहाँ. ये महत्वपूर्ण बात है कि सिर्फ दिल्ली नहीं, पूरा भारत हमारे साथ.
1: Yes. Because this is applicable to 728 districts right now. And already 15 lakh people have already got the employment letter, the job letters, and the total incentive which is going to go to them is 2400 crores.
0: और थोड़ा सा सार देखें एंड्रयू तो जरूर बताना चाहेंगे. योजना के अनुसार 1500 रुपए की राशि 2 किस्तों में मिलेगी, और ये पैसा उन कर्मचारियों को मिलेगा जिनका पहली बार प्रोविडेंट फंड नंबर जनरेट हुआ है.
1: yes.
0: ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है. और सैलरी 1 लाख रुपए महीने से ज्यादा ना हो, कम होनी चाहिए. yes. तब ये मिलता है. और अगर कर्मचारी की सैलरी 10,000 तक है तो कंपनी को 1,000 रुपए प्रति कर्मचारी मिलेगा, और अगर कर्मचारी की सैलरी 10,000 से 20,000 तक है तो कंपनी को 2,000 रुपए हर महीने मिलेंगे, और 20,000 से 1 लाख तक है तो सैलरी तो कंपनी को 3,000 रुपए प्रति कर्मचारी मिलेंगे. इसका आपने जिक्र भी किया था.
1: एंड यू नो दिस की ऑब्जेक्टिव्स हैज बीन टू जनरेट मोर देन 3.5 करोड़ जॉब्स अक्रॉस इंडिया, प्रमोट फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल सिक्योरिटी कवरेज, सपोर्ट फर्स्ट टाइम जॉब सीकर्स That is what it says, no?

0: The scheme aims to make it easier for young people to enter formal employment while encouraging businesses to hire more workers and expand India's organized workforce. And then support first-time job seekers and then incentivize employers, especially in the manufacturing sector, to create new jobs. See, only when the employees also get an incentive, when they are paid something for every time they give a, taken a new person, a new job seeker, they also given an incentive which accounts to 3,000 rupees. So why not? They'll definitely try to employ more and more people so that their work also expands, the workforce also expands, and of course it is always on the for the development of the country.
1: Okay. ESIC का बढ़ता सुरक्षा एवं स्वास्थ्य नेटवर्क 3.24 करोड़ प्लस बीमित व्यक्ति पंजीकृत और 14.91 करोड़ प्लस लाभार्थियों तक पहुंच और 728 जिलों में सेवाएं उपलब्ध और सभी के लिए जो महत्वपूर्ण है वो है सामाजिक सुरक्षा.
0: yes,
1: ये बहुत
0: yes.
1: जरूरी है. प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना बहुत ही ऐसी योजना जिससे सभी को
0: Our Prime Minister is a man with dreams. He wants to take India to great heights and he has achieved it almost. He's taken India to great heights and right now and of course internationally, the world, India has got recognition as a mediator among warring countries because people have so much of confidence on our Prime Minister that they contact him for problems to be solved.
1: चार श्रम संहिताएं लागू. मजदूरी संहिता 2019, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, औद्योगिक संबंध संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य एवं कार्यदशा संहिता 2020. 29 श्रम कानूनों का एकीकरण, सरल प्रक्रियाएं एवं एक समान परिभाषाएं और अनुपालन का दबाव कम, पारदर्शी, कुशल और डिजिटल प्रणाली और फिर कुल मिला के कहें तो प्रधानमंत्री विकसित रोजगार योजना. जी.
0: And I'm really eager to see our Prime Minister come and press that button, you know, the money will go to 15 lakh people into their accounts and they'll be getting their letters and it's going to be a wonderful experience. Preeti, in fact, I've never seen something like this, you know, just at the press of a button, 15 lakh people, beneficiaries, get the employment letter. India has also gone ahead with the world. When we have advanced, they have gone digital and we have gone digital. So, we are going digital in every field. So, we should be proud of our country and the people are anxiously waiting over here. There are about 700 people, I think, or almost 700 people are seated over here, right up to the top.
1: जितनी कैपेसिटी है पूरी भरी हुई है.
0: इट्स फुल, नॉट अ सिंगल सीट इज एम्प्टी. पीपल आर दे ऑल, सी दे आर ऑल जॉब सीकर्स एंड मोस्ट ऑफ दीस पीपल दे विल बी गेटिंग द जॉब्स. दे आर ऑल कीपिंग देयर फोन्स रेडी ऑन द टेबल. सो एज सून एज द प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर प्रेसेस द बटन, इट विल कम टू देयर फोन दैट दे हैव गॉट देयर लेटर.
1: An amount will be transferred.
0: Yeah.
1: और कैमरामैन बिल्कुल तैयार इन ऐतिहासिक क्षणों को कैमरे में कैद करने के लिए. और आज का दिन भी ऐतिहासिक दिन कह सकते हो, नहीं? आज का दिन भी ऐतिहासिक दिन है और माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों से देश के लाखों युवाओं के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से करीब 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि सीधे हस्तांतरित होगी और रिमोट बटन प्रेस करके. और देश में रोजगार के नए मौके बढ़ाने और युवाओं को अच्छी नौकरियों से जोड़ना मुख्य उद्देश्य है, ये कह सकते हैं.
0: एंड सी द सपोर्ट फॉर एम्प्लॉयर्स, यू नो, दिस इज द एलिजिबिलिटी इज एस्टैब्लिशमेंट्स रजिस्टर्ड विद द ईपीएफओ दैट सक्सेसफुली जनरेट नेट न्यू एम्प्लॉयमेंट टू क्वालिफाई स्मॉलर फर्म्स फ्यूअर देन 50 बेसलाइन वर्कर्स मस्ट hire at least 2 new employees, while larger firms, 50 or more baseline workers, must add at least 5 new employees. And the financial benefit is that the government pays companies up to rupees 3,000 per month for each additional new hire whose salary is within the 1 lakh rupees threshold, provided they are retained for at least 6 months. And the duration of the incentives are covered for 2 years across all sectors. However, to heavily support the manufacturing sector, businesses operating in manufacturing receive extended incentives lasting up to 4 years. And then the payout channel is, the payouts are routed straight into the employer's verified PAN.

0: Linked company bank account. That is very important. See, every account has to be linked with a PAN number. Yeah. And then registration processes, eligible entities can participate through designated digital channels. For employers, companies must visit the official Prime Minister Viksit Bharat Rozgar Yojana portal to finish a quick one-time institutional registration. And then for the employees, the first-time workers need to register and generate a universal account number UAN utilizing the face authentication technology built directly into the Umang app.
1: ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि भारत की आर्थिक प्रगति के लाभ और उनके युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण औपचारिक रोजगार के अवसरों में परिवर्तित हो जाए और ये बहुत महत्वपूर्ण है जी. इसीलिए तो हम कह रहे हैं ना कि रोजगार या कारोबार साथ है भारत सरकार जी. और फिलहाल भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लाभार्थियों से बातचीत कर रहे हैं और कुछ एक पलों में मंच पर होंगे और उनके साथ आएंगे श्रम एवं रोजगार केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडवीय और श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे और उनके साथ उनको स्कॉर्ट करेंगी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव वंदना गुन्नानी और साथ में दो युवा लाभार्थी भी होंगे.
0: एंड सी द ब्यूटी इज दैट द पर्सन विल बी गिविंग द बुके इज वन ऑफ द यंग बेनिफिशियरीज एंड ही विल बी सो हैप्पी इन हिज हार्ट that I'm getting a job and our Prime Minister has given this job to me. So and I'm telling you, it's really going to change the lives of these people, all these beneficiaries who are sitting over here in the plenary hall of Vikyan Bhavan, and they'll be dreaming, you know. I'm sure I'm going to come up and I think they're all looking towards the door. I'm sure the Prime Minister is about to arrive, and once he arrives, then the other deliberations will take place. The Union Minister, he'll give the welcome address. And then the Prime Minister will be, there'll be a filming of the short film that will be filmed on the screen. And then after that, he'll be clicking on the button, the magic button.
1: Magic button.
0: Yeah, that's the magic button, which will give jobs to about 15 lakh people across the country. And then, of course, the Prime Minister will give his speech. And I'm sure people are waiting for him to give his speech because his speech has always been very inspiring. The young people, you know, it has been a real inspiration for them. You know, he's been an inspiration to the country. And so many followers of Prime Minister, they all know that really whatever he does, it's something, you know, means he wants to build India into one of the superpowers in the world, bring the rank of our country to the top. And his dreams, you know, of making India a strong economic power, and is on the way, is on that route right now.
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का उद्देश्य श्रमिकों और नियोक्ताओं दोनों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है और ये इस योजना के तहत पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपए तक का प्रोत्साहन दिया जाएगा और जिससे उन्हें कार्यबल में शामिल होने में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी और ये बहुत जरूरी भी होता है. अतिरिक्त रोजगार सृजित करने वाले नियोक्ताओं को प्रति अतिरिक्त कर्मचारी प्रतिमाह 3,000 रुपए का प्रोत्साहन मिलता है और इससे सतत रोजगार सृजन को प्रोत्साहित किया जाता है और प्रोत्साहन भी मिलता है और आर्थिक विकास को गति देने में विनिर्माण के कार्यनीतिक महत्व को देखते हुए विनिर्माण क्षेत्र के नियोक्ताएं 4 वर्षों की अवधि के लिए प्रोत्साहन प्राप्त करने के पात्र हैं जबकि अन्य सभी सेक्टरों के नियोक्ता 2 वर्ष के लिए प्रोत्साहन का लाभ उठा सकते हैं.
0: And see the dais, how many bouquets are there? The Prime Minister will be sitting right in the middle. On the right, he'll be flanked by the Union Minister and on the left by the Minister of State. And the board behind, you know, it's a beautiful one. There's a screen on the at the on the plenary hall and the dais, just behind the dais, there's a beautiful board. And on that, the Prime Minister, the Rozgar Yojana, everything is given, all the details are given on that.
1: आर्थिक विकास में अगर हम बात करें तो ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर रही है और देश की आर्थिक प्रगति को युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण औपचारिक रोजगार के अवसरों में बदलने में मदद भी कर

0: They have always, the labor and employment, they have always carried out these Rozgar Melas, you know, even in the past. So through that, they have generated so much of employment for people who have not had any jobs. And though they get a meager amount, some may get very meager amount, some get a good job, but it helps them. At least they don't starve. They get two meals a day. They're able to earn enough to get two meals a day. So that is the main aim of our Prime Minister, to see that everyone is comfortable, everyone has a job, everyone earns.
1: जब हम परीक्षा देखकर पास करते हैं, हमारा रिजल्ट आता है, एंड्रू तो सबसे पहले मन में एक ही भाव आता है ना कि अच्छा अब हमें नौकरी कहाँ मिलेगी. और जब आपकी नौकरियां बिल्कुल आपके सामने ही होती है, तो फिर समझ लीजिए कि आपकी जिंदगी बहुत ही बेहतर हो गई, कोई समस्या ही नहीं है अब आपके पास, और वो भी इतनी आसानी से आपको सब कुछ मिल गया. नहीं
0: yes.
1: तो अब यहाँ पर एक बार पुनः बताना चाहूंगी, रोजगार या कारोबार साथ है भारत सरकार.
0: So in fact the person right in front of us, you know, there are deaf and dumb people also over here, and there's one person
1: translate
0: kiya, yeah, he's translating through action. It's really interesting to see him, you know, the way he's doing the music, everything, and is and when the words, you know, when the words come, he's translating it through his actions, you know. And it's really very interesting, you know. And just see the people over here. You can see the people, they're all seated, waiting anxiously for the letters to come on their mobile. In fact, most of them have got it, but still, it will be confirmed after the Prime Minister presses the button, the magic button today.
1: Hmm.
0: Yeah.
1: उसके बाद हस्तांतरित किया जाएगा.
0: yes.
1: जब रिमोट का बटन प्रेस होगा तो राशि हस्तांतरित हो जाएगी. बस इंतजार तो कुछ ही पलों का है, ज्यादा नहीं. और युवा लाभार्थियों से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बातचीत चल रही है, और उनके लिए ये बहुत ही अनोखे क्षण है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है, और इन ऐतिहासिक क्षणों को वो समेट कर रखेंगे हमेशा. और ऐसे लगता है ना कि ये क्षण बस रुक जाए और बातचीत चलती रहे, बातचीत खत्म ना हो. नहीं,
0: yeah, I think everything has stopped, they are all in attention, and I think the Prime Minister is arriving with the other dignitaries. He'll be taking his seat on the dais, and once he comes in, the program will begin. He'll be felicitated with a bouquet by one of the beneficiaries. That will be a privilege for the beneficiary, you know, the student, young student, who will be coming and giving the bouquet to the Prime Minister. And the Prime Minister, I think, has arrived, he has entered, and is walking in the most smartest way, our Prime Minister.
2: Duniya ke sabse lokpriya neta, mananiya Pradhan Mantri, Shri Narendra Modi ji ka.
3: Ek baar zor taaliyan
2: ho jaye. देवियों और सज्जनों, तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए.
3: और उनके साथ इस अवसर की शोभा और बढ़ा रहे हैं, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे श्रम एवं रोजगार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के माननीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार की माननीय राज्य मंत्री सुश्री शोभा करांदला जी का.
2: आप सभी से सादर अनुरोध है कि कृपया अपने स्थान ग्रहण करें.
3: मैं मन्नत भाटिया
2: और मैं जयवर्धन गोयल,
3: माय भारत वॉलंटियर्स, आप सभी का सादर स्वागत एवं अभिनंदन.
0: The Prime Minister has arrived. He's taken his seat on the dais.
3: माननीय प्रधानमंत्री जी, हम आपको सविनय सूचित करना चाहते हैं कि आज
0: flanked by the Union Minister on his right and by the Minister of State to his left.
1: और सभी ने खड़े होकर उनका स्वागत किया, और अब सब ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया.
2: अनुरोध करेंगे हमारे प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के बेनिफिशियरी सुश्री शिखामणि डेका जी से कि वे पुष्प देकर मंच पर विराजमान हमारे प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें. एक बार जोरदार तालियां.
1: पुष्प से स्वागत किया माननीय प्रधानमंत्री जी का एक युवा लाभार्थी ने.
2: यह सम्मान का माध्यम है, यह आत्मविश्वास का आधार है, और यह विकसित भारत के निर्माण की सबसे मजबूत नींवों में से एक है. यही प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का विजन है. यही रोजगार राष्ट्रीय समा

0: गम का संदेश है।
1: अब हम अनुरोध करते हैं माननीय श्रम एवं रोजगार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री भारत सरकार डॉक्टर मनसुख मांडविया जी से कि वो अपना स्वागत संबोधन दे।
0: जोरदार तालियां हो जाएं।
2: श्री मनसुख मांडविया, द मिनिस्टर फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ही वॉक्स टू द पोडियम टू गिव अ स्पीच।
3: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि वितरण करने के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मेरी सहयोगी मंत्री आदरणीय शोभा करंदलाजे जी, वीडियो कॉन्फ्रेंस से विभिन्न राज्यों से जुड़े आदरणीय राज्यपाल महोदय, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, केंद्रीय मंत्रीगण, राज्य के श्रम मंत्रीगण और सभी लाभार्थी भाइयों एवं बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व में देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है और नया भारत का निर्माण हो रहा है। नया भारत के निर्माण में आपकी विचार ने सोच भी बदली है और नए आयामों को भी आगे बढ़ाया है। और इसलिए एक समय था जो लेबर की बात करते थे, प्रो लेबर थे, उसको इंडस्ट्रीज के खिलाफ माना जाता था, और जो इंडस्ट्रीज की बात करते थे उसको लेबर के खिलाफ माना जाता था। लेकिन आपकी सोच ने ये चरित्र को बदल दिया है। आज एम्प्लॉयर और वर्कर दोनों को नेशनल बिल्डर के रूप में आपने परिभाषित करा है और दोनों गौरव महसूस कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने दिल्ली के लाल किले के प्राचीर से वेल्थ क्रिएटर को सम्मान करने की बात कही थी। उनके साथ आपने श्रमिक कल्याण के लिए और वर्कर के हितों को सुरक्षित करने के लिए 4 महत्वपूर्ण लेबर कोड भी लागू करा। पिछले ही वीक में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्फ्रेंस चल रही थी, दुनिया के 40 देशों ने भारत के लेबर कोड के प्रेजेंटेशन को देखा और उसको सराहा। वो बताते हैं कि आपने जो लेबर कोड बनाया है वो हमारे देश के श्रमिक के हित में है और देश के श्रमिक के कल्याण को पूरा करता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके लेबर कोड आपके द्वारा अपॉइंटमेंट लेटर की गारंटी है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके द्वारा लागू करे गए लेबर कोड महिला और पुरुष दोनों को समान काम के लिए समान वेतन की गारंटी देता है। देश में 40 करोड़ से अधिक श्रमिकों को सोशल सिक्योरिटी की आपने गारंटी दी है। महिला वर्कर्स के हित के लिए एस्टेब्लिशमेंट में क्रेज की भी आपने गारंटी दी है। फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयर को 1 साल बाद ही ग्रेजुएटी मिले उसकी भी आपने गारंटी दी है। जो पहले कोई वर्कर्स काम करते थे और 5 साल वो कंटिन्यूस काम करते थे तो ही ग्रेजुएटी का प्रावधान था, 40 साल से के अधिक उम्र वाले सभी हमारे एम्प्लॉइज को वर्ष में 1 बार हेल्थ चेकअप करने की भी आपने गारंटी दी है। 12 साल में आपने डेवलपमेंट तो किया, उसके साथ भी आपने रोजगार निर्माण करने के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाए। सामान्यतः रोबस्ट इकोनॉमी का ये नियम है, कोई भी देश की इकोनॉमी 1% ग्रो करती है तो उनके साथ 1% एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होना वो आदर्श शासन व्यवस्था मानी जाती है। माननीय प्रधानमंत्री जी, 2014 के पहले ऐसी स्थिति थी, 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ सामने 0.08% एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता था, लेकिन आपके कार्यकाल में 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 1.11 यानी कि 1.11% एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। केवल ये फिगर नहीं है, उसके साथ जो एलाइन करते हैं हमारे देश की रिजर्व बैंक, जो रिजर्व बैंक आज़ादी के पहले बनी है और 1980 से रिजर्व बैंक देश में कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेबर फोर्स की डिमांड, एनर्जी कंजप्शन, मटेरियल और सर्विस सेक्टर में जो गतिविधि हो रही है उसके डेटा को एनालिसिस करती है।

0: है और उनके आधार पर क्लेम डेटा डिक्लेयर करती है। एक क्लेम डेटा एनालिसिस होता है 1980 से, और यही डेटा का जब हम विश्लेषण करें तो 2004 से 2014 एक दशक में केवल देश में 2.9 करोड़ 9 लाख जॉब क्रिएट हुए थे। और रिजर्व बैंक ने कहा कि 2014 से 2024 एक दशक में, माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने देश के युवाओं के लिए 17 करोड़ जॉब निर्माण करके देश के युवाओं को हाथ में काम दिया है। और उसका नतीजा है कि प्रधानमंत्री जी, 2014 के पहले अनएम्प्लॉयमेंट रेट देश में 6% था, लेकिन यही आपका प्रयासों से आज अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.1% है, जो ग्लोबल एवरेज 4.8% है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने जॉब भी निर्माण करा, आपने इंडस्ट्रीज को भी आगे बढ़ाया, और उनके साथ आपने सोशल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करी। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने कहा भारत में 2014 के पहले 19% लोगों को सोशल सिक्योरिटी मिलती थी, यानी कि 25 करोड़ लोग सोशल सिक्योरिटी के कवरेज में थे। आज आपके प्रयासों से 12 साल के बाद देश में 64.3% यानी कि 94 करोड़ लोग सोशल सिक्योरिटी कवरेज में ऑलरेडी आए हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी दूरंदेशी दृष्टि से आपने देश के युवाओं के हाथ में रोजगार आए। मेरे देश के कोई युवा प्रतिवर्ष 1 से 1.5 करोड़ युवा वर्कफोर्स में आते हैं जिसको जॉब चाहिए, और आप तो पहले से उसकी तैयारी करते हैं। आपने जब तीसरी बार भारत में सरकार बनाई और 2025 के बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी आपने देश के युवाओं के रोजगार के लिए भी सुनिश्चितता करी, और बजट में ही आपने प्रधानमंत्री पैकेज फॉर स्किलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट अनाउंस करा। ये पैकेज क्या था? 2 लाख करोड़ का ये पैकेज 5 साल में 4 करोड़ जॉब निर्माण के लिए आपने निश्चय करा। उसका ही नतीजा है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। ये प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 1 लाख करोड़ रुपया का आउटलेट है, जो 2014 के पहले की 20 साल की सरकार का लेबर मिनिस्ट्री का बजट का हिसाब करें तो भी 1 लाख करोड़ नहीं हो रहा है। मेरे देश के युवाओं के लिए, उसकी रोजगार की बढ़ोतरी के लिए प्रधानमंत्री जी आपने 1 लाख करोड़ रुपया का अनाउंसमेंट करके 3.5 करोड़ जॉब यही योजना से आपने सुनिश्चित करने के लिए कार्य योजना बनाई है। उसका फलस्वरूप आज देश के 15 लाख एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज दोनों को प्रोत्साहित करने के लिए आप 2400 करोड़ रुपया सभी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज के अकाउंट में आज सुनिश्चित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस कार्यक्रम में आप उपस्थित रहे, हम सबका हौसला बढ़ाया, आपका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं।
1: श्रम एवं रोजगार केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, सभी अतिथियों का विधिवत स्वागत किया आपने। और अब एक लघु फिल्म दिखाई जाएगी प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर, कुछ एक पलों में, है ना?
2: स्क्रीनिंग ऑफ अ शॉर्ट फिल्म ऑन द प्राइम मिनिस्टर विकसित भारत रोजगार योजना।
3: देवियों और सज्जनों, अब हम आपको प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर आधारित एक विशेष फिल्म दिखाने जा रहे हैं, जो शब्दों को चेहरों में, जिंदगियों में और सच में बयां करती है।
4: भारत अपनी समृद्ध युवा शक्ति के साथ विश्व के सबसे अधिक युवा देशों में से एक है। तेजी से बढ़ते मैन्युफैक्चरिंग, एमएसएमई या सर्विस सेक्टर हो, या फिर बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते युवा धुरंधर, हमारे सामूहिक प्रयास भारत को ग्लोबल स्टेज पर नित नई ऊंचाई दे रहे हैं। इस रफ्तार को बनाए रखने के लिए औपचारिक कार्यबल को कौशल विकास के साथ मजबूत करना और उद्योगों को अधिक भर्ती के लिए प्रोत्साहित करना विकसित भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इसी उद्देश्य से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त

0: अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की घोषणा की।
1: आज 15 अगस्त है, आज 15 अगस्त के ही दिन मेरे देश के युवाओं के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए की योजना हम लागू कर रहे हैं। आज से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना लागू हो रही है।
0: इस योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन 31 जुलाई 2027 तक खुला रहेगा। इसका उद्देश्य 3,50,00,000 से अधिक रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। योजना में पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 1 महीने के वेतन के बराबर 15,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि 2 किस्तों में दी जाती है। इसके लिए कम से कम 6 महीने लगातार रोजगार में बने रहना होगा। 1,00,000 रुपए तक वेतन वाले कर्मचारी ही इस योजना के पात्र होंगे। इसके साथ ही सरकार रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए नियोक्ता को भी प्रोत्साहित कर रही है। अब यदि कोई नियोक्ता नया रोजगार सृजित करता है तो उसे 1,00,000 तक की मासिक सैलरी वाले हर नए कर्मचारी के लिए 2 साल तक हर महीने 3,000 रुपए तक का प्रोत्साहन मिलेगा। विनिर्माण क्षेत्र के नियोक्ता को ये राशि 4 साल तक मिलेगी और इसका लाभ लेने हेतु नियोक्ता को ईपीएफओ में रजिस्टर्ड होना तथा कर्मचारियों को भी ईपीएफ सदस्य बनाना अनिवार्य है। इससे कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा।
2: हमारे व्यवसाय के विस्तार के लिए नई प्रतिभाओं को जोड़ना आवश्यक था। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना ने अतिरिक्त रोजगार सृजन को प्रोत्साहन दिया जिससे हम अधिक युवाओं को अवसर दे सके। इससे हमारे व्यवसाय की उत्पादकता भी बढ़ी और रोजगार के नए अवसर भी बढ़े।
3: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत मिले लाभ और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम ने मुझे पैसे को बेहतर प्रबंध करना सिखाया। आज मैं अपने करियर को लेकर पहले से कहीं अधिक आश्वस्त हूँ।
0: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लाभार्थियों को 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया जाएगा। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना सिर्फ इंसेंटिव देने की योजना नहीं है, ये योजना है ज्यादा से ज्यादा युवाओं को नए अवसरों से जोड़ने की, युवाओं की रोजगार क्षमता और वित्तीय समझ बढ़ाने की। आज ये योजना रोजगार सृजन, आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता का अभियान बन चुकी है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, रोजगार या कारोबार, साथ है भारत सरकार।
4: That was a screening of a short film on the Prime Minister Viksit Bharat Rozgar Yojana, and that was a short film. And now, very shortly, the Prime Minister will be distributing the Prime Minister Viksit Bharat Rozgar Yojana benefits to the beneficiaries. And the people are waiting anxiously, and the button is coming right in front. That is a remote control button. And the Prime Minister will be pressing the button. As soon as he presses it, well, about 15 lakh people all over the country will be getting their appointment letters, and they'll be getting the money. And the Prime Minister presses the button, and you can see the people cheering.
5: तालियों से स्वागत किया सबने इस बेहतरीन क्षण का, और भारत के माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों से देश के लाखों युवाओं के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से करीब 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि सीधे हस्तांतरित हो गई।
6: धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि डिस्पर्स करने के लिए। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की इंसेंटिव की इस इकाई से 15,00,000 लाभार्थियों को रोजगार मिला है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए।
4: What a time, what a moment. The Prime Minister just pressed the button and all the beneficiaries, they've got the benefits.
6: कृपया अपने अमूल्य विचारों से हम सबका मार्गदर्शन। जोरदार तालियों की गूंज के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करें।
7: भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी।
6: तालियों की कड़कड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए।
7: डाइस पर
1: मंत्रिमंडल के मेरे साथी श्री मनसुख मांडविया जी, बहन शोभा जी, देश के विभिन्न हिस्सों के अलग अलग कार्यक्रमों में

जुड़े, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए सभी महानुभाव, और जैसा अभी मंच संचालक बता रहे थे कि 200 स्थान पे करीब 2 लाख लोग अभी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उन सबका भी दूर से ही सही लेकिन दिल से आप सबको मेरी शुभकामनाएं देता हूं। उद्योग जगत से भी जुड़े हुए बहुत सारे महानुभाव मैं आज देख रहा हूं यहां पर, और युवा साथियों का उत्साह तो ध्यान में आता ही आता है, इतनी बड़ी तादाद में आज यहां इस कार्यक्रम से जुड़ी युवा साथियों में मुझे भारत के उज्जवल भविष्य की तस्वीर दिखाई दे रही है। मैं आपसे कुछ ही घंटे पहले ही फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा से लौटा हूं। G7 में विकसित देशों के दिग्गज नेताओं से मिला हूं। दुनिया आज भारत की युवा शक्ति की चर्चा कर रही है, भारत के टैलेंट, स्किल और पोटेंशियल की चर्चा सब दूर हो रही है। दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है, और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके, और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ। यह रोजगार योजना सामान्य तौर पर सोचे जाने वाली रोजगार योजना से बहुत आगे बढ़कर पहली नौकरी पाने वाले युवा के सपनों को शक्ति देने वाली योजना है। यह युवा और उद्योगों के बीच एक मजबूत सेतु बनाने वाली योजना है। साथियों, आमतौर पर योजनाएं या तो कर्मचारी के लिए बनती हैं या तो फिर उद्योगों के लिए बनती हैं, लेकिन ये एक योजना ऐसी है, इस योजना में भारत के सामर्थ्यवान मेरे युवा, समृद्ध युवा भविष्य की ओर और उद्योग विकास की ओर, और इन दोनों को साथ लेकर चलती है। जो युवा अपनी पहली नौकरी शुरू करता है, सरकार उसके साथ खड़ी होती है, और इसलिए उद्योगकार को भी लगता है कि अकेला मेरे यहां नहीं आया है, इसके पीछे पूरी सरकार आई है, और इसके कारण ऐसे युवकों की तरफ देखने का उस उद्योगकार का भी नजरिया बदल जाता है। और जो संस्थान नए रोजगार का सृजन करता है, सरकार उनका भी उत्साह बढ़ाती है। हमारे यहां पहले कुछ नियम व्यवस्था ऐसी थी कि लोगों को बड़े होने में थोड़ा डर लगता है, यार बड़ा हो जाऊंगा तो मैं ये

बंधनों में फंस जाऊंगा, तो उसको लगता था छोटा ही रहना अच्छा है, और कभी बड़े होने की संभावना उसको लगता है ऐसा करो एक दूसरा छोटा और कर दो। आज वो सोच बदली है, हर किसी को बड़ा बनने का हौसला मिलना चाहिए, उसकी उम्मीदों को पंख मिलने चाहिए, और ये उद्योग को भी जरूरत होती है, और इस योजना से वो द्वार भी खुला है, और यही इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता है। अभी कुछ देर पहले मैं कुछ लाभार्थी नौजवानों के साथ बैठा था, उनके अनुभव में सुन रहा था, उसमें कुछ लोग वो थे जिनको पहली बार नौकरी मिली है, और कुछ लोग वो थे जिन्होंने इस योजना के तहत अपने यहां कुछ लोगों को काम दिया है। मैं वाकई कहता हूं इतना कॉन्फिडेंस था उन बच्चों में, और ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने दुनिया जीत ली है। उनके सपने, उनका विश्वास, ये सचमुच में हमारी बहुत बड़ी पूंजी है। साथियों, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है, करीब 70 लाख फर्स्ट टाइम एम्प्लॉइज को सोशल सिक्योरिटी का कवच भी मिला है, करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं, और आज इन्हीं में से करीब 10 लाख युवा साथियों को अपनी पहली नौकरी में 6 महीना पूरा करने पर इस योजना के तहत उसके लाभार्थ के नाते इंसेंटिव भी मिल चुका है। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है। यह उनके उज्जवल भविष्य पर देश के विश्वास की अभिव्यक्ति है। साथियों, मुझे उतनी ही खुशी उन संस्थानों के लिए भी है जिन्होंने हमारे नौजवानों को अवसर दिए, उनके अंदर भीते हुए सामर्थ्य को पहचाना, और इसलिए ये अवसर देने वाले भी उतने ही अभिनंदन के अधिकारी हैं। इन्हीं संस्थानों ने बीते महीनों में लाखों नौकरियों का सृजन किया है, और अभी मनसुख भाई जो आंकड़े बताते थे, मैं आशा करता हूं कि मीडिया के लोग इन आंकड़ों पर ध्यान करेंगे। देश के लोगों को खुशी की लहर छा जाएगी कि इतना बड़ा काम हो रहा है। ये आंकड़े और अनुभव यही बताता है कि जब सरकार, युवा और उद्योग एक साथ आगे बढ़ते हैं तो रोजगार निर्माण की गति कई गुना बढ़ जाती है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना इसी नए भारत की पहचान है, एक ऐसा भारत जहां युवा को अवसर मिले, उद्योग को प्रोत्साहन मिले, और रोजगार निर्माण एक राष्ट्रीय अभियान बन जाए। साथियों, भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है।

इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े। जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले, और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले। मेरा स्पष्ट मानना है भारत जैसे युवा देश में अवसरों के स्रोत जितने अधिक होंगे, युवाओं के सपनों को उतनी ही अधिक उड़ान मिलेगी। इसी सोच के साथ बीते 12 वर्षों में रोजगार के हर रास्ते को मजबूत किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर इनोवेशन तक, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर डिजिटल इकोनॉमी तक, स्पेस से लेकर के स्टार्टअप तक, हर क्षेत्र में नए अवसर तैयार किए गए हैं। मेक इन इंडिया अभियान, वोकल फॉर लोकल, लोकल को ग्लोबल ले जाने का अभियान, मिशन मैन्युफैक्चरिंग, ये सभी योजनाएं देश में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर बना रही है। आज गाड़ियों से लेकर मेट्रो कोच, ट्रेन के डिब्बे और डिफेंस के साजो सामान तक अनेक सेक्टर में निर्यात तेजी से बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। ये तभी हो पा रहा है क्योंकि भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है, फैक्ट्रियां बढ़ रही हैं और इसमें काम करने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। साथियों, बीते 12 वर्षों में भारत सरकार की जो नीतियां रही हैं, जो निर्णय लिए गए हैं, उन्होंने देश में निरंतर रोजगार के नए सेक्टर्स बनाए हैं। आज इंफ्रास्ट्रक्चर पर 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश लाखों युवाओं का आधार बन रहा है। मुद्रा योजना के तहत 33 लाख करोड़ रुपए से अधिक की सहायता ने करोड़ों करोड़ युवाओं को अपना काम शुरू करने का अवसर दिया है। 10 करोड़ से अधिक महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं और 3 करोड़ से अधिक लखपति दीदी बन चुकी हैं। स्वनिधि और पीएम विश्वकर्मा जैसी पहलों ने छोटे उद्यमियों, रेहड़ी पटरी वालों और पारंपरिक कारीगरों को नई टेक्नोलॉजी दी है, नई आर्थिक सहायता दी है और नई ताकत से भर दिया है। मैं अभी जिन नौजवानों से बात कर रहा था उसमें एक नौजवान आईटीआई से निकल करके ड्रोन बनाने में लगे हैं, तो बड़े उमंग से बता रहे थे वो। मैं भी आपको ड्रोन

सेक्टर का ही एक उदाहरण दूंगा। दवाइयों की सप्लाई हो या पेस्टिसाइड का छिड़काव, स्वामित्व योजना में ड्रोन से मैपिंग हो या फिर रक्षा क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग, ड्रोन्स का उपयोग देश में लगातार बढ़ रहा है और ड्रोन्स का ये बढ़ता हुआ उपयोग युवाओं को नई नौकरियां दे रहा है। वो नौजवान तो आईटीआई करके निकला है, लेकिन वो कह रहा था कि वीडियो ड्रोन का मत देखो, खुद ड्रोन बनाना शुरू करो, बना लोगे, इतने कॉन्फिडेंस बोल रहा था। हमारी सरकार ने स्पेस सेक्टर को खोलने का जो निर्णय लिया, उसका भी बड़ा लाभ युवाओं को मिला है। साथियों, पिछले दशक में डिजिटल इकोनॉमी ने भी अवसरों की एक नई दुनिया बनाई है। गिग इकोनॉमी हो, प्लेटफॉर्म इकोनॉमी हो, कंटेंट क्रिएशन हो या टेक्नोलॉजी सर्विसेज, रोजगार के नए क्षेत्र तेजी से उभर रहे हैं। आज जिन अवसरों की कल्पना भी मुश्किल थी, वे करोड़ों युवाओं की आय का माध्यम बन चुके हैं। यही बदलाव स्टार्टअप इकोसिस्टम में भी दिखाई देता है। एक समय देश में लगभग 500 स्टार्टअप हुआ करते थे, आज 2 लाख से अधिक रजिस्टर्ड स्टार्टअप, और वो भी देश के हर जिले में आपको स्टार्टअप नजर आएंगे। ये आंकड़े विश्वास देते हैं कि भारत का युवा आने वाले वर्षों में दुनिया की ग्रोथ, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का नेतृत्व करेगा। साथियों, आज दुनिया में हर कोई भारत के भविष्य को लेकर बहुत उत्साहित है, हर कोई भारत की युवा शक्ति के सामर्थ्य को लेकर के बहुत आश्वस्त है। आपने भी देखा होगा, फ्रांस में भारत इनोवेट्स का इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, एआई, स्पेस, ग्रीन एनर्जी, बायोटेक्नोलॉजी, ऐसे कई क्षेत्रों में भारत के स्टार्टअप्स और ग्लोबल इन्वेस्टर्स, यानी मैं देख रहा था वो एक नई ताकत के रूप में उभर रहे हैं, वो एक साथ काम करने के लिए आगे आ रहे हैं। आज भारत दुनिया के साथ नए ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहा है, ऐसे समझौते जो भारत के उद्योगों के लिए नए बाजार खोल रहे हैं, ऐसे समझौते जो भारत के प्रोफेशनल्स के लिए नई संभावनाएं बना रहे हैं। पिछले महीनों में भी यूरोप के अनेक देशों के साथ महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। ये समझौते भी देश में लाखों की संख्या में नए रोजगार का बनाने का माध्यम बन रहे हैं। साथियों, दुनिया भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए तैयार हो रही है और भारत भविष्य की अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करने की तैयारी कर रहा है। दुनिया फ्यूचर टेक्नोलॉजीज की ओर आगे बढ़ रही है और भारत अपने युवाओं को फ्यूचर रेडी बनाने में जुटा है, और यही भारत के युवाओं के लिए सबसे बड़ा अवसर है और हमें इस अवसर का पूरा लाभ उठाना है। साथियों, बीते 12 वर्षों में भारत के रोजगार परिदृश्य में एक और बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। अक्सर इसकी चर्चा कम होती है,

लेकिन विकसित भारत की यात्रा में इसका महत्व बहुत बड़ा है। ये परिवर्तन है रोजगार के साथ सुरक्षा और सम्मान को जोड़ने का। हमारी सोच सिक्योर एम्प्लॉयमेंट की है, हमारी सोच सोशल सिक्योरिटी फॉर एवरी वर्कर की है। इसलिए आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से ईपीएफओ की व्यवस्था को आधुनिक बनाया गया है, पेंशन व्यवस्था को भी सरल और सुलभ बनाया गया है, लाखों नए कर्मियों

सिक्योरिटी फॉर एवरी वर्कर की है। इसलिए आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से ईपीएफओ की व्यवस्था को आधुनिक बनाया गया है, पेंशन व्यवस्था को भी सरल और सुलभ बनाया गया है, लाखों नए कर्मियों को हेल्थ इंश्योरेंस और सस्ते उपचार की व्यवस्था से भी जोड़ा गया है। साथियों, हमने श्रम सुधारों को भी इसी दृष्टि से आगे बढ़ाया है। नए लेबर कोड्स का उद्देश्य कामगारों को अधिक सुरक्षा, अधिक पारदर्शिता और अधिक अधिकार देना है। अपॉइंटमेंट लेटर को कानूनी मान्यता देना हो, फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयज को सम्मान सुविधाएं सुनिश्चित करना हो या फिर मिनिमम वेज के दायरे का विस्तार करना हो, हर प्रयास का उद्देश्य यही है कि श्रमिक का सम्मान और सुरक्षा दोनों मजबूत हो। साथियों, हमारी नारी शक्ति भी आज हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रही है। इसलिए महिलाओं के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और अधिक अवसरों वाला वातावरण तैयार किया जा रहा है। नाइट शिफ्ट से जुड़े पुराने प्रतिबंधों में बदलाव हो, वर्क फ्रॉम होम की सुविधा हो या सुरक्षित कार्यस्थल की व्यवस्था, हम महिलाओं की भागीदारी को और अधिक मजबूत कर रहे हैं। साथियों, आज यहां बड़ी संख्या में मेरे उद्योग जगत के साथी भी उपस्थित हैं। आप सबसे भी मेरा एक आग्रह है, 21वीं सदी में अवसर उन्हीं देशों के पास जाएंगे जिनके पास स्किल टैलेंट होगा, जिनके पास इनोवेशन होगा, जिनके पास क्वालिटी होगी। और आज भारत के पास इन तीनों क्षेत्रों में आगे बढ़ने की अभूतपूर्व क्षमता है। और इसलिए मैं भारत के उद्योग जगत से भी कहना चाहता हूं, आज जो अवसर हमारे सामने हैं उन्हें हमें पूरी शक्ति से अपनाना होगा, हमें नए बाजारों तक पहुंचना होगा, हमें नए उत्पाद बनाने होंगे, हमें दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी, क्योंकि आज दुनिया भारत के लिए दरवाजे खोल रही है। पहले खिड़की भी खोलने नसीब नहीं था दोस्तों, आज दरवाजे खुल रहे हैं। भारत ने करीब 40 देशों के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं, हमें इसका भी पूरा लाभ उठाना चाहिए। ये एग्रीमेंट्स नए बाजार बना रहे हैं, नए मार्केट्स को उपलब्ध करा रहे हैं, दुनिया में मेक इन इंडिया ब्रांड्स के लिए नए अवसर पैदा हो ही रहे हैं। और इसलिए हमें इन अवसरों को गंवाना नहीं है दोस्तों। साथियों, जब लक्ष्य बड़े होते हैं तो उपलब्धियां भी तो बड़ी होती हैं। जब सोच वैश्विक होती है तो सफलताएं भी, सीमाएं भी अपने आप विस्तृत हो ही जाती हैं। और इसलिए ट्रेनिंग, मेंटरशिप और इंटर्नशिप अब वैकल्पिक नहीं है, वो ये 21वीं सदी की आवश्यकता है। भारत के उद्योग जगत को अपने लिए
स्किल्ड वर्कफोर्स को भी तैयार करना ही करना है।

0: और भविष्य के लिए नए अवसर भी तैयार करने हैं, क्योंकि विकसित भारत का रास्ता केवल निवेश से नहीं बनेगा, वह टैलेंट, स्किल और इनोवेशन की शक्ति से बनने वाला है। और इस पूरी यात्रा की सबसे बड़ी कसौटी एक ही है, और मैं उद्योग जगत के साथियों को बार बार कह रहा हूं, इन सारी परिस्थितियों का फायदा लेने की एक सबसे बड़ी सफल जड़ी बूटी एक ही है, और वो जड़ी बूटी है क्वालिटी। शिक्षा की क्वालिटी, स्किल की क्वालिटी, सर्विस की क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी, इवन पैकेजिंग की क्वालिटी। दुनिया में टिकना है तो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मानकों पर खरा उतरना ही होगा। दुनिया में आगे बढ़ना है तो उत्कृष्टता को अपनी पहचान बनाना होगा। आज दुनिया भारत से बहुत अपेक्षाएं रखती है, लेकिन मुझे विश्वास है भारत का युवा उन अपेक्षाओं को पूरा ही नहीं करेगा, बल्कि उनसे भी आगे निकल करके दुनिया को दिखा देगा और डंके की चोट पर दिखाएगा। और यही विकसित भारत की शक्ति है, और यही मेरे नौजवान साथियों की, मेरे युवाओं की, उनके सामर्थ्य की, युवा शक्ति की पहचान है, यही उनका सामर्थ्य है। साथियों, सपने वही बड़े होते हैं जहां वो साकार होते हैं। एक सपने का पूरा होना उससे बड़े सपने का रास्ता खुलता है, और यही आज भारत में हो रहा है। मैं भारत के युवाओं की अधीरता समझता हूं, और मैं युवा शक्ति से एक ही बात कहूंगा, आपके सपने ही, मैं फिर कहता हूं मेरे नौजवान साथियों, आपके सपने ही मोदी का संकल्प है। कामयाबी की तरफ बढ़ता आपका हर कदम, ये मेरी भी प्रेरणा है। और हां, असफल होने पर भी आपको हताश होने की कोई जरूरत नहीं है। हर असफलता में हमें कुछ न कुछ तो सीखने को मिलता ही मिलता है। और मैं तो खेल जगत के लोगों को मैं हमेशा कहता हूं, जो खेल के मैदान में उतरते हैं ना, कोई हारता नहीं है, एक जीतता है तो दूसरा सीखता है, हारता कोई नहीं है। युवा मन की एक ही कसौटी है, जो असफलताओं से निरंतर नया सीखने का आदि हो, जो सपनों को सिद्ध करे और हर सिद्धि के बाद नए सपनों को जन्म दे। मुझे भारत की युवा शक्ति पर विश्वास है, मुझे भारत की उद्यमिता पर भरोसा है। इसी भरोसे के साथ एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और विकसित भारत 2047 जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, हिंदुस्तान विकसित होकर रहेगा। ये हम सबका सपना भी है, हम सबका संकल्प भी है, और मैं मानता हूं दोस्तों, मेरे नौजवान साथी, हम अपनी आंखों से खुद देखेंगे, विकसित भारत खुद देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: What a fantastic speech by our Prime Minister.
2: धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री।
1: Full stress on the youth of the country.
2: सजनों,
1: and he says that they are the future pillars of our country and the country.

0: Stress on their shoulders. That's why he's been putting so much of stress on the youth. And he said that their dreams is what my oath is. My oath is the fulfillment of your dreams.
1: भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति एवं प्रेरक उद्बोधन ने देश के युवाओं में नए उत्साह और आत्मविश्वास का संचार किया है और ये जो राशि आज हस्तांतरित हुई है ये राशि युवाओं के परिश्रम का सम्मान है ऐसा उन्होंने कहा और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और उन्होंने कहा कि आप सपने देखिए उन्हें साकार करने का संकल्प हम लेते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण बात है ना एंड्रू और माननीय प्रधानमंत्री अन्य गणमान्य अतिथियों के साथ विज्ञान भवन से प्रस्थान कर रहे हैं इन ऐतिहासिक क्षणों को समेटे मैं प्रीति मोहन अपने साथी कमेंटेटर डी एंड्रयू ओबी टीम इंचार्ज प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव वीके तोमर इंजीनियरिंग स्टाफ अशोक कुमार मिश्र बाबूलाल मीना और कार्यक्रम के ओवरऑल इंचार्ज प्रमोद कुमार के साथ आपको आकाशवाणी के स्टूडियो वापस लिए चलती हूँ नमस्कार

0: summing up, the Ministry of Labour and Employment, Government of India की जानिब से विकसित भारत रोजगार योजना के तहत विज्ञान भवन नई दिल्ली में रोजगार मेला 2026 के निकाद के हवाले से तकरीब का आंखों देखा हाल समाप्त कर रहे थे। यह आकाशवाणी का श्रीनगर है, श्रीनगर स्टेशन है, आइए खबरें सुनते हैं।
1: आदाब, ये छे आकाशवाणी। कश्रन खबरन हुन बुलेटिन हेच बे मीर तारिक गोड हेडलाइनन पेट अख नजर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी सुन पेरिसस मज भारतीय बरादरी खिताब, वोनुक जे भारत चो दुनियाक अख बाएतमाद शराकत दार। वजीर आजमन करे आज प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना हिंदन हकदारन मज 2700 करोड़ रुपयन हिंद मुराद तकसीम। बैन अवी योगा डे चन तकरीबन बापत इंतजाम मुकम्मल। तो मेक्सिको जनूबी कोरिया अख सिफर सत हार नवित फीफा आलमी कप दई त्रहम राउंड क्वालिफाई करन वोल गोडनुक टीम बन्योमुत। पेश खबरन हुन तफसील। वजीर आजम नरेंद्र मोदीन वोनमुत जे भारत चु दुनिया बापत अकिस बाएतमाद शराकत दार सिंद रंग वतलान। पेरिसस मज वोन भारतीय बरादरी खिताब करान वजीर आजमन जे अख वक उस दुत ये मुल्कन दरमियान तलुकात मुकर्रर करें शरा तजारत सत सपदान मगर आज कारोबार सत सत एतमाद तारा अहम बन्योमुत। तमो वो प्रेथ कह मुल्क अख तुथ शराकत दार यहां यथ पे वारिहस कालस भरोस कर।
2: स्टेबल पार्टनरशिप चाहता है। हर देश ऐसे साथियों की तलाश में है जिन पर लंबे समय तक भरोसा किया जा सके, और ऐसे समय में भारत विश्व में एक ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में उभर रहा है।
1: अ दौरान कर वजीर आजम नरेंद्र मोदीन आज नव दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना तहत 2700 करोड़ रुपये हिंद मुराद तौलुक दर मज तकसीम। स्कीम तहत मुराद दिन इन वालो इदारों मज शीत फीसद खोत ज्यादा इदार लकट कारखान इन मज पंचव कम करन वालो खोत कम वर्कर कम करान। वजीर आजम नरेंद्र मोदीन वोनमुत आलमी सूत्रस पे वारिया मुल्क भारत सत पे रबत बढ़ावन यहां तो ये सरमाकारी मं बढ़ बुलित हिस्स नवान। अकि सोशल मीडिया पोस्टस मज वोन तमो आलमी सूत्रस पे अख बेहतर मंजरनामा तश्कील दिन बापत भारत मुनासिब इकदाम करने बाप तैयार। आलमी सूत्रस पे दोमें मुल्कन सत भारत रिश्त मुस्तकम करने बापत तमो मुल्क अखी करोड़ शहरियन पुन किरदार अदा करनस पे तिंद शुक्रिया कोर्मुत। भारतन चु अकवा मुत मज पाकिस्तान तो इस्लामी ताउन तंजीम ओ आई सी तरफ जम्मू कश्मीर मुतलिक दिन आम हवाल तो इल्जाम मुस्तरद करान वोनमुत जम्मू कश्मीर हमेशे पेटे भारत अच्छन हिस्सों रूदमुत तो यह रोज ब्रोह कुन त अकवा मुतहद किस इंसानी हकूक कमीशन किस दहटमिस इजलास खिताब करान अकवा मुतहद मज भारत मुस्तकिल नुमाइंद अनुपमा सिंगन पाकिस्तान पे मकामी चैलेंजन तो दहशत पसंदी हिंज लगातार हमायत नश जोन हटाने बापत प्रोपगंड कर राह खोलमुत। मरकजी दाखिल वजीर अमित शाहन वोनमुत वक् वोतमुत ये फौजदारी निजाम इंसाफ मुल्क किस प्रेथ शहरियस बापत आइनस मज दिन आम हकूक हासिल कर वसील बनाने यी। नव दिल्ली मज वो 2007 किस फिंगर प्रिंटस मुत

0: और एफएम के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवाह के साथ साथ डीटीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर सुन रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत तेजी से दुनिया का एक काबिल एतमाद शराकत दार बनकर उभर रहा है और आलमी सतह पर मुख्तलिफ ममालिक भारत के साथ तवील मुद्दती और मुस्तहकम ताल्लुकात कायम करने में दिलचस्पी ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर में तजारत के साथ साथ एतमाद भी बैन अलाक़वामी ताल्लुकात का एक अहम स्तून बन चुका है। पेरिस में भारतीय बिरादरी के एक बड़े इज्तम से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक वक्त था जब ममालिक के दरमियान ताल्लुकात का दारोमदार सिर्फ तजारत पर हुआ करता था, लेकिन आज दुनिया ऐसे शराकतदारों की तलाश में है जिन पर तवील मुद्दत तक एतमाद किया जा सके और जो मुस्तहकम सप्लाई चेन फराहम करने की सलाहियत रखते हों। वजीर आजम के बकौल भारत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी कर रहा है जो आने वाली नस्लों के लिए तरक्की, इख्तरा और नए मौके पैदा करेगी। उन्होंने कहा कि मुल्क इस वक्त अपनी तरक्की के एक अहम मरहले से गुजर रहा है जहां अवामी उमंगें नई बुलंदियां छू रही हैं और हर शोबे में नुमाया पेशरफ्त देखी जा रही है। मौसूफ ने कहा कि फ्रांस के शहर एवियन लेबों में मुनक्किद G7 इजलास के दौरान भी उन्होंने एतमाद पर मबनी आलमी शराकतदारी की अहमियत को उजागर किया। उनके मुताबिक भारत ने G7 ममालिक को वाज़ेह पैगाम दिया कि आलमी निज़ाम हुक्मरानी उसी सूरत में मौसर साबित हो सकता है जब वो सबको साथ लेकर चलने की बुनियादों पर कायम हो। नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि भारत और फ्रांस के आइंदा साल मुश्तरक तौर पर तृष्णा सैटेलाइट लॉन्च करेंगे जो दुनिया में पानी और गजाई तहफ्फुज को फरोग देने में अहम किरदार अदा करेगा। उन्होंने कहा कि यह मनसूबा दोनों मुल्कों के दरमियान साइंसी और तकनीकी तआवुन की एक अहम मिसाल है। वजीर आजम ने मजीद कहा कि वो ऐसे वक्त में फ्रांस आए हैं जब उनकी हुकूमत ने इख्तदार के 12 साल मुकम्मल किए हैं। उन्होंने दावा किया कि पिछले 12 बरस के दौरान भारत ने मुख्तलिफ शोबों में गैर मामूली तरक्की की है और यह सफर सिर्फ इक्तसादी तरक्की तक महदूद नहीं है बल्कि अवाम को बाइख्तियार बनाने और उनकी जिंदगियों में मुस्बत तब्दीली लाने का भी अक्कास है। समाजी इंसाफ की मरकजी वजारत ने दर्ज फहरिस्त जातों और दीगर पसमानदा तबकात के तलबा के लिए जारी स्कॉलरशिप स्कीमों में एक अहम इसलाह करते हुए डोमिसाइल सर्टिफिकेट जमा कराने की शर्त खत्म कर दी है। इस इकदाम का मकसद तलबा पर दस्तावेजी बोझ कम करना और स्कॉलरशिप के हुसूल के अमल को मजीद आसान बनाना है। वजारत के मुताबिक इस फैसले से अहल तलबा को स्कॉलरशिप के लिए दरखास्त देने में सहूलत मिलेगी और उन्हें गैर जरूरी कागजी कार्रवाई से निजात हासिल होगी। हुकूमत का मानना है कि इस इकदाम से ज्यादा तलबा स्कॉलरशिप स्कीमों से फायदा उठा पाएंगे। इस सिलसिले में मजकूरा वजारत की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीमों के तहत हर साल तकरीबन 1,20,00,000 तलबा को माली इमदाद फराहम की जाती है और अब तक इन स्कीमों से इस्तेफादा करने के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट जमा कराना लाजमी था, ताहम नई इसलाहत के तहत इस शर्त को खत्म कर दिया गया है। समन वादी के 4 पैरामेडिकल इदारों को गैर मंजूरशुदा कोर्सेज चलाए जाने पर शोकॉज नोटिस जारी किया गया है। इतिलात के मुताबिक स्टेट एलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल हुकूमत जम्मू कश्मीर ने लावेपुरा श्रीनगर, अथवाजन श्रीनगर, सोपोर और पुलवामा में कायम 4 पैरामेडिकल कॉलेजों को ऐसे कोर्स चलाए जाने पर नोटिस जारी किया है जिन्हें चलाने का इख्तियार उनके पास नहीं है। इस सिलसिले में SAHC ने इन 4 इदारों को मुतालिक कोर्स गैर मंजूरशुदा करार देकर उनकी तरबियत और उनसे जुड़े मराकज बंद करने और इन कोर्सेज के लिए आइंदा दाखिला देने पर पाबंदी आयद की है और इस सिलसिले में एक पब्लिक नोटिस जारी करने की हिदायत दी है। अलावाजी मजकूरा पैरामेडिकल इदारों को इस बारे में मुतल्लिका यूनिवर्सिटी या मंजूरी देने वाले दीगर इदारों को मुतल्लक करने की भी हिदायत दी गई है। अब एक और मौजू, वादी कश्मीर और जम्मू डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में पिछले कई हफ्तों से मुसलसल जालाबारी और तेज आंधियों के नतीजे में मेवे और सब्जी की फसल के साथ साथ धान की पनीरी को खासा नुकसान पहुंचा है। कई इलाकों में तो सब्जी की फसल और धान की पनीरी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है जबकि मेवे की फसल 60-70% मुतासिर हुई है। गौरतलब है कि वादी कश्मीर और जम्मू डिवीजन के डोडा और किश्तवाड़ जिलों में शाम से पहले पहले आंधियां चलना, तेज बारिश होना और शदीद जालाबारी होना एक मामूल सा बन चुका है और काश्तकार आज एक तो कल दूसरे इलाके में कफे अफसोस मलते हुए देखे जा सकते हैं। मौसम की मार पर इंसान का कोई बस नहीं, ये एक नाकाबिले तरदीद हकीकत है। ताहम सवाल यह है कि इंतहा दर्जे की मौसमियाती तब्दीलियों से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए या फिर नुकसान की शिद्दत को कम करने के लिए सरकार काश्तकारों का हाथ बटाने के लिए क्या कर रही है। मजमूई एतबार से अंदाजा लगा लें तो कुछ नहीं कर रही है। इसी तनाजुर में एक रिपोर्ट के साथ कुलगाम से फारूक राठौर।
1: कश्मीर की सरसब्ज और शादाब वादी जो अपनी खूबसूरती के साथ साथ अपने लजीज और मयारी मेवा के लिए दुनिया भर में जानी जाती है, आज एक संगीन बहरान से गुजर

0: रही है। सेब, नाशपाती, आलू बुखारा, गिलास और दीगर अकसाम के मेवाजात से वाबस्ता लाखों नहीं बल्कि करोड़ों अफराद की उम्मीदें दम तोड़ती नजर आ रही हैं। मेवा बागात जो कभी खुशहाली, रिज़्क़ और मुस्कुराहटों की अलामत थे, आज बेबसी, परेशानी और मायूसी की दास्तान सुना रहे हैं। कुदरत ने गुजशत चंद बरसों के दौरान मेवा उगाने वालों का कड़ा इम्तिहान लिया है। बेवक्त बारिशें, मुसलसल खराब मौसम, शदीद बादबारा और बार बार होने वाली शदीद जलाबारी ने मेवा बागात को तरह मुतासिर किया है। कई मकामात पर मेवा दरख्तों से गिर गए हैं, शाखें टूटने के साथ साथ पूरी फसल तबाह होकर रह गई है। मेवा उगाने वाले जिन्होंने सारा साल अपनी जमा पूंजी, मेहनत और वक्त अपने मेवा बागात में खर्च किया, उनकी उम्मीदें खाक में मिल गई। आज सूरत हाल यह है कि जिला कुलगाम के बेशतर बाग मालिकान बैंकों, मालियाती अदारों और साहूकारों के मकरूज हो चुके हैं। एक तरफ पैदावार में कमी और मुतासिर क्वालिटी, दूसरी जानिब अखराजात में मुसलसल इजाफा ने उन्हें शदीद माली बुहरान में मुबतला कर दिया है। खाद, अद्वियात, मजदूरी और दीगर जरूरियात पर भारी सरमाया खर्च करने के बावजूद उन्हें मुनासिब मुनाफा तो दूर, अपनी लागत वापस मिलना भी मुश्किल हो गया है। इस संगीन सूरत हाल के बावजूद जिला कुलगाम के बाग मालिकान खुद को तनहा महसूस कर रहे हैं। उनके जख्मों पर मरहम रखने वाला कोई दिखाई नहीं दे रहा है। यही वजह है कि आज पूरी मेवा सनत हुकूमत से फरियाद कर रही है कि शोबे को बचाने के खातिर फूरी और मुनसर इकदाम की जाए। जिला कुलगाम के सभी इलाकों, इलाका दिवसर, कुलगाम, नूराबाद, होम शालीबुग, काजीगुड़ और इलाका कोण के अलावा दीगर इलाकों के मेवा उगाने वालों का मुतालबा है कि मार्केट इंटरवेंशन स्कीम को पूरी तौर पर बहाल किया जाए ताकि कुदरती आफात से मुतासर मेवा के लिए कम अज कम मुनासिब कीमत फराहम हो सके। केसीसी के तहत हासिल किए गए कर्जों को माफ किया जाए ताकि किसान और बाग मालिकान माशी बोझ से नजात हासिल कर सके। जालाबारी से मुतासर बागात को महफूज रखने के लिए एंटी हेल नेट सब्सिडी पर फराहम की जाए और एक जामे और मुअसर इंश्योरेंस स्कीम नाफिज की जाए ताकि कुदरती आफात की सूरत हाल में मेवा उगाने वालों को माली तहफुज हासिल हो सके। फ्रूट ग्रोवर्स एंड डीलर्स एसोसिएशन जम्मू कश्मीर के सदर गुलाम अहमद भांडी ने शहरबीन के साथ बात करते हुए कहा कि मेवा सन्नत अपनी तारीख के बदतरीन दौर से गुजर रही है। उन्होंने कहा कि मुसलसल मौसमी तबाहकारी ने मेवा उगाने वालों की कमर तोड़ दी है जबकि कर्जों का बोझ उनके लिए नाकाबिल बर्दाश्त बनता जा रहा है।
1: कुलगाम से फारूक राठौर की रिपोर्ट आपने सुनी। मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत की मकामी दिफाई पैदावार में पिछले चंद बरस के दौरान गैर मामूली इजाफा हुआ है और माली साल 2025-26 में यह बढ़कर 1,78,000 करोड़ रुपए से तजावुज कर गई है, जो अब तक की बुलंदतरीन सतह है। नागपुर के अंबाजरी इलाके में यंत्र इंडिया लिमिटेड के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स में एक तकरीब से खिताब करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि 2014 में मुल्क की दिफाई पैदावार तकरीबन 46,000 करोड़ रुपए थी, जो कई गुना बढ़ चुकी है। वजीर दिफा ने कहा कि दिफाई बरामदात के शोबे में भी नुमाया पेशरफ्त हुई है। उनके मुताबिक 2014 से कबल भारत की दिफाई बरामदात सिर्फ 1,000 करोड़ रुपए के करीब थी, जबकि अब मकामी तौर पर तैयार करदा दिफाई साजो सामान की आर्मी मांग में इजाफे के बाईस यह हजूम तकरीबन 40,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। समरवादी के मुतअद्दिद इलाकाजात में आबपाशी सहूलियात की हद दर्जक किल्लत बताई जाती है। किसान इस सूरत हाल पर सरापा एहतजाज हैं और पूछते हैं कि अगर इस मौसम में उनके खेतों को पानी फराहम नहीं होगा तो फिर कब होगा। आपको याद होगा कि हमने दो रोज कबल इस ताल्लुक से जिला गांधीबर से रहीम रिजवान की रिपोर्ट नश की थी और साथ ही जिले के मुख्तलिफ इलाकों में पीने के पानी की किल्लत का मामला उभारा था। दरियासना आज पीएचई और आबपाशी के वजीर जावेद अहमद राणा और जिला तो बागबानी के वजीर जावेद अहमद डार ने जिला गांधरबल के मुख्तलिफ इलाकों में सूरत हाल का जायजा लिया। इस मौके पर दोनों वजरा ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जल शक्ति, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इरीगेशन, डीएफओ सिंध फॉरेस्ट डिवीजन और दीगर मुतलिक अफसरान को हिदायत दी कि वह मसाइल का सदेबाब करने के लिए फिलफौर इकदाम करें। उधर सिंहपुरा पट्टन के मतीपुरा, सिंहपुरा, कृपालगढ़ और मुलिका देहात के किसानों का कहना है कि इरीगेशन पंप दस्तियाब न होने की वजह से उनके खेत पानी को तरस रहे हैं। मजकूरा देहात के काश्तकारों के बकौल यह मामला एमएलए पटन की नोटिस में भी लाया जा चुका है, ताहम सूरत हाल जूं की तू है। मतीपुरा, सिंहपुरा, कृपालगढ़ और सिंहपुरा के दीगर देहात की आबादी को एहतमाल है कि अगर इरीगेशन महकमा इस मसले की जानिब फौरी तवज्जो नहीं देगा तो उनकी तमाम मेहनत रायगां होगी। इसी दौरान कृपालगढ़ की शाह जीलान कॉलोनी के बाशिंदे पीने के पानी की किल्लत से आजिज आ चुके हैं। आबादी के बकौल यह मामला अब तक कितनी ही बार पीएचई के जिलाई हुकाम की नोटिस में लाया जा चुका है पर कार्रवाई नदारद। शाहजीलान कॉलोनी कृपालगढ़ की आबादी पीएचई के चीफ इंजीनियर से पुरजोर मुतालबा करती है कि इस मामले की तरफ فوراً

0: तवज्जो दी जाए। उधर कुलगाम जिले में हर्बल कनाल और नूराबाद कनाल पर आबपाशी के लिए इन्हिसार करने वाले देहात की आबादी हद दर्जा परेशान है। इस सिलसिले में गांधी किंग फाउंडेशन के सदर बराए जम्मू कश्मीर डॉ. मोहम्मद अयूब मत्तू का कहना है कि मजगूरा कनालों से आबपाशी सहूलियात बहम न होने के बायस टंगमर्ग वट्टू असनूर कुरेल मजगाम लिसरपुरा अविल और मुलिक देहात में मेवा बागात और धान के खेत सूख रहे हैं और खदशा है कि अगर आबपाशी की बरवक्त बहाली ना हो पाई तो जमींदारों की सारी मेहनत जाया हो जाएगी और उनकी माशी हालत में नुमाया फर्क पड़ेगा। डॉ. मोहम्मद अयूब मत्तू ने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर से पुरजोर मुतालबा किया है कि अहरबल कनाल और नूराबाद कनाल की बहाली के लिए फौरी इकदाम किए जाए। शेरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा।
1: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर हर गली हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
2: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का सर्रा सर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बना।
3: सेहत तक हर इंसान की पहुंच एक बुनियादी हक है, लेकिन आज भी कई लोगों के लिए ये एक मुश्किल सफर है। दूर दराज इलाकों में हॉस्पिटल, लंबी कतारें और सही जानकारी की कमी, ये सब रुकावटें बनती हैं। इन छोटी छोटी रुकावटों की वजह से जरूरी इलाज भी रह जाता है, लेकिन अब इसका हल है जेके सेहत ऐप। ये है आपका डिजिटल साथी जो आपकी सेहत से जुड़ी हर जरूरत का ख्याल रखता है। अपने फोन में गूगल प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर खोलिए, सर्च बॉक्स में टाइप कीजिए जेके सेहत ऐप और इंस्टॉल करके रजिस्टर हो जाइए। ये ऐप एंड्रॉइड और आईफोन दोनों पे अवेलेबल है। इस ऐप से डॉक्टर से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, नजदीकी हॉस्पिटल ढूंढ सकते हैं, ऑनलाइन सलाह और मेडिकल रिपोर्ट्स देख सकते हैं, एम्बुलेंस बुक कर सकते हैं, दवाइयों की अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं, वैक्सीनेशन रिकॉर्ड्स देख सकते हैं, ब्लड बैंक इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं और सरकारी हेल्थ स्कीम्स के बारे में भी जान सकते हैं। और साथ ही साथ आप प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोफेशनल होम सर्विस भी बुक करवा सकते हैं। इस ऐप में AI सिम्टम चेकर चैटबॉट भी अवेलेबल है। चाहे आप मरीज हो, डॉक्टर, स्टूडेंट या एक आम शहरी, जेके सेहत ऐप सबके लिए है। इट्स सिंपल, सेफ और आपके लिए।
4: इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय नेशनल हेल्थ मिशन J&K।
5: सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में 2026-27 के लिए पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज और प्रोग्रामों में दाखिले के लिए दरख्वास्तें जमा कराने की तारीख में तौसी की गई है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्रामों के लिए फॉर्म जमा कराने की आखिरी तारीख 23 जून 2026 मुकर्रर की गई है। मजीद तफसीलात www.cukashmir.ac.in से हासिल करें। वाज़ह रहे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तमाम दाखिले सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट 2026 की बुनियाद पर ही दिए जाएंगे।
0: जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज शहरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवाह के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर सुन रहे हैं। भारत ने अक्वामे मुत्तहदा की इंसानी हकूक काउंसिल में पाकिस्तान पर सख्त तनकीद करते हुए सिंध तास माहदे को मौजूदा दौर के तकाजों से गैर हम आहंग और फरसूदा करार दिया है। भारतीय नुमाइंदे ने कहा है कि 1960 में तय पाए गए इस माहदे की आज की बदलती हुई आलमी और इलाकाई सूरत हाल में कोई ज्यादा अहमियत नहीं है और यह अज़हर नौ जायजे का मुतकाजी है। अक्वामे मुत्तहदा की इंसानी हकूक काउंसिल के 62वें इजलास से खिताब करते हुए अक्वामे मुत्तहदा में भारत के मुस्तकिल मिशन की फर्स्ट सेक्रेटरी अनुपमा सिंह ने पाकिस्तान की जानिब से भारत के खिलाफ आयद किए गए इल्जाम को मुस्तरद करते हुए कहा कि इस्लामाबाद बैन अल-अक्वामी फोरम्स में बार बार दोतरफा मामलात उठाने की कोशिश करता है जो हकीकत पसंदाना तर्ज अमल नहीं है। अनुपमा सिंह ने कहा कि सिंध तास माहदे के ताल्लुक से भारत का मौकिफ पहले ही वाज़ह है। समिन, पुलवामा कस्बे के साथ साथ जिले के दीगर बड़े इलाकों में ट्रैफिक का निजाम बिल्कुल बेहंगम हो चुका है। बताया जाता है कि पुलवामा कस्बे और जिले के और बड़े इलाकों में दुकानदारों और छापड़ी फरोशों ने फुटपाथों और सड़कों पर इस हद तक कब्जा जमा रखा है कि गाड़ियों के साथ साथ पैदल चलने वालों

0: का गुजर भी मुश्किल से मुश्किलतर होता जा रहा है। इंतजामिया ने अगर से छापड़ी फरोशों के लिए कुछ मकामात मखसूस कर रखे हैं तहम छापड़ी फरोश बड़े बाजारों की सड़कों पर ही काबिज होने को तरजीह देते हैं। यही नहीं, गाड़ियों की बेजाबिता पार्किंग भी खुद ब खुद तवील ट्रैफिक जैम की जमानत दे जाती है। एक रिपोर्ट के साथ पुलवामा से शौकत डार।
1: पुलवामा कस्बे में गैर मुनज्जम ट्रैफिक निजाम और गैर कानूनी तजावजात से पूरे कस्बे में बेशतर अवकात ट्रैफिक जैम लगा रहता है, जिससे लोगों को मुश्किलात दरपेश हैं। साथ ही मुख्तलिफ इलाकों के लिए मौजूद ट्रांसपोर्ट दस्तियाब न होने से रोजाना सैकड़ों मुसाफिरों को दिक्कतें पेश आती हैं। इस सबसे रोजमर्रा का कामकाज बुरी तरह

0: बढ़ें फिक्रमंद, अरे रेडियो पे दे इश्तहार और बढ़ाएं अपना कारोबार। अब फिक्र की क्या बात जब है कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का साथ। जी हाँ, अपने कारोबार की उड़ान को दीजिए एक नई पहचान। रेडियो से इश्तहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, फोन नंबर 9419000255।
1: मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियां बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पायेदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग।
2: घर का एसी हो या गीजर, वोल्टेज का हीरो सिर्फ एक, BS वॉइस स्टेबिलाइजर्स। पावर फ्लक्चुएशन सॉर्टेड, लॉन्ग लाइफ फॉर योर अप्लायंसेस गारंटीड। BS वॉइस, दैट्स बेस्ट सर्विस। कॉल नाउ 9419001960।
3: अरे ये सेवाराम की दुकान बंद क्यों है?
4: बंद नहीं, मिलावट करता था, किसी ग्राहक ने माल की जांच करवा दी।
5: जी हाँ, नए खाद्य कानून के तहत हर एक को अधिकार है मिलावटी खानपान वस्तुओं की लैबोरेटरी से टेस्ट करवाने का। पकड़े जाने पर मिलावट खोरों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
6: याद रखें, सुरक्षित आहार स्वास्थ्य का आधार। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.fssai.gov.in पर।
7: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर, फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन, J&K।
8: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
9: सेहत जो हर एकिस इंसान सुन बुनियादी हक, मगर आज तिचु सफर वारियन लुकन खतर मुश्किल। दूर दराज इलाकन मज हॉस्पिटल तो सही मालूमातन हिस कमी, यम चीज छ रुकावट बनान तो जरूरी इलाज छ इथी रोजान। मगर वन छ अत हाल JK सेहत ऐप, ये तुहंद डिजिटल साथी जो सेहतस मुताबिक कुन तो जरूरत ख्याल थावान। ये ऐप छ एंड्रॉइड तो आईफोन दोशवनी मज दस्तियाब। यत ऐप मज डॉक्टर सिंस अपॉइंटमेंट बुकिंग, नजदीकी हॉस्पिटल छांडुन, ऑनलाइन सलाह तो मेडिकल रिपोर्ट्स हाविन, AI सिम्टम चेकर चैटबॉट, एम्बुलेंस बुक करिन, दवाहन इस अवेलेबिलिटी चेक करिन, वैक्सीनेशन रिकॉर्ड्स चेक करिन, ब्लड बैंक च मालूमात तो सरकारी हेल्थ स्कीमन हिस जानकारी, बेचे अत सित प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोफेशनल होम सर्विस तो अवेलेबल। चाहे तुम मरीज, डॉक्टर, स्टूडेंट या अख साध शहरी छो, JK सेहत चु सारनी सूत, सिंपल, सेफ तो सिर्फ तुहे खतर।
10: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय नेशनल हेल्थ मिशन JNK।
11: यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है, आइए खबरें सुनते हैं।
12: आदाब, यह आकाशवाणी श्रीनगर कशरन खबरन हुन बुलेटिन है। छस बमीर तारिक गोड़ हेडलाइनन पेट अख नजर। वजीर अजमन कर प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना तहत 2,400 करोड़ रुपयन हुन मुराद तकसीम। तलीम वजीर सकीना इतवन कर तलीम महकम कन 268 कंटीजेंसी पेड वर्करन मज मुस्तकली आर्डर तकसीम। मुहर्रमुल हराम की मुनासिबत दीनी मजलिसन हुन संस जारी। इंटरनेशनल योगा डे तकरीबन बापत तैयारी मुकम्मल। वंच पेश खबरन हुन तफसील। वजीर अजम नरेंद्र मोदी नौजवान तकीद कर्म तम पकन पन्न सलाहियतन हंदिस दपिस पे ब्रो तो विकसित भारत ख्वाब पूर कर मन पन रोल अदा। नव दिल्ली मज आज प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना तहत तोलुक दरन मज 2,400 करोड़ रुपयन हंद मुर्रा तकसीम करने बापत मुनद तकरीबी खताब करान वजीर अजमन जे सरकार बासलियत इख्तराई जहन थवन वाल नौजवान प्लेटफार्म दस्तियाब थवन बापत बामने इकदाम करान। तमो दुत प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना नौजवान तो सनतकार दरमियान अख मजबूत रबत करार। वजीर अजम नरेंद्र मोदी वोनमुत विकसित भारत ख्वाब पूर कर खतर नौजवान बाख्तियार बनावन जरूरी। नौजवान हंदन मामलन हंद मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मंडाविया सुंद मजमून सोशल मीडिया पे शेयर करान वो वजीर अजमन जे प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना कर बड़िस पैमानस पे रोजगार मौक पैद तो नौजवान हंद जहन बनाव कौम के तमीर शराकत दार। वजीर अजम नरेंद्र मोदी वोनमुत आलमी सूत्रस पे मुल्क भारत सन रबत बढ़ावन यहां तो ये सरमाकारी मज बढ़ तो बोलित हिस नवान। अकि सोशल मीडिया पोस्टस मज वोन तमो आलमी सूत्रस पे बेहतर मंजरनामा तश्किल दिन बापत भारत मुनासिब इकदाम करने बापत तैयार। आलमी सूत्रस पे दोमन मुल्कन सारत रिश्त मुस्तकम करने बापत तमो मुल्क कैन 1,40 करोड़ शहरियन पन किरदार अदा कर पे तिंद शुक्रिया कर्मत। نائب وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری آج جمہ

0: का एक मजमून सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए वजीर अजम ने कहा कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना बड़े पैमाने पर रोजगार के मौके पैदा करेगी और नौजवान अजहान को कौम की तामीर का शराकतदार बनाएगी। दरियासना नरेंद्र मोदी ने कहा कि आलमी सतह पर मुतद्दिद ममालिक भारत के साथ अपने रवाबित बढ़ा रहे हैं और यहां सरमायाकारी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि आलमी सतह पर एक बेहतर मंजरनामा तश्कील देने के लिए भारत मुनासिब इकदाम करने के लिए तैयार है। आलमी सतह पर दीगर ममालिक के साथ भारत के रिश्ते मुस्तहकम करने के लिए उन्होंने मुल्क के 140 करोड़ शहरियों को अपना किरदार अदा करने पर शुक्रिया अदा किया। नायब वजीर आला सुरेंद्र चौधरी ने आज जम्मू में कानून साज असम्बली की नई इमारत पर हो रहे काम का जायजा लिया। उन्होंने अमल आवरी एजेंसियों को हिदायत दी कि वो काम के मियार को बरकरार रखते हुए प्रोजेक्ट की बरवक तकमील को यकीनी बनाएं। वजीर तालीम सकीना इतू ने आज जम्मू में एक तकरीब के दौरान महकमे तालीम के 261 कंटिजेंसी पेड वर्करों में मुस्तकली के ऑर्डर तकसीम किए। इसके साथ साथ उन्होंने कई तरक्याती प्रोजेक्टों का वर्चुअल तरीके पर संग बुनियाद रखा। इस मौके पर वजीर मौसूफा ने कहा कि हुकूमत स्कूलों में बुनियादी ढांचे को मुस्तकम करने नीज मियार तालीम में बेहतरी लाने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। ट्रांसपोर्ट के वजीर सतीश शर्मा ने आज कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा का तफसीली दौरा करके वहां लोगों को दरपेश मुश्किलात का जायजा लिया और उनकी तरक्याती जरूरियात के बारे में जानकारी हासिल की। वजीर मासूफ ने समाज में मुनशियात के इस्तेमाल के फैलते रुझान पर तशवीश का इजहार करते हुए इस पर काबू पाने के लिए समाज के हर तबके से तआवुन तलब किया। उन्होंने लोगों के जायज मुतालबात पूरा करने का यकीन दिलाया। राज्यसभा मेंबर चौधरी मोहम्मद रमजान भी उनके हमराह थे। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने आज श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान पिछले वर्ष जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में आए तबाहकुन सैलाबों और तूड़े गिर आने के बाद मरकजी वजारत दाखिला की तरफ से मंजूर किए गए तजदीद नौ प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने मुख्तलिफ महकमों को हिदायत दी कि वह इल्तवा में पड़े मुस्तकिल बाजाबादकारी प्रोजेक्टों को जल्द अज जल्द दाखिल करें ताकि उन पर काम शुरू किया जा सके। जम्मू कश्मीर को मुनशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए 100 दिनों पर मुश्तमिल नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत सरगर्मियां शद्दुमत से जारी हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जाती तौर मुनशियात मुखालिफ प्रोग्रामों और इकदाम की निगरानी कर रहे हैं। मुनशियात के खिलाफ LG का पैगाम।
1: ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार्ड आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस, सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। NDPS एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
0: इस बिदत पर काबू पाने के लिए दरकार इकदामात और लोगों की जिम्मेदारियों के ताल्लुक से वादी के एक मुसन्निफ और माहिर तिब प्रोफेसर डॉक्टर सईद अमीन ताबिश ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
2: मनशियात का गलत इस्तेमाल मुआशरे के लिए संगीन खतरा है। यह न सिर्फ जिस्मानी व जहनी सेहत को तबाह करता है बल्कि खानदान और समाजी ढांचे को भी मुतासर करता है। नशा इंसान को बेरहरवी, जराइम और गुर्बत की तरफ धकेल देता है। इसके नतीजे में नौजवान अपनी सलाहियतें खो बैठते हैं और मुआशरा तरक्की के बजाय जवाल का शिकार होता है। इस संगीन मसले से निमटने के लिए आगाही, तालीम और इज्तिमाई कोशिश नहायत ज़रूरी है। इस मसले पर काबू पाने के लिए अवामी आगही, तालीम, सख्त और बहाली मरकज का क़याम जरूरी है। वालिदैन, असातिज़ा और कम्युनिटी को मिलकर नौजवानों को महफूज मुस्तकबल देने की कोशिश करनी चाहिए।
0: जम्मू सूबे के रियासी जिले के कटरा में आज स्पिरिचुअल ग्रोथ सेंटर में मुनशियात से मुतलिक एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। माहौलियात व जंगलात की कमिश्नर सेक्रेटरी शीतल नंदा ने तकरीब में मेहमान खसूसी की हैसियत से शिरकत की। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत कार्रवाइयां जारी रखते हुए पुलिस ने आज बोन बाजार शुपैया में बशीर अहमद सोफी नामी मुनशियात फरोश का रिहायशी मकान अटैच किया। बिजबिहाड़ में पुलिस ने तारिक अहमद दास नामी मुनशियात फरोश के कब्जे से कुछ नशीली अशिया बरामद करके उसके खिलाफ केस दर्ज किया। हंदवाड़ा में पुलिस ने तौसीफ अहमद गनाई नामी मुनशियात फरोश के कब्जे से कुछ नशीली अशिया बरामद करके उसके खिलाफ एक केस दर्ज किया। سری کلچر سیکٹر کو جموں کشمیر کے دیہی اقتصادی منظرنامے میں کلیدی اہمیت حاصل ہے اور اس شعبے سے کافی تعداد

0: में बेरोजगारों को रोजगार हासिल हो रहा है। श्री कल्चर महकमा रेशम के मियार में बेहतरी लाने नीज ज्यादा से ज्यादा लोगों को रेशम साजी की तरफ रागिब करने के लिए खातिरखा इकदाम कर रहा है। इस ताल्लुक से डायरेक्टर श्री कल्चर जम्मू कश्मीर एजाज अहमद भट्ट ने हमारे नुमाइंदे महमूद अहमद खान के साथ बात करते हुए कहा,
1: एक फार्मर को अगर उसके पास लैंड होल्डिंग है तो हम उसको 100 से 200 300 प्लांट तक फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। ऊपर इसको फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलता है 60-70 रुपीज पर प्लांट, चाहे उसका पिट डिगिंग है, चाहे उसका वर्मी कंपोस्ट डालना है, चाहे उसकी ट्रांसपोर्टेशन है, तो वो हम प्रोवाइड करते हैं। या अगर उसको लीफ हमारे नियरेस्ट फार्म से या फिर नियरेस्ट नर्सरी से वो भी हम उसको अलाउ करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद हम सीड देते हैं, उसको सीड हम पूरा इंक्यूबेशन करके देते हैं। टेम्परेचर मेंटेन करना होता है तो 10-15 दिन में वो कोकून उसके पास बन जाते हैं। फिर मार्केटिंग भी हम खुद करते हैं, अगर उसकी क्वालिटी अच्छी हो 1600-1700-1800 रुपए पर केजी उसका चला जाता है मार्केट में। जो भी इसको वक्तन फोक्तन गाइडेंस वगैरह जरूरत पड़ती है तो वो हम उसको देते रहते हैं। 2-3 स्कीमों में उनमें फंड आते हैं, चाहे वो HADP है, चाहे सिलिक समग्रा 2 है या आत्मा है। उसमें बाजाबता स्पेशल बजट आता है जिसमें अवेयरनेस भी जाती है, उसमें थोड़ा सा उनका कुछ रिफ्रेशमेंट भी दिया जाता है और कुछ टूल किट्स भी उसमें प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। गुजारिश है कि वो आए हमसे जुड़े।
0: ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। आज मुहर्रम उल हराम की 3 तारीख है। सन 61 हिजरी में इसी महीने के दौरान नवासे रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके जानिसारों ने मैदानी कर्बला में इस्लाम की सरबुलंदी और हक व सदाकत की बालादस्ती के लिए अपनी जानों की कुर्बानियां पेश की थीं। कर्बला के शहदा को खराज अकीदत अदा करने के लिए वादी भर में मजालिस और आज़ादारी की मजलिसों का सिलसिला जारी है। इसी सिलसिले के तहत वादी की जियारतगाहों, मसाजिद, खानकाहों और इमाम बारगाहों में आज अइम्मा हजरात ने नमाज जुम्मा से कबल मुहर्रमुल हराम और यौम आशुरा की फजीलत बयान की। जमीयत हमदानिया के सरबरा मीरवाइज मौलवी रियाज हमदानी ने खानकाह जामिया पांपोर में कर्बला के शहीदों की अजमत बयान की। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के पेश नजर यात्रा रूट पर ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लेने के लिए IGP कश्मीर VK बिरदी ने आज जोनल और सेक्टर अफसरों के साथ एक जायजा मीटिंग की। उन्होंने यात्रा के कामयाब इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए अफसरों को पेशवाराना सलाहियत का भरपूर मुजाहिरा करने की हिदायत दी। जम्मू कश्मीर में 21 जून को 12वीं बैनुल अक्वामी योगा दिन के सिलसिले में तमाम तैयारियां मुकम्मल की गई हैं और यूटी में इस दिन की सबसे बड़ी तकरीब SKICC श्रीनगर और गवर्नमेंट PG कॉलेज जम्मू में मुनक्कद हो रही हैं। डायरेक्टर आयुष जम्मू कश्मीर डॉक्टर अजय तिकू ने हमारे नुमाइंदे खुर्शीद पडरू के साथ बात करते हुए कहा कि योगा दिन की बड़ी तकारीब के साथ साथ तमाम अजला में योगा से मुतलिक बेदारी प्रोग्रामों का इनेकाद भी किया जा रहा है।
2: 12वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। जितने भी डिस्ट्रिक्ट है हमारे 20 डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर हम इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मना रहे हैं। मेन इवेंट यहाँ पर SKIC श्रीनगर में हो रहा है और दूसरा मेन इवेंट हम जम्मू PG कॉलेज गांधीनगर में करवा रहे हैं। मैं जम्मू कश्मीर के सब वासियों से उनसे मैं अपील करता हूँ कि इस योगा दिवस में वो बढ़ चढ़ कर योगदान दे। उसमें 21 तारीख को वो सुबह 5 और 6 बजे के बीच में जो जो भी हमने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर है या मेन इवेंट है वहाँ पर आइए और योगा का लाभ उठाएं।
0: आज स्किल सेल बीमारी से मुतलिक बेदारी पैदा करने का आलमी दिन है। इस सिलसिले में आज मुल्क भर में कई प्रोग्राम मुनक्कद किए गए। इस दिन की मुनासिबत से सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत 2047 से पहले स्किल सेल बीमारी का खात्मा यकीनी बनाएगा। मध्य प्रदेश के ओमकरेश्वर गांव में वर्ल्ड स्किल सेल डे से मुतलिक एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने जोर दिया कि इस बीमारी से मुतलिक मुल्क भर में जानकारी आम की जाए ताकि आम लोग खसूसन कबायली तबकों से वाबस्ता अफराद इस मर्ज से बच सकें। दरियासना सेहत के मरकजी वजीर JP नड्डा ने भी सिकल सेल बीमारी से मुतलिक बेदारी पैदा करने के आलमी दिन पर सेहतमंद समाज तश्कील देने के सरकार के अज़्म का इआदा किया। उन्होंने जानकारी दी कि मुल्क भर में 7,19,00,000 अशखास की नेशनल स्किल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन के तहत जांच की गई जबकि 2,46,000 अफराद को इस बीमारी में मुबतला पाया गया। उन्होंने कहा कि इस मिशन के तहत 4 करोड़ अफराद में स्किल सेल कार्ड्स भी तकसीम किए गए। नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन आज से लद्दाख के 3 रोजा दौरे पर रहेंगे जहां वो योगा की बैनुल अक्वामी

0: का एक बड़ा हिस्सा इसी खत्ते से वाबस्ता है। तेल की तरसील में किसी भी किस्म की रुकावट आलमी मंडियों और मईशतों पर बराह रास्त असर डालती है, इसलिए इस पेशरफ्त को इक्तिसादी इस्तेहकाम के लिए भी एक मुस्बत कदम करार दिया जा रहा है। तहम एतमाद सिर्फ बयानात से नहीं बल्कि अमली इकदामात से कायम होता है। आइंदा मुजाकरात में पाबंदियों के खात्मे, मुनजमद असासों की बहाली और जौहरी प्रोग्राम जैसे हसास मौजूआत ज़ेर बहस आएंगे। यही अवामिल इस अमल की कामयाबी या नाकामी का तयन करेंगे, क्योंकि माजी में भी कई अहम माहदे सियासी मफादात और बदलती हुई तरजीहात की नज़र हो चुके हैं। मशरक़ वुस्ता गुज़श्ता बरसों में जंगों, अदम इस्तेहकाम और लिसानी अलमियों का शिकार रहा है। लाखों अफराद बेघर हुए, मईशतें तबाह हुई और तरक्की का अमल मुतासिर हुआ। अगर अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी में हकीकी कमी आती है तो इसके मुस्बत असरात पूरे खत्ते पर मरतब होंगे। सरमायाकारी में इजाफा होगा, तिजारती सरगर्मियां बहाल होंगी और तरक्की के नए मौके पैदा होंगे। हिंदुस्तान ने भी अमरीका और ईरान के दरमियान मुफाहमती कोशिशों का खैर मकदम किया है। अगरचे दोनों ममालिक के दरमियान जारी सफारती अमल अभी अपनी मंजिल से दूर है, तहम ये हकीकत अहम है कि फ्रीकैन एक बार फिर मुजाकरात की मेज पर मौजूद हैं। आज दुनिया इस पेशरफ्त को उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है, लेकिन असल कामयाबी सिर्फ माहदों पर दस्तखत करने में नहीं बल्कि इन वादों की अमली पासदारी में मुजमिर है। अगर फ्रीकैन इखलास, संजीदगी और जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं तो ये पेशरफ्त न सिर्फ अमरीका और ईरान बल्कि पूरे मशरक वस्ता और दुनिया के लिए अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के एक नए दौर का आगाज साबित हो सकती है। बिलाशुबह पायदार अमन ही वो रास्ता है जो कौमों को तरक्की, तावन और मुश्तरक खुशहाली की मंजिल तक पहुंचा सकता है। इसके साथ ही तबसरा खत्म हुआ। इजाजत दें, खुदा हाफिज।
1: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच, आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
2: यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। मीटे में 268.8 मीटर और एफ एम 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। समय 8 बज चुके हैं।
3: वादे की आवाज, पाकिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में सुनने वालों के लिए ये प्रोग्राम हर रोज हमारे वक्त के मुताबिक 8 बजे और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 बजे शाम नश्र होता है।

आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से इस वक्त वादी की आवाज पेश किया जा रहा है। समीन, हम बात कर रहे थे पाकिस्तान के ज़ेरे कब्ज़ा कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से। माहरीन की राय में पीटीआई के महदूद हलकों के अलावा तमाम बड़ी सियासी जमातों ने न सिर्फ इस मसले को नज़रअंदाज किया बल्कि उन्होंने अवामी तहरीक के इब्तदाई उभार को भी खुलेआम मुस्तरद किया था। साबिक वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर जैसे रहनुमाओं के सख्त बयानात ने बज़ाहिर जलती पर तेल का काम किया। उनकी राय में दूसरा अहम पहलू यह है कि पाकिस्तान की सियासी जमातों ने वहां अपने सियासी आउटलेट्स तो कायम कर रखे हैं लेकिन खित्ते के हकीकी और जमीनी मसाइल की तफहीम और अवामी एंगेजमेंट के लिए कोई मुस्तकिल मैकेनिज्म नहीं बनाया क्योंकि वहां भी फैसले बनीगाला से कंट्रोल होते हैं। उनकी राय यह है कि यही वजह है कि जब यह अवामी तहरीक उठी तो मकामी सियासतदानों ने मामला फहमी और सियासी तदब्बुर का मुजाहरा करने के बजाय इसे अपने इख्तदार के लिए खतरा समझा और बौखलाहट और गुस्से में रद्दअमल दिया जिसने बहरान को मजीद संगीन कर दिया। दानिश इरशाद का कहना है कि रियासत के दाखिली ढांचे में दीगर दूर उफ्तादा या हसास इलाकों की तरह इस खित्ते के मुतलिक भी एक रिवायती सिक्योरिटी सेंट्रिक शक पाया जाता है और यही माइंडसेट हमें इस्लामाबाद और इसके इदारों के फैसलों में झलकता नजर आता है। दानिश इरशाद का मजीद कहना है कि सियासी तारीख के तनाजुर में पीपल्स पार्टी से किसी हद तक एक मुख्तलिफ और सियासी लचकदार किरदार की तवक्को की जा सकती थी। उनके मुताबिक पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के हालिया बयानात पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर में उनकी बरसरी इक्तदार जमात से हालिया सख्त फैसलों के बारे में कोई मशावरत नहीं की गई थी। दानिश इरशाद का इल्ज़ाम है कि दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून विफाक में बरसरी इक्तदार होने के नाते इस बहरान को टालने में एक अहम किरदार अदा कर सकती थी। समिन, कलदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से रियासती हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात की

आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से इस वक्त वादी की आवाज पेश किया जा रहा है। समीन, अगर पाकिस्तानी मुआशरा बेहिस हो चुका है तो सानियात पर रकम, हमदर्दी और बहस क्यों दिखाई देती है, और अगर बेहिस नहीं तो फिर इज्तिमाई रद्दअमल इतनी जल्दी नए खबरों के हजूम में क्यों गुम हो जाता है। हानिया हमीद का वाक़ा अपनी नवियत में मुनफरिद जरूर है, लेकिन ये पहला मौका नहीं जब किसी इंसानी अलमिये ने पाकिस्तानी मुआशरे को झुंझोड़ा हो। सवाल यह कि ऐसे वाक़ात पर इब्तदाई ख़म व गुस्से के बाद क्या होता है। चंद रोज़ कबल पंजाब के शहर चकवाल में 9 साल हानिया हमीद की हलाकत न सिर्फ मकामी बल्कि बैन अवी मीडिया की तवज्जो का भी मौजू बन गई। ऑस्ट्रेलिया के शहर में खानदान के साथ रहने वाली हानिया अपने आबाई शहर चकवाल आई थी, ताहम 10 जून को एक अफसोसनाक वाकये में मुबैन तौर पर गलत शनाख्त के नतीजे में सीसीटी अहलकार की फायरिंग से उनके वालिद और भाई शदीद जख्मी हो गए, जबकि हानिया जान की बाजी हार गई। हानिया की हलाकत की खबर ने हजारों किलोमीटर दूर ऑस्ट्रेलिया में भी गहरे दुख और तशवीश को जन्म दिया। मकामी कम्युनिटी ने इसे एक इज्तिमाई सदमा करार दिया, जबकि ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम ने पाकिस्तान से मुकम्मल और खैर जानबदाराना तहकीकात का मुतालबा किया है। ऑस्ट्रेलवी हुकूमत की इस वाकये से दिलचस्पी के बाद पाकिस्तान में न सिर्फ शहरी और रियासत का ताल्लुक जेरी बहस है, बल्कि सोशल मीडिया सार्फीन और समाजी कारकुनान ये सवाल भी उठा रहे हैं कि पाकिस्तान में ऐसे सानियात पर इज्तिमाई रद्दअमल अक्सर मुख्तसर, वक्ती और महदूद क्यों रह जाता है। सभी मुख्तलिफ बैन अल-अक़वामी इदारों के लिए इस वाक़े की रिपोर्टिंग करने वाले चकवाल के सहाफियों के मुताबिक दोनों माशरों में सदमे और दुख की शिद्दत शायद मुख्तलिफ नहीं, अलबत्ता रियासती रद्दअमल जरूर मुख्तलिफ है। उनका कहना था कि चकवाल में लोग शदीद दुख और सदमे का शिकार हैं। बच्चे पूछते हैं कि इतनी छोटी बच्ची को क्यों मार दिया गया। दूर दराज इलाकों से लोग ताजियत के लिए आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी ये मामला बड़े पैमाने पर जेर बहस है। पूरा माशरा शदीद अजियत में है। उनके मकौल अलबत्ता रियासती रद्दअमल में वाजिया फर्क है। ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम ने वाकये पर फौरी रद्दअमल दिया, जबकि पाकिस्तान में आला सियासी क्यादत खामोश नजर आई। समाजी तजियाकारों के मुताबिक इस तरह के मुख्तलिफ रद्दअमल दरअसल रियासत और इसके शहरियों के ताल्लुक की नवियत को जाहिर करते हैं। वो कहते हैं कि रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी शहरियों की जानो माल का तहफ्फुज है। मगरबी ममालिक इस हवाले से बहुत हसास हैं। पाकिस्तानी माशरा अलग अलग दायरे में सफर कर रहा है। माहरीन के मुताबिक जब लोग बार बार ऐसे वाकात देखते हैं जिनमें जानों का जिया होता है मगर इसके बावजूद जिंदगी और निजाम इसी तरह चलता रहता है तो लोग आदी हो जाते हैं, उनकी हसासियत नरम पड़ जाती है। समीन, पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में सीसीटी के क्याम के बाद पहले 8 माह में 924 अफराद हलाक हुए। दूसरी जानिब पाकिस्तान में हर साल हजारों अफराद सड़क हादसात में जान गंवा देते हैं। माहरीन कहते हैं कि इज्तिमाई बेहसी भी है, लेकिन इससे ज्यादा इज्तिमाई मायूसी है। बहुत ही कम ऐसी मिसालें हैं जब एहतजाज, बहस या अवामी दबाव के नतीजे में शहरियों को इंसाफ मिला। लोग यकीन कर चुके हैं कि उनकी आवाज या उनका एहतजाज कोई तब्दीली नहीं ला सकता। वो बस थोड़ी देर के लिए इस सदमे से गुजरते हैं, फिर कोई और वाका उनकी तवज्जो का मरकज बन जाता है। माहरीन कहते हैं कि पाकिस्तान में किसी की मौत पर ऐसे जुमले अक्सर सुनने को मिलते हैं कि किस्मत में यही लिखा था, बस यही तक जिंदगी थी। यह रवैया एक तरफ सदमे को बर्दाश्त करने में मदद देता है, लेकिन दूसरी तरफ सानिया की वजूहात, जिम्मेदारियों और एहतसाब के सवालात को पस मंजर में धकेल देता है। समझिए थी चंद बातें पाकिस्तानी माशरे के हवाले से। अब प्रोग्राम के आखिर पर इस नातिये कलाम से फैजियाब होते हैं।

स्पोर्ट्स टाइम लेकर हम हाजिर। आज प्रोग्राम के पिछले हिस्से में बात होगी वर्ल्ड कप फुटबॉल के हवाले से। आगाज में एक नजर डालते हैं पिछले चंद दिनों के दौरान हुए अहम मुकाबलों पर। वर्ल्ड कप फुटबॉल का एक बेहद दिलचस्प मुकाबला इस महीने की 15 तारीख को खेला गया। इस मुकाबले में साबिक आलमी चैंपियन और मौजूदा वर्ल्ड कप की एक फेवरेट टीम स्पेन के सामने थी केप वर्ड। शायद दुनिया के बेशतर अफराद ने यह नाम वर्ल्ड कप शुरू होने के बाद ही सुना होगा। दरअसल ये एक बेहद छोटा सा मुल्क है जिसकी आबादी महज 5 लाख अफराद पर मुश्तमिल है, जो कि अटलांटिक ओशन में आबाद है। केप वर्ड को पहली मर्तबा वर्ल्ड कप में शिरकत करने का मौका फराहम हुआ है। इसका पहला ही मुकाबला दुनियाई फुटबॉल की एक बेहद ताकतवर टीम स्पेन के साथ खेलना था। उम्मीद और यूं कहिए कि डर भी इस बात का था कि स्पेन इस जैसी टीम के खिलाफ न जाने कितने गोल स्कोर करके इससे पूरी तरह से रौंद डालेगी। कहा जाता है कि किसी शख्स ने स्पेन की जीत पर 1 मिलियन का बेट भी लगाया था, लेकिन सारे शरायत तजियों और उम्मीदों के सामने एक खिलाड़ी दीवार बनकर खड़ा हो गया। ये थे केप वर्ड के गोलकीपर वर्जीनिया। 40 साल वर्जीनिया वर्ल्ड कप फुटबॉल का पहला मैच खेल रहे थे। दरअसल इस उम्र तक पहुंचते दुनिया के बेशतर फुटबॉलर्स रिटायरमेंट का फैसला ले चुके होते हैं। तहम वर्जीनिया को इस उम्र में डेब्यू करके एक ऐसी तारीख लिखनी थी जिससे न सिर्फ मेहनत पैशन फुटबॉल में एक बेहतरीन गोलकीपर की अहमियत के साथ साथ उन्हें और उनके मुल्क को पहचान मिलनी थी। 75% बॉल पोजीशन के साथ साथ स्पेन के नामी गिरामी मिडफील्डर्स और स्ट्राइकर्स ने गोल स्कोर करने की हर एक तरकीब आजमाई। हत्ता कि 27 मरतबा वो केप वर्ड के गोल पोस्ट पर हमला आवर भी हुए। तहम वर्जीनिया की फुर्ती, उनकी पैशन और उनकी सूझबूझ को वो कमजोर न कर पाए। केप वर्ड न सिर्फ वर्ल्ड कप फुटबॉल में अपना पहला पॉइंट हासिल करने में कामयाब हुआ बल्कि इससे दुनिया में एक पहचान भी मिली। इमेजिन कीजिए कि कश्मीर के एक छोटे से जिले की टीम वर्ल्ड कप फुटबॉल में शिरकत कर रही है और स्पेन जैसी टीम के साथ पॉइंट शेयर करती है। इस मुकाबले से कबल वर्जीनिया के पास 43,000 फॉलोअर्स थे। इस मुकाबले के बाद लम्हों में ही यह तादाद 2.5 मिलियन तक पहुंच गई। माली मुश्किलात की वजह से वर्जीनिया अपनी मां को वर्ल्ड कप देखने के लिए अपने साथ न ले जा सके। 17 जून को खेले गए एक और मुकाबले में दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना अल्जीरिया को 3-0 से हराने में कामयाब हुई। वर्ल्ड कप फुटबॉल

0: 20 में अर्जेंटीना का यह पहला मुकाबला था, अगरचे तजियाकारों की ज्यादातर नजर इस बात पर थी कि बतौर टीम अर्जेंटीना किस तरह का खेल पेश करेगी और क्या चार साल का अरसा गुजरने के बाद अर्जेंटीना की टीम टाइटल का दिफा करने की सलाहियत रखती है या नहीं। ताहम पूरी दुनिया में मौजूद करोड़ों शायकीन को अपने फेवरेट स्टार लायोनेल मेसी के खेल पर नजरें टिकी हुई थी। मेसी ने इस मुकाबले में अपने मद्दाहों को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया जब उन्होंने इस मुकाबले में हैट्रिक स्कोर की। यूं अर्जेंटीना के तीनों गोल इसके कप्तान लायोनेल मेसी ने स्कोर किए। वर्ल्ड कप मुकाबलों में अजीम लायोनेल मेसी की ये पहली हैट्रिक थी जिसकी बदौलत अब वो वर्ल्ड कप मुकाबलों में सबसे ज्यादा गोल स्कोर करने के एतबार से जर्मन खिलाड़ी मिरास्लाव क्लोज के हम पल्ला आ गए हैं। दोनों वर्ल्ड कप मुकाबलों में 16-16 गोल स्कोर करने का रिकॉर्ड रखते हैं। इस बात का कवी इम्कान है कि इस वर्ल्ड कप के दौरान मेसी यह रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं। एशियाई ममालिक की बात करें तो इराक को नॉर्वे के हाथों 4-1, जॉर्डन को ऑस्ट्रेलिया के हाथों 3-1 से, उज्बेकिस्तान को कोलंबिया के हाथों इसी मार्जिन से, जबकि कतर को कनाडा के हाथों 6-0 की एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। तहम एक कांटेदार मुकाबले के बाद जनूबी कोरिया को मेजबान मैक्सिको के हाथों 1-0 से हार का सामना करना पड़ा। इस जीत के साथ ही मेक्सिको वर्ल्ड कप फुटबॉल 2026 की पहली ऐसी टीम बनी जिसने राउंड ऑफ 32 यानी दूसरे राउंड के लिए क्वालिफाई किया है। मेक्सिको ने अपने पहले मुकाबले में जनूबी अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया था जबकि जनूबी कोरिया ने चेक रिपब्लिक को 2-1 से शिकस्त दी थी। ग्रुप ए में जनूबी कोरिया को अपने आखिरी मुकाबले में जनूबी अफ्रीका को हराना होगा तभी वो अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर सकती है। माजी में हॉकी और अब क्रिकेट का पावर हाउस, आबादी के लिहाज से दुनिया के सबसे बड़े मुल्क यानी भारत में फुटबॉल का खेल क्यों परवान नहीं चढ़ा। कैप वर्डी, क्यूरासाओ, न्यूजीलैंड, आइवरी कोस्ट और दीगर कई एक बेहद छोटे ममालिक से ताल्लुक रखने वाली टीमें अगर वर्ल्ड कप फुटबॉल में क्वालिफाई कर सकती हैं तो भारत क्यों नहीं ऐसा कर पाता है। सुनते हैं हमारे साथी जावेद परे की जुबानी।
1: भारत आबादी के लिहाज से यूं कहिए दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। 1.5 अरब की आबादी वाले इस मुल्क के शहरी जब मौजूदा वर्ल्ड कप फुटबॉल के मैचेस देखते होंगे तो जरूर सर्द आह भरते होंगे कि काश उनके मुल्क के खिलाड़ी भी दुनिया के इस सबसे बड़े खेल मुकाबले में खेलते नजर आते। मन ही मन में बेशुमार भारतीय शायकीन इस सोच में तमन्ना करते होंगे कि ब्लू टाइगर्स के खिलाड़ी भी आलमी कप फुटबॉल में एक्शन में नजर आते। माजी पर नजर दौड़ाएं तो भारत कभी भी एशियन जोन क्वालिफायर्स के प्रिलिमिनरी राउंड से आगे नहीं बढ़ पाया है, लेकिन हैरानगी की बात यह है कि भारत की कई रियासतों जैसे मगरबी बंगाल, केरला और गोवा में फुटबॉल को जुनून की हद तक पसंद किया जाता है। यही नहीं, इस मुल्क से सैकड़ों की तादाद में जर्नलिस्ट्स वर्ल्ड कप के मैचेस को कवर करने के लिए शुमाली अमेरिका के बरअज़म पहले ही पहुंच चुके हैं, हालांकि उनके मुल्क की टीम का इन मुकाबलों में सिरे से नाम ही नहीं है। एक भारतीय जर्नलिस्ट जिन्होंने पिछले 4 वर्ल्ड कप फुटबॉल मुकाबलों को कवर किया है कहते हैं कि कई मरतबा उन्हें प्रेस बॉक्स में बड़े परेशान कुन सवालों का भी सामना करना पड़ता है, जैसे कि क्या भारत में फुटबॉल खेली जाती है या नहीं, क्योंकि बाहरी ममालिक में भारत को एक क्रिकेटिंग नेशन के तौर जाना जाता है। भारत की तरह दुनिया के दूसरे सबसे बड़े आबादी वाले मुल्क चीन का भी फुटबॉल में कोई नाम नहीं है और ये मुल्क भी कभी फुटबॉल वर्ल्ड कप के मेन राउंड्स तक नहीं आ पाया है। लेकिन फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा को इस बात का बखूबी इल्म है कि भारत और चीन जैसे बहुत बड़े मार्केट की तंजीम के लिए क्या अहमियत है। अभी तो टूर्नामेंट शुरू होने से कुछ अरसा पहले तंजीम की तरफ से एक वफद भारत रवाना कर दी गई ताकि वर्ल्ड कप के मैचेस भारत में दिखाने के लिए नशरियात की डील को फाइनल कर दिया जाए। तो क्या भारत के लिए वर्ल्ड कप फुटबॉल में खेलने का ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर हो सकता है? भारतीय फुटबॉल के आज तक के अजीम फुटबॉलर्स में से एक बाईचैंग भूटिया का कहना है, हाँ भारत वर्ल्ड कप में खेल सकता है। کیونکہ ناممکن تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ایشین ٹیمز کے لیے کوٹا کو بڑھا کر 8 کر دیا گیا ہے، بلکہ اس مرتبہ عراق کو شامل کر کے یہ تعداد 9 تک آ گئی ہے۔ اس مرتبہ ورلڈ کپ میں ایشیا سے ازبکستان اور اردن کی ٹیمیں بھی کھیل رہی

0: हैं ताहम भारत के लिए ये सफर मेहनत से भरपूर होगा। बूटिया का साथ में ये भी मानना है कि भारत जैसे बड़े मुल्क में टैलेंट की बिल्कुल कमी नहीं है, बस अगर किसी चीज की कमी है तो वो सही इकोसिस्टम की, क्योंकि हमारे यहाँ एक अच्छा दूरस्थ ग्रास रूट प्रोग्राम नहीं है। फुटबॉल दुनिया का मकबूल तरीन टीम स्पोर्ट है और नताइज दिखाने के लिए हमें वक्त दरकार है। श्याम थापा जो 1970 की एशियन गेम्स में उस भारतीय टीम के रुकन थे जिन्होंने उन खेलों में कांसे का तमगा जीता था, कहते हैं कि हमें एक सस्टेन्ड ग्रास रूट प्रोग्राम की जरूरत है ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस खेल की तरफ रागिब किया जा सके। थापा को मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास वालदेन से शिकायत है कि वो अपने बच्चों को फुटबॉल से दूर और सिर्फ क्रिकेट की तरफ ले जा रहे हैं। वो मजीद कहते हैं, मैंने काफी साल एक यूथ एकेडमी चलाई है और मैं वसूख के साथ कहता हूँ जितने ज्यादा छोटे बच्चे इस खेल की तरफ आएंगे उतने ही ज्यादा चांसेस इस खेल में हमारे लिए बढ़ेंगे। ताहम वो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को हदफ तनकीद बनाते हैं कि इस इदारे ने इस चीज के लिए क्या इकदाम उठाए हैं। थापा आगे कहते हैं कि बेशतर वालदेन अपने बच्चों को क्रिकेट कोचिंग कैंप्स की तरफ ले जा रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि कम से कम उन्हें इंडियन प्रीमियर लीग के पैसों से भरपूर कॉन्ट्रैक्ट्स ही मिल जाएं। एशियन जोन से जिन 9 टीमों ने इस मरतबा के आलमी कप के लिए क्वालिफाई किया है उन पर एक तायराना नजर डालें तो भारत के लिए दुश्वार गुजार सफर आप बेहतर तौर समझ सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया, ईरान, जापान, उर्दुन, जनूबी कोरिया, उज्बेकिस्तान, कतर, सऊदी अरब और इराक ऐसी टीमें हैं जो 2026 के आलमी कप में इस खत्ते से शिरकत कर रही हैं। इनमें उर्दुन और उज्बेकिस्तान ऐसी टीमें हैं जो पहली मरतबा आलमी कप में शरीक हो रही हैं। ये दोनों टीमें फुटबॉल की आलमी रैंकिंग में भारत से ऊपर हैं। उज्बेकिस्तान इस रैंकिंग में 52वें और उर्दुन 63वें नंबर पर है, जबकि भारत की मौजूदा फीफा रैंकिंग 136 है। इससे आप बासानी समझ सकते हैं कि भारत के आगे ये सफर किस हद तक दुश्वार है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के मौजूदा सदर कल्याण चौबे ने 2022 में ओहदा संभाला तो उनका कहना था, मैं ऐसे ख्वाब नहीं बेचूंगा कि अगले 8 साल में भारत आलमी कप के मेन ड्रॉज में होगा, बल्कि मैं यूं कहूंगा कि हम भारत को मौजूदा हालत से बेहतर हालत में ले जाएंगे। 2022 के इन अल्फाज से अब तक 4 साल गुजर गए हैं, तो क्या उनकी इंतजामिया किसी हद तक इस मकसद में कामयाब हो पाई है? कई फुटबॉल मुबस्सिरीन का मानना है कि भारत पिछले 3 सालों में इस खेल में काफी हद तक पीछे चला गया है। 2014 में फेडरेशन ने कौमी सतह पर क्लब बेस्ड टूर्नामेंट इंडियन सुपर लीग मुतारिफ कराया। इसकी खासी पजीराई हुई। तिजारत, बॉलीवुड और क्रिकेट के नामी गरामी लोगों ने इंडियन सुपर लीग में इन्वेस्ट किया। बड़े पेशावराना तरीके से लीग चलाई गई और कई नामी गरामी फॉरेन खिलाड़ियों के खिदमात हासिल की गई। ताम लीग का मुस्तकबिल अब बड़ा ही गैर यकीनी और शकुको शुभात का शिकार है। ताजा तरीन इंडियन सुपर लीग में इस मरतबा खासी देरी हुई क्योंकि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन कमर्शियल पार्टनरशिप के लिए बिडर्स को रागिब करने में बुरी तरह नाकाम रही और फिर आखिर में किसी तिजारती पार्टनरशिप के बिना ही एक कटौती शुदा इंडियन सुपर लीग एडिशन को मुनक़द कराया गया। इसके तनाजुर में चौबे के 2047 के विजन को जरा देखिए जिसमें 35 मिलियन बच्चों को फुटबॉल में लाने की बात कही गई है। जाहिर है बड़े बड़े टारगेट्स को सेट करना और ऑन फील्ड रिजल्ट्स में जमीन और आसमान का फर्क होता है। भारतीय कौमी फुटबॉल टीम के लिए पिछले 4 सालों में एक लम्हा ऐसा आया जब लगा कि भारतीय फुटबॉल टीम सही ट्रैक पर आने लगी है। वो था 2023 में जब टीम ने इनविटेशनल टूर्नामेंट और सैफ चैंपियनशिप जीती। तब भारत आलमी रैंकिंग में पहली मरतबा पहले 100 ममालिक में जगह पाने में कामयाब हो गया था, लेकिन तब से हम बस नीचे ही जा रहे हैं।
1: आखिर पर एक नज़र दीगर चंद एक खेल सरगर्मियों पर। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के माबैन सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच जारी है। पहले मुकाबले की बनस्बत इस मुकाबले में न्यूजीलैंड ने पहली इनिंग्स में कदरे बेहतर बल्लेबाजी करते हुए कैन विलियमसन की गैर मौजूदगी के बावजूद 391 रन स्कोर किए हैं। इस इनिंग्स की शुरुआत में न्यूजीलैंड

0: योजना का आरंभ हुआ।
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
0: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत के युवाओं की आकांक्षाएं, कौशल और क्षमता ही विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करती हैं।
0: भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े। जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले, और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले।
1: इस अवसर पर श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं।
2: 2014 के पहले ऐसी स्थिति थी, 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 0.08% एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता था, लेकिन आपके कार्यकाल में 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 1.11% एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। कोयला गैसीकरण ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने, आयातित महत्वपूर्ण कच्चे माल पर निर्भरता कम करने और घरेलू कोयला संसाधनों में मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने की भारत की रणनीति का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत का रक्षा उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। महाराष्ट्र के नागपुर में एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने ये बात कही।
2: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन मात्र 46,000 करोड़ था, लेकिन आज भारत फाइनेंशियल ईयर यानी 2025-26 का डाटा देखें तो वह अब बढ़कर रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो चुका है। इसके अलावा 2014 के समय भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट था वह अप्रॉक्सिमेटली 1,000 करोड़ था। इस समय हम अप्रॉक्सिमेटली 40,000 करोड़ रुपए का हम आज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यह केवल आंकड़ों की वृद्धि नहीं है बल्कि आप सबके सामर्थ्य की वृद्धि है।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश में पासपोर्ट सेवा अब तेज, सुरक्षित और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई है। नई दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब देश के दूर दराज इलाकों तक पासपोर्ट सेवाएं पहुंच रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि ये बदलाव डिजिटल शासन की सफलता का प्रमाण है।
3: As our foreign policy,
4: हमारी विदेश नीति भारत को एक विश्व बंधु के रूप में स्थापित करती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय पासपोर्ट को सम्मान और विश्वास के साथ देखा जाता है। हमारी जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना है कि इस दस्तावेज को प्राप्त करने की प्रक्रिया एक अधिकार का मामला बने, न कि एक संघर्ष का।
3: Remains a matter of right, not as a struggle.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास विकास और जन कल्याण

0: प्रसारित कर रहा है। आज बात पूर्वोत्तर के बदलाव के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
1: नए भारत में राष्ट्र निर्माण की बात हो और पूर्वोत्तर क्षेत्र को नजरअंदाज किया जाए, यह संभव नहीं है। एक समय था जब पूर्वोत्तर को हिंसा, नाकाबंदी और उपेक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस तस्वीर को बदल दिया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ने स्वयं 83 से अधिक बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है। इस दौरान दूर दराज और पहाड़ी इलाकों की देश के बाकी हिस्सों से कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिला है और स्थानीय लोगों के लिए आय के नए अवसर पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 47,270 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं और 46,290 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। पिछले 12 वर्षों में 8 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित किए गए हैं। वर्ष 2014 में पूर्वोत्तर राज्यों में 9 हवाई अड्डे थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 17 हो गई है। उड़ान योजना के तहत 90 हवाई मार्गों तथा 12 हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट को चालू किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4,170 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में रेलवे का 100% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। आजादी के बाद पहली बार वर्ष 2022 में मणिपुर तक पहली मालगाड़ी पहुंची। वर्ष 2023 में पहली मालगाड़ी मेघालय पहुंची और वर्ष 2025 में पहली ट्रेन मिजोरम पहुंची। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में ईटानगर के डेरा नानतुंग सरकारी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एम क्यू खान ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में हवाई संपर्क में काफी सुधार हुआ है।
2: 2014 के पहले एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, वो अभी एयर कनेक्टिविटी आ गई है और लोग 2.5 घंटे में ईटानगर से दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो होलंगी एयरपोर्ट से कलकत्ता जाइए, कलकत्ता से कहीं भी जा सकते हैं, दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट से।
1: वहीं पूर्वोत्तर के विकास को गति देने के लिए पीएम डिवाइन योजना के तहत कुल 6,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में गुवाहाटी के एक स्थानीय निवासी ने कहा कि क्षेत्र में सड़क और हवाई संपर्क पहले की तुलना में काफी बेहतर हुआ है।
3: मोदी गवर्नमेंट का ये 10 साल बहुत अच्छा से पार हुआ है और ये जो हम लोगों का आसाम का नया एयरपोर्ट बन गया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बन गया और सड़कों का भी हालत काफी सुधर गया है। अभी बहुत जल्द से जल्द हम लोग बहुत दूर तक जा सकते हैं और गांव का कनेक्टिविटी भी अच्छा हुआ है।
1: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर के 8 राज्य, जिन्हें अष्टलक्ष्मी भी कहा जाता है, विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि ये अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में ये फैसला सुनाया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर कड़ी फटकार लगाई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देता है तथा उनका इस्तेमाल अपने हितों के लिए करता है।
5: This is the country. यह वह देश है जहां मौजूदा रक्षा मंत्री राज्य की नीति के रूप में आतंकवादियों की मेजबानी करने, उन्हें प्रशिक्षित करने और तैनात करने की डींगे हाँकते हैं और फिर भी पाकिस्तान खुद को आतंकवाद का शिकार बताता है। वास्तव में यह एक ऐसा विरोधाभास है जिसे केवल पाकिस्तान ही कायम रख सकता है। यह एक फ्रैंकेनस्टीन स्टेट का जीवंत उदाहरण है जो तब हैरान रह जाता है जब उसका अपना ही बनाया हुआ राक्षस उसे वापस काट लेता है।
0: लेबनान पर इसराइल के हमले में 21 लोगों की मौत के बाद अमरीका और ईरान के बीच शांति वार्ता का नया दौर स्थगित हुआ। बाद में इसराइल और हिजबुल्ला युद्ध विराम पर सहमत हुए, हालांकि इसराइल और हिजबुल्ला ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की है। इस बीच अमरीका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में प्रस्तावित शांति वार्ता स्थगित कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राम मंदिर के दान के कथित गबन में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर कड़ी

0: कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि विशेष जांच दल की जांच के जरिए 15 दिनों के भीतर सच्चाई सामने आ जाएगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 पौष अधिनियम के अंतर्गत व्यापक उपायों के तत्काल और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक परामर्श जारी किया है। आयोग ने राज्य सरकारों और जिला प्रशासनों द्वारा त्वरित कार्रवाई के लिए 18 उपायों की सिफारिश की है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में रविवार तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। असम और मेघालय में अगले 3 से 4 दिनों तक तेज वर्षा की संभावना है। विभाग ने मछुआरों को 24 जून तक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में नहीं जाने की सलाह दी है। चीन में मकाऊ ओपन बैडमिंटन की महिला सिंगल्स में अश्मिता चालिहा सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में अश्मिता ने कोरिया की किम मिन सन को हराया। चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के दूसरे चरण में भारत ने 6 पदक पक्के कर लिए हैं। आज प्राची और मीनाक्षी ने अंतिम 4 में स्थान पक्का किया। पुरुष वर्ग में दीपक और निखिल ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में भारतीय युवा वैश्विक विकास नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने चिन्हित फुटपाथ पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया। इसके कार्यान्वयन के लिए एक नियामक निकाय गठित करने को कहा। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देने तथा तैनात करने का आरोप लगाते हुए उसकी संयुक्त राष्ट्र में कड़ी आलोचना की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: यह आकाशवाणी का स्ट्रीमिंग स्टेशन है। मीडियम 268.8 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। समीन, आइए चंद फिल्मी नगमे सुनते हैं। आगाज में सुनते हैं तेरे नाम फिल्म का ये नगमा।

जसमीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से फिल्मी नगमे समाप्त कर रहे हैं। आगाज में आपने तेरे नाम फिल्म से नगमा सुना, उदित नारायण, अलका याग्निक और साथियों की आवाज़ों में। आइए अब फिल्म कोई मिल गया से ये नगमा सुनते हैं।

0: समीना, आप फिल्मी नगमे से बात कर रहे थे। आखिर में आपने हंगामा फिल्म से उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में यह नगमा सुना। यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है, मीटर व्यू 268.81 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। 9:15 होने वाले हैं। आइए आकाशवाणी दिल्ली से खबरें सुनते हैं। खबरों के लिए बस थोड़ा सा इंतज़ार।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2,400 करोड़ रुपए मालियत की तरगीबात तकसीम की। उन्होंने कहा कि आइंदा बरसों में भारतीय नौजवान आलमी तरक्की को फरोग देने, इख्तिरा और इंटरप्रेन्योरशिप में कायदाना रोल अदा करेंगे। 25,000 करोड़ रुपए की लागत से कोयले से अमोनियम नाइट्रेट तैयार करने वाला मुल्क का पहला कमर्शियल प्लांट उड़ीसा के झारसुगुड़ा में कायम किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि चलने के लिए मखसूस फुटपाथ पर चलने का हक एक बुनियादी हक है। उसने इसके नफाज के लिए एक इंजिबाती इदारे के क्याम पर जोर दिया है। भारत ने पाकिस्तान पर दहशतगर्दों को पनाह देने, उन्हें तरबियत फराहम करने और उन्हें दूसरे मुल्कों में भेजने का इल्ज़ाम लगाते हुए अक़वामे मुत्तहिदा में उसकी सख्त नुक्ताचीनी की है। लेबनान पर इसराइली हमले में 21 अफराद की हलाकत के बाद अमरीका और ईरान के बीच बराह रास्त अमन बातचीत का नया दौर मुलतवी हो गया है। बाद में इसराइल और हिजबुल्ला जंगबंदी पर मुत्तफिक हुए। और बैडमिंटन में कल चीन में मकाऊ ओपन टूर्नामेंट के खवातीन सिंगल्स के सेमीफाइनल में भारत की अश्मिता चलिहा का मुकाबला पार गायुन से होगा। अब खबरें तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एक तकरीब में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2,400 करोड़ रुपए मालियत की तरगीबात तकसीम की। PMVBRY के नफाज के तहत तरगीबात तकसीम किया जाना एक अहम संग मील की हैसियत रखता है, जो रोजगार से मुंसलिक हुकूमत की अहम तरगीबाती स्कीम है, जिसका मकसद रोजगार के मौके पैदा करने में तेजी लाना, रोजगार फराहम करने में इजाफा और मुख्तलिफ शोबों में समाजी सिक्योरिटी को वसत देना है। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 21वीं सदी में उन ममालिक में मौके फराहम होंगे जो हुनरमंदी को फरोग देंगे, इख्तिरा में इजाफा करेंगे और क्वालिटी के आला तरीन मेयारात को बरकरार रखेंगे। उन्होंने कहा कि भारत आगे बढ़कर कायदाना रोल अदा करने के लिए तैयार है। जनाब मोदी ने कहा कि आइंदा बरसों में भारतीय नौजवान आलमी तरक्की में इजाफे, इख्तिरा और कारोबार को बढ़ाने के सिलसिले में अहम किरदार अदा करेंगे।
2: भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक

0: है, इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े, जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले, और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले।
1: जनाब मोदी ने कहा कि पीएम विकसित भारत रोजगार योजना का मकसद पहली मर्तबा रोजगार हासिल करने वालों को बाख्तियार बनाना और नौजवानों और सनअत के दरमियान एक पुल का रोल अदा करना है। उन्होंने कहा कि उमंगें, हुनरमंदी और भारतीय नौजवानों की सलाहियत विकसित भारत की राह मुतय्यन करती हैं। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि स्कीम के अब तक तकरीबन 70 लाख नौकरियां कायम की जा चुकी हैं।
0: प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं और आज इन्हीं में से करीब 10 लाख युवा साथियों को अपनी पहली नौकरी में 6 महीना पूरा करने पर इस योजना के तहत उसके लाभार्थ के नाते इंसेंटिव भी मिल चुका है। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है।
1: स्कीम के तहत पहली बार रोजगार हासिल करने वाले 15,000 रुपए तक की तरगीबात के अहल होते हैं, जो उन्हें अफरादी कुवत की हैसियत से तस्लीम किए जाने में अहम मदद फराहम करती है। रोजगार के इजाफी मौके पैदा करने वाले आजिर 3,000 रुपए फी माह तक की तरगीबात के अहल होते हैं, जो फी इजाफी रोजगार पाने वाले के हिसाब से दी जाती है, जिससे रोजगार के पायदार मौके की हौसला अफजाई होती है। इससे कबल तरगीबात की तकसीम से पहले वजीर आजम ने विज्ञान भवन में कुछ नौजवानों से बातचीत की। इस मौके पर खिताब करते हुए मेहनत और रोजगार के वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि मोदी हुकूमत ने वर्करों की बहबूद और मफादात की खातिर 4 अहम लेबर कोड नाफिज किए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल उड़ीसा में झारगोड़ा के लखनपुर में कोयले को गैस में तब्दील करने के अमल से मुतालिक प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखेंगे। इस प्रोजेक्ट की तखमीना लागत 25,000 करोड़ रुपए है। कोयले की वजारत ने बताया कि यह प्रोजेक्ट मुल्क की पहली कमर्शियल सतह की कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने की सहूलत की तारीखी संग मील की निशानदेही करता है। ये प्रोजेक्ट भारत कोल गैसिफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड के जरिए तैयार किया गया है, जो कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड एंड कोल इंडिया लिमिटेड का एक मुश्तरका इदारा है। यह देसी साख्ता कोयले को गैस में तब्दील करने के अमल का इस्तेमाल करते हुए 2000 टन योमिया अमोनियम नाइट्रेट की पैदावार करेगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज अपनी आबाई रियासत के दो रोजा दौरे पर उड़ीसा पहुंची। खराब मौसमियाती सूरतहाल के पेश नजर मयूरभंज जिले की डंडबोस हवाई पट्टी पर उनकी तयशुदा परवास की लैंडिंग मनसूख कर दी गई, जिसकी वजह से पड़ोसी रियासत मगरबी बंगाल के कलाईकुंडा एयरबेस से राय रंगपुर सड़क के जरिए सफर किया। अपनी आमद के फौरन बाद सदर जमहूरिया ने एम्स भुवनेश्वर सेटेलाइट सेंटर और राय रंगपुर में एक मेगा सब डिविजनल हेल्थ कैंप का इफ्तिताह किया। इस पहल से शुमाली उड़ीसा के लोगों के लिए सेहत की देखभाल की मियारी सहूलत की फराहमी में मदद मिलेगी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज कहा है कि भारत की घरेलू सतह पर दिफाई साजो सामान की तैयारी 2014 में 46,000 करोड़ रुपए से बढ़कर गुज़िश्ता माली बरस में रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई। उन्होंने कहा कि दिफाई साजो सामान की बरामदात जो 2014 से पहले सिर्फ 1,000 करोड़ रुपए थी, वो अंदरून मुल्क तैयार करता भारतीय दिफाई साजो सामान की बढ़ती आलमी मांग के सबब बढ़कर तकरीबन 40,000 करोड़ रुपए हो गई है। जनाब सिंह नागपुर के अंबाझरी में यंत्र इंडिया लिमिटेड की हथियारों की फैक्ट्री में 10,000 टन एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन प्रेस का संग बुनियाद रखे जाने के बाद खिताब कर रहे थे। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस नए एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन प्रेस से नागपुर और विदर्भ खित्ते में दिफाई साजो सामान की तैयारी का इको निजाम मुस्तहकम होगा।
2: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन मात्र 46,000 करोड़ था, लेकिन आज भारत फाइनेंशियल ईयर यानी 2025-26 का डाटा देखें तो वह अब बढ़कर रिकॉर्ड 1,00,000

0: 78,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो चुका है। इसके अलावा 2014 के समय भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट था वह अप्रोक्सीमेटली 1,000 करोड़ था। इस समय हम अप्रोक्सीमेटली 40,000 करोड़ रुपए का हम आज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यह केवल आंकड़ों की वृद्धि नहीं है बल्कि आप सबके सामर्थ्य की वृद्धि है।
1: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज हुक्म दिया है कि चलने के लिए मखसूस फुटपाथ पर पैदल चलने का हक एक बुनियादी हक है। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और एएस चंद्रोकर पर मुश्तमिल एक बेंच ने फैसला सुनाया है कि एक शहरी का चलने के लिए मखसूस फुटपाथ पर चलने का हक बुनियादी है और उसे मोटर गाड़ियों की आमदोरफ्त पर तरजीह दी जानी चाहिए। एक अहम फैसले में अदालत आलिया ने कहा है कि आर्टिकल 19(1)(d) के तहत आमदोरफ्त के हक की गारंटी का एक हिस्सा है और इसमें आर्टिकल 21 के तहत जिंदगी के हक और जीने की आजादी समेत दीगर बुनियादी हुकूक शामिल हैं। अदालत उज़्मा का यह फैसला मोटर गाड़ी के एक अफसोसनाक हादसे में

0: एक अहम फैसले में अदालत आलिया ने कहा है कि आर्टिकल 19(1)(d) के तहत आमदोरफ्त के हक की गारंटी का एक हिस्सा है और इसमें आर्टिकल 21 के तहत जिंदगी के हक और जीने की आजादी समेत दीगर बुनियादी हकूक शामिल हैं। अदालत उज़्मा का यह फैसला मोटर गाड़ी के एक अफसोसनाक हादसे में मुआवजे के केस में सामने आया है, जहां एक बाप ने स्कूल ले जाते वक्त अपने 5 साल बेटे को खो दिया। भारत ने पिछले 12 साल में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की दूरंदेश क़यादत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों की बुनियाद पर काबिले ज़िक्र तब्दीलियां की हैं। इस दौरान मोदी हुकूमत ने गरीबों, किसानों, ख़वातीन और नौजवानों की भलाई और उन्हें बाख्तियार बनाने के लिए बहुत से अहम इकदाम किए हैं। आकाशवाणी का खबरों का शोभा आपके लिए खसूसी फीचर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के पेश कर रहा है। आज हम शुमाल मशरक में बड़ी तब्दीली लाने से मुतालिक हुकूमत की जानिब से किए गए इकदाम का जायजा ले रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: अगर मुल्क की तामीर और तरक्की की बात की जाए तो शुमाल मशरक को नजरअंदाज करना नए भारत में मुमकिन नहीं है। एक वक्त था जब इस खत्ते की पहचान सिर्फ तशद्दुद, नाकेबंदी और नज़रअंदाज होने तक महदूद थी, लेकिन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने इसे बदला। गुज़श्ता 12 साल में वज़ीर आज़म ने 83 मरतबा से ज़्यादा शुमाल मशरक का दौरा किया है। इस दौरान दूरदराज के पहाड़ी इलाकों तक कनेक्टिविटी बढ़ी है, जिसकी वजह से सियाहत को फ़रोग़ मिला है और आमदनी के मकामी ज़राए से मुतालिक मौक़े बढ़े हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 47,270 करोड़ रुपये से ज़्यादा खर्च किए जा चुके हैं और 46,290 किलोमीटर से ज़्यादा का रोड नेटवर्क तामीर किया जा चुका है। आकाशवाणी न्यूज़ से बात करते हुए ईटानगर के डेरा नातुंग के गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर एम क्यू खान ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश में फिजाई कनेक्टिविटी बेहतर हुई है।
2: 2014 के पहले एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, वो अभी एयर कनेक्टिविटी आ गई है और लोग 2.5 घंटे में ईटानगर से दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो होलंगी एयरपोर्ट से कलकत्ता जाइए, कलकत्ता से कहीं भी जा सकते हैं, दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट से।
1: आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में शुमाल मशरक की 8 रियासतें या अष्ट लक्ष्मी तरक्की की नई दास्तान लिख रही हैं। दिल्ली से सुपर्णा साइके की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: भारत ने अख़वाए मुत्तहदा में पाकिस्तान पर दहशतगर्दों को पनाह देने, उन्हें तरबियत फराहम करने और उन्हें दूसरे मुल्कों में भेजने का इल्ज़ाम लगाते हुए इसकी शदीद नुक्ताचीनी की है। भारत ने पाकिस्तान को फ्रैंकनस्टीन स्टेट करार देते हुए कहा कि उसे उस वक्त बेपनाह हैरत होती है जब उसका ही राक्षस उसे जकड़ लेता है। ये बातें अख़वाए मुत्तहदा में भारत के मुस्तकिल मिशन की फर्स्ट सेक्रेटरी अनुपमा सिंह ने कल कहीं। उन्होंने ये बातें उस वक्त कहीं जब पाकिस्तान और इस्लामी तआवुन तंजीम OIC ने अख़वाए मुत्तहदा हाई कमिश्नर की सालाना रिपोर्ट पर गुफ्तगू के दौरान जम्मू और कश्मीर का मामला उठाया। मोहतरमा सिंह ने कहा कि भारत पाकिस्तान और OIC के जरिए दिए गए हवाले का जवाब देने के लिए इस हक को इस्तेमाल करने पर मजबूर है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके मौजूदा वजीर दिफा सरकारी पॉलिसी के तौर पर दहशतगर्दों को पनाह देने, ट्रेनिंग देने और उन्हें दूसरे मुल्कों में भेजने की बात को बड़े फख्र से बयान करते हैं। मोहतरमा सिंह ने कहा कि भारत पाकिस्तान के बेबुनियाद और बदनीयती पर मबनी इल्ज़ाम को यकसर मुस्तरद करता है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अटूट और कभी अलग न होने वाला हिस्सा था, है और रहेगा। वाहिद हल तलब मसला पाकिस्तान का भारतीय इलाकों पर गैर कानूनी कब्जा और उनकी वापसी है। मोहतरमा सिंह ने पाकिस्तान के साथ सिंध तास आबी मुआहदे का जिक्र करते हुए इसे फरसूदा करार दिया। इसराइल और हिजबुल्ला जंगबंदी पर रजामंद हो गए हैं। इससे पहले इस लड़ाई के सबब स्विट्जरलैंड में ईरान और अमरीका के दरमियान जारी बातचीत मुलतवी हो गई थी। ये जंगबंदी आज मकामी वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे से नाफिजुल अमल हो गई है। अमरीका के एक सीनियर अहदेदार ने कहा है कि अमरीका और कतर के मुजाकरातकारों ने ईरान की मदद से यह समझौता तय किया था। अहदेदार ने कहा कि आज सुबह सवेरे लड़ाई के बाद अब इसराइल और हिजबुल्ला के दरमियान जंगबंदी हो गई है। दूसरी जानिब इसराइल और हिजबुल्ला ने फौरी तौर पर जंगबंदी के नफाज की तस्दीक नहीं की है। इससे पहले आज जनूबी लेबनान में इसराइल और हिजबुल्ला के दरमियान शदीद लड़ाई के बाद अमरीका और ईरान के दरमियान अमन मुजाकरात मुअत्तल कर दिए गए थे। बैडमिंटन में भारत की अश्मिता चलिहा आज चीन में जारी मकाऊ ओपन के खवातीन के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गईं। अश्मिता ने क्वार्टर फाइनल में जनूबी कोरिया की किम मिनसन

0: सीधे गेम में और 21-16, 21-18 से हराकर आखिरी चार में अपनी जगह बना ली है। सेमीफाइनल में उनका मुकाबला कल जनूबी कोरिया की पार्क गायुन से होगा। इससे पहले अश्मिता ने राउंड ऑफ 16 में अमरीका की शिखा जायसवाल को 22-20, 21-15 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। दूसरी जानिब भारत की अनमोल खरब क्वार्टर फाइनल में चीन की चौथी पोजीशन की खिलाड़ी हैन क्विंसी से 14-21, 21-15, 21-13 से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गईं। आखिर में खास खबरें एक मरतबा फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2,400 करोड़ रुपए मालियत की तरगीबात तकसीम की। उन्होंने कहा कि आइंदा बरसों में भारतीय नौजवान आलमी तरक्की को फरोग देने, इख्तिरा और एंटरप्रेन्योरशिप में कायदाना रोल अदा करेंगे। 25,000 करोड़ रुपए की लागत से कोयले से अमोनियम नाइट्रेट तैयार करने वाला मुल्क का पहला कमर्शियल प्लांट उड़ीसा के झरसुगुड़ा में कायम किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि चलने के लिए मखसूस फुटपाथ पर चलने का हक एक बुनियादी हक है। उसने इसके नफाज के लिए एक इंजिबाती इदारे के क्याम पर जोर दिया है। भारत ने पाकिस्तान पर दहशतगर्दों को पनाह देने, उन्हें तरबियत फराहम करने और उन्हें दूसरे मुल्कों में भेजने का इल्जाम लगाते हुए अक़वामे मुत्तहदा में इसकी सख्त नुक्ताचीनी की है। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
2: यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। मीडियम में 268.8 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। समय रात के 9:30 और 35 सेकंड हो चुके हैं। पेशे प्रोग्राम हेलो रेडियो क्लिनिक।
3: हेलो रेडियो क्लिनिक वली बोजो सेहत से मुतलिक फोन इन प्रोग्राम हेलो रेडियो क्लिनिक।
4: सामईन आदाब, हेलो रेडियो क्लिनिक प्रोग्राम का ताज़ा शुमार तुहस खदमत में हाजिर। सामईन तुह चत प्रोग्राम मेस मुख्तलिफ अमराजन मुतलिक कथ करान ते मुख्तलिफ डॉक्टर साहिबानन दावत दिवान तिम साल अनान पन्ने स्टूडियोस मज। आज करो इस कथ बचन मुतलिक। अख टर्म वनान इम्यूनोजेनेटिक्स, ये इम्यूनोजेनेटिक्स क्या गो अत बारस मज करो आज कत ते अत पट कत करन खत छ आज साल इनमित पन स्टूडियोस मज डॉक्टर आकिब जफर बांडे साहब यम असिस्टेंट प्रोफेसर छ डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर मज ते विनकेस छ तैनात गवर्नमेंट चिल्ड्रंस हॉस्पिटल बेमिनस मज। डॉक्टर साहब तुहुन सठा इस्तकबाल प्रोग्राम मज।
5: शुक्रिया, तुहुन सठा शुक्रिया बुलाने खतर।
4: डॉक्टर साहब सारी ब्रोह यसो जानुन जे ये इम्यूनोजेनेटिक्स यस ये टर्म छ, ये इम्यूनोजेनेटिक्स क्या गो अत मुतलिक मन तो गड़ सान बोझन वाली।
5: इस ये टर्म छ इम्यूनोजेनेटिक्स अथे को इस दोन हिस्सन मन तकसीम करित, अक गो इम्यूनोलॉजी ब्या गो जेनेटिक्स। इम्यूनोलॉजी मतलब गो खुदा सोबन यूस इस थोम छ कुवत मुदाफियात या दिफाई निज़ाम यूस इन्फेक्शनस खिलाफ लड़ान छ, यूस ट्यूमर खिलाफ लड़ान छ या एलर्जी निश इस बचावान छ, सो छ इमावन इम्यूनोलॉजी। ब्या हिस गो जेनेटिक्स। जेनेटिक्स मतलब गो सोन सोरी प्रोग्राम, सानन सेलन हुन सोरी प्रोग्राम छ, सो छ डीएनएस अंदर तमाम सेलन मन छ आसन अख सेंटरस मन अख चीज दैट यू न्यूक्लियस छ वन दैट न्यूक्लियस मन छ आसन डीएनए। सरी छ डीएनए बोजा तो डीएनए यूस इन्फॉर्मेशन थवान छ पानस अंदर बे यूस कोड छ करा इन्फॉर्मेशन तत छ वन जेनेटिक्स। तो ई छ आसन का अगर खास इन्फॉर्मेशन छ तत मन सो हेक ट्रांसमिट गई, सो हेक एक जनरेशन पे एक पीढ़ी पे दम पीढ़ी पे सो इन्फॉर्मेशन मुंतकिल ग। अगर खुदा रचिन सो डिजीज या कोई बेमार हंस इन्फॉर्मेशन अस सो बेमार हेक एक जनरेशन पे दम जनरेशन फैल ट्रांसमिट ग वन जेनेटिक डिसऑर्डर।
4: गो इम्यूनोलॉजी अगर कथ करो यह सो इम्यून सिस्टम ये कहान अक्सर बेशतर कि इम्यून सिस्टम वीक इम्यून सिस्टम स्ट्रांग गो ये जेनेटिक्स गो सो बनावट इन्फॉर्मेशन सेलन इंसानस जन गर पेठे सम क्या रलित इम्यूनोजेनेटिक्स क्या डिपार्टमेंटा दोशवे रलित क्या रलित।
5: بالکل تہ تہ ایکسپلین کرو تہ سمجھو یہ

0: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
1: आकाशवाणी ऑन श्रीनगर स्टेशन, मीडियम व्यूज आधार 8.8 मीटर, एफएम अखत 3.5 मेगाहर्ट्ज़ सनपेट समीन रोज संज 10:03 सब्दे वलियो के नात्या कलाम बोझो। आगाज मज बोझो वही जिलानी तो सत्य निज आवाज मज कलामे गुलाम रसूल कमगार।

यो चाहिँ आकाशवाणी हुन्छ श्रीनगर स्टेसन समय तो छु उनके सन्नाथ्य कलाम भोजन विलेब बोजो दिलीप लङ्गो विजय तो लौत सैथिनी जावाज मज कलामी सुनावला क्रेरी

0: sabihin do'y siyon natin kalambosan. Akras patbozo tayo sad anjum ni Avazmas kalami Abdulrahman Fida. यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। मेरे वे 268.8 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज पर 11 बजने वाले हैं। अब आप आकाशवाणी दिल्ली से खबरें सुनेंगे, पहले हिंदी उसके फौरन बाद अंग्रेजी में। थोड़ा सा इंतज़ार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत के युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
2: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
2: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
1: इस अवसर पर श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश में पासपोर्ट सेवा अब तेज, सुरक्षित और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई है। नई दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब देश के दूर दराज इलाकों तक पासपोर्ट सेवाएं पहुंच रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि यह बदलाव डिजिटल शासन की सफलता का प्रमाण है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि ये अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में यह फैसला सुनाया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने सुरक्षित, सुदृढ़ और समावेशी इंटरनेट पारिस्थितिकी तंत्र आवश्यकता पर बल दिया है। श्री कृष्णन ने कहा कि डिजिटल प्रौद्योगिकियां रोजमर्रा की जिंदगी और आर्थिक गतिविधियों का अभिन्न अंग बन गई हैं। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया निक्सी के

0: 23वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि डिजिटल नीति का ध्यान इंटरनेट पहुंच के विस्तार से हटकर उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा और डिजिटल अवसंरचना को सुरक्षित करने पर केंद्रित हो गया है। मंत्रालय के सचिव ने कहा कि प्रौद्योगिकी द्वारा ही उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने ऑनलाइन नुकसान को कम करने और उपयोगकर्ता विश्वास को मजबूत करने के उद्देश्य से अभिनव समाधानों को लागू करने के निक्सी के प्रयासों का स्वागत किया। इस कार्यक्रम के दौरान श्री कृष्ण ने निक्सी की 4 नई डिजिटल पहलों का भी शुभारंभ किया। आईएक्स पोर्टल, माई IRINN पोर्टल, .IN ऑक्शन पोर्टल और एक AI संचालित हुज स्क्रीनिंग प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाने, परिचालन दक्षता बढ़ाने, पारदर्शिता को बढ़ावा देने और भारत इंटरनेट इकोसिस्टम में निगरानी के लिए डिजाइन किए गए। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। Prime Minister Narendra Modi today dispersed incentives worth 2,400 crore rupees under the Pradhan Mantri Vikasit Bharat Rozgar Yojana at a function in New Delhi. This dispersal marks a significant milestone in the implementation of the scheme, which is the government's flagship employment-linked incentive scheme aimed at accelerating job creation, enhancing employability and expanding social security coverage across sectors. Speaking on the occasion, the Prime Minister said in the 21st century, opportunities will belong to nations that nurture skilled talent, foster innovation and uphold the highest standards of quality. He said India's youth will be at the forefront of driving global growth, innovation and entrepreneurship in the years to come. Mr. Modi said the PM Vikasit Bharat Rozgar Yojana is about empowering first-time employees and building a bridge between youth and the industry.
2: प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं और आज इन्हीं में से करीब 10 लाख युवा साथियों को अपनी पहली नौकरी में 6 महीना पूरा करने पर इस योजना के तहत उसके लाभार्थ के नाते इंसेंटिव भी मिल चुका है। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है।
1: Prime Minister Narendra Modi will lay the foundation stone of a coal gasification project worth over 25,000 crore rupees at Lakhanpur in Jharsuguda district of Odisha tomorrow. The Ministry of Coal informed that the project marks a historic milestone as the country's first commercial-scale coal-to-ammonium nitrate facility. President Draupadi Murmu today inaugurated AIIMS Bhubaneswar Satellite Centre and Mega Health Camp at the Subdivisional Hospital in Rai Rangpur. The initiative is expected to enhance access to quality healthcare services for people across northern Odisha. The President also dedicated several public welfare and infrastructure projects, including a mega integrated piped water supply project for mining affected villages in Kusumi Block. The Supreme Court today ruled that the right to walk on a demarcated footpath is a fundamental right. A bench of Justices P.S. Narasimha and A.S. Chandrukar held that a citizen's fundamental right to walk on a demarcated footpath is primary and shall have priority over movement by motorized vehicles. In a significant verdict, the apex court said it forms part of the right to movement guaranteed under Article 19(1)(d) and other fundamental rights including Article 21, right to life and liberty. The National Testing Agency NTA today said that it is fully prepared for the smooth, fair and transparent conduct of the National Eligibility Cum Entrance Test NEET UG 2026 re-examination, which is scheduled for the upcoming Sunday. In a statement, the NTA said that the exam will be conducted across 551 cities in India and 14 cities abroad for over 22.79 lakh candidates. Meanwhile, the NTA has also launched an official WhatsApp channel for candidates. It said that all official WhatsApp messages will be sent only from its verified number, which is +91 78 27 98 02 87. India has slammed Pakistan at the United Nations as it is accused.

0: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए मोदी सरकार की राष्ट्र प्रथम की नीति पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं सीआरपीएफ के पूर्व महानिरीक्षक एमपी नथैनियल और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की विशेषज्ञ प्रोफेसर अंशु जोशी। परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं पत्रकार सौरभ शुक्ला।
1: आकाशवाणी के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राष्ट्र प्रथम के मुद्दे पर। तो प्रोफेसर अंशु जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि जो एक 12 साल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा रही है और इसमें राष्ट्र प्रथम की अवधारणा और खासतौर पर हम जो पॉलिसी मेकिंग या नीति निर्माण की प्रक्रिया होती है उसे आप किस तरह से देखते हैं कि वैश्विक परिवेश में, परिदृश्य में किस तरह से इसे एक नई दिशा दी गई है।
2: विगत 12 वर्षों में हमने भारत की यदि विदेश नीति और आंतरिक नीति की दृष्टि से देखें तो वैश्विक राजनीति में एक अलग पहचान बनाई है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विगत 12 वर्षों में राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ साथ हमने वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा दर्शन है, जो सदियों पुराना है, उसको भी वैश्विक स्तर पर स्थापित किया है और एक रणनीतिक स्वायत्तता यानी कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बरकरार रखते हुए, उसका इस्तेमाल करते हुए विश्व बंधुत्व की भावना के साथ हमने न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े परिवर्तन किए हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जब नीति निर्माण की हम दृष्टि से देखते हैं तो हमने भारत की यदि हम ब्रांड इमेज को देखें तो वो एक विगत 12 वर्षों में ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर ये इमेज वैश्विक स्तर पर बनी है, जिसमें भारत को ग्लोबल साउथ का प्रणेता दूसरे देश मानने लगे हैं। और इसके पीछे कारण है, उदाहरण स्वरूप जब 2023 में हमारे पास G20 की प्रेसिडेंसी थी, जिसे कि पश्चिम के शक्तिवान देशों का एक मंच माना जाता था, उसका एक डेमोक्रेटाइजेशन करते हुए हमने अफ्रीकन यूनियन को एक परमानेंट मेंबर के रूप में G20 से जोड़ा। तो इस प्रकार से ग्लोबल साउथ की नेतृत्व की भूमिका में एक महत्वपूर्ण योगदान हमारी पॉलिसी मेकिंग की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा जो पश्चिम के तमाम शक्तिवान देश हैं और ग्लोबल साउथ के विकासशील और अविकसित देश हैं, उनके बीच संतुलन बनाए रखने का एक पुल का काम भारत ने किया है, लेकिन इसके साथ साथ अपने राष्ट्रीय हितों को भी सर्वोपरि रखा है। तो जब बात आई कोविड की, कोविड के काले समय के दौरान हमने न सिर्फ अपने लिए 140 करोड़ हमारी आबादी के लिए हमने टीके बनाए, होम ग्रोन वैक्सीन्स बनाए, हमने दुनिया भर के देशों को, लगभग 150 देशों को हमने जीवन रक्षक दवाएं और टीके भेजे और वैश्विक स्वास्थ्य की जो कूटनीति है उसमें एक नया हमने अध्याय शुरू किया। एक रणनीतिक संतुलन हमारी नीति के माध्यम से हमने बनाए रखा। तो हमने नॉन अलाइंड की बजाय ऑल अलाइंड की नीति अपनाई, जिसमें एक ही समय में एक तरफ हम रूस के एक है उस यात्रा को हम जारी रख पाए और दूसरी ओर अमेरिका जैसे देश के साथ हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक नया सफल अध्याय शुरू किया। हम इसराइल के स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं लेकिन हमारी विदेश नीति में पैलेस्टीन को भी मान्यता है। तो इस प्रकार से उधर यूक्रेन के साथ भी संवाद जारी रखा, क्वाड के माध्यम से अमेरिका के साथ मजबूत रणनीतिक साझेदारी की, तो ब्रिक्स की भी हमारे पास महत्वपूर्ण मेंबरशिप है। वैश्विक सम्मान में वृद्धि हुई इस नीति की वजह से, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री को विगत 12 वर्षों में 30 से अधिक देशों के द्वारा सर्वोच्च राजकीय सम्मान से नवाजा गया है। और इसी से समझ में आता है कि कूटनीतिक दृष्टि से, नीतिगत दृष्टि से भारत किस तरह से एक सफल देश के रूप में आगे बढ़ रहा है।
1: बिल्कुल, कहेंगे कि जब हम इंडिया फर्स्ट की बात करते हैं, राष्ट्र प्रथम की बात करते हैं, तो विदेश नीति के मोर्चे पर भारत के

0: पारंपरिक और नए साझेदारों के साथ संबंधों को किस तरह से प्रभावित किया गया, क्या लगता है आपको, कैसा बदलाव रहा है, ये अच्छा बदलाव रहा है या कुछ चुनौतियां भी रही हैं?
1: ये एक बड़ा और सफल बदलाव मैं मानती हूँ। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ था, तब शीत युद्ध चल रहा था जिसमें दुनिया दो खेमों में बटी हुई थी। तब की स्थितियों को देखते हुए भारत ने नॉन अलाइन रहने का निर्णय लिया और तब की स्थितियों के हिसाब से वो महत्वपूर्ण था, जिसमें हम न यूएसएसआर के ब्लॉक के साथ न अमेरिका के ब्लॉक के साथ अटैच हुए, बल्कि जो विकासशील देश थे एशिया के, लेटिन अमेरिका के, अफ्रीका के, उनके साथ हमने एक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट शुरू किया। लेकिन पिछले 12 वर्षों में जिस प्रकार से भू राजनीतिक परिस्थितियां बदली हैं, इसमें यह आवश्यक हो जाता है कि अलग अलग विषयों को लेकर जहां जिसके साथ हमारी एक साझा हमारे इंटरेस्ट हैं या हित हैं, वहां पर उन सकारात्मक हितों को ध्यान में रखते हुए हम हाथ मिलाएं, हैंडशेक करें। तो भारत विगत 12 वर्षों में एक बड़ा परिवर्तन ये रहा कि नॉन अलाइंड से ऑल अलाइंड देश बना, और यही कारण है कि एक और रशिया के साथ हमारी एक कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तो है ही, हम नेचुरल अलाय हैं रशिया के, दूसरी और अमेरिका के साथ भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक नया अध्याय शुरू किया, जिसमें कि काउंटर टेररिज्म इनिशिएटिव्स को लेकर हमने विशेष तौर पर काम शुरू किया, और वहीं एक इशू बेस्ड इंगेजमेंट भी हमने कूटनीति में जोड़ा। और वो क्या है, तो अलग अलग जो मुद्दे हैं, जैसे कि ऊर्जा सुरक्षा का क्षेत्र हम देख लें, स्वास्थ्य का क्षेत्र देख लें, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर या तकनीक की दुनिया को देख लें, कृषि का क्षेत्र देख लें, शिक्षा का क्षेत्र देख लें, या सामरिक क्षेत्र देखें, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग देशों के साथ हम जुड़े। हम लैटिन अमेरिका के देशों के साथ विगत 12 वर्षों में पहली बार इतना करीब गए, हम अफ्रीका के देशों के पास गए। इन देशों के पास बड़ी मात्रा में नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लेकिन ये अविकसित देश है, तो इनके साथ भारत ने एक रोड मैप बनाया, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स अलग अलग देशों के साथ शुरू की। एशिया में हमने अपने पड़ोसियों के साथ और चीन जैसे देश के साथ में रिश्तों को सामान्य करने का प्रयास किया। हालांकि चीन की तरफ से जिस तरह से हमारी सीमाओं पर लगातार चुनौतियां प्रस्तुत की, तो वहां पर फिर हम चुप भी नहीं रहे। तो सबसे हमारी यदि विगत 12 वर्षों में मैं विदेश नीति की सफलता बताऊं, तो वो ये है कि हम एक तरफ राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ, लेकिन विश्व बंधुत्व का दर्शन रखते हुए अलग अलग देशों के साथ अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी मल्टीपोलैरिटी को, मल्टी अलाइनमेंट को, वैश्विक सुरक्षा शांति को बढ़ावा देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर चीन जैसे देश जब आकर हमारी सुरक्षा के लिए कोई खतरा उत्पन्न करते हैं, या पाकिस्तान जैसा देश जो आतंकवाद को लगातार पल्लवित पोषित करता है, तो फिर वहां पर भारत सक्षम, समर्थ और सशक्त रूप से जवाब भी देता है। तो इसमें चुनौतियां तो निश्चित तौर पर आती हैं जब पाकिस्तान जैसा देश हमारे सामने हो, जो अपने प्रॉक्सीज को या आतंकवादी संगठनों को लगातार एक्टिव करके आगे बढ़ाते हुए भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां उत्पन्न करने का काम करता हो। लेकिन दूसरी ओर द्विपक्षीय स्तर पर, बहुपक्षीय स्तर पर हमने जो साख बनाई, जो सफलता, जिस तरह से दूसरे देशों की सहायता की जब उन पर जरूरत पड़ी, तो फिर यहां पर इन चुनौतियों का समाधान भी हम निकाल पाने में सफल रहे हैं।
0: बिल्कुल, जाहिर है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कामयाबी भारत को हासिल हुई उसके बारे में जोशी जी बता रही थी। अब हम रुख करते हैं एमपी नाथेलस साहब का। सर, आपसे समझना चाहेंगे कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर अगर हम बात करें, इंटरनल सिक्योरिटी के मसले पर, तो पिछले 12 सालों में हुए बदलावों को आप किस तरह से आंकते हैं और इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे?
2: जो इंटरनल सिक्योरिटी का जो अभी एनवायरमेंट है, ये आप देखेंगे पहले काफी डिस्ट्रिक्ट में माओइस्ट का काफी प्रभाव पड़ा हुआ था, जिसके वजह से वहां पर डेवलपमेंट बिल्कुल रुका हुआ था। लेकिन अब जो है, पिछले कुछ सालों में इतना जोर दिया गया माओइस्ट को खत्म करने के लिए, और सबसे बढ़िया बात तो ये रहा कि हमारे गृह मंत्री ने एक आदेश जारी कर दिया कि 31 मार्च तक 2026 में एक बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। तो इसको मद्देनजर रखते हुए सीआरपीएफ और अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेस ने काफी जोर लगाकर, खासकर छत्तीसगढ़ में, झारखंड में और तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में जितने भी आतंकवादी थे, इनके पीछे बड़े पैमाने पे ऑपरेशन लगाए, और उन ऑपरेशन में कई माओवादियों को मार गिराया, और उनको मार गिराने की वजह से इनका मनोबल इतना नीचे गिर गया कि करीबन 5000 माओवादी पिछले 2 साल के अंदर अपने आप खुद आके सरेंडर कर गए। और सबसे बढ़िया ये इसका प्रभाव रहा कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने एक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम निकाला, स्कीम निकाला, जिसमें कि उनको 50,000 रुपए दिए जा रहे थे, उसके अलावा उनको स्किल डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग दी जा रही थी और मकान दिए जा रहे थे। इनके वजह से काफी

0: माओस अपना जो जंगल में रिहाइश थी वो छोड़ के बाहर आए और सरेंडर कर दिए फोर्सेस के सामने, जिसकी वजह से माओस का बिल्कुल खात्मा हो गया है। और यहाँ इनके नेता भी जो थे वो भी कई नेता, बड़े बड़े नेता जो कि पहले बड़े कट्टर आतंकवाद थे, उन्होंने आगे आकर अपने आप आत्मसमर्पण किया और इसके वजह से माओस तकरीबन खत्म ही हो गए। अभी केवल एक ही बचा हुआ है झारखंड में, जो कि पॉलिट ब्यूरो का मेंबर है, और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले कुछ दिनों में वो भी मारा जाएगा या वो खुद सरेंडर कर लेगा, क्योंकि अब उनको भी पता है कि अब यह चलने वाला नहीं है। उन्हीं के कई फॉलोअर्स सरेंडर कर चुके हैं और ये मिसर बेसरा के पास केवल कुछ ही आदमी बच गए होंगे जो कि सेरेंडा फॉरेस्ट के जंगलों में घूम रहे हैं, और ऑपरेशंस भी कोबरा के बड़े जोरों से जारी है और कुछ दिनों में ये मारे जाएंगे या खुद सरेंडर कर देंगे। इसके अलावा आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में करीबन 8,000 जो मिलिटेंट्स थे, इंसर्जेंट्स थे, उन्होंने खुद सरेंडर किया, जिसमें कार्बी अंगलोंग के इंसर्जेंट्स थे, बोडोस के इंसर्जेंट्स थे और आसाम के भी इंसर्जेंट थे, और उसके अलावा मणिपुर में जो UNLF के इंसर्जेंट थे सबने सरेंडर किया है। और उनके सरेंडर करने के बाद काफी मात्रा में वहां पर हथियार खत्म हो गए और इंसिडेंट भी खत्म हो गए, और उस वजह से काफी वहां पर शांति फैलाया गया उस इलाके में, और उसके वजह से डेवलपमेंट भी काफी जोरों से चल रहा है, और इन डेवलपमेंट्स के वजह से लोगों को बहुत फायदा चल रहा है। पहले यह डेवलपमेंट वगैरह रुके हुए थे क्योंकि आतंकवाद ने काफी जोरों से वहां पर कब्जा मार के रखा हुआ था, और इसको खत्म करने के बाद अब डेवलपमेंट जारी हो गई है, सड़कें बन रही हैं हर जगह, कनेक्टिविटी बढ़िया बन रहा है, और करीबन 70 से 80 एयर स्ट्रिप्स भी रिवाइव कर दिए गए हैं कई जगहों में, और जिनके वजह से अब वहां पर एयर फ्लाइट्स भी शुरू हो गए हैं। अब लोगों को काफी सुविधा पहुंच रही है कि वो एक जगह से दूसरे जगह, नॉर्थ ईस्ट में ही नहीं दूसरे जगहों में भी आराम से सफर कर सकते हैं।
1: इसके अलावा आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि घरेलू मोर्चे पर अपने रक्षा उत्पादों में हम किस तरह से और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में डिफेंस सेक्टर का जो बजट है वो बड़े पैमाने पर बढ़ा है, तो उत्पादन किस तरह से हो रहा है जो भारत को और मजबूती की तरफ आगे बढ़ा रहा है?
0: इसमें तो कोई शक नहीं है कि कई जो इक्विपमेंट्स है वो इंडिया में ही बनाए जा रहे हैं, और वो आत्मनिर्भर को अपने फोकस में रखते हुए तकरीबन 38,400 करोड़ का जो है एक्सपोर्ट वो अब जो है शुरू कर दिया गया है। हमारे यहाँ से हथियार बन रहे हैं और ये एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। उसके अलावा पहले जो हम हथियार मंगा रहे थे बाहर से, उसमें भी काफी गिरावट आई है। करीबन 5,500 डिफेंस आइटम्स जो पहले हम बाहर से मंगाते थे वो हमने मंगाना बंद कर दिया और अपने ही देश में इन सब का मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गया। तो इससे बहुत बड़ा फायदा हमारे देश के इकोनॉमी को हो रहा है, और उस वजह से जो युवक हैं उन लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, और हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2,400 करोड़ वर्थ इंसेंटिव दिए हैं प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना में। तो इस तरीके से काफी नौकरियां अभी लोगों को मिल रहे हैं, 15 लाख जवानों को इससे काफी फायदा हो रहा है। आज ही के दिन करीबन 2,400 करोड़ वर्थ इंसेंटिव दिए जा रहे हैं।
1: बिल्कुल, अब रुख करते हैं प्रोफेसर जोशी का। मैम, आपसे समझना चाहेंगे कि पिछले 12 सालों में भारत को एक रिएक्टिव नेशन के बजाय एक प्रोएक्टिव नेशन के तौर पर देखा जा रहा है। तमाम उदाहरणों का जिक्र किया आपने कि एक जो ग्लोबल साउथ की एक प्रभावशाली आवाज बन रहा है भारत, साथ ही साथ वैक्सीन मैत्री की भी पहल भी मानवीय दृष्टिकोण से एक अच्छा उदाहरण माना जाता है। तो इन सब चीजों का एक फायदा अगर हम एक राष्ट्र के तौर पर देखें भारत को, तो वो किस तरह से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है?
2: आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु चर्चा में जोड़ा, क्योंकि अक्सर हम अपनी विदेश नीति की सफलता की बात करते हैं, हमने किस प्रकार के की नीतियां बनाई और किस तरह से विश्व के अलग अलग कोनों में जाकर के किस प्रकार से अलग अलग देशों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तर पर मित्रता के नए प्रतिमान स्थापित किए, हम इस पर तो बात करते हैं, पर इसके जो आउटकम्स हैं उसकी चर्चा करना भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कुछ ऐसे

टेंजिबल आउटकम्स हैं जो हमने अर्जित किए। उदाहरण बताती हूँ कि किस प्रकार से यूरोपियन यूनियन ने पिछले दिनों भारत के साथ मदर ऑफ ऑल डील साइन की, जिसमें बड़ा महत्वपूर्ण एफटीए है और इसके साथ साथ एक हिस्टोरिक डिफेंस पैक्ट भी यूरोपियन यूनियन ने भारत के साथ साइन किया। और ये एशिया में भारत दूसरा देश है जिसके साथ ये डिफेंस पैक्ट ईयू ने साइन किया है। अब इस एफटीए के अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग प्रकार से सकारात्मक टेंजिबल दृष्टि से आउटकम्स इसके निकल के आएंगे और इससे हमारे एक्सपोर्ट्स डाइवर्सिफिकेशन को तो बहुत उछाल मिलती हुई दिखाई पड़ती ही है। प्रोफेशनल मोबिलिटी की दृष्टि से भी हमारे पास, हम इस वक्त दुनिया की जो यूथ आबादी है, हमारे पास 22% जो यूथ पॉपुलेशन है उसका हमारे पास शेयर है। यदि हम प्रोफेशनल्स की दृष्टि से देखें तो स्किल्ड प्रोफेशनल्स का और यंग फोर्स का हम देश है, वी आर अ यंग नेशन। तो यूरोप के इन देशों को इसी प्रकार के स्किल्ड प्रोफेशनल्स की जरूरत है। तो आप देखिए, अपने एक्सपोर्ट्स में इजाफा, इन्वेस्टमेंट्स में इजाफा, हमारा जो बायलेटरल और मल्टीलेटरल ट्रेड है ईयू के सदस्य देशों के साथ

0: देखें तो स्किल्ड प्रोफेशनल्स का और यंग फोर्स का हम देश है, वी आर अ यंग नेशन, तो यूरोप के इन देशों को इसी प्रकार के स्किल्ड प्रोफेशनल्स की जरूरत है। तो आप देखिए अपने एक्सपोर्ट्स में इजाफा, इन्वेस्टमेंट्स में इजाफा, हमारा जो बायलेटरल और मल्टीलेटरल ट्रेड है ईयू के सदस्य देशों के साथ उसमें इजाफा, तो निश्चित तौर पर रेवेन्यू जनरेशन में और एफडीआईज में इजाफा, तो इससे ओवरऑल जीडीपी में बढ़ोतरी। और फिर इसके साथ साथ जो एक रोजगार की बात आती है, क्योंकि हम एक बहुत हेविली पॉपुलेटेड देश है, तो उसमें फिर हमको एक सफलता मिलती हुई दिखाई पड़ती है। और ऐसा हम अलग अलग, यदि आप यूएई के साथ के अपने एफटीए को और हमारी व्यापारिक डील को देखें, तो वहां पर भी प्रोफेशनल मोबिलिटी इज इन द सेंटर। आप यदि अभी हमारे साथ, हमारी मर्कोसुर के साथ जो कि लैटिन अमेरिका का एक महत्वपूर्ण ट्रेडिंग ब्लॉक है, उनके साथ भी एफटीए को लेकर के बातचीत लगभग फाइनलाइज है। पश्चिम एशिया के संकट की वजह से जीसीसी के देशों के साथ भी हमारा एफटीए लगभग फाइनलाइज था, थोड़ा सा वो मुझे लगता है थमता हुआ नजर आता है वहां की स्थितियों की वजह से, पर उसमें भी प्रोफेशनल मोबिलिटी और इन्वेस्टमेंट्स एक महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में हम देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ। तो ये तो टेंजिबल आउटकम्स की बात हुई, मैंने एक उदाहरण दिया, ऐसे अनेकों उदाहरण है। तो अब जैसे यदि मैं डिफेंस और सिक्योरिटी के क्षेत्र में जाऊं, तो पहले हम एक नेट इम्पोर्टर देश के रूप में जाने जाते थे, लेकिन अपनी सफल विदेश नीति के चलते आज हम एक एक्सपोर्टर देश बनके इस एक डिफेंस और सिक्योरिटी के क्षेत्र में उभरे हैं, जिसमें अपने आसपास के कई ऐसे देश हैं जो ऑपरेशन सिंदूर में विशेषकर हमारे होम ग्रोन जो डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको देख करके और चमत्कृत थे, और भारत से उन्होंने हमारे जो होम ग्रोन मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं, जो दूसरे इक्विपमेंट हैं, वो लेना शुरू किया है। बहुत सुखद समाचार है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि कुछ हमारा जो मेक इन इंडिया का और विकसित भारत 2047 का रोड मैप है, तो कुछ इस प्रकार के आउटकम्स है। उदाहरण स्वरूप वैक्सीन मैत्री, जब हमने 150 देशों को अपने यहां के वैक्सीन भेजे, तो उस समय के ब्राजील के, ये उदाहरण है, ब्राजील के जो राष्ट्रपति थे जैर बोल्सोनारो, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने संजीवनी ले जाते हुए हनुमान जी का चित्र लगाया और हमारे प्रधानमंत्री को धन्यवाद करते हुए कहा कि आप नहीं जानते आपने ब्राजील के लिए क्या किया। इसके बाद ब्राजील के साथ हमारा एक अलग स्तर पर स्ट्रेटेजिक डायलॉग और पार्टनरशिप शुरू हुई। तो हमने जब सोरल अलायंस और बायोफ्यूअल अलायंस की स्थापना की, इसको पायनियर किया, तो ब्राजील उसमें हमारा सबसे बड़ा सहयोगी देश बनकर के सामने आया। तो ये कुछ इस प्रकार के उदाहरण है कि जब हम इन्वेस्ट करते हैं अपने वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन के साथ, पॉजिटिवली किसी दूसरे देश के लिए अच्छा करते हैं, तो उसके कुछ ऐसे आउटकम्स आते हैं जो फिर हमारी जो ये लंबी सुदीर्घ विकसित भारत की यात्रा है उसमें हमें योगदान करते हुए नजर आते हैं। मैं अमेरिका का उदाहरण दूं, अमेरिका के साथ बहुत महत्वपूर्ण डोनाल्ड ट्रंप के पिछले कार्यकाल में लेमोवा, कॉमकासा और बेका नाम के लॉजिस्टिक सप्लाईज को लेकर के हुए बड़े महत्वपूर्ण समझौते हैं, और अमेरिका ने अपना रियल टाइम सैटेलाइट एक्सेस भारत को देना शुरू किया, जो कि ऐतिहासिक है। तो ये काउंटर टेररिज्म मैकेनिज्म्स की दृष्टि से देखें या अपने सामरिक क्षेत्र में अपर हैंड की दृष्टि से देखें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो चाहे क्वाड का मंच हो, ब्रिक्स का मंच हो, एससीओ का मंच हो, इप्सा हो, तो I2U2 की हम बात करें, तो भारत जिस प्रकार से अलग अलग अपने इनिशिएटिव्स के चलते आगे बढ़ा है, तो उसमें ग्लोबल साउथ की हमने आवाज मजबूत की, एक पुल के रूप में हम पश्चिम के देशों के और ग्लोबल साउथ के देशों के बीच में एक साथी बन करके आए, और इसके अलावा हमने हमारे मेक इन इंडिया को प्रमोट करते हुए विकसित भारत 2047 की यात्रा के लिए बहुत सारे माइलस्टोन्स जो है वो अकम्प्लिश किए हैं।
1: और शायद यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में G7 की बैठक के दौरान जब प्रधानमंत्री से मुलाकात की, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पीएम मोदी को एक टफर निगोशिएटर कहा, क्योंकि जब तमाम बायलेटरल ट्रेड समझौतों की जब बातचीत हो रही, तो भारत ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया कि भारतीय निर्यातकों के साथ जो है किसी भी तरह के लिए उनके लिए नुकसानदायक ये डील नहीं होनी चाहिए, और भारत का सामान, मेक इन इंडिया सामान जो है बिकना, वही प्राथमिकता रही है प्रधानमंत्री मोदी की।
0: बिल्कुल निश्चित तौर पर, और ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है। मैं आपको धन्यवाद करती हूँ, आपने इस बिंदु को भी चर्चा में जोड़ा, और यही कारण है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री को विगत 12 वर्षों में हम देख सकते हैं कि 30 से अधिक दुनिया के देशों ने सर्वोच्च उनके राजकीय सम्मान से नवाजा है। भारत की क्या साख है, भारत का क्या परचम लहरा रहा है दुनिया में, इस बात का ये प्रतीक है। और बिल्कुल टफ नेगोशिएटर है। तो मैं आपको उदाहरण दूं कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील की जब हम बात करते हैं, तो उसमें लगातार अमेरिका की तरफ से दो बिंदुओं पर हम पर प्रेशर बनाया गया कि एक तो हम रशिया से तेल और गैस लेना बंद करें, और दूसरा ये कि हम अपना डेयरी और एग्रीकल्चरल जो सेक्टर है वो अमेरिकन प्रोडक्ट्स के लिए खोल दें। तो चाहे आप पश्चिम एशिया के देशों या मंचों के साथ अपने एफटीएस को देखें, आप हाल ही में हुए ईयू के साथ के अपने एफटीए को देखें, आप दूसरे जो एक दर्जन भर के लगभग अपने एफटीएस हैं और अलग अलग जो सेपा है, कॉम्प्रेहेंसिव इकोनॉमिक हमारे जो अग्रीमेंट्स हुए हैं कई देशों के साथ में, तो हमने इस बात को जब नेगोशिएशन के लिए स्टेक होल्डर्स बैठते थे तो इस बात को हमने स्पष्ट किया था कि हम अपना

0: डेयरी और एग्रीकल्चरल सेक्टर किसी के लिए नहीं खोल सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव सेक्टर है।
1: जी
0: हमारे जो डेयरी प्रोडक्ट्स और इससे जुड़े हुए जो हमारे भाई बहन हैं, या जो कृषि के क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे भाई बहन हैं, फिशरीज से जुड़े हुए जो भाई बहन हैं, उनको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। और इसके साथ साथ लघु और मध्यम उद्योग और विशेषकर जो भारतीय कला से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स हैं, उनको कैसे नए नए बाजार मिल सके, उनको कैसे हम प्रमोट कर सकें, ये भी जब भी हमने आर्थिक और तकनीकी कूटनीति के हमने समझौते किए हैं या इसको लेकर हम आगे बढ़े, तो वहां प्रधानमंत्री ने इसकी बात की है। तो आखिरकार जब अमेरिका के साथ भी ट्रेड डील अनाउंस हुई, तो उसमें फिर ये बात स्पष्ट होकर के आई कि इन दोनों बिंदुओं पर भारत ने किसी प्रकार का नेगोसिएशन नहीं किया। और वहीं जैसे रूस से जो तेल और गैस लेने की बात है, सबसे ज्यादा डिस्काउंटेड रेट पे हमें रूस से तेल और गैस मिल रहा था, तो हमको उर्सुला वॉन ने भी 2 या 3 साल पहले लगभग ये चेताया था कि हम रूस से तेल और गैस लेना बंद करें, लेकिन तब भी हमारे विदेश मंत्री ने इस बात को स्पष्ट किया था कि भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट को केंद्र में रखते हुए, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का इस्तेमाल करते हुए वही डिसीजंस लेता है जो भारतीयों के हित में है। जब हम पर प्यूनिटिव टैरिफ्स लगाए गए, डोनाल्ड ट्रंप ने जब घोषणाएं की, तो हमारे प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि भारत के लोगों को मैं इसका नुकसान नहीं उठाने दूंगा और मेरा व्यक्तिगत इसमें नुकसान हो सकता है, मुझे कीमत चुकानी पड़ सकती है, मैं इसके लिए तैयार हूं। और इसके बाद भारत ने लगातार अपने जो ये तमाम सफल विदेश नीति से मित्र बनाए हैं, तो हमने इन सबसे सहायता ली, अपने एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई किया, अपने एक मैक्रो इकोनॉमिक रेजिलियंस को फिर हमने बढ़ाया, और इसके चलते देखिए हमारी अर्थव्यवस्था पर कोई ऐसा इसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा। उल्टा हम पर जब प्यूनिटिव टैरिफ्स लगे और बड़ा हल्ला मचा था कि अब क्या होगा और नुकसान होगा और अब हम क्या करेंगे, लेकिन आप देखिए कि हमने 7% से ज्यादा और फिर 8% की क्वार्टरली हमने जीडीपी ग्रोथ रजिस्टर की थी, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक ग्रोथ रही। तो ये इस प्रकार से अलग अलग देशों के साथ में इस प्रकार के अलग अलग अकम्पलिशमेंट्स के साथ हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं।
1: अब हम रुख करते हैं एमपी नथालस आपका, उनसे पूछते हैं कि सर आपसे जानना चाहेंगे कि आपने जिक्र किया कि तमाम नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रेड कॉरिडोर से ग्रीन जोन में बदलने की रणनीति अपनाई गई थी और वहां भी कामयाबी हासिल लगी, नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा संवाद और समन्वय के भी परिणाम सामने आए। तो आपसे जानना चाहेंगे जो एक और 3 बड़े ऑपरेशन हुए थे, उरी का हम जिक्र करें, बालाकोट का जिक्र करें या ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाइयों का, तो ये 3 जो बड़े एक्शन रहे हैं, इसको भारत की सुरक्षा के दृष्टिकोण से इन ऑपरेशंस ने किस तरह से परिभाषित किया और क्या मायने आप देखते हैं यहां पर जो एक एक्शन रहा?
2: इसमें सबसे बढ़िया चीज ये था कि जैसे ही वो कहीं इस तरह के वारदात कर रहे थे, जैसे कि अटैक किया उन्होंने कॉन्वॉय सीआरपीएफ के कॉन्वॉय पर, उरी में अटैक किया और उसके बाद जो पहलगाम में अटैक किया, हमने तुरंत उसका जवाब दिया। ये नहीं कि हम रुके रहे, सोचते रहे क्या करना है, लेकिन तुरंत अटैक करके हमने उनको साबित कर दिया कि इस तरीके के हरकत अगर आप करेंगे तो हमारा कार्रवाई एकदम जवाबदारी होगी। और इसमें खासकर जो पहलगाम अटैक हुआ था, जिसके बाद ऑफ सिंदूर चला, उसमें करीबन 100 जो आतंकवाद टॉप के, उन लोगों को मार गिराया और कई उनके आतंकवाद के जो बेस अक्रॉस द बॉर्डर थे वो भी खत्म कर दिए गए। हमारे एयरक्राफ्ट ने जाके वहां पर अटैक किया और उनका खात्मा किया, जिसके वजह से उनमें काफी ढीलपना आ गया, अब वो ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे। और इसके अलावा ये भी है कि जब भी वो कोशिश करते थे पहले बॉर्डर से क्रॉस करने के लिए, काफी बार सफल हुए। मैं खुद वहां श्रीनगर में रहा हूं, गए दिन हमारे एनकाउंटर होते रहते थे। अब जो है हालात काफी सुधर गए हैं और सुधरने की वजह से ये है कि वहां पर डेवलपमेंट भी शुरू हो गया है और यहां तक कि डेवलपमेंट ट्रेन भी चलने लगे हैं, राइट फ्रॉम जम्मू से लेकर बारामूला तक चल रही हैं। पहले ये सब हम सोच नहीं पाते थे। और उसी तरह नॉर्थ ईस्ट में भी अगर आप देखें तो मिजोरम कनेक्ट हो गया रेलवे से। पहले हमें सिलचर जाना पड़ता था, सिलचर से फिर बाय रोड जाना पड़ता, अब जो है रोड कनेक्टिविटी इतना बढ़िया हो गया थ्रू रेलवे कि लोग सीधे ऐजवाल तक पहुंच सकते हैं, दिल्ली से लेकर वहां तक। तो ये जो कनेक्टिविटी है इससे काफी बड़ा फायदा हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, लोगों को आने जाने में काफी इसमें सुविधा पहुंची है। इसके अलावा ये है कि जब भी वहां से कोई कार्रवाई हो रही है तो उसका हमारा इंटेलिजेंस जो है इतना रोबस्ट हो गया है कि हमें सब पता चल रहा है कि वहां पर अक्रॉस द बॉर्डर क्या हो रहा है और उसी वक्त कार्रवाई कर दी जा रही है ताकि उनको न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। तो इससे काफी लाभ पहुंच रहा है और आने वाले दिनों में ऑलरेडी हमारे गवर्नमेंट कह रही है कि कश्मीर में काफी पीसफुल सिचुएशन है। अभी अमरनाथ यात्रा भी होने वाला है, काफी तादाद में फोर्सेस पहुंच रहे हैं वहां पे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों

0: वहां पर कई जिलों में जहां आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगा हुआ है वो भी हटा दिया जाएगा, क्योंकि इतना वहां पर शांति फैल चुका है कि AFSPA की बाद में जरूरत भी नहीं पड़ेगी।
1: सर, क्योंकि आपने तमाम बॉर्डर पर सुरक्षा के लिहाज से अहम जिम्मेदारियां निभाई हैं, इसलिए आपसे ये जानना जरूरी हो जाता है कि आतंकवाद और आतंकवाद को जो लोग पालते पोसते थे उस दौर में या आज से एक दशक पहले की अगर हम बात करें, 12 साल पहले की बात करें, तो उस रुख को आप किस तरह से बदला हुआ आज पाते हैं?
0: पहले ये था कि हमारे पास इंटेलिजेंस का थोड़ी सी कमी थी, लेकिन अब जो है इंटेलिजेंस इतना हमारा रोबस्ट हो गया है कि जैसे ही उनका कोई कार्रवाई वो वहां से करने की कोशिश करते हैं उससे पहले ही हम उसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं ताकि वो हमारे जवानों पे या हमारे इलाके के अंदर आके हमला ना कर पाए।
1: इतने दिनों में भारत की एक नई डिफेंस कैपेबिलिटी भी सामने आई है, हम चाहे मेक इन इंडिया की बात करें या जिस हिसाब से डिफेंस इक्विपमेंट भारत में बनाए जा रहे हैं, तो ये अब इनका निर्यात भी बड़े पैमाने पर दूसरे देशों में होने लगा है, क्योंकि भारत की शक्ति पूरी दुनिया को दिखाई दे रही है। इस पे आप कितना ज्यादा जो है इजाफा मानते हैं कि दुनिया के देशों में निर्यात कितना ज्यादा बढ़ा है, उस मोर्चे पर कितनी सफलता मिली है?
0: ये जो ऑपरेशन हुआ था ऑपरेशन सिंदूर, इसमें पाकिस्तान ने भी काफी अटैक करने की कोशिश की, लेकिन इनके जितने भी अटैक करने की कोशिश की गए वो सब विफल कर दिए, क्योंकि हमारे पास जो था एयर डिफेंस सिस्टम काफी रोबस्ट एयर डिफेंस सिस्टम था, जिसके वजह से उनके जितने भी अटैक हो रहे थे वो विफल कर दिए गए और हमें ज्यादा उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन अगर ये हमारे पास डिफेंस सिस्टम इतना रोबस्ट नहीं होता जो कि शील्ड जैसे बन गया था तो हमारे लिए काफी मुश्किल हो सकता था, लेकिन इस एयर डिफेंस सिस्टम के वजह से हम लोग उनको रोक पाए और वो नुकसान नहीं कर पाए।
1: प्रोफेसर जोशी, आपसे समझना चाहेंगे कि जो भारत की उभरती हुई वैश्विक भूमिका विकसित भारत की तरफ है, इसमें आपको क्या लगता है कि विकसित भारत के लक्ष्य को किस तरह से गति मिल रही है और आने वाले दिनों में जो एक लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनने का, उसे हम किस तरह से पूरा होते हुए देखेंगे?
2: देखिए, जब हम अपने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को देखते हैं तो हम इस बात की चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से भारत की जो सफल विदेश नीति है, विगत 12 वर्षों में हम जिस तरह से एक ऑल अलाइंड पॉलिसी पर चले हैं, इसने कैटलिस्ट की भूमिका निभाई है। तो भारत के यदि हम आर्थिक विकास की ओर देखें, तकनीकी प्रगति की ओर देखें, वैश्विक सुरक्षा, अपनी आंतरिक सुरक्षा की बात करें, तो हमारी विदेश नीति जो है इसके माध्यम से हम इनसे जुड़े हुए लक्ष्यों की पूर्ति करते हुए लगातार अपने विकसित भारत 2047 के रोड मैप पर आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारी जब कूटनीति को हम देखते हैं तो वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर बेस्ड है, मल्टी अलाइनमेंट पर आधारित है। हम किसी एक देश की हेजेमनी की नहीं बल्कि मल्टीपोलैरिटी की बात करते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य पूरे वैश्विक राजनीति में लोकतंत्र को बनाए रखना है और साथ साथ हमारे देश का विकास हो और नागरिकों के हितों को प्राथमिकता मिले। तो यदि हम अपने आर्थिक मोर्चे पर जाएं और अपनी आर्थिक कूटनीति की बात करें तो विकसित भारत 2047 को यदि हम देखते हैं तो हमारी विदेश नीति का एक बड़ा जो फोकस एरिया रहा है वो FDI रहा है। किस तरह से हम विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को बढ़ावा दे सकते हैं, मैंने लगातार अलग अलग FTAs का उदाहरण दिया जिनके माध्यम से इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं द्विपक्षीय स्तर पर, बहुपक्षीय स्तर पर। फिर यदि हम तकनीक की दुनिया में चले तो चाहे AI की बात करें या हम डिजिटलाइजेशन की बात करें, तो AI समिट का ग्लोबल साउथ का भारत पहला देश है जिसने इस बार होस्ट करते हुए एक बड़ा कार्यक्रम नई दिल्ली में आयोजित किया जिसमें देश विदेश से कई राष्ट्राध्यक्षों ने शिरकत की और AI को लेकर के जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गवर्नेंस फ्रेमवर्क बनाने की बात चल रही है उसमें भी भारत एक प्रणेता की भूमिका निभा रहा है। फिर आप सेमीकंडक्टर्स की दुनिया में चले, क्रिटिकल मिनरल्स की दुनिया में चले, तो इन सब में अपनी विदेश नीति के माध्यम से हमने जो नई मित्रताएं लैटिन अमेरिका और अफ्रीकन देशों के साथ जोड़ी है, आगे बढ़ाई है, उसके माध्यम से हम इस लक्ष्य की पूर्ति कर पा रहे हैं, क्योंकि ये विकसित भारत की यात्रा का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण लक्ष्य है। तो इसके जरिए हमारे जो भारतीय उद्योग हैं वो मजबूत होते हैं और जो हमारी ग्लोबल वैल्यू चेन है उससे हम अपने उद्योगों को जोड़ते हुए एक यहां पर अपना एक बड़ा लक्ष्य हासिल कर पाते हैं। फिर हम ग्लोबल साउथ की आवाज प्रणेता बन के जो उभरे तो उसमें जो लगातार हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों का डेमोक्रेटाइजेशन हो और अंतर्राष्ट्रीय मंचों में वो रिफॉर्म्स की बात करते हैं, इसमें जो ग्लोबल साउथ की इमर्जिंग इकोनॉमीज है उसके नेतृत्व की बात करते हैं, इसको आज पूरी दुनिया अपना समर्थन दे रही है, चाहे यूरोप के शक्तिवान देशों को आप देखें या लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के हमारे समकक्षी देशों को देखें। तो UNSC जैसे संस्थानों में भारत लगातार भारत जैसे देशों के नेतृत्व की मांग कर रहा है और अपनी स्थायी सदस्यता के लिए तो अभी जैसे हमारे प्रधानमंत्री फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा पर गए तो वहां स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ने इस बात को फिर पुरजोर तरीके से रखा कि भारत को UNSC में परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए। तो एक वैश्विक समर्थन जो है वो आज हमें हासिल हुआ है और ये विकसित

0: भारत 2047 का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है हमारे लिए कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी नेतृत्व की भूमिका बढ़े। फिर यदि हम अपनी सुरक्षा की बात करें, एनर्जी सिक्योरिटी की बात करें, तो आसपास एक फ्लक्स की सिचुएशन है, दो युद्ध चल रहे हैं, हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी लगातार तनाव बना रहता है। इन सबके बीच हमारी जो विदेश नीति है वो किस प्रकार से लगातार हमारी एनर्जी सिक्योरिटी इंटैक्ट रहे, और अभी पश्चिम एशिया की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जिस तरह से ईरान ने बंद किया और पूरी दुनिया ने संकट को झेला, 40% लगभग तेल गैस और एलपीजी पूरी दुनिया को सप्लाई होता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के माध्यम से, और कुल जरूरत का 80-90% अपना तेल गैस और एलपीजी चीन, जापान, साउथ कोरिया जैसे देश मंगाते हैं। हमने लगातार 27 देशों की बजाय 41 देशों से तेल गैस और एलपीजी मंगाने का हमने पिछले 12 वर्षों में ये काम किया, और अपनी जो ऊर्जा आयात हमारा जो है उसको हमने डाइवर्सिफाई किया। तो हमने अपनी इस प्रकार की डायनामिक ऊर्जा पॉलिसी के चलते ऊर्जा सुरक्षा हम बरकरार रख पाए, तब जबकि दूसरे देशों में 40-60-70% तक की मूल्य वृद्धि हुई। आप देखिए कि भारत में 140 करोड़ की आबादी वाले देश में हमारी एनर्जी सिक्योरिटी इंटैक्ट रही, ऑयल गैस की हमारी निर्बाध आपूर्ति लोगों को मिली। फिर मैरिटाइम सिक्योरिटी जो है उस पर एक विशेष हमारा ध्यान है, हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनके उभरे हिंद प्रशांत क्षेत्र में और हिंद महासागर क्षेत्र में। हमारे प्रधानमंत्री ने मॉरिशस की धरती से पहले सागर डॉक्ट्रिन प्रस्तुत किया जो कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल था। फिर जब दोबारा मॉरिशस की यात्रा की तो उन्होंने महासागर नीति रखी जो कि म्यूचुअल एंड होलिस्टिक सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल है। तो तमाम हिंद महासागर के जो लिटोरल देश हैं और जो इंडायरेक्टली जुड़े हुए देश हैं वो सब आज भारत को प्रणेता मानते हुए भारत से जुड़ रहे हैं, और हम इन देशों के साथ साझा विकास भी कर रहे हैं। और फिर विदेशों में जो अपने भारतीय प्रवासी हैं जो हमारे लिए, हमारी जीडीपी के लिए एक बड़ा कहीं ना कहीं योगदान तो करते ही है, हमारी संस्कृति के वाहक हैं, एम्बेसडर्स हैं, तो उनकी सुरक्षा, उनके सशक्तिकरण को भी हमने एक प्राथमिकता दी है। तो आप देखिए जब जब अलग अलग विश्व में हमने संकट देखे वहां भारत ने तुरंत इवैक्यूएशन प्लान्स लॉन्च करके भारतीयों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया, और जो भारतीय वहां पर रह रहे थे, उदाहरण स्वरूप रशिया यूक्रेन वॉर में, उनको तुरंत भारत वापस लाने की पहल और सफलतापूर्वक इसका भी अकम्प्लिशमेंट हमारी विदेश नीति की वजह से हो पाया। जब हम विकसित भारत सामरिक लक्ष्यों को देखें, आर्थिक लक्ष्यों को देखें, तकनीकी लक्ष्यों को देखें, वैश्विक मंचों पर आगे बढ़ने के लक्ष्य को देखें, तो अपनी विदेश नीति के माध्यम से हम लगातार अपने विकसित भारत के विजन को, मिशन को साकार कर पा रहे हैं।
1: आखिर में आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो राष्ट्र प्रथम की नीति रही है भारत की, वो शायद वही एक वजह है जिसकी वजह से दुनिया भर में जहां भी प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं अपने नागरिकों की बात करते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं, तो ये एक नीति इसने देश के नागरिकों में आत्मविश्वास और राष्ट्रीय गौरव की भावना को किस तरह से और कितना मजबूत किया है, क्या मानते हैं?
0: ये जब हम इस नीति को देखते हैं या इस पूरे फिनोमेना को देखते हैं तो ये हमारी विदेश नीति का एक आधार स्तंभ है जिसमें हम राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास और नागरिक कल्याण की बात करते हैं। तो हमारे जो लोग हैं वो हमारी डिप्लोमेसी के एपिसेंटर में हैं, और इसके माध्यम से हम किसी के दबाव में नहीं आते, स्वतंत्र निर्णय लेते हैं और विश्व मंच पर अपने हित की तो बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की भी बात करते हैं, लेकिन हम इस बात को सुनिश्चित रखते हैं कि देश विदेश में जो अपने लोग रह रहे हैं, भारतीय प्रवासी जो हैं, उनकी सुरक्षा और उनके विकास को हम आगे बढ़ा सके। और इसमें फिर हम देखिए एक संतुलन बना के रखते हैं, और इसके जरिए हम अलग अलग जो स्वभाव के देश हैं उनके साथ अपने पारंपरिक और नए तरीके के संबंधों को आगे ले जा रहे हैं। संकट के समय हम दूसरे देशों की तो सहायता करते हैं, लेकिन इस बात को भी सुनिश्चित करते हैं कि हमारे लोग किसी संकट में ना फंसे। तो ये हमारी नेशन फर्स्ट की प्रतिबद्धता का सबसे बड़ा उदाहरण है कि संकट में फंसे हुए भारतीयों को हम सुरक्षित रूप से स्वदेश लेकर के आते हैं। सबसे बड़ा बिंदु आतंकवाद पर जिस प्रकार का रुख पिछले 12 वर्षों में भारत ने अपनाया है, जीरो टॉलरेंस टूवर्ड्स टेररिज्म, तो ये अपने नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता है। ये नेशन फर्स्ट की बात है, ये पीपल फर्स्ट की बात है, और इसमें एक बहुत ही गजब का समन्वय हमने अपनी डिप्लोमेसी और अपनी रक्षा शक्ति के बीच में एस्टेब्लिश किया है, और इसके चलते, इस नेशन फर्स्ट की बात के चलते आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उसको हमने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी बड़ी दृढ़ता से रखा है।
1: बिल्कुल, तो अंशु जोशी जी और एमपी नाथाले साहब, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोदी सरकार की राष्ट्र प्रथम की नीति पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे सीआरपीएफ के पूर्व महानिरीक्षक एमपी नथैनियल और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की विशेषज्ञ प्रोफेसर अंशु जोशी। परिचर्चा का संचालन कर रहे थे पत्रकार सौरभ शुक्ला। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।

यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। समीन, आज की नशरियात में आपसे इजाज़त लेने से पहले पेश है कल हमारे यहाँ से पेश होने वाले प्रोग्रामों की तफसील।

रात के 8 बजे प्रोग्राम पेश होता है वादी की आवाज। रात के 8:30 पर आप सुनेंगे स्पेशल प्रोग्राम ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। रात 9:30 पर प्रोग्राम पेश होगा पेशरफ्त। प्रोग्राम की मेहमान है डॉक्टर नाजिमा कादरी। मौजू होगा डिग्रीज एंड कोर्सेज इन क्राफ्ट डेवलपमेंट। उनसे बात करेंगे तनवीर ताहिर। रात 10 बजे आप प्रोग्राम समाप्त करेंगे तुंस फरमाइश। प्रोग्राम के मेजबान है रशीद निजामी। समय हमारी नशरियात का आगाज होता है 6:28 पर। 6:35 पर आप प्रोग्राम सुनेंगे सुबुगाही। सुबह 7:10 पर आप सुनेंगे लाइव मॉर्निंग शो पयाम सुबह। प्रोग्राम की प्रोड्यूसर है समीना शाह। स्पॉन्सर प्रोग्राम सेहत बदन आप सुनेंगे सुबह 8:45 पर। सुबह 9 बजे आप सुनते हैं मकामी अखबारात की सुर्खियां। प्रोग्राम न्यूज रील पेश होगा सुबह 9:30 पर। सुबह 9:45 पर आप कश्मीरी गजलें सुनेंगे। सुबह 10 बजे आप प्रोग्राम समाप्त करेंगे सूफी सदा। कल का प्रोग्राम हजरत ख्वाजा हबीबुल्ला नौशहरी के मुतल्लिक है। तहरीर पेशकश गुलाम रसूल आखून। लाइव इंटरैक्टिव शो आप सुनेंगे सुबह 10:30 पर। प्रोग्राम पेश करेंगे रशीद निजामी और सायका सलीम। मेहमान है प्रोफेसर तारिक अहमद। मौजू है एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी। चक्रधरो आप सुनेंगे सुबह 11:30 पर, जिसमें अब्दुल सलाम भट्ट कोयमू और साथी पेश करेंगे कलामी शमस फकीर। बस में निस्वा रास्ता होगी दोपहर 12:40 पर। फौजी भाइयों के लिए पहली निशस्त का प्रोग्राम पेश होगा दोपहर 1:10 पर। फिल्मी नगमे आप सुनेंगे 1:40 पर। दिन के 2:30 पर छकरतरू पेश होगी, जिसमें अब्दुल सलाम भट्ट कोयमू पेश करेंगे कलामे गुलाम हसन मिसगर। फौजी भाइयों के लिए दूसरी निशस्त का प्रोग्राम पेश होगा दिन के 3 बजे। पहाड़ी प्रोग्राम पेश होगा सपहर 4 बजे और सेना प्रोग्राम 4:30 पर। सपहर 5 बजे आप समाप्त करेंगे गोजरी प्रोग्राम गमी बायन हिंद खत्र। ये प्रोग्राम पेश होगा 6:05 पर। हालात हाजरा का प्रोग्राम शहरबीन आप सुनेंगे शाम 7 बजे। ये थी कल हमारे यहां से नशर होने वाले प्रोग्रामों की तफसील। यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। मीडियम व्यू 268.8 मीटर और FM 103

नर्सरिया 5 मेगाहर्ट्ज़ पर रात के 11:49 और 47 सेकंड हो चुके हैं। हमारी आज की नशरियात का अख्ताम होता है। कल सुबह 6:28 पर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शब खैर, अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। श्री मोदी ने कहा है कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
0: देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि अशांत वैश्विक परिवेश में भारत को अपने राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और बहुध्रुवीयता व्यवस्था की नीति को आगे बढ़ाते हुए विभिन्न देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना चाहिए। नई दिल्ली में आयोजित भारत अमेरिका फोरम 2026 को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने विभिन्न क्षेत्रों में भारत अमेरिका की बढ़ती साझेदारी के बारे में बात की। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि ये अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में यह फैसला सुनाया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने सुरक्षित, सुदृढ़ और समावेशी इंटरनेट पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता पर बल दिया है। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया निक्सी के 23वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि डिजिटल नीति का ध्यान इंटरनेट पहुंच के विस्तार से हटकर उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा और डिजिटल अवसंरचना को सुरक्षित करने पर केंद्रित हो गया है। मंत्रालय के सचिव ने कहा कि प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने ऑनलाइन नुकसान को कम करने और उपयोगकर्ता विश्वास को मजबूत करने के उद्देश्य से अभिनव समाधानों को लागू करने के निक्सी के प्रयासों का स्वागत किया। इस कार्यक्रम के दौरान श्री कृष्ण ने निक्सी की 4 नई डिजिटल पहलों का भी शुभारंभ किया। ये प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाने, परिचालन दक्षता बढ़ाने, पारदर्शिता को बढ़ावा देने और भारत के इंटरनेट इकोसिस्टम में निगरानी और सत्यापन तंत्र को मजबूत करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। चीन में मकाऊ ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में अश्विता चालिहा सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में अश्विता ने कोरिया की किम मिन सन को हराया। इसके साथ ही

वक्त हुआ है 12:10 और ठीक 59 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा, मैं हूं राखी आपके साथ।

आंखों में छिपे ख्वाब, अरमान और जज्बात यूं ही खामोशी से दिल तक पहुंच जाने दे। कुछ रिश्ते अल्फाजों से नहीं, नजरों से बनते हैं। अखियों को रहने दे अखियों के आसपास। बॉबी फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर की आवाज में। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: महबूबा फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया आरडी बर्मन ने।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की

वक्त हुआ है 12:24 और ठीक 37 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz।

ये हलचल कहीं दूर खो गई हो। नजरें हटाना मुश्किल था क्योंकि उस एक झलक में न जाने कितने ख्याल और कितनी भावनाएं समा गई थीं। दिल ने जब लम्हे को चुपचाप अपने भीतर सहेज लिया, जैसे कोई अनमोल याद जो बार बार याद आने पर भी नई सी लगे।

अभी आपने धनवान फिल्म का गाना सुना, सुरेश वाडकर और लता मंगेशकर की आवाज में। साहिर ने इसे लिखा और संगीत दिया हृदयनाथ मंगेशकर ने। जी हाँ, तुम्हारी आंखें देखकर एक पल के लिए लगा जैसे वक्त ठहर गया हो और आसपास की सारी

आंखों में हमने आपके सपने सजाए हैं, हर ख्वाब को प्यार और उम्मीद के रंगों से सवारा है। आपकी मुस्कान, आपकी बातें और आपके साथ बिताए जाने वाले अनगिनत पलों की तस्वीरें इन आंखों में बसी हुई हैं। अब हर नजर किसी मंजिल को नहीं बल्कि आपको तलाशती है। ऐसा लगता है जैसे इन आंखों का हर ख्वाब, हर इंतजार और हर दुआ आपसे ही जुड़ी हुई हो।

कुछ रिश्ते समय और परिस्थितियों की सीमाओं से परे होते हैं। वो ना उम्र के पैमानों में बंधते हैं, ना किसी औपचारिक परिभाषा में। ऐसे रिश्तों में बस अपनापन, विश्वास और एक दूसरे के लिए सच्चे भाव होते हैं। समय बीतता रहता है, मौसम बदलते रहते हैं, लेकिन मन का जुड़ाव वैसा ही बना रहता है। ऐसा लगता है मानो दो आत्माओं के बीच एक अनकहा संबंध हो, जो हर दूरी और हर बंधन से ऊपर हो। प्रेम गीत फिल्म का गाना आपने सुना जगजीत सिंह की आवाज में। इसे लिखा इंदीवर ने और संगीत दिया जगजीत सिंह ने।

कभी कभी मन में ये एहसास उभरता है कि कुछ लोग हमारी जिंदगी में यूं ही नहीं आते। उनकी मौजूदगी इतनी स्वाभाविक लगती है मानो वो हमेशा से हमारे जीवन का हिस्सा रहे हों। उनकी बातें, उनका साथ और उनका अपनापन दिल को एक अनकहा सुकून देता है। तब ऐसा लगता है कि जैसे किस्मत ने बड़ी नजाकत से दो रास्तों को मिलाया हो ताकि सफर थोड़ा और खूबसूरत, थोड़ा और मायने रखने वाला बन जाए। कभी कभी फिल्म का गाना आपने सुना था मुकेश की आवाज में, साहिर ने इसे लिखा और संगीत दिया खयाम ने।

अदालत फिल्म का गाना आपने सुना रफी और लता की आवाज में। गुलशन बावरा ने इसे लिखा और संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने। जब तुम पास थे तब तुम्हारी मौजूदगी को बस एक खूबसूरत आदत समझते रहे, लेकिन दूरी ने एहसास कराया कि किसी की कमी दिल को किस तरह हर पल महसूस होती है। तुम्हारे बिना गुजरते दिनों ने सिखाया कि प्यार केवल साथ होने का नाम नहीं, बल्कि दूर रहकर भी किसी को हर पल अपने ख्यालों में बसाए रखने का नाम है। तुम्हारी यादें, तुम्हारी बातें और तुम्हारा एहसास ही वो धड़कन बन गए जो हर पल ये याद दिलाती रही कि मोहब्बत क्या होती है।

सफर फिल्म का गाना आपने सुना मुकेश की आवाज में। इंदीवर ने इसे लिखा और संगीत दिया कल्याण जी। हुआ है 12:55 और ठीक 45 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 1 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 1:10 पर गीत सुहाने मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
0: देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि अशांत वैश्विक परिवेश में भारत को अपने राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और बहुध्रुवीयता व्यवस्था की नीति को आगे बढ़ाते हुए विभिन्न देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना चाहिए। नई दिल्ली में आयोजित भारत अमेरिका फोरम 2026 को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने विभिन्न क्षेत्रों में भारत अमेरिका की बढ़ती साझेदारी के विषय में बातचीत की। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि यह अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में यह फैसला सुनाया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने सुरक्षित, सुदृढ़ और समावेशी इंटरनेट पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता पर बल दिया है। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया निक्सी के 23वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि डिजिटल नीति का ध्यान इंटरनेट पहुंच के विस्तार से हटकर उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा और डिजिटल अवसंरचना को सुरक्षित करने पर केंद्रित हो गया है। मंत्रालय के सचिव ने कहा कि प्रौद्योगिकी द्वारा ही उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने ऑनलाइन नुकसान को कम करने और उपयोगकर्ता विश्वास को मजबूत करने के उद्देश्य से अभिनव समाधानों को लागू करने के निक्सी के प्रयासों का स्वागत किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राम मंदिर के दान के कथित गबन में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि विशेष जांच दल की जांच के जरिए 15 दिनों के भीतर सच्चाई सामने आ जाएगी। चीन में मकाऊ ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में अश्मिता चालिहा सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में अश्मिता ने कोरिया की किम मिन सन को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

वक्त हुआ है 1:10 और ठीक 57 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत सुहाने, मैं हूं राखी आपके साथ।

अभी आपने आशिक फिल्म का गाना सुना मुकेश की आवाज में। शैलेंद्र ने इसे लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने। सुहाने गीतों की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वो जीवन की भागदौड़ में भी एक छोटा सा ठहराव दे देते हैं। चांदनी रात हो या बस खामोश पल, ऐसे गीत हर मौसम को थोड़ा और खूबसूरत बना देते हैं।

एक गांव की कहानी फिल्म से आपने गाना सुना तलत की आवाज में। शकील बदायूनी ने इसे लिखा और संगीत दिया सलिल चौधरी ने। रात में तमाम जज्बात एक साथ उभर आते हैं, दिन की हलचल और शोर में जो बातें दिल के किसी कोने में दब जाती हैं, वो रात की खामोशी में धीरे धीरे सामने आने लगती हैं। कुछ मीठी यादें मुस्कान दे जाती हैं, कुछ अधूरे ख्वाब आंखों को नम कर जाते हैं। ऐसे में दिल कभी पुरानी बातों में खो जाता है तो कभी आने वाले कल की उम्मीदों से भर उठता है। रात की तन्हाई अक्सर दिल की सबसे सच्ची आवाज सुनने का मौका देती है।

रूप की रानी चोरों का राजा फिल्म से आपने गाना सुना तलत महमूद की आवाज में। शैलेंद्र ने इसे लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने। तुम तो दिल की तार छेड़कर हो गए बेखबर, मगर उन सुरों की गूंज अब तक मेरे मन में बसी हुई है। तुम शायद अपनी राह पर आगे बढ़ गए, लेकिन तुम्हारी छेड़ी हुई धुन आज भी मेरी खामोशियों में सुनाई देती है। कभी मुस्कान बनकर, कभी एक मीठी कसक बनकर, वो एहसास दिल के किसी कोने में जिंदा है।

पारसमणि फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर की आवाज में। असद भोपाली ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन

वक्त हुआ है 1:31 और ठीक 7 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त आप सुन रहे हैं गीत सुहाने। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

0: नौशेरवानी आदिल फिल्म का गाना आपने सुना। लता और रफी की आवाज में परवेज शमसी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया सी रामचंद्र ने। चांद की नरम रोशनी से सजी ये सुहानी रात जैसे मोहब्बत का कोई खूबसूरत अफसाना सुनाती है। तारों की चमक मानो आसमान पर प्रेम की कहानी लिख रही हो। ऐसे में दिल यही दुआ करता है कि हर रात तुम्हारे लिए चांदनी की तरह उजली और हर ख्वाब मोहब्बत की मिठास से भरा हो।
1: ओ कली कब तक छुपेगी एक भंवरे की निगाहों से,

किसी से जीत कर भी हारने वाले कयामत की नजर रखते हैं लेकिन ताड़ने वाले जा अरे जा जा जा रे

ये केवल शिकायत नहीं बल्कि किसी को पूरी तरह समझ लेने का एहसास भी है। जब किसी की बातों अदाओं और वादों के पीछे छिपे सच का पता चल जाता है तब दिल में एक अजीब सी मुस्कान और हल्की सी कसक साथ साथ जन्म लेती है। आपने सुना सहरा फिल्म का गाना, लता और रफी की आवाज में। हसरत जयपुरी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया रामलाल ने।

असली नकली फिल्म का गाना आपने सुना रफी की आवाज में। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने। जब से दिल ने तेरे प्यार का तराना छेड़ा है, हर मौसम सुहाना लगने लगा है। हवाओं में एक नई खुशबू है, फिजाओं में एक नई रवानी। ऐसा लगता है जैसे जीवन की हर धड़कन किसी अनकहे गीत का हिस्सा बन गई हो, जिसके हर सुर में सिर्फ तुम्हारा नाम है।

पिया मिलन की आस। इस फिल्म का गाना आपने सुना लता और रफी की आवाज में। भरत व्यास ने इसे लिखा और संगीत दिया एस एन त्रिपाठी ने।

वक्त हुआ है 1:54 और ठीक 41 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 2 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 2:10 पर रात सुरमई मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए।

जब प्यार किसी से होता है, फिल्म का गाना आपने सुना रफी और लता की आवाज में। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने। समय बदलता रहा, मौसम आते जाते रहे, लेकिन दिल के किसी कोने में बसा ये एहसास कभी नहीं बदला। वर्षों की दूरी, बदलते हालात और जीवन की अनगिनत राहें भी उस स्नेह को कम नहीं कर सकी। कुछ रिश्ते समय के मोहताज नहीं होते, वो यादों, विश्वास और अपनत्व की ऐसी डोर से बंधे होते हैं जो हर दौर में अब उतनी ही मजबूत रहती है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी

0: कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि अशांत वैश्विक परिवेश में भारत को अपने राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और बहुध्रुवीयता व्यवस्था की नीति को आगे बढ़ाते हुए विभिन्न देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना चाहिए। नई दिल्ली में आयोजित भारत अमेरिका फोरम 2026 को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने विभिन्न क्षेत्रों में भारत अमेरिका की बढ़ती साझेदारी के बारे में बात की। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि यह अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में यह फैसला सुनाया। भारत के वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के कार्यकाल के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF का अगला उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के जॉयल्स थॉम्सन का स्थान लेंगे। इससे पहले वे FATF में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर चुके हैं। विदेश मंत्रालय ने संस्कृति सचिव विवेक अग्रवाल के वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF के उपाध्यक्ष चुने जाने को भारत के लिए एक बड़ी जीत बताया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का समर्थन करता रहा है। ऐसे में यह नेतृत्वकारी भूमिका वैश्विक आतंकवादी फंडिंग नेटवर्क से निपटने और गैर कानूनी वित्तीय प्रणालियों को खत्म करने के प्रयासों को और मजबूत करती है। चीन में मकाऊ ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में अश्मिता चालिहा सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में अश्मिता ने कोरिया की किम मिन सन को हराया। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। असम और मेघालय में अगले 3 से 4 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी तेज बारिश हो सकती है। पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरलम और माह में भी मंगलवार तक बारिश का अनुमान है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर कड़ी फटकार लगाई है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देता है। भारत ने पाकिस्तान को फ्रैंकनस्टाइन स्टेट यानी ऐसा देश बताया जो खुद आतंकवाद को बढ़ावा देता है और बाद में उसी का शिकार बनता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Shivangi. Prime Minister Narendra Modi will be on a visit to Odisha and West Bengal today. In Odisha, he will join President Draupadi Murmu at Pahadpur village in Mayurbhanj district on the occasion of the President's 68th birthday. The two leaders will later address a massive public gathering marking the completion of 2 years of the Mohan Charan Majhi-led government of Odisha. During the program, they will launch development projects worth over 47,600 crore rupees at Rai Rangpur in Mayurbhanj. In West Bengal, Mr. Modi will participate in Paschim Banga Divas, West Bengal Day celebrations at Tarkeshwar in Hooghly district today. He is also scheduled to launch dedicated

2:10 आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। रात सुरमई, मैं हूं राखी आपके साथ।

डांस डांस फिल्म का गाना आपने सुना अलीशा चिनॉय की आवाज में। अनजान ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया बप्पी लाहिड़ी ने। अपने भीतर छिपे हुए हर मधुर एहसास को सुरों में ढालकर गाए जा। जिंदगी की राह में कभी खुशियां मिले कभी उदासियां, फिर भी अपनी धड़कनों की लय को थमने मत देना। प्यार उम्मीद और मुस्कान के गीत गुनगुनाते रहना, यही मधुर दान जीवन के हर पल को खूबसूरत बनाती है और हर दिन को एक नया अर्थ दे जाती है।

लौटे खिलौने फिल्म का गाना आपने सुना यीशुदास की आवाज में। कैफी आजमी ने इसे लिखा और संगीत दिया बप्पी लाहिड़ी ने। माना हो तुम बेहद हंसी, लेकिन हम भी इतने बुरे नहीं कि तुम्हारी नजर हम पर ठहरे ही ना। हुस्न अपनी जगह बेमिसाल है, मगर दिल की सच्चाई, अपनापन और मोहब्बत का एहसास भी कम खूबसूरत नहीं होता। कभी नजरों से आगे बढ़कर दिल की आवाज भी सुनो, शायद वहां कोई ऐसी बात मिल जाए जो चेहरे की चमक से कहीं ज्यादा देर तक याद रह जाए।

अलग अलग फिल्म का गाना आपने सुना। लता और किशोर की आवाज में आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया आरडी बर्मन ने। तेरे नाम के सिवा अब कुछ याद ही नहीं रहता, जैसे हर ख्याल, हर एहसास और हर धड़कन ने तुझे ही अपना ठिकाना बना लिया हो। दिन की रौनक तन्हाई, हर पल तेरी याद का रंग साथ चलता है। ऐसा लगता है मानो जिंदगी की किताब के सारे पन्नों पर बस एक ही नाम लिखा हो।

0: बन गई।
1: अर्पण फिल्म का गाना आपने सुना अनवर की आवाज में। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

वक्त हुआ है 2:37 और ठीक 18 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

बदलते रिश्ते फिल्म का गाना आपने सुना। लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज में आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। मेरी सांसों को जो महका रही है, बरसों बाद भी उसका एहसास वैसा ही ताजा है जैसे किसी भीनी सी हवा का झोंका चुपके से दिल को छू गया हो। वो खुशबू यादों की हर कोने में बसी हुई है जो कभी मुस्कान बनकर होठों पर आ जाती है और कभी खामोशी में दिल को गुनगुनाने पर मजबूर कर देती है।

उत्सव फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर और आशा भोंसले की आवाज में। वसंत देव ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। शायद रात की इस खामोशी में कोई मीठी याद जाग उठी है, या फिर किसी अनकहे एहसास ने दिल के दरवाजे पर दस्तक दी है। बेला की भीनी भीनी खुशबू और रात का सन्नाटा मिलकर ऐसा जादू रच देते हैं कि मन अपने ही ख्यालों में खो जाता है। तब हर हवा का झोंका एक संदेश सा लगता है और हर धड़कन किसी मधुर प्रतीक्षा का गीत गुनगुनाने लगती है।

वारिस फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर और मनमोहन सिंह की आवाज में। वर्मा मलिक ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया उत्तम जगदीश ने। वक्त हुआ है 2:57 और ठीक 36 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 3 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 3:10 पर हमराही फिरोज आलम के साथ। तो इसी के साथ अब राखी को इजाजत दीजिए।

अर्थ फिल्म से आपने ये गजल सुनी। इसे गाया जगजीत सिंह ने और इसे लिखा राजेंद्र नाथ रहबर ने, संगीत दिया जगजीत सिंह ने।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दो दिन की पश्चिम बंगाल यात्रा पर जाएंगे। राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार गठित होने के बाद यह उनकी पहली यात्रा है। इस यात्रा के दौरान वे हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस के समारोह में भागीदारी करेंगे, कोलकाता के रेड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और स्वदेश में निर्मित तीन युद्धपोत दूनागिरी, अग्रे और संशोधक राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री लगभग 590 करोड़ रुपए की लागत की रेल परियोजनाओं, हावड़ा में 300 बिस्तरों वाले नए रेलवे अस्पताल और पूर्वी मिदनापुर में एक रेल ओवरब्रिज सहित कई विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री 315 किलोमीटर से अधिक दूरी की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 49 ग्रामीण सड़क परियोजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना बीएचईएल द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी।

0: प्रधानमंत्री मोदी ने कल नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि अशांत वैश्विक परिवेश में भारत को अपने राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और बहुध्रुवीयता व्यवस्था की नीति को आगे बढ़ाते हुए विभिन्न देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना चाहिए। नई दिल्ली में आयोजित भारत अमेरिका फोरम 2026 को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने विभिन्न क्षेत्रों में भारत अमेरिका की बढ़ती साझेदारी के बारे में बात की। भारत के वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के कार्यकाल के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF का अगला उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के जाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे जो जुलाई 2025 से इस पद पर कार्यरत हैं। श्री अग्रवाल वर्तमान में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय में सचिव के पद पर कार्यरत हैं। इससे पहले भी वे FATF में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर चुके हैं। ये फैसला 17 से 19 जून तक हुई FATF की बैठक के दौरान लिया गया। विदेश मंत्रालय ने संस्कृति सचिव विवेक अग्रवाल के वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF के उपाध्यक्ष चुने जाने को भारत के लिए एक बड़ी जीत बताया है। लंदन के पास बेडफोर्डशायर इलाके में दो ट्रेनों की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। लंदन के टाइम्स अखबार ने बताया है कि बेडफोर्ड अस्पताल के कर्मचारियों को लगभग 50 घायलों के बारे में सूचित किया गया था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि दोनों ट्रेनों की टक्कर में मारे गए व्यक्ति के परिवार के प्रति उनकी संवेदनाएं हैं। चीन में मकाऊ ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में अश्मिता चालिहा सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में अश्मिता ने कोरिया की किम मिनसन को हराया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर वक्त हो चुका है ठीक 3:11 और 13 सेकंड और यह वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम हमराही का और हमराही की इस बेहद खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूं मैं यानी आपका अपना अजीज दोस्त फेरोज। तो आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार पुरखलूस आदाब और हमराही की इस बेहद खूबसूरत महफिल में गोल्डन एरा के उन चुनिंदा नगमों के साथ हम हाजिर हैं।

दो सितारों का जमीन पर है मिलन आज की रात। कोहिनूर फिल्म का ये बेहद खूबसूरत नगमा मोहम्मद रफ़ी साहब और लता जी की बहुत ही प्यारी आवाज़ों में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गुड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हमराही की इस बहुत ही खूबसूरत महफिल में। और दोस्तों कहते हैं कि फिल्में हैं जो हमारे समाज का आईना होती है और फिल्में उन्हीं विषयों पर बनती है जो हमारे समाज में ज्वलंत मुद्दे होते हैं। ऐसे ही खूबसूरत मुद्दों पर, उन्हें खूबसूरत कहें या घटनाएं कहें, ये बहुत ही जरूरी है कि हमारा समाज उसे जागरूक हो इन फिल्मों के जरिए। और यही क्लासिक दौर यानी गोल्डन एरा की फिल्मों में

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून

तक टोल फ्री नंबर 1-800-11-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की

आंखें लटती है, ऐसा ही एक बहुत ही प्यारा नगमा है 1957 में आई फिल्म नया दौर का। ये सदाबहार गीत जिसके गीतकार हैं साहिर रुदियानवी साहब और बहुत ही खूबसूरत संगीत से सवारा है ओपी नैयर साहब ने। इस गीत को अपनी जादुई आवाजों से सजाया मोहम्मद रफी साहब और आशा भोसले ने। तो तैयार हो जाइए उस दौर की रंगीन फिजाओं में खो जाने के लिए और ये बेहद दिल को छू लेने वाले नया दौर के नगमे के लिए, बेहद लोकप्रिय नगमा उड़े जब जब जुल्फे तेरी कुंवरियों के दिल मचले। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर महफिल सजी है आपकी अपनी पसंदीदा हमराही और हमराही के इस बेहद खूबसूरत महफिल में मैं हूं आपका हमराही फिरोज और आपके लिए उन चुनिंदा नगमों के साथ हाजिर हैं गोल्डन एरा के क्लासिक दौर के सुनहरे दौर के उन खूबसूरत नगमों के साथ हम हाजिर हैं जो आपके दिल के बेहद करीब हैं। दोस्तों कुछ गीत ऐसे होते हैं जो वक्त की सीमाओं को पार कर वक्त की सीमाओं को वक्त के बंधन को तोड़कर सीधे दिल में उतर जाते हैं और ऐसा ही एक बहुत ही मधुर और रोमांटिक गीत जो रात की खामोशी प्यार की नज़ाकत और भावनाओं की गहराई को बेहद खूबसूरती से अभिव्यक्त करता है और वो नगमा है 1956 में प्रदर्शित फिल्म चोरी चोरी का ये यादगार नगमा जिसके गीतकार शैलेंद्र साहब हैं और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है इस गीत को शंकर जयकिशन साहब की जोड़ी ने अपनी मधुर धुनों से इस गीत को अमर बना दिया। इस गीत को अपनी सुरीली आवाजों से सजाया है लता जी और मन्ना डे साहब ने। तो आइए इस प्यार और संगीत से सराबोर इस खूबसूरत रात का आनंद लीजिए इस बेहद खूबसूरत नगमे के साथ और सुनिए फिल्म चोरी चोरी का ये बहुत ही प्यारा और सदाबहार नगमा आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर महफिल सजी है आपकी अपनी हमराहीगी और हमराही की इस बेहद खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूं मैं यानी आपका दोस्त फिरोज। बात तब एक ऐसे फिल्म की जो गोल्डन एरा की बेहद खूबसूरत फिल्मों में से एक है। दोस्तों हिंदी सिनेमा के स्वर्णिम युग की बात हो और फिल्मी गीतों की चंचलता मस्ती और अनोखे अंदाज का जिक्र न हो ऐसा कैसे हो सकता है। यकीनन गोल्डन एरा के जो नगमे हैं क्लासिक दौर की जो फिल्में हैं वो बेहद खूबसूरत बहुत ही प्यारी हैं। उन्हीं फिल्मों में से अब एक बहुत ही प्यारा गीत जिसमें अपने दिलकश बोल आकर्षण धुन और जोशीले अंदाज में सुनने वालों के दिलों में खास जगह बनाई। साल था 1955 का। 1955 में

प्रदर्शित हुई थी राज कपूर साहब के निर्माण निर्देशन में फिल्म श्री 420। इस फिल्म में राज कपूर साहब ने बेहद खूबसूरत अभिनय भी किया था। उसी फिल्म का ये लोकप्रिय गीत जिसको लिखा है शैलेंद्र साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है शंकर जयकिशन साहब ने। इसकी यादगार धुनें सीधे दिल में दस्तक देती है। गीत को अपनी शानदार आवाजों से सजाया बनाया मन्ना डे साहब और आशा जी ने। तो आइए सुनते हैं फिल्म श्री 420 का वही चुलबुला और सदाबहार नगमा मुड़ मुड़ के न देख मुड़ मुड़ के। ये बहुत ही खूबसूरत बहुत ही प्यारा नगमा आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: सफर है हाय।
1: मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के।

फिल्म ताजमहल की इसी कव्वाली के साथ, जिसमें आवाजें थी मोहम्मद रफी साहब, मन्ना डे, आशा भोसले और मीना कपूर की, इन्हीं आवाजों के साथ मुझे यानी फिरोज को अब दीजिए हमराही से इजाजत। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार, और समाचारों के बाद एक बार फिर मैं आपके साथ रहूंगा लेकर अगला प्रोग्राम अरुणिमा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के

0: बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी आज से दो दिन की पश्चिम बंगाल यात्रा पर रहेंगे। राज्य में भाजपा सरकार गठित होने के बाद ये उनकी पहली यात्रा है। इस यात्रा के दौरान वे हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस के समारोह में भागीदारी करेंगे, कोलकाता के रेड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और स्वदेश में निर्मित तीन युद्धपोत दूनागिरी, अग्रय और संशोधक राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री लगभग 590 करोड़ रुपए की लागत की रेल परियोजनाओं, हावड़ा में 300 बिस्तरों वाले नए रेलवे अस्पताल और पूर्वी मिदनापुर में एक रेल ओवर ब्रिज सहित कई विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री 315 किलोमीटर से अधिक दूरी की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 49 ग्रामीण सड़क परियोजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रूपये लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि अशांत वैश्विक परिवेश में भारत को अपने राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और बहुध्रुवीयता व्यवस्था की नीति को आगे बढ़ाते हुए विभिन्न देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना चाहिए। नई दिल्ली में आयोजित भारत अमेरिका फोरम 2026 को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने विभिन्न क्षेत्रों में भारत अमेरिका की बढ़ती साझेदारी के बारे में बात की। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि यह अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में यह फैसला सुनाया। लंदन के पास बेडफोर्ड शायर इलाके में दो ट्रेनों की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए हैं। लंदन के टाइम्स अखबार ने बताया कि बेडफोर्ड अस्पताल के कर्मचारियों को लगभग 50 घायलों के आने की आशंका के बारे में सूचित किया गया था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि दोनों ट्रेनों की टक्कर में मारे गए व्यक्ति के परिवार के प्रति उनकी संवेदनाएं हैं। दोहा डायमंड लीग में भारत के स्टार ट्रैक एंड फील्ड एथलीट और जेवलिन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा कतर में चौथे स्थान पर है। नीरज चोपड़ा ने अपने तीसरे प्रयास में 85.69 मीटर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, जिससे वे अपने सीजन के पहले इवेंट में चौथे स्थान पर रहे। श्रीलंका के स्टार और विश्व शीर्ष खिलाड़ी रमेश थरंगा पथिरागे ने 88.68 मीटर के थ्रो के साथ खिताब जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर वक्त हो चुका है ठीक 4:11 और 12 सेकेंड और ये वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम अरुणिमा का और अरुणिमा की इस बेहद खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूँ फेरोज। तो आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार पुरखलूस आदाब। दोस्तों हम सब की जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलात आती हैं, बहुत सारी परेशानियां आती हैं, लेकिन उन तमाम मुश्किलात उन तमाम परेशानियों से निकलकर जब आप एक अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं तब वो तमाम परेशानियां और तमाम मुश्किलात बिल्कुल बहुत ही छोटी लगने लगती हैं। और तभी तो कहते हैं कि जिंदगी हर दिन एक नया अवसर देती है, बस उसे पहचानने की जरूरत है, उसे पहचानना चाहिए। मुश्किलें जीवन की परीक्षा है, सजा नहीं, ये हमें और मजबूत बनाती है। और जो व्यक्ति जो इंसान अपने सपनों पर विश्वास करता है वही उन्हें हकीकत में बदल पाता है। और यही आज हम अरुणिमा की इस महफिल में ऐसे ही मौजूदात पे बात करेंगे, ऐसे ही बातों से हम इस सफर को आगे बढ़ाएंगे। और कहते हैं हमारे जीवन का एक अनमोल हिस्सा होता है जो वो होता है हमारा दोस्त, हमारा अपना कोई खास जो हमारे दिल में बसा होता है। वो सिर्फ सुख के साथ ही नहीं बल्कि कठिन समय में हमारा सहारा भी बनते हैं। एक सच्चा दोस्त, एक सच्चा साथी खुशियों को बढ़ाता है और दुखों को हमेशा कम करता है। जिंदगी की चुनौतियों का सामना करते वक्त ये दोस्त हमें हिम्मत, मार्गदर्शन और भावनात्मक सहयोग देते हैं और शायद इसीलिए हम उसके बेहद करीब होते हैं और उस पर सब कुछ लुटाने को तैयार हो जाते हैं, बिल्कुल इस नगमे की तरह।

तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्तनक में लुटाता रहूं। जी हाँ, अगर आपके साथ आपका साथी हो, आपका अपना हो, तो फिर आप यूं ही हंसते मुस्कुराते जीवन को आगे बढ़ाते हैं और जीवन की खुशियों को बहुत ही एंजॉय करते हुए आगे बढ़ते हैं। जिंदगी इसी का नाम है, हंसते मुस्कुराते गाते गुनगुनाते आगे बढ़ते रहें। ये नगमा था फिल्म हमराज से, और इस गीत को लिखा था साहिर लुधियानवी साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से सवारा था रवि ने। महेंद्र कपूर साहब की आवाज में यह नगमा था फिल्म हमराज का। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। दोस्तों, ये जिंदगी बेहद खूबसूरत है, बहुत ही प्यारी है, और इस प्यारी जिंदगी में हम बहुत सारे ऐसे वक्त से गुजरते हैं, बहुत सारे ऐसी मुश्किलात से भी गुजरते हैं, जहां पर ऐसा लगता है कई बार कि कोई

जी हाँ, गाए जा और मुस्कुराए जा जब तक ये फुर्सत दे ये जमाना। यकीनन जब तक ये जान में जान है, जब तक आप मुस्कुराते रहें, हंसते रहें और जिंदगी को खूबसूरती के साथ आगे बढ़ाते रहें। जिंदगी में बेहद मुश्किलात, बेहद परेशानियां भले ही आए, लेकिन उन सब का डटकर मुकाबला करना हम सबकी जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी से हम सब मुकर नहीं सकते, क्योंकि इन तमाम मुश्किलात से निकल कर के इंसान एक परिपक्व और समझदार और साथ ही साथ एक बेहतर इंसान बनता है। तभी तो हम जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं खुशियों के साथ, मुस्कुराते हुए और दूसरों की परेशानियों को समझते हुए। आप भी दूसरों की परेशानियों को समझते हैं, मुश्किलात को समझते हैं, तब आप भी एक अच्छे इंसान बन

परिपक्व और समझदार और साथ ही साथ एक बेहतर इंसान बनता है। तभी तो हम जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं खुशियों के साथ, मुस्कुराते हुए और दूसरों की परेशानियों को समझते हुए। आप भी दूसरों की परेशानियों को समझते हैं, मुश्किलात को समझते हैं, तब आप भी एक अच्छे इंसान बनते हैं। इसी तरीके से हम सब मिलजुल कर इस जीवन को आगे बढ़ाएं खुशियों के साथ, मोहब्बत के साथ। रफी साहब की आवाज में ये अगला नगमा ऐसी ही बातें कहता है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर एक छोटे से वक्फे के बाद एक बार फिर मैं फिरोज आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं अरुणिमा की इस दिलकश महफिल में जिसमें आप और हम मिलकर चल रहे हैं एक बेहद खूबसूरत सफर पर जहां पर सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक बातें प्यार मोहब्बत की जिंदगी की और जिंदगी को बड़ी ही खूबसूरती से आगे बढ़ाने की हो रही है। दोस्तों कहते हैं कि जिंदगी में कई बार ऐसे पल आते हैं जब हमें लगता है कि रास्ते धुंधले हो गए हैं, मंजिल दूर होती जा रही है और कोई हमें समझने वाला नहीं। लेकिन याद रखिए, हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह जरूर आती है। प्यार, उम्मीद और विश्वास, ये वो तीनों ताकतें इंसान को फिर से जीना सिखाती है। आज का अगला नगमा उम्मीद की आवाज है, एक ऐसी पुकार जो दिल से निकलकर सीधे दिल तक पहुंचती है। और यह नगमा है साल 1959 में आई फिल्म नील कमल का। यह अमर नगमा महान शायर साहिर लुधियानवी के शब्दों से सजा है और संगीतकार रवि की मधुर धुनों में ढाला है। इसे अपनी जादुई आवाज दी है मोहम्मद रफी साहब ने। तो आइए आप भी किसी अपने या खुद अपने बेहतर जिंदगी की तलाश में हैं तो इस गीत को दिल से सुनिए, क्योंकि कभी कभी एक गीत भी हमें आगे बढ़ने की नई वजह दे जाता है। आइए उसी नगमे के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अरुणिमा की इस बेहद खूबसूरत महफिल में

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का लक्ष्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज से दो दिन की पश्चिम बंगाल यात्रा पर रहेंगे। राज्य में भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनने के बाद ये उनकी पहली यात्रा है। इस यात्रा के दौरान वे हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में भागीदारी करेंगे। कोलकाता के रेड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे और स्वदेश में निर्मित तीन युद्धपोत दुनागिरी, अग्रय और संशोधक राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री लगभग 590 करोड़ रूपये की लागत की रेल परियोजनाओं, हावड़ा में 300 बिस्तरों वाले नए रेलवे अस्पताल और पूर्वी मिदनापुर में एक रेल ओवरब्रिज सहित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और उनकी आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री 315 किलोमीटर से अधिक दूरी की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 49 ग्रामीण सड़क परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र उड़ीसा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL की स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। विदेश मंत्रालय ने संस्कृति सचिव विवेक अग्रवाल के वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुने जाने को भारत के लिए बड़ी जीत बताया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत आतंकवाद को कतई बर्दाश्त करने की नीति का समर्थन करता है, ऐसे में ये नेतृत्व भूमिका आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय प्रणालियों को खत्म करने के प्रयासों को और मजबूत करती है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अशांत वैश्विक परिवेश में भारत को अपने राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और बहुध्रुवीयता व्यवस्था की नीति को आगे बढ़ाते हुए विभिन्न देशों

0: के संबंधों को मजबूत करना चाहिए। नई दिल्ली में आयोजित भारत अमेरिका फोरम 2026 को संबोधित करते हुए डॉ. जयशंकर ने विभिन्न क्षेत्रों में भारत अमेरिका की बढ़ती साझेदारी का उल्लेख किया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलना मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि एक महत्वपूर्ण फैसले में ये अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में ये फैसला सुनाया। लंदन के पास बेडफोर्डशायर इलाके में 2 ट्रेनों की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की स्टामन ने हादसे में मारे गए व्यक्ति के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। दोहा डायमंड लीग में भारत के स्टार ट्रैक एंड फील्ड एथलीट और जेवलिन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा कतन में 4th स्थान पर रहे। नीरज चोपड़ा ने अपने तीसरे प्रयास में 85.69 मीटर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, जिससे वह अपने सीजन के पहले इवेंट में 4th स्थान पर रहे। वहीं श्रीलंका के स्टार और विश्व शीर्ष खिलाड़ी रोमेश थनंगा पथिरागे ने 88.68 मीटर के थ्रो के साथ खिताब जीता। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका ग्रुप डी के एक मैच में ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हराकर नॉकआउट चरण में पहुंच गया है। कैमरून बर्गेस के आत्मघाती गोल और एलेक्स फ्रीमैन के हेडर से अमेरिका ने पहले हाफ में ही 2-0 की बढ़त हासिल कर ली। 2 मैचों में 2 जीत के साथ अमेरिका नॉकआउट राउंड के लिए क्वालिफाई करने वाली मैक्सिको के बाद दूसरी टीम बन गई है। फुटबॉल विश्व कप में आज 4 मैच होने वाले हैं। ग्रुप बी के मैच में स्कॉटलैंड का मुकाबला मोरक्को से और ग्रुप सी के मैच में हैती का सामना ब्राजील से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शिवांगी। Prime Minister Narendra Modi will be on a visit to Odisha and West Bengal today. In Odisha, he will join President Draupadi Murmu at Paharpur village in Mayurbhanj district on the occasion of the president's 68th birthday. The two leaders will later address a massive public gathering marking the completion of 2 years of the Mohan Charan Majhi-led government of Odisha. During the program, they will launch development projects worth over 47,600 crore rupees at Rai Rangpur in Mayurbhanj. In West Bengal, Mr. Modi will participate in Paschim Banga Divas, West Bengal Day celebrations at Tarkeshwar in Hooghly district today. He is also scheduled to launch Dedicate to the Nation and lay the foundation stone of multiple development projects in the state. Mr. Modi will release the 23rd installment of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi, PM Kisan. Under this installment, more than 18,880 crore rupees will be transferred directly into the bank accounts of over 9.44 crore farmers across the country. Prime Minister Modi dispersed incentives worth 2,400 crore rupees under the Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana at a function in New Delhi yesterday. Speaking on the occasion, Mr. Modi said, "In the 21st century, opportunities will belong to nations that nurture skilled talent, foster innovation, and uphold the highest standards of quality." He said India's youth will be at the forefront of driving global growth, innovation, and entrepreneurship in the years to come. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar has stressed that India must optimize relationships across geographies while pursuing its national interests, strategic autonomy and multipolarity in a turbulent world. Speaking at the India-US Forum 2026 in New Delhi last evening, Dr. Jayashankar spoke about the deepening India-US partnership across domains, even as both nations navigate its issues and complexities. He added that as India rises, its interests will expand and diversify. India's senior bureaucrat Vivek Agarwal has been selected as the next vice president of the Financial Action Task Force, FATF, for the 2026-27 term. He will succeed Giles Thompson of United Kingdom, who has served in the role since July 2025. Meanwhile, in a social media post, External Affairs Ministry has termed it a major win for India. It said India continues to champion a zero-tolerance policy against terrorism. This leadership role reinforces New Delhi's relentless focus on combating global terrorist

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर वक्त हो चुका है ठीक 5:11 और 5 सेकंड और ये वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम भोर सुहानी का और भोर सुहानी की इस बेहद खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूँ मैं यानी आपका दोस्त फेरोज। तो आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार पुरखलूस आदाब। और दोस्तों हम सब आज एक नई सुबह में कदम रख चुके हैं और एक नए दिन का आगाज करने जा रहे हैं क्योंकि ये नया दिन हमें हर रोज एक नई ऊर्जा नई उमंग और नई रोशनी के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। हर अंधेरी रात के बाद एक नए दिन की शुरुआत होती है और एक नया दिन जब आता है तो फिर जिंदगी में एक नई उम्मीदें भी लेकर आता है और इसी नई उम्मीद के साथ हम भी आज के इस सफर पर चलेंगे। आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर भोर सुहानी की इस बेहद खूबसूरत महफिल के साथ आप भी हमारे साथ आए इस सफर में जुड़े और अपने सफर को आसान बनाएं गाते गुनगुनाते हुए बहुत ही खूबसूरत नगमों के साथ। पहला नगमा आपके लिए अयाश फिल्म का यशुदास की बहुत ही प्यारी आवाज में ये सुबह सुहानी। यकीनन ये सुबह बहुत ही सुहानी है बहुत ही खूबसूरत है क्योंकि परिंदे चहचहाने लगे हैं तो जग चुके हैं और हमारे आसपास का माहौल भी बहुत ही खूबसूरत बहुत ही प्यारा है इस वक्त। तो आइए आज के इस सफर का आगाज करते हैं अयाश फिल्म के इसी नगमे के साथ यशुदास की बहुत ही प्यारी आवाज में।

यशोदास की आवाज में यह नगमा था फिल्म अय्याश का, बेहद खूबसूरत, बहुत ही प्यारा, जो हमें प्रेरणा देता है जिंदगी को आगे बढ़ने की, मुश्किलात से आगे निकलने की, क्योंकि हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ आती है और हर सुबह हमें एक नई सोच के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। दोस्तों कहते हैं कि जिंदगी कभी

एक सी नहीं रहती। कभी कामयाबी के फूल खिलते हैं तो कभी इम्तहानों की धूप सफर को मुश्किल बना देती है। मगर जो लोग हौसले का दामन थामे रखते हैं वे हर मुश्किल को अपनी कामयाबी की सीढ़ी बना लेते हैं। जिंदगी का असली मतलब ठहर जाना नहीं बल्कि हर हाल में आगे बढ़ते रहना है। गिरना, संभलना, सीखना और फिर मुस्कुराकर अपनी जिंदगी की तरफ बढ़ना ही इंसान की सबसे बड़ी जीत है। आज का अगला ये गीत यही पैगाम देता है कि हालात चाहे जैसे भी हों, सफर जारी रहना चाहिए, सफर चलते रहना चाहिए, क्योंकि रुक जाना जिंदगी नहीं, चलते रहना ही जिंदगी की पहचान है। फिल्म शोर का ये प्रेरणादायक नगमा गीतकार है इंद्रजीत सिंह तुलसी की सोच और जिंदगी के फलसफे को बखूबी बयान करता है। इसे अपनी बुलंद और दिलकश आवाज से सजाया है मन्ना डे साहब और महेंद्र कपूर साहब ने। तो आइए अपने दिल में नई उमंग, नया जज्बा और नई उम्मीद जगाएं। अगर राह में मुश्किलें आए तो उनसे घबराएं नहीं, क्योंकि हर सफर का अपना एक मकसद होता है, बिल्कुल इस नगमे की तरह।

जी हाँ, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम, जिंदगी इसी का नाम है, बस चलते रहें, आगे बढ़ते रहें, जिंदगी में खुशियां बिखेरते रहें, अपनों के साथ साथ दूसरों को भी साथ लेकर बढ़ते रहें। अगर सुनी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। दोस्तों, कहते हैं कि जिंदगी का सफर सिर्फ मंजिल पाने का नाम नहीं बल्कि दूसरों को साथ लेकर आगे बढ़ने का भी नाम है। जब इंसान अकेला चलता है तो उसकी रफ्तार तेज हो सकती है, लेकिन जब लोग मिलकर चलते हैं तो मंजिल आसान हो जाती है और कामयाबी की राहें और भी रोशन हो जाती हैं। इत्तेहाद, भाईचारा और आपसी ताउन ऐसी ताकतें हैं जो बड़े से बड़े चैलेंज को भी छोटा बना देती है। जब हाथों में हाथ हो, दिलों में भरोसा हो और इरादों में मजबूती हो तो कोई भी मुश्किल रास्ता लंबा नहीं लगता। आज का ये अगला गीत हमें यही पैगाम देता है कि तरक्की और कामयाबी सिर्फ एक इंसान की नहीं बल्कि पूरे समाज की मेहनत से हासिल होती है। मिलजुल कर काम करने की सोच ही एक बेहतर और खुशहाल दुनिया की बुनियाद रखती है, खुशहाल समाज की बुनियाद रखती है। फिल्म नया दौर का ये कालजयी नगमा मेहनत, एकता और इंसानियत का बेहतरीन तराना है। इसे अपनी दमदार

आवाज दाऊद दिलकश, पेशकश से बहुत ही खूबसूरत बनाया है मोहम्मद रफी साहब और आशा भोसले जी ने। तो आइए अपने दिलों में बेहद मोहब्बत, हमदर्दी और जज्बात को मजबूत करें। याद रखें, जब हम एक दूसरे का हाथ थामते हैं तो न सिर्फ अपनी मंजिल आसान बनाते हैं बल्कि दूसरों की राहें भी बेहद खूबसूरत बन जाती है और आसान हो जाती है।